ओम शांति। हमारी अचल अडोल स्थिति का सिंहासन, हमें भविष्य सिंहासन का

अधिकारी बना देता है। जो आत्माएं ज्ञान के बल से, योग के बल से, स्मृति स्वरूप होने के बल से अपनी स्थिति को अचल अडोल बना लेते हैं, वो वास्तव में विष्णु के समान बन जाते हैं। जैसे विष्णु जी शेष सैया पर विराजमान हैं, चारों ओर सागर में लहरें उठ रही हैं, परंतु वे गीता ज्ञान में मग्न हैं। ऐसे ही चाहे जीवन में कितनी भी तूफानों की लहरें आ जाएं, बड़े बड़े विघ्न आ जाएं, लेकिन जिसने अपनी स्थिति को अचल अडोल और साक्षी बनाना सीख लिया, वही सच्चा ज्ञानी और श्रेष्ठ योगी है। ऐसा कहेंगे कि उसने ही स्वयं को जान लिया है। जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते जाते हैं, हमारे अंदर अपने में बहुत विश्वास बढ़ता जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता जाता है, उतना उतना हम दूसरों की बातें सुनकर, कोई उल्टी सुलटी बातें देखकर अचल अडोल रहते हैं। हमें याद रहता है जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। और यदि कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, अनेक बार अनेक आत्माओं के साथ ये होता है कि वो स्वयं तो सत्य हैं पर अपनी बात दूसरों को, बड़ों को कह नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं बड़े उनकी सुनते भी नहीं हैं, और वो सत्य होते हुए भी अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। परंतु सत्य यदि हम हैं तो हमें अचल अडोल रहना चाहिए और अपनी बात बड़ों के सामने बहुत सहज भाव से सभ्यतापूर्वक कहनी भी चाहिए। ठीक है वो नहीं सुनेंगे या उल्टा आपको ही डांटेंगे, तो भी अपनी स्थिति को न बिगाड़ना, यही श्रेष्ठता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान है। और जो अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ते, उनका वातावरण भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशंस खराब बातों से, निगेटिव बातों से, किसी की कंप्लेंट से, किसी के द्वारा बनाए गए निगेटिव वातावरण से कहीं अधिक पावरफुल होते हैं। हमारी श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशंस सचमुच चमत्कार करते हैं, परिस्थितियों को बदल देते हैं। इसलिए हमें विचार करना है कि बातें तो आएंगी और जाएंगी, परंतु हमारी स्थिति आए और जाए नहीं, हम अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना लें। जैसे मुझे तो एक बल एक भरोसे रहना है, जैसे मुझे संसार की बातों से अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़नी है, वो बड़े हों या छोटे हों, किसने शिकायत की हो या कुछ भी किया हो, मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है। तीसरी बात, मैं तो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे अपने पर संपूर्ण कंट्रोल है, संसार की कोई भी शक्ति मेरी स्थिति को नहीं बिगाड़ सकती है। हम अचल अडोल बने, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करेगा ज्ञान का बल। ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें हम अपने चिंतन में रखें, उन्हें नोट करके रखें, उन्हें पढ़ते रहें, वो बातें हमें एनर्जी देती रहेंगी। ज्ञान की सुंदर बातें यदि हमारे चिंतन में हों तो हमारे मन को, हमारे ब्रेन को बहुत श्रेष्ठ एनर्जी मिलती रहती है। तो आइए आज हम सभी अचल अडोल स्थिति का संकल्प लेते हुए अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहें। मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मालिक हूँ खुद की, मन बुद्धि की मालिक तो हूँ ही, कर्मेंद्रियों की मालिक तो हूँ ही, अपनी स्थिति की भी मालिक हूँ। मैं जैसी अपनी स्थिति चाहे बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। और साथ में बहुत अच्छी योग की एक ड्रिल करेंगे, जाना और आना। आपने सुना होगा ब्रह्मा बाबा की ये ड्रिल लास्ट ईयर में बहुत
बहुत श्रेष्ठ थी, बड़ी प्रसिद्ध हुई। बाबा मुरलियों बोलते थे, बच्चे जाना है फिर आना है, तो ऐसा अभ्यास करेंगे। फरिश्ते बनकर ऊपर जा रहे हैं, देवता बनकर नीचे आ रहे हैं। ओम शांति।

0: रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए।

0: ग्रीन बोल्ड हो जाओगे, जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती। ठोको ताली। मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। कड़क।
1: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं। ये एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, वास्तव में एक स्वार्थी व्यवहार है, न कि स्वार्थ रहित। माफी देकर आप अपने अंदर की शत्रुता और घृणा की भावना से छुटकारा पा जाते हैं, और यह क्रिया क्षमादान पाने वाले से ज्यादा लाभ आपको देती है। जब आपका किसी से बैर होता है तो वह बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए उस व्यक्ति के बोझ के समान होता है जिसे आप लगातार ढो रहे होते हैं। वह आपकी शक्ति, उत्साह और मन की शांति सब निचोड़ लेता है, परंतु जैसे ही आप उसको माफ कर देते हैं, वह बोझ आपकी पीठ से हट जाता है और आप निश्चिंत रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। माफी उस खुशबू के समान है जो बनफशे का फूल उस पैर को देता है जिसने उसे कुचला था। क्षमादान भावनात्मक और निजी प्रबलता का महान आचरण है। यह एक सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लाया जा सकता है। हर मिनट उस व्यक्ति के बारे में सोचकर जिसने आपका बुरा किया है, आप अपने अत्यंत महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर रहे हैं। वह अनमोल समय जिसे किसी उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है, जैसे उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो अपना समय व्यर्थ सोचने में ना गवाएं। क्षमा करो और भूल जाओ। जितना आप क्षमा करते जाएंगे, उतना आप हल्के रहेंगे, सारे बोझ से मुक्त रहेंगे। कहते हैं ना, क्षमा करना वीरों का काम है। कोई कायर व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। जितना आप क्षमा देते हैं, उतना आप वीर

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

सफल जीवन को जीने का एक अखंड सत्य जो सादगी से बयान किया जा सकता है वह यह है, आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। आप जिस वस्तु पर विशेष ध्यान देते हैं उसका विकास होता है। जिसके बारे में आप सोचते हैं वह विस्तृत होता है, और जिसमें आप व्यस्त रहते हैं वह आपकी किस्मत निर्धारित करता है। जीवन अपने आप में एक आत्मसिद्धि की भविष्यवाणी है। यह आपको बिल्कुल वही देता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। जैसे कि हेलन केलर ने कहा था, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति तक न तो सितारों के रहस्य को खोजा है, न ही नई दुनिया खोजने के लिए यात्रा की है, और न ही मानवीय उत्साह के नए स्वर्ग के दरवाजों को खोलने का प्रयत्न किया है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्यादा प्रसन्न शांत व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने विचारों को संगठित करके अपनी विचारधारा को परिष्कृत करना पड़ेगा। एक सबसे बढ़िया तरीका आपके सामने इस आंतरिक सुधार की राह में यह है कि आप अपने निजी वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। अपने आसपास कड़ी नजर से देखिए। आपके विचार उन लोगों के संगत में ढलते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं और जो शब्द आप बोलते हैं, और साथ ही आपके आसपास के भौतिक वातावरण का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। क्या आप अपना समय निराशावादी लोगों के साथ बिता रहे हैं? अगर ऐसा है तो वे आपको नकारात्मक और चिड़चिड़ा बनाएंगे। क्या आप घर पर हिंसात्मक टीवी कार्यक्रम और बिना अभिप्राय वाले वीडियो देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आपका दिमाग अशांति और शोर से भर जाएगा। क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस वातावरण में सुधार लाने की कोशिश करेंगे? आप जितना जल्दी हो सकता है सुधार लाने के तरीके ढूंढेंगे जो आपकी सोच, भावनाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो यह सुधार आज से ही शुरू कर दें। जितना आपके आसपास का वातावरण सुंदर होगा, शांत होगा, मधुर होगा, उतना ही आप अपने मन को शांत शीतल रख पाएंगे, और वह वातावरण आपको स्वयं को बनाना होगा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है।

0: हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में. कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं. जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है. हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले. क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है. व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में. फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा. तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी. घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा. हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को. वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ. तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने. हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना. अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई. अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा. अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

इस पुरानी फारसी किंवदंती में एक महान बुद्धिमता नजर आती है। मैं इस बात पर तब तक रोया कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसके पैर नहीं थे। अपनी परेशानियों को बढ़ाकर देखना और उन अच्छी चीजों को नजरअंदाज करना जो हमें भाग्य से मिली हुई हैं, बहुत आसान है अगर हम अपने समय को एक भेंट की तरह समझें और स्वयं सेवक बनकर उन लोगों की सहायता करें जो हमारे जितने भाग्यवान नहीं है, तो वह एक उत्तम तरीका होगा हमारे जीवन की प्रचुरता और उत्तमता की याद दिलाने का। एक कंपनी का उच्च दर्जे का उत्पादक उसकी सफलता के अनेक पक्षों में से एक पक्ष यह भी है कि वह हर हफ्ते में कुछ घंटे उन लोगों की मदद में लगाता है जो उससे कम भाग्यवान थे। दूसरों के पास क्या नहीं है यह देखकर हमारे पास जो है हम उसके महत्व को समझ पाते हैं। यह हमें जीवन में हर चीज को असावधानी से लेने से बचाता है और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारी सहायता करता है कि हम उन लोगों की मदद करें जिनके जीवन को सही में हमारी आवश्यकता है। फ्रांस के चिकित्सक अल्बर्ट स्वाइट्जर ने कहा है, मुझे पता नहीं कि आपकी किस्मत में क्या है, पर एक चीज मुझे जरूर पता है, आप लोगों में से सिर्फ वे लोग जीवन में खुश रहने वाले हैं जिन्होंने यह खोज निकाला है कि दूसरों की सेवा कैसे की जाती है। एन मोरो लिंडबर्ग ने कहा है, आप सिर्फ कृतज्ञ होकर ऋण नहीं चुका सकते हैं, इसे सिर्फ किसी ठोस रूप में चुकाया जा सकता है। स्वयं सेवा के द्वारा आपको दूसरों की मदद करने का और उन लोगों का कर्जा चुकाने का मौका मिलता है जो लोग कभी हमारे जीवन में काम आए। क्या आपको कोई ऐसा समय याद है जब आपने सही वक्त पर सही गाना सुना हो? क्या आपने भी जोर से गाया या बेफिक्र होकर ना

और जो संगीत आपके हृदय को खुशी से भर दे, उसे हफ्ते की हर दिन सुनिए। प्रतिदिन चाहे थोड़े समय के लिए ही, परंतु अगर संगीत सुना जाए तो अपनी मनस्थिति को उत्तम स्थिति में रखने में मदद करता है, और यह सरल परंतु अत्यंत शक्तिशाली तरीका है।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

शुरू के 50 वर्ष हमें वैधता साबित करने में समर्पित करने पड़ते हैं और बाद के 50 साल अपनी धरोहर बनाने में। यह कितना सही है। हम में से अनेक लोग अपने जीवन का पहला भाग कुछ हासिल करने के संघर्ष में या आदर पाने के लिए परिश्रम करने में बिता देते हैं। जब हमारी वैधता कायम हो जाती है तो यह चाहे प्रतिष्ठा के रूप में आए या भौतिक संपत्ति के रूप में, जल्द ही हमें यह समझ में आ जाता है कि कुछ कमी है और हम अपने जीवन के बचे हुए दिन वह करने में बिताते हैं जिसे शुरुआत से ही करना चाहिए था, और वह है एक धरोहर बनाना। अपनी धरोहर को बनाने का समय आज से ही है, न कि 10 साल बाद जब आपके पास ज्यादा समय होगा, क्योंकि ऐसा वक्त आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इस वक्त पर विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या निर्माण करना चाह रहे हैं, और उससे भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि आप जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। महानता इस बात में है कि हम ऐसी चीज की शुरुआत करें जो हम पर नहीं खत्म होती हो। लोग अपने विचारों को धरोहर के रूप में भी लिख कर रख देते हैं। जैसा कि पहले वाला तरीका हमारी कल्पना को दर्शाता है, तो दूसरा तरीका यह बताता है कि हम अपने मरने के बाद क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। इन दोनों में फर्क है। अगर आप सोचें तो आपको जीवन की अंतिम कगार पर पहुंचकर दुख और निराशा की भावना से ग्रसित होकर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यह सोचकर कि आप इस दुनिया में क्या छोड़कर जा सकते थे पर किया नहीं। तो हम सभी आज से कुछ न कुछ ऐसा कार्य, कुछ न कुछ ऐसी धरोहर तैयार करने की शुरुआत कर दे जो हमारे बाद भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ प्रेरणा दे, कुछ मदद कर पाए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाना वास्तविकता में सहज है, यह कोई कठिन मार्ग नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, सिर्फ हमारे भोजन पर ध्यान दें, हमारे आहार विहार पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग तब तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते जब शरीर का कोई अंग या स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज गड़बड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती। अब फिर उस चीज को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, कितने पैसे का खर्चा होता है, कितना वक्त जाया होता है, ये हम सभी समझते हैं। इसलिए क्यों ना हम ये बेहतर कोशिश करें कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मेहनत करें, ऐसी कोई चीज होने ही ना दें, कमी पेशी रहने ना दें जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। सहज स्वास्थ्य की इसी कोशिश में रेडियो मधुबन आपके सामने ऐसी अनेक जानकारियां ले आ रहा है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे हैं, मगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ अपने घर परिवार के सदस्यों को, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी अपनी अहम भूमिका को समझें। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक ऑस्टियोपैथ हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेक इनके परिवार के सदस्यों ने पीढ़ियों तक लोगों को शफा दिलाई है। आज करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये बात समझते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीजों को समझते आए हैं, और आजकल के बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, वो इसके साथ साथ विटामिन्स की भी बात सुनते आते हैं। विटामिन्स शरीर के लिए आवश्यक है, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में हमारे लिए जरूरी है, मगर वो कम मात्रा में होते हुए भी अगर वो ना मिले तो फिर स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं, ये बात हम समझते हैं। विटामिन्स में लोग ये कहते हैं कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, थियरी में तो हम इन चीजों को समझते हैं, मगर ये विटामिन कौन से हैं, कहाँ से ये विटामिन मिलता है, इत्यादि चीजों को समझा जाए। अक्सर विटामिन्स की बात कही जाती है तो लोग ये कहते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ये अल्फाबेट्स के हिसाब से ये सुनने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं इसी विटामिन से शुरू करना चाहूंगा, जो विटामिन ए जिसका नाम है, ये विटामिन ए क्या है, ये क्यों ये सबसे पहले इसका नंबर आता है, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है, ये भी समझनी चाहिए।
1: ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये चार विटामिन में से एक है जो फैट में हमारे शरीर में घुलता है, विटामिन ए, डी, ई और के। हमारे शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि हमको ये विटामिन्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और हमको चाहिए इसलिए क्योंकि हम इसको अपने शरीर में बना नहीं सकते। सबसे पहले ये बात की जाए कि ये किनको नहीं मिलता है या इनकी कमी किसको हो सकती है। सबसे पहला, या तो आप भोजन में जो ये विटामिन सप्लाई करते हैं उसका प्रयोग एकदम नहीं करो। जिस चीज में विटामिन ए है, और सबसे कॉमनली विटामिन ए को गाजर के साथ जोड़ा जाता है, मतलब गाजर, पालक और स्वीट पोटैटो, या हम लोग जो कहते हैं, इन तीन सब्जियों के साथ इसको जोड़ा जाता है, और नॉनवेज खाने वाले इसको अंडा और मछली से जोड़ देते हैं। मगर सबसे पहले हम ये माने कि या तो हम ये जो भोजन है उसको एकदम नहीं करते हैं, दूसरा या तो हम बीमार हैं, हमारा पाचन तंत्र खराब है, हमको डायरिया है, हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा खराब है, या लिवर हमारा गड़बड़ है, और या एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है तो हमारा ये एब्जॉर्प्शन पार्ट पूरा खराब। सबसे ज्यादा इससे कौन इफेक्ट होता है, तीन आदमी, प्रेग्नेंट लेडीज, क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक शिशु का भी जीवन बढ़ा रही, तो उनको अपनी मात्रा इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक जीवन नहीं दो जीवन को संभाल रही। दूसरा, छोटे बच्चे जो माँ का दूध छोड़ दिए हैं, बाहर जो ऊपरी भोजन है उसको बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहर मिट्टी में खेल रहे, तो उनके पेट में बहुत कीड़े और गंदगी है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक से इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, महिलाओं में जिनको लिवर का कोई कैंसर है या उनको लिवर डिजीजेस है, जिसकी वजह से ये विटामिन उनके शरीर में जा नहीं पाता। हम लोग को भैया जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम उसका निवारण नहीं ढूंढेंगे। हम लोग ने जो पुराने एपिसोड में जब पानी की बात की तो आप ही ने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं कि जो सामने पानी रखा होता है तब भी नहीं पीते हैं, और जब गला सूख जाएगा एकदम आप परेशान हो जाएंगे तब पानी पिएंगे। तो उसी तरह से विटामिन हम एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मतलब खा ही नहीं रहे हैं हफ्तों तक, तो समस्या होना शुरू। और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम मिलता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब आदमी एकदम ठीक से देख रहा होता है और शाम होते होते उसको धुंधला दिखना शुरू होता है, या जब रोशनी कम होती है तो उसको साफ नहीं दिखता है। बड़े आदमियों में तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है, तुरंत दिखता है। छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उसमें जब देखते हैं कि बच्चा चलते चलते किसी चीज से लड़ जा रहा है, दिन में तो वो एकदम अच्छे से घर में दौड़ रहा है टेबल से, पर शाम के समय वो चलते चलते किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ जा रहा है, तो कहते हैं अरे यार ये क्या, वो अपने हाथ से डोर को फील करने के लिए का पता चलता है वॉल को पुश कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये सबसे बड़ी कॉमन जो परेशानी होती है कि वो उसको शाम के समय दिखता नहीं है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसकी आंखें सूखने लगती है, ये सबके साथ हो सकता है। जो आपकी त्वचा है वो सूखने लगती है, आपको फोड़े फुंसी होने लगते हैं, आपका जो शरीर में घाव है वो ठीक से वो भर नहीं पाता है, आपको अगर कहीं कोई कट गया है तो वो ठीक से हील नहीं हो पा रहा है। और इसकी डेफिशिएंसी भैया यंग कपल्स में भी मिलती है जो बच्चा पैदा करना चाह रहे पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ये समस्याएं होने लगती है।
0: ये बात समझ में आती है कि विटामिन ए के नाम से शुरू होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि अगर लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, अगर आपके लीवर में समस्याएं हैं तो भी इस विटामिन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो कहाँ से ये विटामिन मिलता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्रोत क्या हैं, गाजर पालक इत्यादि चीज़ें हम सुनते हैं, अगर आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान होता है। डॉक्टर साहब यही प्रश्न मेरा भी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, व्यक्ति इसका सही मात्रा में सेवन नहीं करता है, तो जैसे आपने कहा नाइट ब्लाइंडनेस होता है छोटे बच्चों में, तो ये चीज़ समझ में आती है, तो क्या व्यक्ति हर दिन इन चीज़ों का सेवन करना शुरू करे, या कैसे हमें पता चले कि भाई हम विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहा है?
1: सबसे पहली चीज, जो भी फल बहुत हरा है, सब्जी जो भी बहुत हरी है, या फल जो भी ऑरेंज या नारंगी रंग का है, वो आपको सबसे अच्छा विटामिन ए का आपको पूरक होगा, वो सोर्स होगा विटामिन ए का। तो स्वीट पोटैटो जैसे गंजी हो गई, आम हुआ आपका, एप्रिकॉट्स हुए और कैरेट हुआ, कद्दू हुआ, हाँ फलों में मस्क मेलन या खरबूजा हुआ, आजकल भैया रेड और येलो बेल पेपर भी, मतलब जो शिमला मिर्च होता है वो भी लाल और पीले रंग का आ गया है, वो हुआ, हमारी ब्रोकली जो हरी है, स्पिनच, पालक हुई, ये इसको हमको अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। और रोज अपने भोजन में कुछ लाल जो है उसको जरूर प्रयोग कर लें। गाजर खा लीजिए, आम खा लीजिए, आप पालक का इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रोकली का इस्तेमाल, जो नॉनवेज खाते हैं वो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने भोजन में या कोई भी लाल चीज को जोड़ लीजिए। अगर आपने लाल चीज अपने भोजन में ले ली तो आपको विटामिन ए की कोई भी कमी नहीं होगी। कोई साइंस, कोई नंबर, कोई भी चीज छोड़ दीजिए, तो हमको अपने भोजन में लाल या नारंगी चीज जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नारंगी जैसे आम हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग, या हरी जैसे ब्रोकली हुआ या पालक हुआ, उसमें इसका बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि भोजन बनाते समय या भोजन को जब हम खा रहे हैं, भोजन में इन चीजों को इंक्लूड कर देने मात्र से ही ये चीजें हमको मिलने लगती हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है कि हम भोजन में पालक हो या गाजर हो, ये आसानी से मिलने वाली चीजें। और अलग अलग जो आपने अभी बात बताई कि सीजन में जो अलग अलग फल मिलते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करना तो कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही ये कोई महंगी चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आम ना खा सके। प्रकृति प्रदत्त ये भारत का फल है, फलों का राजा है, और गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम आम तो खा ही सकता है। ये सभी के लिए मुहैया होने वाली चीज है। अब दूसरे विटामिन्स के बारे में हम बात करें, कौन सा ऐसा और विटामिन है जिसके बारे में हम समझें कि ये भी विटामिन आवश्यक है और इस चीज को अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है, और प्रकृति से हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, गाजर नहीं खाता या पालक नहीं खाते हमारे बच्चे, जब ये चीज़ कहते हैं तो माओं के पास अलग ऐसे तरीके हैं जो गुप्त तरीके से या किसी चीज़ में मिलाकर इन चीज़ों को ऐसे बना देती हैं जिससे बच्चों को समझ में ही ना आए और वो उनके भोजन में नेचुरल तरीके से चला जाए, उनके पेट में चला जाए और वो शरीर में अब्जॉर्ब हो सके। अक्सर मैंने ये चीज़ होते हुए देखा है, यहाँ हमारे ग्रामीण परिवेशों में भी ऐसे बच्चे जब पालक नहीं खाते या गाजर नहीं खाते तो माँ अक्सर उसे कद्दूकस करके या पीस के रोटी के आटे में मिला देगी और उसी आटे से रोटी बनाकर वो बच्चों को खिला देती है। तो इन तरीकों को भी सीखना जरूरी है ताकि हम अपने परिवार में विटामिन ए की कमी को ना होने दें। और खासकर जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि के समय बच्चों को नहीं दिखना, शाम होते ही वो चीजों से टकराने लगें, दीवार को पकड़कर चलने की कोशिश करें, सब कुछ होता है और इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे विटामिन ए की कमी, ये तो आपने नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों में जो आसानी से हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो बात आपने बताई। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कोई चीजें हैं जो शरीर में होती हैं जो विटामिन ए की कमी से होती हैं, उन चीज को समझें।
1: सबसे पहले भैया, कोई भी हो उसको बड़ी थकान लगेगी, और बच्चों में लंबाई बढ़ना या उसमें थोड़ी कमी आएगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी भैया, उससे पिंपल या जो हमारे एक्ने कहते हैं वो शरीर में निकलने लगेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है, मतलब आदमी बड़ी जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम खांसी होने लगेगी, वो बीमार रहने लगेगा। और जो इस समय सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी की, मतलब जो महिला पुरुष एक बच्चा चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो इस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल है, और ये हमारे जो बाल है उसमें भी सूखापन ला देता है। तो खासकर महिलाएं जिनके बाल बड़े सूखे रहते हैं उनमें भी ये माना जाता है कि विटामिन ए की कमी है जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई या सूख रहे हैं, एक इसको मोटा मोटी ये समझिए कि विटामिन ए अगर शरीर में कम होगा तो सूखापन आ जाएगा, आंख सूख जाएगी, त्वचा सूख जाएगी, बाल सूख जाएगा, इम्यूनिटी सूख जाएगी आपकी। तो इसलिए अगर हम इसको पूरा लेंगे तो हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमें पूरी तरोताजा हम फील करेंगे, हमारी रात की नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस की जो मैंने बात की वो नहीं होगी।
0: आजकल ये समस्याएं हम देखते हैं कि प्रायः लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें क्या चीज पड़ी है इस बात का ध्यान नहीं होता है डॉक्टर साहब। जैसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट से कोई चीज मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कभी कभार तो लोग मैगी इत्यादि ऐसी फास्ट फूड जो पैकेट्स में बनकर आती हैं उन चीजों को खा लेते हैं। अब उसमें कोई ताजा सब्जी की बात हो या विटामिन की बात हो, विटामिन ए जो आप कह रहे हैं, पालक की बात हो, गाजर की बात हो, या ऐसी कोई चीज तो उसमें होती ही नहीं है। और कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से भोजन जो मेस में बनता है या हॉस्टल में बनता है वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो ऐसा ही फास्ट फूड खा लेते हैं और इसकी वजह से ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन्स की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है।
1: हॉस्टल में रह रहा बच्चा हो या कहीं कोई काम कर रहा हो, प्लीज हफ्ते में एक दो दिन कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगे उसको जरूर खा लीजिए। और सबसे इजी जो फ्रूट खाना है वो बनाना है, मैंगो बहुत अच्छा विटामिन ए के लिए, तो मैंगो बहुत अच्छा है। गाजर सड़क पे बिकने लगा है, जिस तरह से खीर बिकता है उस तरह से गाजर को हल्का सा धो के छील के नमक और नींबू डाल के दे दे रहा है, उसको खा लीजिए। आपको अपने शरीर में फाइबर डालना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कोई पैकेट में आपको बेच नहीं सकता है, इसे आपको खुद अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि कोई दूसरा जिम करे और हमको उसका फायदा हो, ये नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: व्यापार में हो सकता है कि कोई दूसरा काम करे उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा हो, मगर शरीर के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में खुद उस भोजन को डालना पड़ेगा, आपको खुद चलकर उस भोजन को जलाना पड़ेगा। तो जो भी माताएं बहनें, जो भी स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हो, एक चीज पर ध्यान दें, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए उनको नारंगी रंग का कोई फल हफ्ते में एक दो बार जरूर खाना है। उनको पालक ब्रोकली जरूर खाना है। विटामिन ए को कॉमनली रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल को किसी भी रूप में खा लेना है। प्लीज गोली खाने से पहले कोई फल खा लीजिए, कोई सब्जी खा लीजिए, क्योंकि जो नेचर आपको देना चाहता है वो कोई दवा की कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। और हमारा पूरा शरीर डिजाइन किया गया है उस नेचर में से उस चीज को निकाल कर अपने शरीर के इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज कोई भी फल, कोई भी जो सब्जियां जिसमें विटामिन ए है, प्लीज उसको खा लीजिए।
0: बहुत ही आवश्यक आज की ये बातचीत रही है जिसमें हम ये समझ पाए हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता शरीर के लिए कितनी है, विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये चीज़ें आज हमने डॉक्टर साहब से सुनी है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज की चर्चा में जो बातें हमने सुनी है सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं है मगर उसे जीवन में ले आना है। हमारे आहार पद्धतियों में जो गड़बड़ियां हम करते आए हैं, अगर कोई भूल चूक हुई है या कई लंबे समय से हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शायद ये सही समय है कि हम उस भूल को सुधारें, फिर से अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने के लिए, अगर वो बिगड़ गया है तो उसको सुधार करने के लिए, अगर आप स्वस्थ हैं ही तो आपके स्वास्थ्य को उसी रीति बरकरार करने के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। विटामिन्स कम मात्रा में आवश्यक हैं मगर फिर भी इनका सेवन क्यों ज़रूरी है ये बात हमने समझा। विटामिन ए के सोर्सेस के रूप में जहाँ से ये स्रोत हैं विटामिन ए के, उनको समझ कर उनको हर दिन भोजन में या हफ्ते में एक दिन उन नारंगी फल, नारंगी रंग के जो फल हैं उनका सेवन करना जरूरी है। गाजर और पालक तो भारत के लगभग हर प्रांत में मिलते हैं दोस्तों, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। आम, जब आम का सीजन है तो आम को खाएं, या फिर जो खरबूजा है जब उसका मौसम है तो उसको खाएं। इन सब चीजों पर ध्यान देने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन ए की आवश्यकता के बारे में हमने बात की और आशा करते हैं कि आप सभी भी विटामिन ए की महत्ता को समझेंगे। खासकर हमारे घर में भोजन बनाने वाली माताएं, बहनें, या अगर भाई भी भोजन बनाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में कैसे न कैसे करके इस विटामिन को शामिल करने के लिए इसके स्रोतों को भोजन में ले आएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। आज की चर्चा में इतना ही। सेहत स्वास्थ्य में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज द सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहाँ से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, यू नो डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं, अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे केओटिक सा हो जाता
0: है, और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो, मॉर्निंग में आप देखो, जो आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है, इट इज एवरी वन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग। घर साफ होता जा रहा है और अंदर
0: गंदगी बढ़ती जा रही है, गंदगी,
1: वी क्लीनिंग द बर्तन, वी क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं है वैसे, इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहें What am I doing? And you will immediately just slow down. Just have to come out of it 1 minute like that. The one was detached observation. The other was filtering information. कि हम बहुत ज़्यादा information आज जो अपने अंदर भर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी energy को deplete करती है. तो let's be careful. जहाँ तक information media से भी है, जहाँ तक information चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भरते जा रहे हैं, और उससे क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है, इतना भर
0: गया, कोई भी कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं,
1: या तो उसमें फिर मेरा रिस्पांस फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पांस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, और फिर इंफॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं, तो जहाँ इंफॉर्मेशन ही ज्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पॉन्स फिर ज्यादा दर्द वाला हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि इंफॉर्मेशन भरें तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य लें तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन पॉजिटिव। और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ। नहीं तो अगर एक बार दो बार चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता। लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाउ लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर। जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए, क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
0: फिर हमें पकड़ के साथ जुड़ती जाती है।
1: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए। ना शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ। अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए। तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल।
0: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया और उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं,
1: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी नहीं, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी, देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको। यू सी नाउ अगेन वी फॉल बैक इनटू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया, किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योरसेल्फ। अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
0: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते
1: हैं। Now see, isn't that natural response है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकाल कर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हाउ आर यू, इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो जबकि हम औरों के लिए यह टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में ही काम करती जाती हूँ, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते?
0: That's very true actually.
1: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल। अगेन यू नो वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है। अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन। आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिए आपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन, यू नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन यू नो एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज टू बी वेरी टेक्निकल, नो, मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस 1 घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था तो उस 1 मिनट के अंदर।
0: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद घर फोन करते हैं।

0: स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बींग या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसी होंगी? तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होता
1: जाएगा. It just fills you the moment you give that thought.
0: इसलिए 1 मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 मिनट निकाल कर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस 1 घंटे में गए
1: थे.
0: तो हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो 1 मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस 1 घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये 1 मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो 1 घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि 1 घंटे में 1 मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये 1 घंटे में 1 मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको 1 हफ्ते के लिए सिर्फ करे, 1 हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर 1 घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
1: वो स्टॉप तो बजता करेंगे जाता नहीं तो.
0: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज. दैट इज डेफिनेट,
1: वेरी ट्रू. और वो उस 1 घंटे के बाद जो 1 मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
0: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस 1 घंटे में, तो कई बार वो 1 मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज 1 मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप 1 घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट. सो इसलिए इट्स 1 मिनट. लेकिन अगर वो 1 मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो 1 मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा. फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
1: 5 बजे तक तो आई विल बी इन स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा.
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना, डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा feel करना है.
1: Powerful, loveful.
0: Yeah, and just basically everyone wants to feel happy. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो one happy. Unanimous word is खुशी चाहिए. तो हम और आप, it's amazing. आप you ask anyone today कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई कहीं. लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड. अब आप काम तो कर रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे ये काम हुआ ये काम हुआ, मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन. हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं. सिर्फ काम किया काम किया काम किया लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट. क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे है. फिर पूछो कैसे चल रहा, कहेंगे चल रहा है, चल रहा है. एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी इंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं. और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे. इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल. और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं. लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप नहीं कल्टिवेट हो जाएगी. आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट

0: डायरी बनाए, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं. सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना तो वो अपने आप हो
1: करना
0: जाएगा
1: तो
0: क्या?
1: पड़ेगा,
0: करना हाँ. तो पड़ेगा ना. तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए. करेंगे क्या उसके लिए? एक मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे, फिर करते नहीं. तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला. तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते, तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग. लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन. तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी. आई एम पावरफुल, यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ. फिर सुबह सिर्फ दिया, लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है. सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है, वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी यू नो प्रभाव पड़ता है. अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति
1: हम होगी? वो उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते. इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं जब.
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज़्यादा नहीं थकते. आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस हैं, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई फिजिकल तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं. ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही
1: है. सिस्टर शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें. मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखें कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उसे एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना.
1: वही तो कर रहे होते हैं. तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें. सिर्फ अपने आप को ये कहें, वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूँ, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को.
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग. जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है.
1: कितनी बार हमें चार्ज
0: करना. तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना. अब आप कहीं भी जाओ, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड. ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है. तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है. पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था. तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट. सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं?
1: डिस्चार्ज.
0: दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है.
1: और इनफैक्ट जो घर पे हैं
0: वो भी
1: डिस्चार्ज हो चुके होते हैं. एंड देन दे से कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहाँ वहाँ टकराव जो है वो
0: तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं, वो डिस्चार्ज स्थिति में है. फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है. तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है, उस समय हमारी स्थिति कैसी है?
1: बहुत थकी हुई होती है. वेरी ट्रू.
0: तो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली, वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है. और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती, या कुछ ना कुछ यू नो हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह?
1: बिल्कुल, मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी, क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती गई, अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही.
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, तो ऑर्डर पता है क्या देंगे? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ, पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद. अब काम इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चले गए, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं, तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: अब तक हम सो जाते हैं.
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं. वॉट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क. सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहाँ कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे. सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए. अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुँचते हैं तो ऑफिस पहुँच के मन कहाँ होता है? ये हुआ, ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या. तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते. हाँ, बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ,
1: लेकिन आप तो बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा.
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया, तो उस वर्क में ज़्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं. क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो, फर्क.
1: ऑफ कोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो. इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ?
0: काम परिवार के लिए कर रहा हूँ ना.
1: प्ली ये होता है, जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आ गई कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है, लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के लिए,
1: तुम्हारे लिए तो काम.
0: एब्सोल्युटली. लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए. आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है, जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट. एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं. इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है, मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता. तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा. मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क. एंड जितना काम मुझे करना है, 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है?
1: वहाँ क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन, और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं, मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं. सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा. लेकिन हम कह रहे नहीं, हमारा सारा टाइम काम पे है. तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है. पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक, परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ. देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल इंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग. नहीं तो मैं तीनों को इंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे.
1: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए.
0: एक मिनट एक घंटे के बाद एक
1: मिनट.
0: इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा. वो सुनते में इतना इजी लगता है कि
1: हमने कर लिया.
0: एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो जरूर कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है. कई कॉर्पोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए. रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है. एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, यू नो इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट. वो रेस्ट भी बहुत काम कर जाता है.
1: आई नो, जिस भी चीज में है, इनफैक्ट अगर हम देखें,
0: क्योंकि वो वन मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से एक मिनट का.
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं, आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट वन मिनट. नहीं तो वो एक मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो एक मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे, आप पिछले सेशन को भी ठीक से अब्सॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे. नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज़ नॉट गॉट अब्सॉर्ब्ड प्रॉपरली, और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से. सो दैट वन मिनट जो बीच में मिलता है, इट्स वेरी वैल्यूएबल. इसको करके देख सकते हैं.
1: तो सिस्टर शिवानी, आज जो हमारे सामने बात आई कि एक मिनट का रेलेवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि एक मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो एक मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा. और उसमें भी बहुत जो सही बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है. और वो ट्राई करके देखें, बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. तो चलिए, एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं. एंड लेट्स ट्राई इट आउट. मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करते ही ज़रूर अलार्म लगाऊंगी एक घंटे बाद. सिर्फ एक मिनट, एक मिनट. आप किसी भी जगह पे हों, आप अपने घर पे हों, हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहाँ हमें परिवर्तन आने लगेगा, आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा. और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है. लेट्स ट्राई इट आउट. और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. आज आपसे हम यहीं विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं, और आज हमने एक मिनट के रेलेवेंस को समझा है. प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क, तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही. तो आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना आप फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और 29 जून 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शके 1948, शके 8, गति 15, शुद्ध ज्येष्ठ सोमवार, विक्रम संवत 2083, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार, मूल इस्लामी इजरी 1448, 13 मुरहम पीर शैला आज है, ज्येष्ठ पूर्णिमा आज है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शंका की दिवस भी आज है। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय विशेष रूप से राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मना जाएंगे आज के दिन को। तो विशेष रूप से संख्या की दिवस को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक डेज के रूप में याद किया जाता है और भारत में ये दिन आज ही के दिन से शुरू हुआ था, 29 जून को मनाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और भारतीय वैज्ञानिक और स्टैटिस्टिक पीसी महल नोबिस के आर्थिक योजना और संख्या के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में ये मनाया जाता है दिन। 2018 में संख्या की दिवस का विषय आधिकारिक संख्या की में गुणवत्ता विश्वास ये रहा। तो आइए इसके बारे में अधिक जानकारी तो लेंगे ही और आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप फ़ोन कर सकते हैं 94 1415 1415 इस नंबर पर और बता सकते हैं कि आपका आज का दिन कैसे शुरू हुआ और कल का दिन कैसे बीता। निश्चित तौर पे आज बहुत ही सुंदर दिन है, सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है। तो आइए एक शुभ भजन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस बीच हमारे मित्र गुड़ीलाल जी शायद आ गए होंगे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार।
0: हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है, आपका हाल सुनाओ सर।
0: बढ़िया बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं।
1: बस आप बढ़िया है तो हम तो और भी ज्यादा बढ़िया होंगे सर। आपको प्रोग्राम में टाइम अटेंड करना पड़ता, हमारे को टाइम को टाइम है नहीं हमारा तो। जब आपकी आवाज आई जब हम आपके फोन के कॉन्टेक्ट कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपकी भावना और हमारी भावना आपके सामने प्रकट कर देते हैं।
0: जी जी,
1: आज सोमवार है तो सोमवार में चतुर्थी का भजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा, एक बढ़िया वाला भजन।
0: जी जी,
1: मेरे हिसाब से तो ये है कि भोले के दरबार में सबका खाता है, सबका नाता है, ये भोजन भजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उसके बाद में भोजन होगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर, धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं विचार साझा करने के लिए। और खुशियों का ये पल इसी तरह आपके जीवन में बना रहे हैं, ऐसे शुभ आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अभी हम लोग एक बहुत ही सुंदर गीत की तरफ मैं आपको ले चलूँगा, उसके बाद बात करेंगे। ऐसी सुबह न आई, अनुराधा पौडवाल का ये सबसे प्रचलित और खूबसूरत भजन आपके

Shivai, Om Namah Shivai, Om Namah Shivai। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आज़ादी के बाद आर्थिक योजना तथा संख्या की विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर पीसी महानोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत रखकर संख्या की दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस आशय की अधिसूची दिनांक 5 जून 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। ये दिवस राष्ट्रीय विकास में सरकारी संख्यिकी के महत्व को उजागर करने के लिए संगोष्ठियां, चर्चाएं, प्रतियोगिताओं का आयोजित करने का रूप में मनाया जाता है। तो उद्देश्य यही है साथियों इस दिन को मनाने के पीछे कि सामाजिक आर्थिक नियोजना और नीति निर्माण में पीसी महलनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रेरित करना। 2011 में 5वें संख्यिकी दिवस का विषय लैंगिक संख्यिकी था। इस विषय का उद्देश्य लैंगिक संख्यिकी के महत्व को रेखांकित करना और नियोजन तथा नीति निर्माण के क्षेत्र में आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष भर ठोस प्रयास करना था और ये किया गया उस समय। तो इस तरह से हर साल किसी एक नए विषय को लेकर इसमें काम किया जाता है जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो जाती है या हमें बैलेंस करने में मदद मिलता है या हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस ओर अग्रसर होकर बढ़ना है, तो किस वर्ग के लोगों के लिए काम करना है, किस वर्ग के लोगों को यहाँ मदद के लिए बुलाना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा कम हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, तो उसे बैलेंस बनाने के लिए जहाँ ज़्यादा है उसे कम जहाँ है उस जगह पर लगा दिया जाता है या उस जगह पर उसका उपयोग किया जाता है ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे और बैलेंस पे ही संसार चलता है। तो ये सारी सृष्टि के पांचों तत्व भी बैलेंस के रूप में चलते हैं और जहाँ इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पर बाढ़ या फिर सुनामी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं या फिर किसी न किसी तरह स्थिति का जो है जीवन बनता है। लेकिन फिर जैसे ही कुदरत नेचुरल रूप में अपनी स्वभाव में वापस बैलेंस में आ जाती हैं तो सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, अदरवाइज सेट नहीं हो तो मुश्किलें हो जाती हैं। तो इसीलिए महलनोबिस का ये संख्यिकी दिवस के रूप में मनाने के पीछे भी यही कारण है कि संसार में सभी वर्ग के लोगों का और सभी चीज़ों का अगर हमें स्टैटिस्टिक्स पता हो तो हमें कहाँ काम करना ये आसानी से हम उस पर वर्क कर सकता है। तो संख्यिकी दिवस देश भर में

चाहूँगा कि आप भी हमें फ़ोन करके बता सकते हैं अपने जीवन की कुछ खास अनुभव, और कल आपने किस तरह से समय बिताया है और आज का समय आपका कैसे बीत रहा है, ज़रूर बताइए। स्वागत है आप सभी का। तो आइए शिव शंभो ये गीत आपके नाम अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का मौका मिलता है, सुबह सुबह आपसे बातें करते हैं और सुबह की जो चार्जिंग है वो बहुत दमदार होनी चाहिए। हमेशा जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाइए, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। एक शांति सुकून का जो अनुभव है वो पूरे दिन के लिए आपको जो है एक गहराई से स्पर्श कर जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। बात कर रहे थे हम लोग संख्या के दिवस के बारे में। समारोह तथा सम्मान, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के संख्या की दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और इस अवसर पर प्रोफेसर सीआर राव के सम्मान में दिया जाने वाला राष्ट्रीय संख्या के पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के जाने माने संख्याविद डॉक्टर अभिमान दास को दिया गया था। संख्या की एवं कार्यक्रम कार्यवन तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्रीकांत कुमार जैन ने उन्हें शॉल प्रसारित ओढ़कर और 2,00,000 और साथ में प्रशस्ति पत्र के साथ नकद इनाम का सम्मान उन्हें दिया गया था। तो है ना कमाल की बात। तो नेशनल स्टैटिस्टिक देखिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ, जेठा नाते, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं
0: जी।
1: तो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और बताओ सर, तो आज हमारे जो यूएस वाले विभाग बैंक जी का आज जन्मदिन है आज।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो विभाग बैंक जी तो कई दिनों से नहीं आए हैं, कई महीने हो गए आवाज सुन के।
0: हाँ, साल हो गया पूरा।
1: साल हो गए, तो शायद याद कीजिए तो बात करें और सबको अच्छा लगे उसकी आवाज सुन के कि हमारे विभा बहन जी कैसे हैं। पहले तो हम हर रोज आवाज सुनते थे लेकिन कई महीनों से आवाज नहीं सुन रहे हैं। तो हमारी तरफ से विभा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हरदम बाबा की याद में रहे।
0: बिल्कुल,
1: बाबा सबकी रक्षा करे, ऐसी शुभकामना सर। और मैं सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, कल रविवार था, अच्छा दिन था। कल भी हमारे कमलेश बैंक जी से अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छी अच्छी बातों के करके जो घर के इलाज के लिए मित्री हैं, डायबिटीज के लिए कई सारी करके इलाज बताए हैं, बहुत अच्छा लगा। आज शायद कमलेश बैंक जी नहीं है मेरे हिसाब से।
0: हाँ, कल चले गए हो ना, फिर आएंगे।
1: चलो अब बुलाएंगे जल्दी वापस।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस सोमवार है तो भोले बाबा का गाना तो हमने आज फिक्स सुन लिया। और दूसरा गाना तो है जन्म जन्म का साथ है बाबा हमारा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बस आपकी तरफ से कोई अच्छा गाना सुना देना।
0: सही बात है, सही बात।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर नई किरण, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी से रूबरू होते हुए फिर आपको ले चलता हूं मैं एक और सुंदर गीत की तरफ। और ये गीत जैसे कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। और कल भूपत सिंह जी ने फ़ोन किया था और आप सभी को बड़े प्यार से याद किया है। तो चलिए, आशा करूँगा कि हम सभी जब एक दूसरे को याद करते हैं तो खुशी मिल जाती है और वो खुशी लंबे समय तक चलती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। 8:50 हो रहे हैं। लीजिए भक्तिमय संगीत से सराबोर ये गीत, आपके नाम अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो हाँ, ये 8:56 हो रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार
0: जी। मदन जी बोलिए।
1: बहुत बढ़िया, आपको नमस्कार करते हैं पहला, और नई किरण को और रमेश जी को और आपके साथ जो भी है सभी को,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं। आपके सोमवार को नमस्कार करते हुए अब कार्य बढ़ा रहे हैं और अब समाचार सुना दिए, फिर बात करते हैं।
0: ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। आइए, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। योग से बढ़ेगी ज़िंदगी, बदलेगी ज़िंदगी, ऐसा कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे योग हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक सुंदर तरीका है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा जीवन जो है सुंदर बनता जाएगा। निश्चित तौर पर हमें इन जीवों योग साधना पर अगर हम फोकस करेंगे तो बेहद खुशी होगी। तो आइए, आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं और मैं सीधे आपको ले चलता हूं समाचारों की तरफ। और अभी समाचार की तरफ चलते हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
3: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हारमिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
4: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
5: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
6: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही

0: मिलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइकोल डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 01 23 71 06 और 01 23 31 44 44। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छह आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
7: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
8: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाचारों के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष तरन्नुम खान जी उपस्थित हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी ने अभी देखा कि जैसे हम लोग अकरम खान सर को सुना, उनके ही धर्मपत्नी हैं, और हमने सोचा कि अभी वक्त थोड़ा सा मिला है उसका सदुपयोग कर लेते हैं और तरन्नुम जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे, तरन्नुम खान जी का स्वागत है।
9: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ मैं आपके साथ बात कर रही हूँ
8: जी,
9: और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ हूँ।
8: बिल्कुल,
9: यहाँ वही आते हैं जहाँ शिव बाबा
8: ऊपर वाले की।
9: तो आज मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं।
8: जी जी जी जी, थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए।
9: जी, मेरा नाम तरन्नुम खान है, मैं उस्ताद अकरम खान साहब की वाइफ हूँ
8: जी,
9: और मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे हमारी वंदना बहन है उनके साथ मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ 29 साल से।
8: जी जी जी।
9: तो उनकी बातचीत और उनकी बताई हुई बातों से मुझे भी लगा कि मुझे ब्रह्म कुमारी में जाना चाहिए और मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं नहीं भी आती हूँ तब भी मैं इनसे बात करती हूँ यहाँ के बारे में।
8: क्या बात है, क्या बात। तो अकरम खान सर के साथ आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में गए होंगे देश विदेश में, तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए जहाँ पर आपको बड़ा सुकून मिला हो।
9: सबसे अच्छा सुकून तो मुझे अभी हम ज्ञान सरोवर में रहे 2 दिन।
8: जी जी जी।
9: और वहाँ पर इतना सुकून मिला कि हमें लगा कि मतलब हमें बहुत जल्दी जल्दी यहाँ आना चाहिए। अनुभव ये है कि वहाँ एक अलग दुनिया, एक अलग सुकून है।
8: जी जी जी।
9: और वहाँ सब एक दूसरे के करीब हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है, बाकी और काफ़ी एक्सपीरियंस है जो जिंदगी में। और ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अकरम साहब जहाँ जाते हैं वहाँ सभी बहुत प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। तो
8: जी जी जी।
9: मैं चाहूँगी कि सबको ब्रह्म कुमारी से जुड़ना चाहिए।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तरन्नुम जी आपका। और मुझे लगता है कि जैसे आपका नाम है और अकरम सर जो तबला बजाते हैं, उन्होंने सवेरे मुझे बताया था कि सुर जो है ऊपर वाले की है और ताल और लय हम सभी हैं, तो निश्चित तौर पे कुदरत का कितना सुंदर जो है नज़ारा है, और हम कुदरत से बिल्कुल अगर कनेक्ट हो जाए तो जीवन सदा ही बहार है, लेकिन हम कुदरत में रहते हुए कुदरत से अनभिज्ञ है, इस वजह से हमारी जो बहार है वो ख़त्म होती जा रही। तो आइए इस बीच वंदना जी भी कुछ पूछना चाहती हैं। स्वागत है वंदना जी।
10: थैंक यू रमेश जी। ओम शांति।
8: ओम शांति जी।
10: कैसे हैं रमेश जी आप?
8: बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
10: और जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे अभी मैं जितने दिन भी हूँ तो डेफिनेटली मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़ी रहूँगी, मुझे यहाँ आकर हमेशा बहुत खुशी होती है। यहाँ एक सवाल में तरन्नुम भाभी से पूछना चाहूँगी। भाभी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम लोग 29 साल से जानते हैं एक दूसरे को, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी जिस तरीके से शांति आपने यहाँ महसूस करी, आप उसका उपयोग अपने जीवन में कैसे करना चाहेंगे
8: आगे के जीवन?
9: जी, मैं ये वंदना आपने पूछा सवाल और बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं जिस दिन से आई हूँ यहाँ पर और मुझे अपने अंदर खुद बहुत कमियाँ महसूस हुई कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं।
8: जी जी।
9: लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि नहीं, ये दुनिया सच्ची है और हमें इसी को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने घर में सबको यही बताना चाहिए, जितना हो सके शांति से, सुकून से, प्यार से रहें, तो वही सबसे बड़ी हमारी दुनिया है। और हमने यहाँ के यही समझा कि हमारे लिए यही सब कुछ है, और हमें जो यहाँ हमने सीखा है वो हमें घर में अपने उसको अपनाना चाहिए,
8: उसको फॉलो करें,
9: कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ एकदम नहीं होगा,
8: लेकिन दीरे, अगर, दीरे, अगर आपने ख्याल रखा
9: और
8: है।
9: जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये सीखी है कि गलतियों को खत्म करें और माफ करें।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
9: और उनको कभी आगे ना बढ़ाएं।
8: बहुत ही सुंदर बात आपने बताया, मुझे आपको सुन के एक और मंत्र जो है वो याद आ रहा है कि भूल जाओ और खुश रहो।
9: खुश रहो सच में, क्योंकि अभी जो दुनिया है वहाँ सिर्फ भूलना नहीं रहता, याद ऐसा क्यों हुआ, हाँ। वैसा क्यों बोला,
8: तो वो याद ही हमें जो है दुख देती है
9: और हम उसी में घूमते रहते
8: हैं, उस चक्कर में पड़े रहते हैं।
9: तो इसलिए यहाँ आके सबसे बड़ी बात सीखी, जो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे, कि माफ करें और माफी मांगे।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
9: और सुखी रहें,
8: सुखी रहें। एक बार आप अगर खुद अपनी तरफ से दिल से माफ कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर को ये मैसेज तो चला ही जाता है कि इस बच्ची ने सबको माफ कर दिया और खुद को भी माफ कर दी है, तो एक नया जो है ऊर्जा आपके अंदर आने लगता है, क्योंकि आपका मन से आप खाली हो गए।
9: दैट्स
8: इम्पोर्टेंट।
9: हाँ, सच बात है।
8: जी जी
9: बिल्कुल।
10: तो भाभी आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये मैं समझती हूँ जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे होंगे तो उनसे आपकी बात सुनकर डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को अपनाना चाहेंगे। और आपसे एक, क्योंकि समय की कमी है जैसे जानते हैं आप, तो मतलब विजिट करने के लिए आए हुए हैं, तो आपसे ये पूछूंगी आप अपनी पसंद का कोई गाना बता दीजिए, हम आपके लिए प्ले कर देते हैं। आपका पसंद का कौन सा गाना है आपके लिए प्ले करेंगे?
9: मेरी पसंदीदा गाने तो सारे वही हैं जो अकरम साहब सुनते हैं, ओपिनियर के ज़्यादा गाने सुनते हैं
10: जी। गाना बताइए भाभी आप कौन सा सुनेंगे?
9: जैसे ये है दीवाना हुआ बादल।
8: जी जी जी जी। हेलो जी, नमस्कार।
11: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
12: सुरेश जी स्वागत है।
11: दो मेहमान
12: जी, जी जी
11: तो हमारे हरदम बात करते हैं, हमारे बन्ना जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं तो हम
12: लोग
11: के लिए। तो बन्ना जी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आए हैं और साथ साथ में आपको भाभी जी को साथ लेके आए हैं हमारे तरुण मंडल।
13: हेलो
11: जी को, हाँ नमस्ते।
13: नमस्ते, ओम शांति। कैसे हैं सुरेश भाई?
11: शांति बहुत अच्छे बिल्कुल। देखो आप आ जाते हैं तो हमारी खुशी आवाज बढ़ जाती है, इसीलिए कि आपकी जो आवाज है, आपका जो जहाँ जाते हैं वहाँ की जो बातें आप बताते हैं अच्छी अच्छी, तो हम घर बैठे हम सब कुछ सुन लेते हैं आपकी बात की। हम यात्रा आप वहाँ से बताते हैं, यात्रा हम यहाँ कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी होती है। तो आज आपको ये साथ भाभी जी भी आए हैं, तो इनको उसको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा सबको अच्छे रखे और बाबा की याद में हम तो हरदम रहते ही है। तो बस ये तो एक अच्छा मार्ग है कि जिसने बाबा के साथ जिसने कनेक्शन कर लिया तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है।
13: अभी कुछ दिन तो मैं यहाँ हूँ तो डेफिनेटली मॉर्निंग में रमेश जी के साथ प्रोग्राम करूंगी मैं। आज ही आई हूँ मैं ज्ञान सरोवर थे हम लोग।
11: जी जी जी,
13: थैंक यू सो मच।
11: चलो आपको नमस्ते हमारे तरफ से और हमारे मेहमान जी को नमस्ते।
14: नमस्ते,
13: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते
8: जी जी जी मुस्कुराते रहो। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए, तरनुम जी ने जो गीत याद कराया है और अक्रम सर का भी बहुत ही ये प्यारा सा गीत है, तो हम दोनों के लिए रेडियो मधुबन की ओर से ये प्यारा सा गीत उनको डेडिकेट करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तरन्नुम खान जी से मिलकर और अकरम खान सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बड़ा अच्छा जो है उनका संगीत के साथ जुड़ाव रहा है और बहुत बड़े घराने से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से मना समझ लीजिए आप 50 सालों से शायद वो इस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं और अपना जो है योगदान दे रहे हैं संगीत और भारतीय संगीत को दुनिया में प्रसारित करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग उनसे अब जुड़े हैं तो आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। कबीरदास जयंती भी आज है और ज्येष्ठ पूर्णिमा भी आज है। तो हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, बुरा राम बोल रहा हूँ सर।
0: बुरा राम जी, स्वागत है आपका। बोलिए, कैसे हैं आप?
1: रमेश भाई और सर मधुबन भाई,
0: जी जी जी,
1: मेरा सुबह सुबह राम राम।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इतना अपना सुबह सुबह एक राम राम हो जा रहे तो बहुत काफी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ।
1: और मेरा भजन बोले तो सुनाएंगे तो अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको और बहुत ही प्यारा सा गीत याद करने के लिए बुरा राम जी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी बुराराम जी ने याद किया था, उनका गीत भी हमने सुना दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलूँगा। आज बात करते हैं आशुतोष मुखर्जी के बारे में। जी हाँ, आशुतोष मुखर्जी बंगाल के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। 1906 और 14 के बीच तक कोलकाता विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में काम किया। बंगाल तथा भारतीय भाषाओं को एमए की उच्चतम डिग्री के लिए अध्ययन का विषय बनाया गया और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी इनके पुत्र थे। 1908 में आशुतोष मुखर्जी ने कोलकाता गणितीय सोसाइटी की स्थापना की और सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में 1908 से लेकर 1923 तक कार्य किया। सन 1914 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। आइए ऐसे विशेष व्यक्ति की जीवन कहानी से कुछ बातें जरूर समझ लेते हैं। भारतीयता की झलक उनके जीवन में दिखाई देती। अब देखिए, उनकी कैसे कहीं भी जाते थे तो भारतीयता की झलक कैसे उनके द्वारा दिखती थी। उनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार में भारतीयता थी। कदाचित वो पहले व्यक्ति थे, भारतीय थे, जिन्होंने रॉयल कमीशन सैंडलर समिति के सदस्य की हैसियत से संपूर्ण भारत में धोती और कोट पहनकर भ्रमण किया। वो कभी इंग्लैंड नहीं गए और उन्होंने अपने जीवन तथा कार्यकल्पों से सिद्ध कर दिया था कि किस प्रकार से एक सच्चा भारतीय अपने विचारों में सनातन पंथी कार्य में प्रगतिशील तथा विद्या विश्वविद्यालयों के हेतु अध्यापकों के चयन में अंतर्राष्ट्रीयवादी हो सकता है। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में भारत नहीं बल्कि अंग्रेज, जर्मन और अमेरिकी प्रोफेसरों को भी नियुक्त किया और उसे पूर्व का अग्रगण्य विश्वविद्यालय बना दिया। तो ये उनकी एक खास बात थी आशुतोष मुखर्जी की। तो आज उनका जन्मदिन है और आशुतोष मुखर्जी अपने जीवन कार्य में साहित्य और विद्यालयों के लिए काम करते हुए 25 मई 1924 को पटना बिहार में इनका मृत्यु हुआ। उड़ीसा प्रांत ब्रिटिश भारत अब बिहार भारत में हुई। वो पटना में एक मामले पर बहस कर रहे थे, उस समय इनको अटैक आया था। तो ये थी कुछ खास बातें आशुतोष मुखर्जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ, एक तरफ जिंदगी, हर तरफ जंग है और एक तरफ जिंदगी प्यार का गीत भी है ना। बहुत ही सुंदर जो है भाव आपने सुने अब। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। आशा करूँगा कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस बीच मैं आपको ले चलता हूँ, आज विशेष कबीर जयंती भी है। कबीर दास का नाम आप सभी सुनते हैं और कबीर साहब के खूबसूरत भजन आज भी लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जी हाँ, कबीर साहब और संत कबीर जैसे रूपों में प्रसिद्ध है। मध्यकालीन भारत में स्वाधीन चेता महापुरुष थे और इनका परिचय प्राय इनके जीवन काल से ही इनके सफल साधक, भक्ति कवि, मत परिवर्तक तथा समाज सुधारक मानकर दिया जाता रहा। इनके नाम पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय भी प्रचलित है। कबीरपंथी इन्हीं के एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं, इन्हें एक अवतारी पुरुष मानते हुए इनके संबंध में बहुत सी चमत्कारिक कहानियां सुनी जाती है और इनका कोई प्रमाणित जीवन वृत्त आज तक नहीं मिल सका, जिस कारण इस विषय में निर्णय करते समय अधिकतर जनश्रुतियों को सांप्रदायिक ग्रंथों और विविध आलेख तथा उनकी अभी तक की उपलब्धियां, जो रचनाएं उनकी बनी हैं, और अंतर साधना का ही सहारा लिया जाता रहा है। और फलस्वरूप इस संबंध में इनके मत के विषय में बहुत कुछ मतभेद पाया गया। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार। ओम शांति। रमेश जी, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ।
0: दयाराम जी, स्वागत है आपका। ढेर सारी खुशियाँ आपको। जी बताइए।
1: आपको बहुत बहुत ढेरों सारी आज के दिन की।

0: चार चांद लगाने की जो दोहे लिखे है और उनके भजन भी इतने भी बहुत सुंदर है। और कबीरदास जी का लिखा हुआ एक भजन भी सुनना चाहूंगा, आप अपनी पसंद का गुरु सुना देना।
1: जी जी जी, जी
0: और मेरे सभी साथी जो मेरे प्यारे मित्र है, जो मेरे सुरेश भाई है, कंचन भाई है, और मोहनलाल कुंभावत जी थे तो अभी कभी कुछ दिनों से काफी दिन हो गए ये जुड़ते ही नहीं है। और हमारे भूरेलाल जी अभी फोन किया था, भूरेलाल और से, और एक हमारे भूरेलाल जी जो हमारे सबसे प्रिय है और उनकी आवाज तो हम
1: सुबह सुबह पहले सुन लेते हैं।
0: और वो आती है तो कुछ न कुछ हमको भी हंसी दे जाती है और हमारी यादें भी ताजा कर जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपको और सभी मित्र भाई बहन सभी आर्य भाइयों को आज के दिन की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो आर्य रमेश जी के साथ रेडियो मधुबन 107.8 पर।
1: क्या बात बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए दयाराम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच याद करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और कबीर जी की बातें हो रही थी, और संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो जन जीवन, आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त अम्बडरों और खुटारागात करते हुए उस पर जो चीज़ें बिल्कुल समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उस पर सीधा प्रहर करते हुए कर्म प्रधान समाज के पैरकार थे, और इनकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रतिभा में आवाद गति और अधम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जन जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो भी हम कविताएं या गीत संगीत या जो पद सुनते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है हमारा जीवन का आईना हमें दिखाई देता है। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार
1: जी। मदन जी बोलिए, स्वागत है आपका।
2: स्वागत है आपको, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार
2: नवी किरण को, नमस्कार रमेश जी को और हमारे सभी शो को।
1: जी
2: सुन रहे हैं सुप्रभात, ओम शांति हमारे डॉक्टर साहब जी को और हमारे जी भैया को। बड़े खान पीन के लिए सब बताते हैं कि अब खान पीन देखने जाए तो पहला जैसा नहीं है, इसलिए बहुत बने इतना हल्का ही खाना खाइए, और जिस दिन बीमारी हो जाए खाने में पेट में गड़बड़ हुआ एक दिन खाना ही नहीं चाहिए, पेट साफ हो जाएगा।
1: बिल्कुल
2: तो आपको नमस्कार करते हुए, और अब हमारे सभी का जन्मदिन है, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, और जो रेडियो से सुन रहे हैं मोबाइल से उनको भी नमस्कार है। और गाना गाते हैं, दिल मुझे बता जा किसने आ गया है, तो जवाब पे काबू बता गया, दिल मुझे बता जा ला ला ला ला ला ला। ये गाना कितना दस ने गाया है, मदन मोहन साहब का है,
1: बिल्कुल,
2: और का नाम है भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जीवन के इस सुंदर अनुभव जब कबीर जी को सुनते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का जो अडंबर है वो ख़त्म हो जाता है, और जीवन का सच्ची समाधान जो है मिल जाता है, और लोगों के साथ जुड़ना, लोगों की सेवा करना। कबीर संत कवि समाज सुधारक थे, इनकी कविताओं का एक एक शब्द जो है धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया, और असत्य का व अन्याय को पोल खोल धज्जियाँ उड़ाता चला गया। कबीर का अद्भुत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी पालिता था, सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बन छूट भी करता है और खोट भी निकालता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिंदगी गम का दरिया भी है तो जिंदगी प्यार का गीत भी।

नमस्कार, आप सुन रहे 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आशा करूंगा कि ये गीत आपके दिल के करीब होगा और आप भी गुनगुना रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आपके दिल के करीब होंगे, लेकिन अब वक्त हमें इजाज़त नहीं देता और सुनाए। लेकिन चलिए, कबीर जी की बातें हो रही थी, कबीर जी को याद किया जा रहा है उनके जयंती पर, तो एक बहुत ही प्यारा सा दोहा आपके नाम।

और आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए जितना सुनते जाए उतना जो है आनंद बढ़ते जाता है और बड़ा ही खूबसूरत ये गीत है। जितना हम लोग सुनेंगे उतना आपको आनंद आएगा। चलिए आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं और आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो 29 जून को जन्मे उन लोगों में कुछ नाम खास है, जैसे कि आज पीसी महलनोबिस, जिनके नाम से जिनके जन्मदिन के नाम को ही संख्या के दिवस या स्टैटिस्टिक डे के रूप में याद किया जाता है। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद पीसी नोबल महलनोबिस 1893 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। बंगाल के बहुत ही ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी 1864 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी के पहले तिलिस्मिक लेखक जिनको कहते हैं देवकी नंदन खत्री का भी जन्मदिन आज है। 1861 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के भूतपूर्व 8वें मुख्य न्यायाधीश थे अमल कुमार सरकार, 1901 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो चलिए जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए मित्रों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं करते हैं। और आज के दिन हमने जैसे कि संख्या के दिवस के बारे में बातें की, जो महल नोबिस के जन्मदिन के दिन को मनाया जाता है, अष्टोष मुखर्जी के बारे में जाना, कबीर जयंती के बारे में जानकारी हासिल की है। और चलिए फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते आपको गुरुदत्त का एक बहुत ही प्यारा सा गीत छोड़े जा रहा हूँ, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

समय सुबह का, तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल कैसे कहलाए, कैसे उनका मंदिर बना, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं, फूल गोभी खाने के क्या फ़ायदे हैं, घरेलू उपाय ज़रूर जानेंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ शेक, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। सभी सीखने को तैयार हो ना भाई, अभी भी गर्मी बहुत है, तो कुछ शेक आपको बनाना सिखाऊंगी और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल कैसे कहलाए और उनका मंदिर कैसे हुआ, जरा विचार करेंगे। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल नाम का एक मंदिर है। इसमें जो गोपाल जी का विग्रह है, ये विग्रह माने मूर्ति, किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान थी। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, दोनों पुरी से वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उस वृद्ध ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता समान हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप ये वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार का वचन न दे। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा, अतः युवक मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही क्रुद्ध हुआ, क्रोधित हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है, यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत ही उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है। उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। उस तरुण ने कहा, उस वृद्ध पुरुष से कहा कि आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर से आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हड़प लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है, तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्रित हो गए। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र हो गए थे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह जी के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी है तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो।
युवक ने कहा, हाँ मैं कृष्ण जी से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। इसे विश्वास था, उसको विश्वास था कि भगवान अवश्य आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए श्री कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण के प्रार्थना मतलब उनके समक्ष प्रार्थना करने लगा, हे भगवान आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह श्री कृष्ण से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता हो। उसने ये नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे श्री कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखिए कि श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए और इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। सभी लोग एकत्रित हो गए और विग्रह के पास पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति के परिवार की ओर से जब पूछा गया तो विग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी, मेरे समक्ष ही इन्होंने अपनी पुत्री का वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां पहुंच गए और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, बस सच्चे हृदय से उन्हें याद किया जाए। इसीलिए कहा गया है कि भाई साक्षी गोपाल कैसे साक्षी गोपाल कहलाए वो आपने जाना है, कैसे मंदिर बना वो भी आपने जाना है। आइए अब सुनते एक सुंदर सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अरे 6 घंटा का 12 घंटा कर दी गणो आयो चो जोर, नारायण के लगायो ढोक मारी बेड़ा कर दी पार। पहली 6 घंटा चाले चो पाचे करियो विचार, दोनी जोड़ियो हाथ मारी नारायण सुनया पुकार। अरे नारायण 12 घंटा कर दिया बाला देव, गुजर किरे आई बीनती।

स्टूडिया पे नारायण जोड़ू जोड़ू रे दोनी हाथ आओ जी मारा रेडिया पे अरे सांवरिया जोड़िया चा रे दोनी हाथ मान्या चा मा की बाते पधारिया मारा रेडिया पे मैं तो जोड़िया चा दोनी हाथ मान्या रे नारायण बाते आया रे मारा रेडिया पे अरे सां

0: एडवर्ड।
1: नमस्ते, मैं हूँ किरण, शूद्र की सांडली, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। फूल गोभी के क्या फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जानेंगे आप। देखिए, यदि बच्चे लोग आपस में लड़ते समय एक दूसरे को काट ले तो 4-5 दिनों तक उन्हें गोभी का कच्चा फूल खिलाना चाहिए। इससे दांतों का विष दूर हो जाता है। कितनी बार बच्चे आपस में झगड़ते हैं, झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को काट लेते हैं। अब काटने पर चाहे जीव जंतु काटे या इंसान काटे, थोड़ा विष तो जाता ही है ना। और फिर हमें डर भी रहता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप फूल गोभी का कच्चा फूल खिलाइएगा, ठीक है, इससे दांतों का विष दूर हो जाएगा। फिर देखिए, अगर कैंसर की शिकायत है तो सुबह के समय खाली पेट लगभग 100 ग्राम गोभी का रस पीजिए। गोभी का रस पीने से जोड़ों व हड्डियों में दर्द, अपच, आंखों की कमजोरी और पीलिया में लाभ होता है। रात्रि में इसे पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है, तो कैंसर में भी फायदा करता है। सुबह के समय खाली पेट लगभग 100 ग्राम गोभी का रस पीजिएगा, इससे कैंसर में भी फायदा मिलेगा। और गोभी का रस पीने से जोड़ों और हड्डियों में जो दर्द रहता है ना, वो ठीक हो जाएगा। अपच की समस्या ठीक होती है, आंखों की कमजोरी ठीक होती है, पीलिया में जॉइंटिस जिसको कहते हैं काफ़ी लाभ होता है, और रात्रि में इसे पीने से कब्जियत की समस्या दूर होती है। फिर देखिए, उबली हुई फूल गोभी का रस पीते रहने से टीबी के रोगी का हृदय मजबूत होता है और खून बढ़ता है। फिर देखिए, गोभी ठंडी मूत्रल गरिष्ठ होने के कारण कफ कारक वायु रोधक व अफारा करती है, अतः अदरक डाल करके सामान्यतः कम खानी चाहिए, ठीक है। और फूल गोभी खाना मतलब बवासीर, खून की उल्टी होना, खूनी बवासीर, पेशाब की जलन, तपेदी, खुजली, कुष्ठ और चर्म रोग, गैस, नाखूनों और केश रोगों में काफ़ी हितकारी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बीमारियां ठीक करती है। और लास्ट उपाय है गोभी भाप में उबालकर खाने से रक्त शुद्ध होता है। तो कितना सारा फायदा करती है ये फूल गोभी, और फूल गोभी को इतनी महंगी भी नहीं है और सीजन में तो और भी सस्ती मिलती है, तो इस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ताड़ासन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अब यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय है, जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना मत। तो यह आज का विषय है, और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। ताड़ आसन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए? तो दोनों में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय को भी स्पष्ट कर सकते हैं, तो आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। तो आप जुड़िएगा, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और आज के विषय में आप अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु शादी ब्याह में व्यस्त है। चलिए, अच्छी बात है, जितने बिजी उतने ही इजी है ना, तो अच्छी बात है। समाज में रहते हैं तो सामाजिक कार्यक्रम में आना जाना ही पड़ता है, और आना जाना ही चाहिए, इसी से ही संबंध टिके रहते हैं और संबंधों में मधुरता बढ़ती है। लेकिन विषय भी बड़ा सुंदर है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं शादी ब्याह में 5 मिनट के लिए जुड़िएगा, तो आपके जो भी दोस्त लोग, जो भी रिश्तेदार है, वो भी सोचेंगे कि देखें इनको रेडियो से कितना प्रेम है। अच्छी बात है, कोई गलत बात तो है नहीं कि भाई क्या करे, गलत बात है रेडियो से जुड़ करके, तो फिर क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप विधि में व्यस्त रहिए, नहीं जुड़ सको तो टेंशन मत लेना, शादी ब्याह में है तो वहाँ का पूरा ही आनंद लेना। तो वो कहावत आपने सुनी होगी, बिन घर पग नहीं मेलनो, बिना मान मनवार, इंजन आवे देखनो, सिग्नल रो सत्कार रे भैया, सिग्नल रो सत्कार। तो इस कहावत से ही पता चल जाता है कि बिना बुलाए जाना नहीं, और अभी तो शादी ब्याह चल रहे हैं, और शादी ब्याह के सीजन में भी ऐसा ही होता है। शादी ब्याह होती है ना, तो जिनके घर में शादी ब्याह होते हैं वो पहले पैसे वालों की लिस्ट बनाते हैं, बहुत जने, सभी का नहीं कह रही हूँ, और साधारण के बाद में बनाते हैं, फिर उसमें से देखते हैं किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है, तो कट भी कर देते हैं नंबर, नाम उनका। रिश्तेदार चाहे, कहते हैं ना कि कितना ही करीबी क्यों ना हो, कितने ही लोग ऐसा करते हैं, रिश्तेदार सोचते हैं कि अरे भाई हमारा तो इतना अच्छा व्यवहार है, अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक इनविटेशन नहीं आया, क्या करें। फिर कभी कभी सोचते, चलो अपने ही है ना, शायद भूल गए होंगे, कामकाज में व्यस्त होंगे तो भूल जाते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम रहता है, तो बुद्धि चारों तरफ दौड़ानी पड़ती है, भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, अपन जाएंगे तो वो खुशी होंगे, और ऐसे भोले भाव से चले जाते हैं। जाने के बाद जब वो आपसे बात नहीं करते, आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं रखते, तब पछताते करें ये क्या कर लिया, क्यों आए, इसने तो जानबूझकर हमारा नाम नहीं लिखा, जानबूझकर इन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया, और ये क्या कर लिया, हम क्यों आए। फिर पछताने से क्या होता है, इसलिए अच्छे कार्य में हमेशा इंतज़ार करिए, आपको बुलाए तो ही जाइएगा। हाँ, कहीं दुख तकलीफ है, कहीं मांदगी है, बीमारी है, या कोई परेशानी है, तो वहाँ पर बुलाने का इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ पर बिना बुलाए पहुँच जाइए। लेकिन अच्छे कार्यों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में इनविटेशन के बिना जाना अच्छी बात नहीं है। 4 जनों के बीच जो हमारी इंसल्ट होती है वो असहनीय हो जाती है, और इसके चक्कर में भी कितने जने डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कितने तो भाई उन्होंने हमारा ऐसा अपमान किया कि अब हम मुँह नहीं दिखा सकते किसी को, सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों करना है, सामने वाले ने इंसल्ट की है तो वो उसके संस्कार है, लोग कुछ बोले ना बोले समझ में तो आ ही जाता है कि देखो कैसा संस्कार है, जो अपने ही भाई को या अपनी ही बहन को या अपने ही सगे रिश्तेदारों को तो नहीं बुलाया और हम लोगों को बुलाया, तो लोग समझ जाते हैं। आजकल बोलते कोई किसी के मामले में नहीं, क्योंकि सभी आए, अटेंड किया प्रोग्राम, ये निकले, टेंशन नहीं चाहते, इसलिए इंटरफियर नहीं करते। हेलो,
1: हेलो नमस्कार, ओम शांति हमारी प्यारी बहन उषा जी। मैं
0: हाँ जी
1: बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार दयाराम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है और आप सभी की दुआ से बढ़िया हूँ और सभी मेरे मित्र प्यारे भाई बहनों की दुआ से अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज बॉर्डर के इलाके में रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ, क्लियर आ रहा है
0: जी।
1: और बहुत ही आते ही आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है और आज के विचार भी कर दिया
0: जी,
1: उसके भी दिए और सवाल भी बहुत सुंदर लेके आए, तो मैं जज्बा तो अप्लाई नहीं करूँगा
0: जी।
1: और विषय क्या है दीदी?
0: जी विषय बहुत सुंदर है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उससे मनाना नहीं। क्या कहेंगे?
1: जी जी जी बहुत बढ़िया। आज का जो विषय है,
0: भले इनमें से एक टॉपिक पर आप बोल सकते हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहते ना कि जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं।
1: जी जी बिल्कुल, मैं भी जाता ही नहीं हूँ। जैसे कहावत है तो मान से बुलायो बैठो मीठो मोरियो, बिना बुलाए आए बैठो जाने जंगल को डोर। तो आदर बगैर तो हम कहीं जाते ही नहीं है, और कहीं जाते है कोई सामने वाला अपने आपको राम राम करने और अपने को बुलाने के लिए और पानी वानी नहीं लाता है तो जाते ही नहीं, वहीं हम कहीं नहीं जाते हम। और जो आदर होता है, जो सामने वाला, हम किसी के घर जाती है सामने वाला हमारे सामने आता है और राम राम भी करती है और फिर भी हमारे साथ लेके जाए बैठाती है, इतना मान सम्मान देती है, तो हमें बहुत ही खुशी होती है और उनको भी खुशी होती है कि हमारे लिए घर पे मेहमान आए है। तो ऐसा इंसान होता है तो उसके घर घर मेहमान आता जाता रहता है, नहीं तो एक बार आएगा तो वो दूसरी बार कभी वहां मुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और तो बहुत सुंदर है, हमारे दो और भी श्रोता प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी अपना कॉल करेंगे बताएंगे। और सभी को नमस्कार है, ओम शांति
0: जी। बहुत बहुत आभार, आपकी तबीयत ठीक है? चलिए ये थे दयाराम जी रामपुरा से, आपने भी स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में समझाया है आज के विषय का अर्थ, और आप भी जुड़ सकते हैं अब और अपनी बात को रख सकते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय है, आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, ताड़ासन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों में ही जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414।

0: अगर हम सही है तो, है ना? और फिर जो सुनता ही नहीं है, हम अच्छा कह रहे हैं, हम भलाई की बात कर रहे हैं, हम उनके फायदे की बात कर रहे हैं, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो उसको समझने की कहाँ ज़रूरत है? बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जो बस अपनी ही अपनी सुनाएंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनाई और ये चल दी है, ऐसी आदत होती है। मिलेंगे, हाँ कैसे है, क्या है, फिर अपना दुखड़ा, फिर अपना जो भी बातें हैं उसका रोना रोना, और उसके बाद सामने वाला अगर कुछ बोलना चाहेगा, क्योंकि देखिए आप कुछ कहते हैं तो कभी लगता है कि चलो मैं भी अपने दिल की बात शेयर करूं, या मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूं तो आप भी समझते हो चलो हम भी शेयर करें, तो आप भी कुछ सुनाओ, मैं भी कुछ सुनाऊं, मैं भी कुछ बोलूं, आप भी कुछ बोलो, तब तो ठीक है, सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं खाली सुना सुनाई कर रही हूँ, ठीक है? और जैसे आप कुछ बोलने लगे और मैं वहाँ से हट गई, चल दी, तो ये कौन सी इंसाफ है भाई? ये तो नाइंसाफी की बात हो गई ना। तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो क्या कहना चाहते हैं, चलो उनकी सुन लो भाई, जब खुद की सुना करके चला जाए तो फिर ऐसे लोगों की सुनना ही क्यों, समझना ही क्यों, ठीक है? तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, और कहते हैं ना जो पचता नहीं उसे खाना ही क्यों। भाई ये तो स्वाभाविक बात है कि हमें क्या सूट करता है क्या नहीं वो हमें पता होता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो पचती नहीं, और पचती नहीं है तो क्या करते हम, दूसरी बार उसको थोड़े ना छुएंगे, अरे भाई फलाने दिन ये चीज़ खाई थी ना तो ऐसा हो गया, नहीं भाई नहीं, मुझे तो वो चीज़ नहीं खानी है क्योंकि पचेगा नहीं, अभी परेशान हो जाएंगे, तो उस चीज़ से हम कोसों दूर रहते हैं, चाहे वो हमारी फेवरेट हो, है ना, फिर भी हम उसको नहीं छूते कि नहीं वो सूट नहीं करती है। तो ऐसे ही कुछ लोग अपनी बातें बताते हैं तो उसको भी पचाना ज़रूरी होता है, जिस तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक है, पाचन क्रिया अच्छी रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही लोग हमारे सामने अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने दुख की बातें शेयर करते हैं, तो उसे भी सुनिए और पचाइए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो लोगों को कहने का नहीं होता है, मना करते हैं, तो नहीं कहिएगा इधर उधर। हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
1: बस एकदम अच्छे हैं, और प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है, और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: जी आपको भी। हाँ जी,
1: हाँ तो विषय में ऐसा है बहन जी के जो अपना अपना चहिता है, अपना दोस्तार है, या अपना पड़ोस में है, या थोड़ा दूरी है
0: जी,
1: तो इसमें इसमें इसका कोई कोई घर में कोई ऐसा हादसा बन गया, या एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर कोई मृत्यु हो गया, तो उसमें बिना सोचे बिना संकोचे नहीं, अपने को बोला नहीं फिर भी उधर जाना है, लेकिन शादी ब्याह ऐसा का हो,
0: खुशी का माहौल हो,
1: नहीं दी,
0: हाँ जी,
1: हाँ अपने को दावत नहीं दिया तो अपने को जाने का नहीं।
0: जी,
1: जी
0: बिल्कुल, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे।
1: प्रश्न का जवाब ऐसा है बहन जी, कारा दंगा के जो अपना हृदय है, अपनी हड्डियां है, अपने पूरा शरीर का जो जोड़े नसें हैं, उसका एक ये तारा सन इसमें महत्व का भाग दिखता है जी।
0: अच्छा, और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, नुकसान बताएंगे?
1: ये थोड़ा मेरे जो जानकारी थी वो मैंने।
0: जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी, तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। आइए अब यहाँ पर एक अल्प विराम लेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या? और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना मत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूं, आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ताड़ासन के फायदे क्या है और किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों में ही जुड़ सकते हैं, आज के विषय में भी अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में भी आप अपनी बात को रख सकते हैं कि भाई जहां आदर नहीं वहां जाना मत। बहुत सारी जगह ऐसा ही होता है, बुला तो लेते हैं, कहीं कहीं पर देखे बुलाते ही नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बुला तो लेते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं उन्हें। जैसे प्रोग्राम है, जैसे ज़बरदस्ती बुलाया, कभी आपने भी महसूस किया होगा कोई ना कोई रिश्तेदार तो ऐसा मिल ही जाता है जो बुलाने के बाद पूछता तक नहीं कि आप कैसे हो, आप ने कुछ खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं, फिर उनको इग्नोर करते हैं और दूसरों को भाव देंगे। देखिए यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, चार भाई है, तीन भाई गांव में रहते हैं और एक भाई शहर में रहता है, ठीक है। लेकिन तीन भाई क्या जो बड़े हैं उनके लड़के भी शहर में रहते हैं, लेकिन एक सबसे जो छोटा भाई है वो गांव में रहता है और उसके लड़का नहीं है, दो बेटियाँ है, ठीक है। वो पूरे ग्रामीण परिवेश में ही बड़ा हुआ है, शहर में कभी गया ही नहीं। दो बड़े भाई हैं उनके, तो फिर भी बच्चे शहर में हैं तो दोनों भाई जाते रहते हैं तो शहरों का अनुभव है, और एक भाई तो ऑलरेडी शहर में रहता है। उनके या प्रोग्राम आया, शादी आई बेटी की, तो बुलाना तो पड़ता ही है भाइयों को, तो बुलाया तीनों ही भाइयों को। अब दो भाई तो शहरों में रहे हुए हैं इसलिए पता नहीं वो भाई जिसने बुलाया है बिचला था, अच्छी तरह खातिरी कर रहा था, लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वो कभी शहर में गया नहीं, दोनों ही बेटियाँ ही है, तो उनको जैसे कि ऐसे बता रहे थे कि ये तो भाई नहीं है। बढ़ चढ़ करके मेहमानों से दोनों भाई का परिचय करवा रहे, उनके बच्चों की तारीफ कर रहे, छोटा भाई भी उन्हीं के पास खड़ा है लेकिन उनके लिए कोई भी शब्द नहीं कि भाई ये भी मेरा छोटा भाई, ये देखे देखे मिलिए सर, ये दोनों भाई मेरे, इनके बच्चे वहाँ रहते हैं, ओम्बे रहता है, एक पुना रहता है, इनके बच्चे हैदराबाद रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, लेकिन छोटा भाई पास में खड़ा है तो कोई परिचय नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, गांव में रहता है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अपने मेहमानों से भाई शहरों में रहते हैं देखो झोप करते हैं, तो आते हैं अपने अपने व्यवहार वाले, तो उनको दोनों भाई का परिचय दे रहे लेकिन छोटे वाले का नहीं, और यहाँ तक उनको ये भी नहीं पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप कैसे हो, आपको सुविधा मिली या नहीं मिली, रूम मिला या नहीं, कुछ भी नहीं। भाई को ऐसा लगा कि जैसे ज़बरदस्ती बुलाया गया हो, तो बड़ा अफसोस हुआ कि इससे तो अच्छा नहीं आते तो अच्छा रहता। भाई के बहू को तो थोड़ा रोना भी आ गया कि भाई ऐसा अपमान हो, इससे तो अच्छा कि आप बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि जेठानी सभी के सामने परिचय करा रही है, दोनों जेठानियों को खड़ा कर रही है, लो आप ये बांटो वो बांटो, लेकिन देरानी को ये भी नहीं कह रही है कि भाई तुम भी उठो और तुम भी साथ दो, नहीं, उनके किसी भी प्रकार की उनसे हेल्प नहीं ली। वो कहते हैं ना कि जब अपने कोई होते हैं, अपने ही घर के होते हैं, तो अधिकार से उनको कहते हैं, हमारे घर में प्रोग्राम होता है तो हमें अधिकार से कहते हैं कि भाई उठो अब ये करो वो करो, विधि विधान में उनको आगे रखते हैं, लेकिन वो छोटे को कहीं पर भी आगे नहीं रखा। तो समझ गए आ गए शादी, अब आए हैं शहर में तो अब साथ में ही जाना था। अकेले तो रहने से रहे कि भाई शादी छोड़ के बीच में ही जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हेलो
4: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से, आपको सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
3: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
4: बस अच्छे हैं दीदी, और आज विषय भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लेके आए हैं। तो दीदी और जो आप बात कर रही तो मैं और ऐड करना चाहूंगा
3: जी
4: कि चलो दो चार भाई है, उनमें से एक आध तो भाई गुस्सेल वाला होता है, एक थोड़ा सा फूला वाला रहता है
3: जी।
4: तो सिर्फ भाइयों ही नहीं, कोई पड़ोसी रिश्तेदार में वो थोड़ा गुस्से वाला आक्रमण जो होता है उनकी खास
3: ध्यान रखेंगे। सही बात है।
4: और जो थोड़ा भोला भाला है ना तो वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, और तो और अगर जो काम तो करते करते हुए थोड़ा सा छूट भी गया ना तो वो डांट देते, अरे ये कैसे हो, ये करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया, वो सभी। तो फिर जो उनकी औरतें हैं ना तो वो क्या कहते कि वो औरतें तो देखती है ना कि इनको इतना सम्मान, तो वो क्या कहते हैं कि चलो जो भी हो कि भाई की शादी है, भाई के बच्चों की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, तो ये सब समझकर सह लेता है
3: जी।
4: एक तो ये बहुत गंभीर विषय है कि सभी को एक सम्मान मिलना चाहिए।
3: ये वो कहते हैं ना कि ओछे लोगों की मानसिकता ऐसी है।
4: सही सही बात है। और कि चलो ये थोड़े गुस्सेल आदमी है तो रूठ कर चला जाएगा तो फिर ये होगा वो होगा,
3: मेन कारण यही है
4: नाराज। सही बात है, नाराज फूफा की तरह जो
3: जी बिल्कुल।
4: क्या कह रही थी आप बताइए।
3: अच्छी वो बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है कि गुस्सेल व्यक्ति को सबसे मतलब आगे रखते हैं और हाथ में रखते हैं कि भाई ये नाराज हो गया तो पूरा बिखड़ा खड़ा कर देगा।
4: सही सही सही बात है। और तो और जो कुछ रीति रिवाज होती है जो शादी ब्याह में, तो उनको ये अगर कहीं चला भी गया ना तो वो ढूंढ के लाता है, चाहे भले मुहूर्त बीत जाए या निकल जाए जो
3: जी,
4: भी
3: जी,
4: हो
3: जी,
4: तो
3: जी,
4: उनको पहले के चलो आप आगे आओ ये करो, मतलब इतना सम्मान। तो फिर ये बात
3: जी, जी, जी। बिल्कुल।
4: तो बहुत अच्छा विषय आपने उजागर किया है कि तो समझना चाहिए। चलो एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि दीदी ये
3: जी,
4: जो भाई भाई पे झगड़ा होता है ना, शायद ये विषय से हटकर हो जो झगड़ा होता है ना तो नहीं बोलता एक दूसरे भाई, तो उनके बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं ना तब ये महसूस करते, जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो भी आपस में बच्चे बच्चों की नहीं बनती, वो क्यों कि चलो उनके साथ तो हमारी दुश्मनी है।
3: हाँ,
4: तो हमेशा मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो भी हो भाई भाई या कोई रिश्तेदार दुश्मनी न रख के ताकि बच्चों पर असर ना पड़े।
3: बिल्कुल, और कम से कम कोई भी बात हो तो बड़े बड़े मिलकर करें, बच्चों को इन्वॉल्व न करें, और बच्चे वहाँ है तो उनको आप बाहर भेज दीजिए।
4: हाँ,
3: चलिए कभी कभी क्या है विचारों का टकराव हो जाता है ना, तो विचारों का टकराव भी भाई हो रहा है तो भी बच्चों का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह
3: दीजिए, नहीं तो बच्चों के मन में ऐसा ही हो जाता है और वो भी बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो भी नफरत करने लगता है।
4: क्योंकि शुरू से बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि चलो ये तो हमारे भले हमारे लोग है या नहीं है दुश्मन की तरह समझे, तो फिर आपके बड़े बड़े लोग तो चलो चले जाएंगे, फिर उनके बच्चे उनके भी बच्चे, तो ये टकराव दुश्मनी लगातार चलती रहेगी, तो ये खत्म करना जरूरी।
3: जी बिल्कुल
4: जी जी जी नमस्ते
3: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी बहुत ही अच्छी बातें रखी है कि भाई देखे बच्चों को दूर रखे ऐसे माहौल से, और ऐसा माहौल देने से क्या फ़ायदा, बच्चों के सिर पर आप उनके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उनके कैसे उन्नति हो कैसे वो आगे बढ़े यही सोचिए, घर की कीचड़ पट्टी उनके सामने मत रखिए। तो मैं बात कर रही थी भाई भाई की, और देवरानी को कोई विधि विधान में आगे नहीं रख रहे थे, हाँ तुम जाओ बर्तन मांजो, तुम जाओ चाय बनाओ, इसी काम में उसको व्यस्त कर दिया। जैसे ही वो जैसे माँ मेरा की विधि होती है, बहुत सारी विधि होती है, जैसे ही विधि में आती है उसको कोई ना कोई काम भरा दिया जाता है। तो दोनों बेटियाँ थोड़ी बड़ी थी और समझदार थी, वो सब नोटिस कर रही थी कि मैं हमारे मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तब उन दोनों ने वही सोच लिया कि अब हमें इतनी मेहनत करनी है कि जो आज हमारे मम्मी पापा का अपमान हुआ है वो भविष्य में कभी ये कर न सके। कैसे भी करके शादी करके आ गए और दोनों जो गांव से जेठ जेठानी आए थे वो भी सब देख रहे थे, लेकिन आजकल कौन किसके बीच में बोले, भाई हमारा मान सम्मान हो रहा है बस, दूसरे गए भाड़ में। ऐसा हो गया आजकल, हर एक का नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है, कोई नहीं बोले। लेकिन अब वो गांव में शहर में पहली बार आए तो उन्हीं के साथ जाना था तो उनके साथ आ गए, ठीक है। फिर शहर वाले के थोड़े समय बाद फिर से शादी हुई दूसरे बच्चे की, ठीक है। उस समय भी सबको बुलाया, उस समय छोटी छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगी, मेरे को बर्तन और चाय बनाने के अलावा कोई विधि में मुझे सम्मिलित नहीं होने दिया, इससे अच्छा मैं अपने घर में ही भली। दोनों बच्चों ने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं आएंगे, हमारे मम्मी पापा का अपमान होता वहाँ, हम नहीं आएंगे। लेकिन भाई तो भाई होता है, सोचा ठीक है तुम नहीं आते हो तो भी अपमान तो सभी का हुआ है, मेरे को भी कहीं पूछा नहीं है, लेकिन क्या करूँ तो भी जाना पड़ेगा। तो दोनों बेटियों ने समझाया कि कोई ज़रूरी नहीं है जाना, दोनों बेटियों ने बहुत आग्रह करके पापा को भी रोक लिया, ठीक है। वो चारों ही गए, दोनों बड़े भाई उनका परिवार वाले तो गए, पूछा इनको भी पूछा था आना हो तो चलो हमारे साथ, इन्होंने मना कर दिया हमें नहीं आना है। तो किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, चले गए। शादी ब्याह भी हो गया, पूछा तक नहीं छोटे भाई को फ़ोन करके कि भाई क्यों नहीं आया, कुछ भी नहीं, उल्टा खुश हो गए कि चलो अच्छा है वो तो गवार है। मन में ऐसा सोच करके और कोई फ़ोन नहीं किया, शादी ब्याह हो गए। अब इधर इनकी बेटियाँ पढ़ लिख करके अच्छा रिजल्ट लाने लगी और धीरे धीरे कॉलेज भी कर लिया और कंपटीशन फाइट करके अच्छी जॉब भी करने लगी और एक तो विदेश चली गई। तब आश्चर्य हुआ कि अरे छोटे की बेटियाँ इतनी होशियार कैसे निकल गई और विदेश गई बच्ची, 6 महीने रही। और वो कहते ना पहले तो 5.5 महीना ही रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हो, 5.5 महीना रह करके आ गई, फिर गई, फिर रही और फिर अपने माता पिता को भी बुला लिया। तो देखो शहर नहीं डायरेक्ट विदेश में, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगी कि विदेशों का मोह होना चाहिए, नहीं मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई आप अपनी योग्यता के दम पर, कंपनी आपको भेज रही है, कंपनी वालों ने भेजा है बेटी को, तो परिवार भी चाह सकता है। माता पिता बहन सबको वो लेकर के गई, सब खुश हो गए और पूरा 2 महीना रहे और 2 महीने में पूरा माता पिता का भी विचार चेंज हो गए, मतलब थोड़ा सा पहनावे में भी फर्क आ जाता है ना, घर भी अच्छा बना दिया गांव में। और तीनों ही भाई को टक्कर दे करके परिवार आगे बढ़ गया। छोटी वाली ने भी इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो भी अच्छी पोस्ट पर उसने भी मतलब जॉब शुरू कर दी। हेलो,
5: जय माता
3: जी, जय श्री हरि, नमस्ते, कैसे हैं आप?
5: हम अच्छे हैं, आप कैसे हो?
3: जी हम भी अच्छे हैं।
5: घर पे सब ठीक है?
3: हाँ जी सब बढ़िया।
5: आप जाके आए तो सब बढ़िया है ना?
3: नहीं अभी हम नहीं गए, जी अभी ऑन एयर है, अभी हम गए नहीं है, जाएंगे।
5: और क्या आज का टॉपिक है?
3: जी आज का टॉपिक है जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, क्या कहेंगे आप?
5: सबसे पहले तो रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं मंगल का। देखिए जहाँ आदर नहीं होता है वहां तो अपन को जाना ही नहीं है, क्योंकि आपका आदर नहीं है तो वहां जाओगे तो आपका तिरस्कार ही होगा, आपके मन मतलब किसी न किसी तरह से ठेस पहुंचेगी। और दूसरा जो समझ क्या बोला, सुने नहीं उसको समझना नहीं,
3: जो सुनता नहीं उसे समझना मत। हाँ जी
5: हाँ, तो सही बात है ना, जो अपने पास अपन सही बात कर रहे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं है तो उस इंसान से किनारा करने में, जहाँ आदर नहीं है सुनता नहीं है तो फिर उससे किनारा करने में फायदा है, नहीं तो फिर क्या। और एक एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि कहीं पे भी आदर भी है ना, तो वहां पे भी आप बार बार मत जाइए, सही है ना?
3: जी बिल्कुल,
5: मेहमान रूपी जाओगे ना तो आपका आदर सम्मान रहेगा
3: जी,
5: कभी कभी जाओगे तो, और आप लगातार जाओगे ना तो वहां भी आदर आपका कम होगा
3: जी।
5: वहां बोलेंगे देखो ये आगे अभी अभी इसको जाने दो यार, नहीं तो आ जाएगा
3: जी।
5: तो सबसे पहली बात तो जहाँ आदर नहीं है, आपका अनादर हो रहा है, आपको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो ही आपकी जिंदगी है, नहीं तो फिर क्योंकि कुछ अपन है ना, देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि देखिए पशु पशु और कुत्तों को कैसे दुष्कांते हैं, तो आजकल तो कुत्ते भी समझते वो उस दरवाजे पे दूसरी बार नहीं आता
3: जी,
5: पशु भी जहाँ लाठी पड़ती है ना दुष्कांते वहाँ दूसरी बार नहीं आता
3: जी।
5: तो अपन तो इंसान है यार,
3: हाँ
5: अपन को तो भगवान ने समझने के लिए दिमाग दिया है, जहाँ आदर नहीं है वहाँ जाना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है
3: जी। और आज का प्रश्न है, हाँ जी आज का प्रश्न है, ताड़ासन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए?
5: ताड़ासन,
3: हाँ जी
5: ऑफलाइन दो
3: ठीक है,
5: जय माता
3: जी, जय श्री हरि। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि इस तरह दोनों बेटियां होनहार, पढ़ने में और अच्छे पोस्ट पर जॉब लगी, तो परिवार वालों को गांव वालों को सभी को आश्चर्य हुआ, गांव वालों को तो नाच था, और फिर वही शहर वाले भाई के घर में फिर से प्रोग्राम आया पोते के मुंडन का, तो इनको बहुत मनोहार करके बुलाया, जो विदेश में रहती बिटिया उसको भी फ़ोन किया कि नहीं बेटा आना ही पड़ेगा, घर के कार्यक्रम में नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, नहीं आना ही पड़ेगा, और बेटी भी आई, सभी गए वहाँ पर, तो अपने रिश्तेदारों से दोनों भाई को छोड़ करके ये भाई के परिवार का परिचय करा रहे, देखो हमारी दोनों बिटिया पढ़ने में इतनी होशियार थी कि ये देखो ये बन गई, ये विदेश रहती है, मेरा भाई बड़ा ये है। हेलो
6: नमस्ते उषा बेन, राम राम जसमत भाई, नाना
3: हाँ जसमत भाई केम छो,
6: गीत गन बजा ने मनोरंजन देवा मांगु छु, जिंदगी तो यारी रे कहे हार के
3: તમારી આવાજ બરોબર નથી આવતી જસમત ભાઈ, તમારી આવાજ બરોબર નથી આવતી, હા હવે વ્યવસ્થિત આવે છે, બોલો, હા સાંભળ્યું, બસ બહુ સરસ ગાયું તમે, બરોબર આવાજ નથી આવતી જસમત ભાઈ તમારી, એટલે જ્યાં નેટવર્ક આવતું હોય ત્યાંથી વાત કરો, તો ફિર જબ આપસ મેં ભાઈ ભાઈ બાત કરને લગે, મહેમાન નહીં થે ઓર આપસ મેં બાત કરને લગે, તબ બેટીને કહે કે બડે પાપા પહેલી બાર શાદી મેં આયે થે ના આપકા વ્યવહાર આજ ભી હમ ભૂલે નહીં, उस समय तारीफ कर रहे थे सभी के सामने भी तारीफ कर रहे थे, अरे वाह क्या बेटिया तुम तो, ये हो गई वो हो गई, उसने भी सत्य को रख ही दिया कि पहली बार जब आपके घर पर आए थे तो कैसे कैसे आपने हमारे माता पिता का अपमान किया, आज भी हम भूले नहीं हैं। तो भाई का चेहरा बड़े पापा का चेहरा ही फीका पड़ गया, बोले कि देखिए पैसे की वैल्यू हमारी थोड़ी ना वैल्यू, आज हम काबिल हो गई तो आज आप हमें पूछ रहे हो, और अगर हम वहीं तक रहते तो कभी आए नहीं आप हमारे घर पर, और एक बार बुलाया उसमें आपने ऐसा व्यवहार किया, दूसरी बार हम नहीं आए तो आपने पूछा तक नहीं हमारे माता पिता को, और आज आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है, इस तरह जल्दी रंग बदल दिया आपने, तो सत्य को रख ही दिया, वो कहते ना कि फिर भले रूठे तो रूठे, अपने सत्य को एक बार तो रख ही दिया कि माता पिता का अपमान किया है तो बात को रख ही दो। फिर दोनों बड़े पापा जो गांव में रहते हैं उन्होंने भी महसूस किया, फिर बोले हाँ हाँ बिटिया ऐसा तो हुआ है, हाँ तूने ऐसा किया है, वो बीच में नहीं बोले, वो नहीं बोले, फिर भाई को कहने लगे, हाँ तूने किया तो गलत था। तो ऐसा होता है, चढ़ती के साथ सभी होते हैं, और बाकी जो साधारण होते हैं सोचते हैं कि वो ये क्या समझता है, लेकिन दिन सभी के बदलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई सत्य पर अगर कोई रूठ जाए तो उसे मनाना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रखा है, ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और आइए सुनते हैं फिर से एक गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में चॉकलेट और मिल्क शेक। ठीक है, चॉकलेट मिल्क शेक। सामग्री लिखवा रही हूँ, दूध ले लीजिए आधा लीटर, चॉकलेट पाउडर लेना है एक बड़ा चम्मच, कॉफ़ी पाउडर लेना है एक चौथाई छोटा चम्मच और चीनी लीजिएगा दो बड़े चम्मच, एक चम्मच लेना है छोटा चम्मच कोको पाउडर। ये हो गया चॉकलेट मिल्क शेक की सामग्री। ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहरा रही हूँ, आधा लीटर दूध, चॉकलेट पाउडर एक बड़ा चम्मच, कॉफ़ी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, दो बड़े चम्मच चीनी और एक छोटा चम्मच कोको पाउडर। बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, दूध, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, चीनी और सभी सामग्री डाल करके इनको मिक्सर में चला लीजिए। ठीक है, फिर बर्फ़ का चूरा मिला करके एक बार फिर से मिक्सर में चलाइएगा। अब गिलास में चॉकलेट शेक डालिएगा, गिलास में ऊपर से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके आप दे सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने परिवार वालों को। तो इस तरह चॉकलेट मिल्क शेक बनाया जाता है। विधि फिर से जान लीजिएगा, दूध, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और चीनी सभी को मिला लीजिए और मिक्सर में अच्छी तरह चला लीजिए। फिर ऊपर बर्फ़ का चूरा मिला लीजिए और फिर से मिक्सर में चला लीजिए। और अब गिलास में डालिएगा चॉकलेट शेक और ऊपर से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके अब आप जिनको भी देना चाहते दे सकते हैं। तो ये बन गया चॉकलेट मिल्क शेक। अब साथ ही साथ मैं आपको सेब का शरबत सिखा रही हूँ। सेब का शरबत में आप क्या करेंगे, ताज़ा पके सेब ले लीजिए एक किलो, चीनी एक किलो और बर्फ का चूरा लेना है। चले हमारे श्रोता बंधु बात करना चाहते, हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते मदन भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ और बस कार्य कर रहा हूँ, कंपनी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आज का प्रश्न है, ताड़ आसन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए?
1: आसन,
0: ताड़ आसन के क्या फायदे हैं?
1: कोई फायदा नहीं है। अच्छा, टाइम खराब करना और
0: चलिए ठीक है,
1: समझा नहीं मेरा,
0: चलिए
1: समझा नहीं, वो सुनाई नहीं दे रहा बराबर।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है
1: जी जी, आपको सभी को नमस्कार, सुनने वाले को और आपको
0: जी,
1: और बस
0: तो चलिए, ये थे मदन भाई मेहसाना से। और मैं आपको सेब के शरबत की सामग्री लिखवा रही थी, ताजा पके सेब एक किलो ले लीजिए, एक किलो चीनी लीजिएगा और बर्फ़ का चूरा लेना है। अब आप क्या करेंगे, सेब को छील करके, मतलब धुलाई तो करनी ही है, फिर छीलेगा कद्दूकस कर लीजिएगा। अब इसे मिक्सर में डाल करके जूस निकाल लीजिए, इस रस में चीनी मिलाइए, गैस पर चढ़ा दीजिए, इसे तब तक पकाइए जब तक कि मिश्रण आधा नहीं रह जाए। फिर गैस से उतार कर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे कांच की बोतल में भर करके फ्रिज में रख दीजिए। जब भी सेब का शरबत पीना हो तो थोड़े से ठंडे पानी में शरबत मिला करके बर्फ़ का चूरा डालिए और पीजिएगा। तो इस तरह सेब का शरबत आप स्टोरेज कर सकते हो, जब इसका मौसम हो तब इकट्ठा आप खरीद लीजिए और इस तरह बना कर फ्रिज में रख दीजिए। फिर जब भी कोई मेहमान या बच्चे कहे या आपकी इच्छा हो जाए, उस समय इस तरह सेब का शरबत बना करके इसका आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह देखिए, चॉकलेट मिल्क शेक आपने सीखा है, सेब जिसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, एप्पल का शरबत आपने सीखा है। जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा। और आइए अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि भाई फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बीमारियाँ ठीक करती है, तो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और जो आपको चॉकलेट मिल्क शेक और सेब का शरबत बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके पीजिएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, ताड़ासन के क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले तो मैं जवाब दे देती हूँ, सुनिएगा। ताड़ासन के लाभ आपको बता रही हूँ। ताड़ासन से शरीर सुदृढ़ होता है। ये मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में भी सहायक है। ये आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। और इसके नुकसान मतलब किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो भी जान लीजिए। उन लोगों को ये आसन नहीं करना है जिन्हें हृदय संबंधी या वेरिकोज वेंस संबंधी समस्याएं हैं, चक्कर आने की स्थिति हो या उंगलियों पर ऊपर उठने का प्रयास, मतलब उनको नहीं करना चाहिए जिनको वेरिकोज की समस्या है, बाकी सभी कर सकते हैं। तो जवाब दिया है सुरेश भाई धानेराव से, आपका जवाब सही है। बाकी तो दयाराम जी जुड़े हैं, फिरोज भाई पालनपुर से जुड़े हैं, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, जसमत भाई जुड़े हैं गुजरात से। आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो पहले तो सुरेश भाई धानेराव से आपके लिए ढेर सारी धन्यवाद। और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए भी ढेर सारी धन्यवाद। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। खुशी देने से खुशी बढ़ती है, अतः सर्व को खुशी देने का प्रयत्न करें, कभी दुख देने का विचार भी नहीं। अब मैं आपको प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है जीवन की राह। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलो ऐसा दीप जलाए जिससे हर मन मुस्काए, चलो ऐसा दीप जलाए जिससे हर मन मुस्काए, मीठे बोलो की खुशबू से हर आंगन महक जाए। चलो ऐसा दीप जलाए, न धन बड़ा न मान बड़ा सबसे बड़ा है व्यवहार, न धन बड़ा न मान बड़ा सबसे बड़ा है व्यवहार, जो बाटे प्रेम और अपनापन वही है सच्चा परिवार। चलो ऐसा दीप जलाए, गिरकर जो फिर उठ जाता है, गिरकर जो फिर उठ जाता है वही सफलता पाता है, जो खुद भी मुस्काए हर पल औरों को भी हंसाता है। चलो ऐसा दीप जलाए, ज्ञान योग और सेवा से जीवन को उजियारा दे, ज्ञान योग और सेवा से जीवन को उजियारा दे, हर दिन एक नई सीख लेकर दुनिया को कुछ प्यारा दे। चलो ऐसा दीप जलाए, चलते चलते बस इतना याद रखिए, जीवन की सबसे सुंदर पहचान अच्छे संस्कार, मधुर व्यवहार और हर पल सबके कल्याण का संकल्प है। इसी के साथ अब मैं आपकी चहेती आरजे उषा आप सभी से अनुमति चाहूंगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ अब तो बस करो।
1: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
4: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: रखा है ये। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं, वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता। लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
1: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही। कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो माँ, प्लीज।
2: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी। सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे। मैं थन आगे पढ़ाऊं तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है, वहां को भी सोचनो है मारे।
3: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ। बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू, थे कई चिंता करो, मैं यो सब चलावा ही नहीं देऊं तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यू ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछे बताओ।
1: बेटा, बीनड़ी तो घनी अच्छी है ये, पर गुंग तो घणो ओछो काढ़े, यो भी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पढ़न कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी, तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता, ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते अरे मारी मारो केणो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी, जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बीनड़ी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ठीक है, ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा, तू बोल, घड़ा दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता, मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ, तो मने खूब खुशी हुई। सुन, हॉस्पिटल तो घी न, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे, ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता, तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा, मैं थारा हूँ कई छुपा, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अत्रा सामान को।
2: रीटा, कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वणी सामान पे बहुरो कोई अधिकार कोनी वे वे है।
6: सीता, मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहु का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन, मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन, है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवे रही है ना, वह घबराए रही है, तो मैं बड़ी हॉस्पिटल लेन जाओगे?
1: चुप बे चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानू, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा है, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनणी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीनणी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगिनी के बगैर छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बिनणी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बिनणी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा आपरे भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बिनणी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय घणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, ढीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दर्पा मत राधा।
2: दर्पावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बिनणी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रहे है बिनणी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बिनणी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां और फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती, क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहें तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे

0: सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को, चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
1: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन हैं उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए, तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है। यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं, तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं, तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजीशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में। उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इशू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
0: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूं। घर में नियम भले कोई भी बनाए लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता. वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है कई बार. अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है. ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो. और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है. आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा ज़रूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों. आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा. तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आए हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है. खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है. तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं. सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है.
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे.
0: अच्छे हैं?
1: बहुत अच्छे.
0: बहुत अच्छे हैं सरोज जी. वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है तो हम आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप.
1: मेरा नाम सरोज है जी. मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी.
0: अच्छा.
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे. तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा.
0: गाना नहीं छोड़ा.
1: हाँ.
0: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल.
0: 8-9 साल के थे. तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था. बहुत बुरा लगा था. ये एक बार नहीं हुआ जी दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा. जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ. क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई वहाँ स्कूल में. उस टाइम में 13 साल की थी.
0: अच्छा.
1: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिला में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई. लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार, तो मेरे को रोक दिया गया.
0: लड़कियों को नहीं,
1: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया.
0: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
1: परमिशन लड़कों को मिलती थी. मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था. लेकिन काम सारे आते हैं, खेत का भी करते थे, जैसे जमींदार है 18-20 किले ज्यादा भी मतलब 80 किले की खेती करते थे, काम भी सारा आता. लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी.
0: बाहर नहीं जाना है.
1: बाहर नहीं जाने दिया. हम 4 बहनें हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो गाँव में तो होती है रूढ़ीवादी समाज होता, तो वो बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए. तो वहीं से बाप फिर हो जाता था भाई बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना.
0: आपके माता पिता का भी मन था?
1: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का. वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था. लेकिन वो मजबूर था समाज के.
0: समाज. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे? या
1: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया.
0: स्वीकार कर लिया.
1: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता. बहुत प्यार करती.
0: उनकी तो भावना भी थी और
1: बहुत भावना थी दीदी. उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरे शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें कहीं भेज दूं. उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते.
0: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे?
1: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे. कहते थे वे तो गाड़ी चला, स्कूटी चला. तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं, सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो कर रही हो, भाई थोड़ा सा अच्छी आदत का है, बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में. लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी. दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ. लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती.
0: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी, जो गाने को आपने छोड़ा नहीं।
1: हाँ, ये चीज मैंने दीदी अकेले में, मैं जैसे रसोई में खाना

0: रहती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तू गा, कोई रोक क्या नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ने नहीं पाएगी।
1: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना, तो
0: हाँ
1: कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोज जी मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
0: ठीक है दीदी,
1: जी
0: ओम शांति।

पीपल के पेड़ लगाए, बड़ पीपल के पेड़ लगाए, आम्बोरे जामने उसमें उगाए, आम्बोरे जामने उसमें उगा।

सारी सूक्ष्म वतन में योग लगावे, सूक्ष्म वतन में योग लगावे, परम धाम बिंदु बन जा।

0: सार।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं, अहम कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा आपने गीत सुना सरोज जी की आवाज में। सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
0: हाँ दीदी,
1: है ना? क्या क्या गीत है ये? क्या आपने सोच के से बनाया? क्या मन में आया आपके?
0: ये दीदी मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया तो ये शब्द निकले मेरे मुख से।
1: अच्छा,
0: तो ये गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत बन गया।
1: क्या बात है।
0: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है।
1: सही बात है, शब्दों से संगीत बनता है और भावना ईश्वर से।
0: ईश्वर के लिए मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वह शब्द निकले, उसका संगीत बन गया।
1: क्या बात है। अच्छा सरुचि, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है,
0: जी
1: तो
0: दीदी।
1: आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
0: दीदी मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब
1: दिल
0: देखती
1: से
0: हूँ गा
1: गाते।
0: देती हूँ।
1: बचपन से भी आप ऐसे गाते थे?
0: हाँ, बचपन से ही, जैसे माँ है ना दूध बिलोती थी ना, पहले गांव में दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग, लोकगीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। तो पहले आटा पीसती थी, तो मेरी माँ ऐसे करती थी तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी,
1: अच्छा,
0: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब
1: गाना आ गया।
0: शुरुआत होगी। हाँ, मन आया मेरे को, मैं गाने लगी बस।
1: अच्छा, तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे? याद
0: जी
1: है?
0: जी
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको
0: हाँ जी
1: याद हो?
0: जी दीदी,
1: जरूर। हाँ जी,
0: मैं आपको एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए।

जैसी घर में माँ। ब्रह्मा जी ने रची सृष्टि, विष्णु पालन हार बने, श्री कृष्ण जी बने रखवाले, दुनिया के करतार बने। चीज बड़ी

0: जाता।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है। माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी,
0: जी दीदी,
1: कभी जब
0: कभी
1: चुकाया
0: नहीं
1: नहीं
0: चुका,
1: जा
0: कोई नहीं
1: सकता,
0: चुका सकता।
1: कोई नहीं चुका सकता। और आपने गाया बहुत अच्छा है, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम। ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: दीदी मेरी माँ है ना,
1: हाँ
0: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी माँ ने कदे मतलब हाँ एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमका या कुछ। मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती।
1: हाँ
0: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना, भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती। ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से। देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे।
1: माँ की सेवा।
0: माँ की सेवा,
1: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
0: जी
1: अलग
0: दी
1: अलग चीज़ों में। और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
0: जी दी
1: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया। और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए।
0: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है। जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है। वो है ना, जिस टाइम भी घर पाओगा ना, या
1: बंद हो गया। हाँ
0: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता। वो सोएगा नहीं,
1: अच्छा
0: इतना वो सोए नहीं गा। देखो देखो, मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा।
1: अपने घर में देखा
0: हाँ
1: आपने।
0: बहुत अच्छा
1: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
0: दीदी, माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। उसमें के लिए शब्द नहीं है,
1: छप नहीं है।
0: शब्द नहीं है। वो तो एक सेवा करने वाला नो समझो, जो सेवा करेगा ना उसको फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
1: इच्छा ही
0: कि
1: नहीं
0: और
1: रहती
0: किसी की
1: है।
0: सेवा करने। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
1: महसूस किया आपने।
0: महसूस। हाँ मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना, वो दो लगा। और ऐसी ही भाभी घर में आ गई, मतलब घर सब रह गए, बहुत प्यार करती हर मतलब आने वाले से भी। कोई घर चला जाता है, मेहमान आते हैं, तो वो कभी ये नहीं देखती कि भाई तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं। भावना से, ऐसे भावना से भाव भी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
1: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
0: हाँ,
1: परिवार
0: ऐसा
1: है
0: परिवार
1: ना,
0: नहीं मिल, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
1: ऐसी भाभी नहीं मिल रही।
0: मैं सुनती हूँ गांव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं।
1: अच्छा।
0: मतलब पूरा गांव में हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कह देना, एक जम्या तो तने नो समझ ले दसा के बरोबर जाम दिया, एक
1: अच्छा।
0: जो तेरी इतनी करता है।
1: एक 10 के बराबर है।
0: हाँ 1:10 के बराबर है।
1: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
0: हाँ
1: की, बुजुर्गों की सेवा से मिलती हैं,
0: दीदी, हमारे घर
1: किसी
0: में
1: और
0: ना,
1: चीज से
0: मैं
1: नहीं मिल
0: आपको
1: सकती
0: एक छोटी
1: कभी।
0: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
1: अच्छा।
0: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना। तो बाबा मैं नुकू, मेरा भाई इतना बागवान और इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
1: कोई
0: बताऊं
1: कमी
0: कि
1: नहीं।
0: किसी चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया, हमारा बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा, आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया। भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो गांव का एक राजा बनता है, जब भाई कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है। उसने कभी किसी की बद्दुआ नहीं ली,
1: मदद की ना उन्होंने
0: मदद की
1: सबकी।
0: लोगों की, वो कभी नू नहीं देखता भी तेरे घर में। देखो मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तू सब कुछ नुए लुटा देगा, मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से। मतलब मैं कब ना जान जिगर जो माँ दूध पिलाना, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
1: इतना ही प्यार है।
0: हाँ मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी।
1: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
0: मेरा छोटा भाई है मेरे से।
1: कितना छोटा है?
0: मेरे से 5-6 साल छोटा। उस
1: 5-6 साल छोटे हैं। नहीं,
0: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है, वो माँ का भी फर्ज निभाता। ऐसा भाई संसार में देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा, नहीं होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा।
1: देखा नहीं आप?
0: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन,
1: मेरी बहन है।
0: अब जैसे मैं
1: उन्होंने दुआएं भी बहुत कमाई
0: तो मैं से आपको बोल दूं दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वो आपको भाई अच्छे से बोलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे को कोई डर नहीं, आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं,
1: बस आए हैं उतना भाई ही।
0: वो ये कहते हैं है। कि हमारे ऊपर है ना जो मेहमान अपने घर आता है ना वो एहसान करता है, आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है। जो हमारे घर आते हैं ना, आते भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
1: इतना प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा,
0: ऐसा कोई दिन नहीं है। देखो हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे।
1: अच्छा,
0: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था, लेकिन जब ज्यादा हो जाता था तो
1: काम हो जाता है
0: बहुत। हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया भी इतने बच्चे हैं। हमें सारी बहनों के 11 बच्चे सब
1: सब आ जाते होंगे साथ,
0: तो उसके बहन भाई सब उसकी मतलब इतना प्यार वहां मिलता था। मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो 24 बच्चे रखने, तो क्या आज के टाइम में तो 2 बच्चे भी रखने में
1: बहुत काम होता है उसमें
0: ना। और मेरे बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले।
1: अच्छा,
0: बस मेरे बच्चे दोनों ने,
1: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा।
0: वो छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू नहीं कह देना आए सागरी आ जा सो जा, नुका मैंने नींद ही नहीं आती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी।
1: हाँ।
0: दीदी उनका खाना मतलब भाभी है ना 4-4 महीस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
1: बड़ा दिल ना।
0: हाँ, बड़े दिल वाले फरोख दिल।
1: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
0: दीदी?
1: किसी को
0: मतलब
1: या आप गा गा के सुनाते हैं सबको?
0: वो सुनती है मेरे गाने, मेरी माँ को बहुत शौक है दीदी।
1: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को पसंद है आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोक गीत, कोई भजन जो हमारी श्रोताओं को आज आप सुनाए?
0: जो मेरे से सुनती है वो
1: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
0: ठीक है, मैं सुना रही हूँ। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे।
1: अच्छा,
0: ठीक है
1: जी।
0: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: रचदी।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे उस गाने का मतलब, थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी जी। जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं, अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर आप सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई, अच्छी बुरी। लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई, तुम अपना वेस्ट ना करो समय, भाई भगवान की बातें करो, भगवान के भजन करो। तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधी करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधी है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तक बचगी, या ऐसी माया कोई भगवान ने रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ,
1: कि वो समय कहते हैं ना, जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय उसकी कीमत भी
0: दीदी। फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना, इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना, वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं भगवान मिलन के, प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भी ज्योति की चीज है, वे तो भगवान का रूप है ना, ते हैं, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है, जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैं लौकिक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस।

0: गाते मैं भी गा,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था, हाँ मीनिंग का नहीं पता था उसमें. अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें, पर ये के शब्द है.
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरू जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का स्मरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं.
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ.
1: अच्छा.
0: हाँ 3 बजे उठ कर ही घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ. तो ऐसे ही भी भगवान मुझे शक्ति दो जैसे भी, फिर जो मैं सुबह सुबह उठ कर है अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चलने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ.
1: ओके सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं.
1: शुक्रिया
0: है ना, जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ. है ना, ऐसे वायु जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा.
1: बिल्कुल.
0: है ना, तो जैसे हवा है, हे वायुदेव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ. है ना, तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
1: शुक्रिया करो, नमस्कार.
0: शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आपका मैं शुक्रिया करती हूँ.
1: शुक्रिया.
0: अग्नि का सूर्यदेव है, हे सूर्यदेव जैसे सुबह सूर्यदेव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्यदेव देखो कहीं भी आप है ना, तो जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी जा सकते ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं सुबह
1: शुक्रिया
0: उठकर.
1: करते हैं आप,
0: है ना,
1: बहुत अच्छी बात है ये तो. शुक्रिया करना कितना जरूरी है, तत्वों का
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना,
1: प्रकृति
0: उससे वायुमंडल अच्छा
1: का
0: होता है, जब
1: जीवन
0: हम इन
1: देते
0: चीजों
1: हैं.
0: का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना, तो उसमें फिर भगवान का स्मरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा, जिस
1: खुशी
0: दिन
1: रहती है.
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली है.
0: हाँ जो खाली है आज कुछ. कई बार हो जाता है दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली
0: खाली,
1: खाली
0: खाली
1: लगता
0: हाँ,
1: रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा उस
1: अच्छा नहीं
0: दिन.
1: लगता. अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है,
0: हाँ दीदी
1: कोई ऐसा है?
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना, कभी अपने पास है ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं. मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर, मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत.

पहुंच गई है मनवाज सोनी मुरली की। हे फड़ छोड़े मन डाली, छोड़िए डलिया छोड़ी फड़की।

पहुंच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की।

पहुंच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की, ऐसी लगी है।

0: दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं, फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है।
0: संगीत साधना भी है और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं, उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला, भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गाने नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी चार लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी, जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दे दी है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडु भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी, चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को,
1: अच्छा,
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए। तो जो भाई है ना, ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ताई करने, तो ये उसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको है ना गाना गा रहा था वो उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उसपे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद

0: अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू हो गई है,
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी
0: उस पोती ने,
1: बड़ी है वो?
0: पोती 5वें साल में लग गई है,
1: हाँ, बहुत छोटी सी है अभी।
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे
1: वाह,
0: तीन
1: क्या
0: होते हैं
1: बात
0: ना
1: है,
0: उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे
0: एक ये
1: संस्कार
0: कृष्ण
1: उनको
0: आए
1: मिल रहे
0: वासुदेवाय,
1: हैं।
0: बल्कि मेरे को नहीं आता, ये वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ,
1: ऐसे संस्कार बच्चों
0: और
1: को
0: जो अब
1: दें तो
0: ये,
1: बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता
0: हाँ
1: है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिवन।

0: चुनरी। जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: जी दीदी, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, भाई जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है, संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
0: आनंद आएगा जी,
1: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
0: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखे,
1: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
0: हिम्मत करो
1: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
0: जगाओ
1: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है। उसको

0: दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के, ये सोचो ना तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या
0: सब क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं, जहाँ दिमाग आता है हाँ, फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ ही।
0: संगीत के पीछे पागल हो जाओ हाँ। कहते हैं ना पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: लेजेंड्स हुए है ना? और वो तो स्वर कोकिला भारत
0: हाँ, कोकिला,
1: बिल्कुल
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी
1: बिल्कुल।
0: तो उन अपने बड़ों को देखो है ना, अनुराधा, अनुराधा मैं उसके गाने सुनती थी तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं
1: हाँ।
0: कि भाई अच्छा संगीत,
1: अच्छा संगीत
0: हाँ।
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा जाइए।
0: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी
1: है, खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते हैं, कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 94 14 15 14 15, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल देते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: और स्कूल में भी मतलब अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छा परसेंटेज थी पास भी था, पर कोशिश की थी पर नहीं लगी नौकरी। चलो भाग्य की बात है। चलो मैं आपने पूछू कि जितेंद्र जी आपकी ओर मुँह पढ़ाई की थी सब हुआ ठीक है, आप बताओ आपने जीवन रमा है कोई जो मार्शाप बनाता है स्कूल में, तो आपने कोई तो मार्शाप आपने लाइक करता भाई?
1: हाँ हैंग मार्शाप तो मैंने लाइक करता ही था, हैंग मास्टरों ने लाइक करते क्योंकि पढ़ाई में तो हमेशा आगे थे। तो
0: कोई ये तो एरा मार्शाप है जो आपका मतलब जिंदगी का आधार या भाई कि उन्होंने आप बिल्कुल ज्यादा मानता भाई हो?
1: हाँ एक गोवर्धन लाल जी शर्मा था मार्शाप गणित रहा उन्होंने आदर्श मानते तो
0: भाई आपने खूब मदद करता पढ़ाई में।
1: हाँ हमेशा पढ़ाई में मदद करता था। नहीं एक बार मार्शाप था बालकिशन जी करे,
0: वे बालकिशन जी कटे रहता
1: वे बाजार में रहता था। अच्छा। और एक रूपचंद जी खंडेलवाल जी है केवल्ली रहा वे मास्टर था वही मैंने घना रखता था। वन तो कोई कमी रहती है वनती वनती के कोई समझ में नहीं आता तो वन और पाड़े जाए ने पूछ तो मार्गदर्शन देता मैंने।
0: चलो होबली होगा तो बचपन में आपने माता पिता ने आप तो खूब परेशान किया था के?
1: ना कदी नहीं की तो माता पिता ने ना कदी नहीं की ना।
0: तो लगा जीतो भाई खूब बदमाश टाइप के था?
1: ना ना बदमाश तो नहीं, खेलकूद में हमेशा आगे रहता तो मैं। घर में कभी कहीं परेशान नहीं किया।
0: अच्छा चलो अच्छी बात है, मतलब आप हमेशा नेक इंसान बने रहिया और माँ बाप ने कभी परेशान नहीं किया, ठीक बात है। आपने पूछो आपने जो परिवार में कतरा भाई था?
1: मैं बे भाई है।
0: बे भाई सो बे तो बे भाई बहनों है?
1: चार बहनों है।
0: चार बहनों बे भाई था आप रो क्यों नंबर तो?
1: मारो तीसरा नंबर है।
0: चार बहनों बे भाई आपस में झगड़ता का?
1: ना ना झगड़ने वालों कभी नौबत ही नहीं आई।
0: अच्छा थे छोटा बस में था जरे खूब झगड़ता उन्होंने परेशान करता?
1: ना कभी नहीं की दो मैं कभी परेशान कर दू नहीं।
0: चार ही बहनों आपकी मोटी है शादी हुई?
1: तीन तो मोटी थी वनोर विवाह हुआ, एक नैन की है जो हमारा आबरू नगर पालिका में पार्षद है।
0: बहन जीरो
1: संतोष परियार।
0: संतोष परियार आपकी छोटी बहन है तो वह अपनी शादी हुई?
1: नहीं हुई है बार।
0: चलो अच्छी बात है। तो आप मतलब शुरू थी मतलब आप भी तो पहला पार्षद रियोड़ा था?
1: हाँ सन 2000 में मु निर्दलीय थी पार्षद बनी हो तो वन टाइम बे पार्टी पाड़े गियो तो मु टिकट मांगवा तो बे टिकट अन्य आरू मन नहीं दी तो अनुसूचित जाति तो वेवा थी वो जो वार्ड आयो तो वो जनरल वार्ड तो बे पार्टी कियो कि वो तो जनरल वार्ड है अनवा तो बामणों ने चुनाव लड़ा होना है
0: जी।
1: तो वन टाइम मैं निश्चय की दो कि भाई मु रात दिन लोगों रो काम तो करतो ही तो हैंग लोगों रो पाड़े गियो वन टाइम लोग हैंग लोगों ने कियो तो लोग हैंग कियो कि अपने तो कोई पार्टी वार्टी नहीं रखनी अपने तो निर्दलीय थी चुनाव लड़ो ना निर्दलीय थी फॉरम भरो। वन टाइम में बे हो 25 वोटों से भी ज्यादा थी जनरल वार्ड में मु जीते ना आया।
0: चलो अच्छी बात है, मतलब आपने जो समाज सेवा रो रुझान तो और लोगों की सेवा करता लोगों की हेल्प करता मदद करता होने कारण आपने एक जीत समाज रा लोग दे रही।
1: हाँ सबसे बड़ी बात आती कि जन सन 2000 में मैं जटा दी चुनाव लड़ियो वन वार्ड में मारा जात रहा एक भी आदमी नहीं था।
0: अच्छा।
1: एक भी परिवार मारे जात रहा बटे निवास नहीं करते तो जतरा भी बीजी जाति रहा जो था बैरवा जाति था जांगड़ था बामण था लुहार जाति रहा था मुसलमान जाति रहा था हैंग मलियन ने मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ाया और निर्दलीय थी अच्छी वोट होती आबरूड में शायद पहले वोट व्यक्ति में हूँ और अण गांधी नगर के अंदर मैं आज़ादी के बाद थी पहले व्यक्ति मैं हूँ जो निर्दलीय चुनाव जीते ना आया हूँ आज तो कोई नहीं आया।
0: चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप मतलब एक आपकी आज़ादी के बाद में भी गांधी नगर में कोई मतलब निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीती तो पहला आप उम्मीदवार था जो आप जीतिया क्योंकि आप समाज रहा लोगों की खूब संबंध तो ठीक है अच्छी बात है। तो आप परिचय हुआ सब कुछ हुआ हमें औरता बंधुओं हमें अपने जितेंद्र परियार जी थी और बात करें एक छोटो सो ब्रेक लो ब्रेक के बाद में फिर आप और समाज के बारे में या और जो समाज सेवा का कार्यक्रम है काका कीदा उन्हें बारे में पूछे ही हूँ तो मैं आप एक छोटो सो ब्रेक लो आप एक गीत आनंद लो और गीत के बाद में फिर आप और बारे में जानकारी ले हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ब्रेक के बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं रो अपनो समाज कार्यक्रम में स्वागत है। अने अपने मेहमान जितेंद्र जी परियार रो भी अपनो समाज कार्यक्रम में स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, अणोरे बारे में आपो परिचय लीधो है, अणोरे समाज सेवा रे बारे में जानकारी ले रिया हो, तो ए बताया तो अपन ने कि मु गांधीनगर थी निर्दलीय उम्मीदवार बने ने वार्ड पार्षद बनिया था। वंती पहला एक मुई होबली दो एक आंदोलन कीधु तो है, जो जितना भी गांधीनगर की समस्या होती वन ने बारा में, वे समाज सेवा एरी सेवा है तो वन में वे सफल भी हुआ था। तो अणोर मुड़ा थी आप होबलो के एरो का अच्छो काम कीधो है।
3: सबसे पहला मैं बता रू के जन टाइम पार्षद नहीं तो वन नहीं बनियो। वन टाइम आज थी 20 साल पहला अन गांधीनगर स्थिति बड़ी खराब थी, ना तो अटे पानी थी, कोई पाइपलाइन थी, ना सड़क थी, ना कटाई कोई रोड बनिया था। लेकिन गांधीनगर ने हमेशा शहर वाला जितना ही नेता था वे अणती गणना करता था कि ये हमेशा अणता ही भी रहे, तो हम तो जदि तदि मोरे मोरे जरूरत पड़ी अन लोग रे तो अणोरे मौ कौम लेता रहो। वन टाइम मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन की दो कि एक विधानसभा चुनाव आया, वन टाइम अन क्षेत्र में विधानसभा बहिष्कार रो बीड़ा उठायो और मन में मैं सक्सेस भी हुआ। वन बात रे लिए आवाबाद थे दिल्ली और जयपुर तक गई, अन गांधीनगर की पहचान हुई, अन एमपी एमएलए जितना ही था उन्होंने ठा पड़ियो कि अटे कोई गांधीनगर भी एरियो है। वन ने बाद में अटाया जितना भी एमएलए और एमपी जीते ना आया वे अटे अपना फंड दी दो जन में अटारे रोड बनी, नालियां बनी, हेडपम्प खुदाया ने पानी रिपोर्ट लाइन भी बिछाई। बनने बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो है सफाई री। तो वन टाइम भी मैं एक गांधीनगर बनाम गंदा नगर रो मेन चौराहे माते एक बोर्ड लगायो जिनने जिला कलेक्टर ने हैंग ठा पड़ियो, पूरा प्रशासन गांधीनगर में आयो ने बनने बाद पूरे शहर री ने बंदे क्षेत्र री हैंगो री सफाई की दी। मैं जब जब भी जरूरत मने पड़े वन टाइम मु अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट भी जाऊँ और प्रशासन के खिलाफ।
2: चलो अच्छी बात है, मतलब आप एक जो बीड़ो उठाए तो गांधीनगर ने स्वच्छ बना रहो, तो आप स्वच्छ बना रिया।
3: हाँ वो बात सही है बिल्कुल कि मैं पूटा पड़ी हूँ प्रशासन रहे तो पूटा नहीं, पूटा छोड़ी ही नहीं मैं
2: जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमें चलो आप रे समाज रे बारे में बात करूँ कि आपने समाज आप रोई परगनारा अध्यक्ष बनाया है, तो आप समाज रे वास्ते हमें जागरूकता ला वास्ते कुरूतियों ने कम करा वास्ते का कार्यक्रम आयोजित करो रिया में।
3: अगर बस आज थी 1.5 साल पहले मैं एक परिचय सम्मेलन मार समाज रो की दू तो वन में हैंग वन बुलाया था, वन में जितना भी मोरे समाज रा बच्चा था जो प्रथम स्थान आया था वनों ने हैंग वन इनाम बांटियो तो, और अन्य अलावा भी जितना भी बच्चा है वनों ने प्रेरित करो कि जो कमजोर तबको रहो वे वन ने पाड़े जाओ, वन ने जो भी पिया थी मदद करनी वे पढ़ाई थी मदद करनी है, कोई ट्यूशन कराना है तो वन में हमेशा आगे रहो आगे रहो।
2: ठीक है, मतलब आप कहना है कि बच्चों ने पढ़ाई वास्ते जागरूक करवा वास्ते आप प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मेलन की दो तो उन्होंने सम्मानित किया, बच्चों ने प्रेरित किया भाई कि आप भी बने तो आपने कुछ मिलेला।
3: हाँ, सबसे पहले हमारे समाज में आबरूर में मैं से एक प्रोग्राम वो किए तो जब मैं कम से कम 4-5 हज़ार लोग बारे थी भी आया,
2: मतलब बारे थी मतलब आपने कतरा रोई जो परगनो है अंड में कतरा गोम लागे
3: और 15 गोम लागे ठेठ हीरोई तक मैं बालदा गांव में वटा तक मारो गोम लागे वटा थी और बाहर थी भी आया मारवाड़ थी भी लोगों ठापड़ी अखबार में आयो के बटे अण तेरे रो अपने समाज रो एक सम्मेलन वेरियो है जड़ में अण कुरुति ने दूर करनी है न लोग अच्छा बने अच्छी शिक्षा पावे अच्छी तालीम लेवे वन वास्ते वो सम्मेलन की दो तो वन में मैं सक्सेस हुआ।
2: अब एक बे महीना पहला मु हुनियो तो रेलवे इंस्टीट्यूट कोई जो रेलवे सामुदायिक भवन है वन में आप समाज रो फिर सम्मेलन वो प्रतिभावान छात्र छात्रा रो सम्मान वास्ते
3: वो मोरे समाज में एक युद्ध प्रोत्साहन कमेटी है सोरोरी नैनका सोरा है वन द्वारा ऑर्गेनाइज किए तो अने वन में पूरे राजस्थान गुजरात रा जितना भी लोग आया था वन हेंगन बुलाया था और अन बस में 10वीं से 11वीं 12वीं तक जनोरी भी 60% से ज़्यादा नंबर आया था वनोरी लिस्ट बनाई थी और वन जो नाम लिखाया तो वन हेंगन बोला ने सम्मानित की तो सम्मानित करना थी जो प्रतिभावान बच्चा था वन में उसलो आयो के मारो सम्मान वेरियो है
2: तो उन्होंने देखे बीजा भी ही के
3: अने हारू इसकी दो तो के अन्ने पुटे उद्देश्य मारो यही था के वनों देखे बीजा जो लोग है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे और समाज रो नाम रोशन करे।
2: बहुत अच्छी बात है। चलो आप बताया कि बच्चों ने आगे लाने वास्ते तो आप शिक्षा क्षेत्र में एक प्रयास की दो हमें गणित को बाल विवाह भी वे दहेज प्रथा रो भी एक मुख्य समाज में एक कुरीति है तो अन्य बारे में आप समाज का करे रही है।
3: मोरे समाज में दहेज प्रथा वालू पूर्ण प्रतिबंध है वन्य बाद में भी अगर कोई छुपे नहीं कोई दहेज प्रथा करे तो उन्होंने हम घरे जाए कहो कि भाई थोड़े यूँ करवाती समाज में संदेश गलत जाइला तो काफ़ी लोग तो सुधरिया है ने काफ़ी लोग समूह लगन रे लिए भी तैयार हुए।
2: समूह लगन तो एक बहुत अच्छी चीज़ है मतलब अगर मैं गरीब अमीर सब निभे पड़ा।
3: हाँ वन्य आरू हूँ मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े लेवल पे मैं करवा जा रही हूँ कि मन में हो रही हूँ कि हेंगन साथ ही लेन एक बड़ो समाज रो एक सम्मेलन करो
2: जिला स्तर माते करवा चाह रही
3: हूँ। हाँ जिला स्तर माते करवा चाह रही हूँ और मैंने मैं अगर गर्मी में कोई अच्छा नॉम आया तो कलेक्टर थी जिला कलेक्टर प्रशासन थी बात करे और दान दादा जितना भी मोटा मोटा मोरा समाज में बारे रे आनंद रहे अहमदाबाद रहे हेंगन बुलावे ने वनों की बात करे वो पूरी व्यवस्था करनी है सोचियो मारो प्लान है।
2: मतलब आप इस कहना के भविष्य में अपने आप रे में जो दहेज प्रथा रे बारे में जो एक आदमी एक गरीब आदमी कड़े दहेज लावे तो आप एक सामूहिक लगन करो तो वन में कम से कम वो मतलब आज जो कुरुति है आ देखवा नहीं आवेला क्योंकि एक लिमिटेड जो कमेटी तय करेला वो इस देनो अन्नला बच्ची ने विदा करनी तो अनमें गरीब रे भी है अमीर रे भी है तो आप अच्छा प्रयास है और मुँह चाहूँगा आप जरूर सफल हो लवन में। औरता बंधुओं हमें अपने जितेंद्र परियार जी थी और बात करें एक छोटो सो ब्रेक लो ब्रेक के बाद में फिर आप अनोर समाज के बारे में या अनोर जो समाज सेवा का कार्यक्रम है काका कीदा वन बारे में पूछे ही हूँ तो मैं आप एक छोटो सो ब्रेक लो आप एक गीत आनंद लो और गीत के बाद में फिर आप बारे में जानकारी ले हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई कल मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब झूले झूले। हमने अपने गांव के पेड़ पर रस्सी बांध के एक झूला बनाया हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हम सब ने सोचा कि अगर ये पेड़ ना होता तो हमें मीठे मीठे फल कौन देता, ठंडी ठंडी छाया कहाँ से मिलती और हम सब झूला कहाँ झूलते, है ना। चलो अब हम चलते हैं अपनी प्यारी मीना से मिलने। मीना मीना वो रही अपने स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रही है।
1: सुमी, रानो, कृष्णा, अब तुम सब भागो और मैं तुम्हें पकड़ूंगी। ये मैं आई
2: नहीं पकड़ सकती और तेज मीना और तेज पकड़ ही नहीं पा रही।
1: अरे सुमी ध्यान से,
3: क्या हुआ मीना?
1: वो देखो अपने पैरों के पास, ये हाँ, ये क्या है?
4: ये तो किसी पक्षी का घोंसला लगता है।
1: अरे हाँ, अच्छा हुआ मीना जो तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं इस घोंसले पे पैर रख देती।
3: लेकिन ये घोंसला यहाँ आया कैसे?
1: रानू मुझे लगता है ये घोंसला इसी नीम के पेड़ से नीचे गिरा है।
3: तुम ठीक कह रही हो मीना, ये घोंसला इसी पेड़ पर था।
5: क्या हुआ बच्चों?
1: ये देखिए बहन जी, ये घोंसला।
5: अरे ये गिर कैसे गया?
1: हम सब भी वही सोच रहे थे बहन जी।
5: मीना तुम्हें तो पेड़ पर चढ़ना आता है ना?
1: जी बहन जी।
5: तो तुम जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ो और इस घोंसले को ऊपर किसी टहनी पे रख दो।
1: जी बहन जी, अभी रखती हूँ।
0: मीना बहुत सावधानी से पेड़ पर चढ़ी और उसने उस घोंसले को सबसे ऊंची टहनी पर रख दिया और पेड़ से नीचे उतरकर मीना ने बहन जी से कहा,
1: बहन जी जरा ध्यान से देखिए हमारे पेड़ की टहनियाँ कितनी कम हो गई है।
3: हाँ बहन जी, मीना ठीक कह रही है, पहले तो इस पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ थी।
1: यहाँ देखिए बहन जी, कितनी सारी टहनियाँ और पत्तियाँ नीचे गिरी हुई है।
5: बच्चों लगता है कोई हमारे पेड़ की टहनियाँ काटता है जिसकी वजह से ये घोंसला भी नीचे गिर गया होगा।
1: अब हम क्या करें बहन जी, ऐसे तो हमारी पेड़ की सारी टहनियाँ खत्म हो जाएंगी। सुमी ठीक कह रही है बहन जी, और अगर ऐसा हो गया तो हमें छाया कौन देगा?
3: हाँ मीना, और पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे?
5: तुम क्या सोच रहे हो कृष्णा?
4: बहन जी कुछ दिन पहले मैंने रमेश चाचा को लकड़ियाँ ले जाते हुए देखा था।
5: रमेश चाचा?
4: जी वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं रमेश चाचा। वो उस दिन हमारे स्कूल की तरफ से ही आ रहे थे, कह रहे थे कि सर्दियाँ आने वाली है ना, इसलिए जलाने के लिए लकड़ियाँ ले जा रहा हूँ।
1: बहन जी क्यों ना हम सब पूरे गांव में जाके सबको बताएं कि अगर उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो वो जंगल में जाके नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ ले आएं।
3: हाँ सुमी, ऐसे हमारा प्यारा पेड़ भी बच जाएगा।
1: कृष्णा जब तुमने रमेश चाचा को लकड़ियाँ ले जाते हुए देखा तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं?
6: रोका क्यों नहीं, उन्हें टोका क्यों नहीं?
4: मीना वो मैं।
5: कृष्णा तुम ये बात मुझे भी तो बता सकते थे, है ना?
4: बहन जी मैंने रमेश चाचा को समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो बोले कि
7: कृष्णा बेटे अब मैं बहुत बूढ़ा हूँ और दूर जंगल में जाकर लकड़ियाँ नहीं ला सकता।
1: तुमने उनसे ये नहीं कहा कि हम सब इसी पेड़ की छाया में खेलते हैं?
4: कहा था रानो, लेकिन उन्होंने कहा
7: तुम लोग तो क्लास में जाकर भी खेल सकते हो, मैं अकेला बूढ़ा आदमी अब भला लकड़ियाँ लेने और कहाँ जाऊँ?
4: अब आप ही बताइए बहन जी, मैं क्या करता?
1: बहन जी अब हम क्या करें?
5: सुमी तुम सब उदास मत हो, हम सबको मिलके इस समस्या का कोई हल ढूंढना पड़ेगा, कोई अनोखा हल।
8: अनोखा हल?
5: हाँ अनोखा हल, यानी कुछ अलग, कुछ हटके। याद है एक बार जब तुम सबने पुराने चार्ट के कागजों से अपनी फटी कॉपी किताबों के कवर बनाए थे?
4: हाँ बहन जी याद है।
5: इस समस्या को हल करने के लिए भी हमें वैसे ही सोचना पड़ेगा, कुछ अलग ढंग से।
1: लेकिन बहन जी हमारी ये समस्या तो बहुत बड़ी है।
6: बहुत बड़ी है, टहनियाँ टूटी पड़ी हैं।
5: रानो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसे सोच समझ के हल किया जा सकता है। चलो एक काम करते हैं, तुम सब अपनी अपनी आँखें बंद करके अपने इस हरे भरे पेड़ और गांव के बारे में कल्पना करो, मतलब उसके बारे में सोचो, फिर तुम सब मुझे बताना कि तुम्हें अपनी कल्पना में क्या दिखा, ठीक है?
8: जी बहन जी।
0: मीना, रानो, सुमी और कृष्णा अपनी अपनी आंखें बंद करके पेड़ और गांव के बारे में कल्पना करने लगे। और जब थोड़ी देर के बाद सबने अपनी आंखें खोली।
5: रानो, सबसे पहले तुम बताओ, तुमने अपनी कल्पना में क्या देखा?
1: बहन जी, मैंने देखा कि हमारे इस पेड़ के आसपास एक बाढ़ है। बहन जी, अगर सच में इस पेड़ के आसपास एक बाढ़ हो तो कोई इस पे नहीं चढ़ पाएगा।
6: नहीं चढ़ पाएगा, पेड़ बच जाएगा।
4: रानू, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन बाढ़ बनाने में तो बहुत समय लगेगा।
1: कृष्णा, अगर बाढ़ लग गई तो फिर हम सब भी इस पेड़ के नीचे नहीं बैठ पाएंगे।
4: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
5: मीना, अब तुम बताओ, तुमने अपनी कल्पना में क्या देखा?
1: बहन जी, मैंने देखा कि एक चौकीदार दिन रात इस पेड़ की रखवाली कर रहा है और सबको इसकी टहनियाँ तोड़ने से रोक रहा है।
5: मीना, लेकिन कोई दिन रात तो इस पेड़ की रखवाली कर नहीं सकता, है ना?
1: आप ठीक कह रही हैं बहन जी।
5: तुमने क्या देखा सुमी?
1: बहन जी, मैंने देखा कि हमारे स्कूल में दो पेड़ हैं, एक हम सबके लिए और दूसरा गांव वालों के लिए। सुमी, दूसरा पेड़ उगने में तो बहुत समय लगेगा और तब तक तो अपना ये पेड़ खत्म हो जाएगा।
5: तुमने क्या देखा कृष्णा?
4: बहन जी, मैंने देखा कि अपने स्कूल का पेड़ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी टहनियाँ कभी खत्म ही नहीं हो सकती।
1: लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता कृष्णा।
4: हाँ मीना, मैं तो सिर्फ ऐसे पेड़ की कल्पना कर रहा था।
1: काश हमारे गांव में कोई ऐसा होता जो कि गांव के बड़े बूढ़ों को आग जलाने के लिए लकड़ियां लाके दे सकता।
6: वाह सुमी, क्या बात कही है।
1: बहन जी, क्यों ना हम सब बच्चे हफ्ते के किसी एक दिन जंगल के पेड़ों से गिरी हुई टहनियां इकट्ठी करके उन गांव वालों को दे दे जो जंगल में जाके लकड़ियां नहीं ले सकते।
4: हाँ मीना, ऐसे उन लोगों को आग जलाने के लिए लकड़ियां भी मिल जाएंगी और हमारा पेड़ भी बच जाएगा।
5: देखा, मिल गया ना समस्या का अनोखा हल। लेकिन ये काम तुम सब करोगे कैसे?
4: बहन जी, हम सब रोज शाम को जंगल के पास खेलने जाते हैं। हम हर रोज वहाँ के पेड़ों से गिरी हुई टहनियाँ इकट्ठी करके रविवार के दिन गांव वालों को दे देंगे।
1: कृष्णा ठीक कह रहा है बहन जी, हम सब ये काम बारी बारी से किया करेंगे।
5: शाबाश रानो। बच्चों, समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें अलग सोच से उसका हल ढूंढना चाहिए। मतलब उस समस्या को अलग अलग तरह से देखना चाहिए और फिर उसके हल के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचना चाहिए।
6: सोचना चाहिए, बस दिमाग लगाइए।
0: क्यों दोस्तों, मजा आया ना अपनी चतुर और चपल मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिठू की नई कविता।
1: चाहे कैसी भी हो मुश्किल, बिल्कुल मत घबराओ,
6: नए ढंग से उसको देखो, चुटकी में सुलझाओ।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिठू ने, मजा आ गया। चलो अब अपने इस मजे को और मजेदार बनाते हैं एक बढ़िया सा गाना सुन के।

0: गाना तो सचमुच मजेदार था, है ना? फिर ठीक है, अब कहाँ चलना है सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़
2: पहेली जोड़।
1: हाँ मैं तुम्हें तीन कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें पूछना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। नहीं है मेरा गला, मैं फिर भी दिन भर गाने गाऊं।
3: कोयल।
1: वो कैसे मोनू?
3: क्योंकि कोयल दिन भर गाना गाती है, कू कू कू।
1: अच्छा और क्या कोयल का गला नहीं होता? भूल गए? नहीं है मेरा गला, मैं फिर भी दिन भर गाने गाऊं।
4: पूरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है कृष्णा। बच्चों सुनो पूरी कड़ी। नहीं है मेरा गला, मैं फिर भी दिन भर गाने गाऊं, गाने गाऊं बीच बीच में खबरें भी बतलाऊं।
3: मैं समझ गया बहन जी, सही जवाब है डाकिया चाचा।
1: वो कैसे दीपू?
3: क्योंकि डाकिया चाचा लोगों को चिट्ठी पढ़ के खबरें सुनाते हैं।
1: और क्या डाकिया चाचा दिन भर गाने भी गाते हैं?
3: ये तो मैं भूल ही गया था।
1: बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। वैसे तो मैं बोल बोल के सबका दिल बहलाऊं, लेकिन सेल्जो खत्म हुए तो फिर मैं चुप हो जाऊं।
5: हाँ? ये हो सकता है?
6: चुप से चलने वाली चीज ये क्या हो सकती है?
1: फिर से सुनो। नहीं है मेरा गला, मैं फिर भी दिन भर गाने गाऊं, गाने गाऊं बीच बीच में खबरें भी बतलाऊं। वैसे तो मैं बोल बोल के सबका दिल बहलाऊं, लेकिन सेल जो खत्म हुए तो फिर मैं चुप हो जाऊं।
6: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है रेडियो।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी विद लेसन नंबर 8, विच इज अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ नेशन। द नेम ऑफ द बुक इज गोल्डन रेज फॉर क्लास 10th, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। And we are studying question answers and grammar portions of the book these days. So, welcome you again in this class. So, प्यारे बच्चों, मैं संदीप त्रिवेदी। आज आठवां लेसन जो है हमारा गोल्डन रेज बुक का, उसका नाम है अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, प्रार्थना पर व्याख्यान। उसका क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर पोर्शन, जो कुछ भी हम आज कवर कर पाएंगे वो सब लेकर के आपके सामने आया हूँ। बहुत छोटा सा लेसन था लेकिन बड़ा ही सीरियस लेसन है ये, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका कि इस साल तो कोर्स चेंज नहीं हुआ है 10th का, अगले साल लेकिन होगा, सो कीप इन माइंड। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। आज एक्टिविटी 1 में हम थोड़ा सा आपको एक लेसन का सेंट्रल आइडिया मिल जाए, थोड़ा सा लेसन याद आ जाए, इसलिए हम जो ए पार्ट है इसका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन सिर्फ आप थोड़ा सा वापस रिकॉल कर लें, इसलिए मैं इससे शुरू करता हूं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द लेसन इज अबाउट। अब आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से देखना है कौन सा आप सही कर पाते हैं। फर्स्ट है द नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, सेकेंड है द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, थर्ड है द नीड फॉर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। चौथे में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। पहले ऑप्शन में कहा गया है धर्म की आवश्यकता, दूसरे में कहा गया प्रार्थना की आवश्यकता, तीसरे में कहा गया है शारीरिक जरूरतें, शारीरिक आवश्यकताएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लेसन हमारा, इसका नाम से ही स्पष्ट है, द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। डी ऑप्शन इसका राइट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन अ बेटर प्रेयर अकॉर्डिंग टू गांधी जी, one should have a heart without words, words without a heart, neither words nor heart, both words and heart। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक हृदय बिना शब्दों के ही, a heart without words, यही इसका right option है। okay, third question, which is the last one, which according to Gandhi ji is the greatest प्रेयर फॉर ह्यूमन बींग्स, सबसे महान प्रार्थना कौन सी है, मेडिटेशन, वर्शिपिंग गॉड, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, तीसरा ऑप्शन। ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, लोगों की, इंसानियत की, मानवता की सेवा, यही मानवता की सेवा, यही जो है वो राइट ऑप्शन है। डी में है वेदर ट्रू और फॉल्स, इसको हम छोड़ देते हैं, सच या झूठ। अब सीधा सी पर आ जाते हैं। ओके, और यही हमारी मेन एक्सरसाइज है, मेन हमारा क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, ओके ईच। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा ये जो व्याख्यान है वो कहां दिया गया। WH से शुरू है तो वेयर और वाज दोनों हटा देंगे हम। अभी हम आंसर बताते हैं आपको कैसे ये आंसर होगा, लेकिन अब लेक्चर डिलीवर्ड हमें देखना है कि ये वाली बात हमें कहां मिलेगी। ओके, देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको टेक्स्ट में से ही पूछा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कहाँ पर, याद कीजिए, अबाउट द टेक्स्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट अबाउट द टेक्स्ट में देख रहा हूँ मैं, इज फ्रॉम गांधीजीज लेक्चर ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर विच ही डिलीवर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करेंगे। वेयर वॉज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाय गांधीजी, तो ए पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, दिस लेक्चर वॉज डिलीवर्ड बाय गांधीजी, दिस लेक्चर वॉज डिलीवर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम बाय गांधीजी, ये राइट आंसर हो गया। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, हु कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर, हु कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में हु कॉन्स्टिट्यूटेड, अब इसका आंसर हम देखते हैं जरा, ये भी हमें कहीं ना कहीं यही मिलना चाहिए अबाउट द टेक्स्ट में। मेरे ख्याल से वैसे थोड़ा कुछ मिसप्रिंट भी लग रहा है मुझे यहाँ, लेकिन स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर आंसर हो सकता है, देखना पड़ेगा इसको, हम चेक करेंगे एक बार। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन इज नेसेसिटी फॉर प्रेयर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधीजीज ओपिनियन, व्हाई शुड, डब्ल्यू एस ए शुरू है, प्रेयर बी, तो प्रेयर शुड बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधीजीज ओपिनियन बिकॉज, व्हाई का आंसर बिकॉज से आएगा। देखिए अब एसेंस की बात कहां पर आई है, हम वहां देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में ही, एसेंस ऑफ रिलीजन एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द, ओके, द मीनिंग ऑफ एंड नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स, आई बिलीव्ड दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी core of the life of man, for no man can live without religion. Okay, ठीक है, ये मिल गया आपको आंसर फोर्थ क्वेश्चन का, because no one can live without religion, prayer should be the essence of human life in Gandhiji's opinion. बिकॉज प्रेयर इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, ये इसका आंसर होगा, प्रेयर इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर डस गांधी जी डिस्क्राइब इन दिस लेक्चर, तो व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स डस गांधी जी डिस्क्राइब्स, ठीक है, यहां से हम इसको आंसर को शुरू करेंगे और टाइप्स ऑफ प्रेयर्स को देख लेते हैं कहां पे लिखा है उन्होंने, आइदर पेटिशनल और वाइडर सेंस और कम्युनियन, पेटिशनल एंड कम्युनियन। ओके, गांधी जी डिस्क्राइब्स पेटिशनल और कम्युनियल टाइप्स ऑफ प्रेयर इन दिस लेक्चर। सिक्स्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस तरह से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू थिंक दैट प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, यस वी थिंक दैट प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, ये इसका आंसर हो जाएगा, यस लगाना है आपको। सेवन्थ, व्हाट शुड बी द मिशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, ओके ये देखते हैं हम, सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, यही है इसका आंसर. द मिशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन लाइफ शुड बी सर्विस ऑफ फेलो मैन. अब डी में आ जाते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच. हाउ डज, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रेयर प्योरीफाई वन सोल. प्योरीफाई वाला वर्ड पकड़ लीजिए आप, आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी सेज. देखिए, केवल क्वेश्चन आंसर्स रटने का नाम नहीं है, है ना स्टूडेंट्स, आपको आना भी चाहिए कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट. गांधी जी सेज इट इज बेटर इन प्रेयर टू नेव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट. एक्सप्लेन, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो देखे उसमें भी था ये. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधी जीज स्टेटमेंट रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड. एक्टिविटी सेकेंड आ गई है, वोकैबुलरी. और तो इसमें ए में है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स ऑफ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी एंड ऑल्सो यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल बिलो. पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें जो ए में वर्ड्स हैं उनको बी से मैच करना है और उनका सेंटेंस भी बनाना है. देखिए, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है, स्पीच, व्याख्यान. गांधी जी गेव अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर टू द स्टूडेंट्स इन साबरमती आश्रम. आपके क्वेश्चन का आंसर भी है इसी में, एग्जांपल में. उसके बाद में वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको आपको मैच करना है और सेंटेंस बनाना है. चार वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे. ओके, चलिए, चार नहीं है, सिक्स वर्ड्स हैं इसमें, छह हैं टोटल. ओके, बी में आ जाइए, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ये ग्लॉसरी में मिल जाएंगे. जैसे वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसका क्या कर सकते हैं. ओके, सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. यहाँ पे हर क्वेश्चन में कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, उनको आपको ठीक से करना है. अब आ जाते हैं एक्टिविटी थ्री पर, जो कि है हमारी सबसे मेन एक्टिविटी, ग्रामर पोर्शन. और यहां पे टॉपिक इस बार शुरू हो रहा है हमारा क्लॉजेस का. इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण में क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर ऑफन मिस्टेकन. अक्सर लोग क्लॉजेस और फ्रेजेस में गलती कर देते हैं. There are three types of clauses. तीन प्रकार के clause होते हैं, noun clause, adjective clause और adverb clause. ठीक है, तीन प्रकार के clause होते हैं. Similarly, इसी प्रकार there are three types of phrases. और तीन ही प्रकार के phrases भी होते हैं, noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. काफी same है, मिलता जुलता है. While phrases are only groups of words. फ्रेजेस जो होते हैं केवल शब्दों के समूह होते हैं, सेपरेटली स्टैंडिंग फॉर नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब. जो कि नाउन यानी संज्ञा भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण भी हो सकते हैं और एडवर्ब क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं. क्लॉजेस हैव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, लेकिन क्लॉज में थोड़ा सा व्याकरण का अंश भी होता है, ऑफ देयर ओन, हैविंग सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स. उनमें सब्जेक्ट यानी कर्ता भी हो सकता है, प्रेडिकेट्स यानी उसकी व्याख्या भी हो सकता है, गिविंग अ लुक ऑफ सेपरेट सेंटेंसेस. देखिए जरा नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, दो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बट दे आर ओनली पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. हाँ, जो क्लॉजेज हैं वो वाक्य तो नहीं होते लेकिन वाक्यों के अंश जरूर होते हैं. फ्रेजेस do not have units like subjects and predicates. और phrases में subject और predicate नहीं होता है. नोट बिलो हाउ द वर्ड्स इन इटैलिक्स शोइंग डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेस एंड फ्रेजेस. नीचे आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस में डिफरेंस नजर आ जाएगा. वी होप टू विन द मैच, नाउन फ्रेज ये है, टू विन द मैच. अब इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, केवल शब्द समूह है ये, तो ये फ्रेज हो गया नाउन फ्रेज. वी होप दैट वी शैल विन द मैच. अब दैट वी शैल विन द मैच ये नाउन क्लॉज हो गया. द टाइगर विद वाइट स्ट्राइप्स इज फ्रॉम अफ्रीका, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, विद वाइट स्ट्राइप. और द टाइगर विच हैज वाइट स्ट्राइप्स इज फ्रॉम अफ्रीका. अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, विच हैज ग्रामेटिकल पोर्शन भी आ गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया ये. दे अराइव्ड एट नाइट, एट नाइट ये एडवर्ब क्लोज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया सॉरी. दे अराइव्ड व्हेन द नाइट फेल, अब व्हेन द नाइट फेल ये एडवर्ब क्लॉज हो गया. तो ये इस तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है. इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एज डायरेक्टेड. अब जैसा इसमें बताया गया उस हिसाब से हमें इसको ठीक करना है. ही बिलीव्स टू, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, द एग्जामिनेशन, नाउन फ्रेजेस. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, ही बिलीव्स टू ब्लैंक द एग्जामिनेशन. आई थिंक अब इसमें नाउन फ्रेज भरना है तो टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है. अब दूसरे वाले में देखिए नाउन क्लॉज है, अब आपको यहां से समझना पड़ेगा. फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने टू पास द एग्जामिनेशन, अब ये एक तरह से आपका फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, एग्जामिनेशन. अब दूसरे वाले में ही बिलीव्स दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन, तो ही वुड पास द एग्जामिनेशन, ये नाउन क्लॉज हो गया. ओके तो इस तरीके से इनको हम लोग करते हैं. सो अभी तो क्लॉजेस शुरू हुए हैं, लेकिन काफ़ी आगे तक हमें क्लॉजेस पढ़ने हैं. और ये हमारा जो एट्थ लेसन था, जो कि बहुत छोटा सा लेसन था, वो आज हमने कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट लेसन आएगा अ मैन्स ट्रू सन, ये कल हम करेंगे. और आप लोग पूछिए कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो, आप क्वेश्चंस कीजिए और ईमेल भी कर सकते हैं. आप लोगों को अपनी क्वेरीज रखनी चाहिए, ताकि तभी हम वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें और क्या करना है आगे आपके लिए. और इसके अलावा भी आप लोग और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश ग्रामर के और पोर्शंस पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं आगे, और क्या क्या आप समझना चाहते हैं, तो ये सब बताइएगा, ताकि हम लोग उसके अनुसार अकॉर्डिंगली लेसन प्लान कर सकें. तो बच्चों बहुत मेहनत कीजिए, पढ़िए खूब, और ये जो समय है अभी विद्यालय वगैरह सब बंद हैं, उसका बहुत अच्छा यूज़ कीजिए. आप लोग कुछ ना कुछ स्किल्स सीखिए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, ताकि कभी भी दिक्कत नहीं आए लाइफ में. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: बाय बाय पंकज।
1: क्यों भाई, तू कहाँ जा रहा है?
0: भाई मैं गांव जा रहा हूँ यार।
1: और मुझे छोड़ के? मैं यहाँ किसके साथ रहूंगा? मैं तुझे कितना मिस करूंगा यार, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा?
0: तो मैं भी करूंगा बहुत तुझे मिस, पर यार नाना से मिले मुझे 6 साल हो गए।
1: अच्छा, नाना से मिले 6 साल हो गए, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना।
0: हाँ तू भी अपना ध्यान रखना।
2: अरे पंकज तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना।
1: हाँ दीदी वो तो है, लेकिन मेरे भाई की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता।
2: बिल्कुल, लेकिन सैंडी अपने नाना से मिलने जा रहे हैं, वो भी 6 साल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी।
0: हाँ दीदी,
2: क्योंकि नाना नानी दादा दादी ये सब जो होते हैं, ये हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, है कि नहीं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
2: तो चलो आज हम सब अपनी फैमिली के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है?
0: ओके,
2: ठीक है। पहले आकाश तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
4: मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मम्मी, डैडी, दादा और दादी। पहले बुआ भी थी, लेकिन अभी उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो अब हमारे साथ नहीं है।
2: और दादा दादी मम्मी पापा के बारे में हमें कुछ बताओगे? नहीं।
4: हाँ बताऊंगा ना। मेरे पापा मॉडल इंसुलेटर में सर्विस कर, मेरे दादा यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, और मेरी मम्मी और दादी दोनों हाउसवाइफ हैं।
2: अरे वाह, और हाउसवाइफ होम मेकर्स हो रहे हैं, जो कि पूरे घर को चलाने का जॉब बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं।
0: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी,
2: है ना। और भुवना तुम्हारे घर में कौन कौन है?
5: 5 लोग।
2: 5 लोग कौन कौन?
5: मेरे घर में माँ, पापा, दादी, दादा और मैं।
2: दादी, दादा, मम्मी, पापा और आप हो?
5: हाँ।
2: अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
5: मेरे मम्मी पापा।
2: मम्मी पापा दोनों? और दादा दादी?
5: भी पसंद है।
2: मतलब कि पूरी फैमिली ही भुवना की फेवरेट है।
5: हाँ,
2: है ना
5: दीदी, मेरी दादी और बुआ रहते थे, एक शादी हो गई चली गई, वो भी ओमान, दो शादी हो गई चली गई अमेरिका, तीसरी बुआ मेरी शांतिवन में रहती है।
2: अरे वाह, मतलब आपके पास तो घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी ओमान, कभी अमेरिका और कभी राजस्थान, जहाँ पे आप अभी हो।
5: हाँ दीदी।
2: है ना, देखा फैमिली होने के कितने फायदे होते हैं।
0: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
2: और सैंडी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
0: मेरे फैमिली में 4 लोग हैं।
2: 4 लोग कौन कौन?
0: मैं, पापा, मम्मी और भैया।
2: अच्छा, तो और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें और बताओ।
0: मम्मी हाउस वाइफ है, भैया शांतिवन में सेवा देते हैं, और पापा मॉडल इंसुलेटर में।
2: अरे वाह, और भुवना तुमने तो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताया ही नहीं।
5: मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, HSBC में काम करती है, और मेरे पापा लॉयर है, और मेरे पापा स्टील कंपनी में सीनियर मैनेजर है।
2: अरे वाह, और पंकज अपनी फैमिली के बारे में हमें बताओ।
1: दीदी मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, मैं, पापा, मम्मी और 2 मेरी सिस्टर है।
2: अच्छा, तो आपकी सिस्टर्स क्या करते हैं?
1: मेरी दोनों सिस्टर्स मैरिड है, मुझसे बड़ी हैं।
2: और वो राजस्थान में ही रहते हैं?
1: नहीं दीदी, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में रहती है और बड़ी सिस्टर पुणे में रहती है।
2: अरे वाह, ये तो दोनों ही बहुत अच्छी जगह है।
1: हाँ दीदी।
2: और आपके पापा क्या करते हैं?
1: मेरे पापा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है।
2: अच्छा, और आपके घर में आपका सबसे फेवरेट कौन है?
1: मेरा सबसे फेवरेट है मेरी मम्मी और मेरी छोटी दीदी।
2: ये मम्मी, और मम्मी आपकी फेवरेट क्यों है पंकज?
1: क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: हाँ, अब भाई बेटे तो मम्मी के लाडले होते हैं।
1: हाँ दीदी।
2: है ना, और सैंडी आपकी फेवरेट कौन है?
0: दोनों जने,
2: मम्मी और पापा।
0: हाँ।
2: और आकाश?
4: हाँ?
2: आपका फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
4: मेरे फेवरेट फैमिली मेंबर सारे हैं।
2: सबके सब? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भुवना का तो फेवरेट मम्मी और पापा है, और दादा और दादी भी है।
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ भुवना, जब तुम्हारा मूड खराब होता है या किसी बात पे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले किसके पास जाती हो? मान लो स्कूल में कोई बात हुई और आपका मूड खराब हो गया, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले किसको जाके बताते हो?
5: पापा।
2: पापा को? और फिर पापा क्या कहते हैं आपसे?
5: मम्मी को कहने के लिए।
2: तो फिर मम्मी से क्या बात करते हो आप?
5: मम्मी मुझे कंसोल करती है और मुझे सपोर्ट देती है और सजेशन देती है।
2: मम्मी आपको सजेशन देती है कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और आकाश जब आपका मूड अच्छा नहीं होता या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, तो घर में किसके पास जाते हो?
4: दीदी मैं किसी से के पास नहीं जाती।
2: किसी को बताते नहीं हो घर पे?
4: और अगर मुझे पता है कि अगर जैसे आज मेरे इस फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, दूसरे दिन वो वापस मेरा फ्रेंड बन जाएगा।
2: बात तो बिल्कुल सही है,
4: इसलिए बता के क्यों झगड़े मोल देना।
2: अच्छा मान लो आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले घर में किसको बताओगे?
4: मम्मी को।
2: मम्मी को? और मम्मी को क्यों?
4: क्योंकि मम्मी को अगर बताऊंगा ना तो मम्मी अच्छे सजेशन देगी, उस प्रॉब्लम को हल करने की नुस्खे बताएगी।
2: मम्मी अच्छे सजेशन देती है सभी को।
5: हाँ दीदी।
2: और पंकज, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको शेयर करनी होती है, तो घर में किससे शेयर करते हो?
1: मैं अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं करता।
2: किसी को भी नहीं बताते?
1: नहीं, अगर फैमिली की बात है तो फैमिली से।
2: अच्छा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस होता है?
1: मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करता हूँ।
2: और मम्मी उस सिचुएशन में आपसे क्या बोलती है?
1: वैसे मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं कभी किसी से शेयर करने।
2: आज तक कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी?
1: नहीं, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेता हूँ।
2: खुद सॉल्व कर लेते हो?
1: हाँ दीदी।
2: टेंशन में तो नहीं आते?
1: नहीं, टेंशन में आता हूँ पर फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।
2: मतलब आप टेंशन में आते हो लेकिन सोच समझ के उसका रास्ता निकाल लेते हो?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और सैंडी आप क्या करते हो?
0: मैं मम्मी पापा दोनों से शेयर करता हूँ। जब रात खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी पापा दोनों को साथ में, सब फैमिली साथ में, तो उस टाइम बता देता हूँ।
2: मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रात को आप दोनों से शेयर करते हो?
0: हाँ दीदी।
2: और फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको?
0: फिर वो जो सॉल्यूशन होता है वो मुझे बता देते हैं।
2: अच्छा, अरे वाह। वैसे मम्मी पापा तो दुनिया में एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे और ज़्यादा पहले आए हैं ना।
0: हाँ।
2: तो उनको सब चीज़ें पता होती हैं, हमारी एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्हें पता होती हैं, और उसके क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस हैं वो भी उन्हें पता होते हैं। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो हम सॉल्व ना कर पाए तो हमें तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अच्छा ये बताओ आकाश, कि घर में कोई डांटता है क्या?
4: हाँ।
2: अच्छा, मतलब आप शैतानी करते हो?
4: शैतानी? हाँ करता हूँ।
2: अच्छा, जब शैतानी करते हो या कोई ऐसी बात होती है तो किससे डांट पड़ती है?
4: अगर दोपहर में टैब पे गेम खेलता हूँ तो दादी डांटती है, अगर रात को जल्दी नहीं सोता हूँ तो मम्मी डांटती है, अगर पढ़ाई नहीं करता हूँ तो पापा डांट, और अगर ज्यादा टीवी देखता हूँ तो दादा डांट।
5: एक एक डांट के लिए एक एक लीडर हो गए,
0: बटा हुआ है।
2: अच्छा, क्योंकि अलग अलग शैतानी पे अलग अलग लोगों से डांट पड़ती है, लेकिन वो डांट से कभी आपको बुरा तो नहीं लगता?
4: नहीं नहीं,
0: मजा आता होगा।
4: नहीं, डांट से मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे कोई डांटने वाला तो है, कम से कम कोई तो मेरी केयर करता है। वरना कुछ बच्चों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ही नहीं होते, वो तरसते एक डांट के लिए ताकि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे डांटे। और जैसी ये बात तो सही है कि अगर कोई हमें डांटता इसीलिए है क्योंकि वो हमारी केयर करता है, वो हमारा अच्छा चाहता है इसलिए हमको डांटता है।
2: ये बात तो आकाश आपने बहुत ही अच्छी कही और बहुत ही समझदारी की कि मम्मी पापा या बड़े हमें तभी डांटते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, है ना?
0: हाँ दीदी।
2: इसीलिए उस डांट का बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। भुवना, आपको कभी डांट पड़ती है घर में?
5: बहुत कम पड़ती दीदी, और बहुत ज्यादा दादा डांटते हैं, और जब मम्मी बहुत कम डांटती है फिर भी मुझे कभी रोना नहीं आती, लेकिन मेरे पापा डांटते तो ऐसे ही आंसू नदी जैसे बहते।
2: पापा डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जब पापा डांटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
5: क्योंकि जब पापा डांटते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों की ऐसा, मेरे पापा डांटने तक इतना ऊपर गई मैं, मुझे बुरा लगता है।
2: आपको बुरा लगता है कि आपने ऐसी गलती क्यों की कि पापा ने डांटा?
5: हाँ दीदी।
2: लेकिन कभी हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, डांट पड़ेगी तो हम उसे सुधार सकते हैं, है ना?
5: हाँ,
2: और पापा भी तो इसीलिए डांटते हैं। और पंकज, आपकी डांट पड़ती है घर पे कि नहीं?
1: दीदी डांट तो हमेशा पड़ती रहती है।
2: डांट हमेशा पड़ती रहती है, और घर में कौन डांटता है आपको?
1: मम्मी पापा दोनों।
2: दोनों क्यों डांटते हैं मम्मी पापा?
1: पापा इसलिए डांटते हैं क्योंकि कभी कभी मैं उनकी हेल्प कराने के लिए साइड पे नहीं जाता, और मम्मी इसलिए डांटती है क्योंकि घर पे कोई छोटा मोटा काम होता तो वो मैं नहीं करता।
2: और आप छोटा मोटा काम जो मम्मी बताती है वो क्यों नहीं करते हो?
1: अच्छा नहीं लगता मुझे करना, क्योंकि मैं कभी खेलने चले जाता हूँ और कभी कहीं बिजी होता हूँ, तो इसलिए घर का काम नहीं।
2: लेकिन मम्मी के पास हेल्प कराने के लिए अभी तो और कोई भी नहीं है।
1: हाँ दीदी
2: है ना, तो उनकी मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी।
1: हाँ मुझे पता है, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कभी बुरा भी नहीं मानता।
2: सही बात है भाई, अगर मम्मी को हेल्प चाहिए तो हम बच्चे ही तो हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं और हर वक्त नहीं होते, तो बच्चे ही हैं जो मम्मी लोगों की हमेशा घर पे मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए।
5: मैं मेरी नानी की हेल्प करती हूँ दीदी।
2: अपनी नानी की क्या हेल्प करते हो भुवना?
5: बर्तन अंदर रखना धुलाई के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी रोज मॉर्निंग 8:30 पापा और मम्मी निकलते हैं, रात 8:30 को आते हैं।
2: अच्छा, तो फिर आप अपनी नानी की घर संभालने में मदद करते हो?
5: हाँ दीदी।
2: और सैंडी?
0: मुझे तो मम्मी ज़्यादा डांटती है।
2: मम्मी ज़्यादा डांटती है, क्यों?
0: और मम्मी से तो कभी टाइम पे खाना नहीं खाया, कभी कुछ ही।
2: लेकिन पापा तभी डांटते हैं जब उन्हें लगता है कि भाई लाइफ में कोई बड़ी सी गलती हो रही है, और मम्मी हमारी फिक्र करती है, तो अगर हम खाना नहीं खाते या फिर टाइम से कुछ नहीं करते तो इसलिए डांट पड़ती है मम्मी से।
0: हाँ दीदी।
2: जिसका किसी को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो मुझे ये बताओ भुवना, आपको पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
5: पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसके साथ कैसे बात करना, वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे और समझ भी जाए।
2: अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपको क्या अच्छा लगता है आकाश अपने पापा के बारे में?
4: ये मेरे पापा के बारे में यही अच्छा लगता है कि जब भी किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है ना, तो उससे मेरे को पापा बचा लेते हैं।
2: मतलब पापा एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है।
4: हाँ
2: है ना। और पंकज, आपको अपने पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
1: मुझे मेरे पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वो बहुत ऑनेस्ट है।
2: ऑनेस्ट हैं?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते।
1: हाँ दीदी।
2: ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे तो हम सबको सीखना चाहिए। और सैंडी, आपको?
0: मेरे पापा मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो कभी टेंशन नहीं लेते और फैमिली को टेंशन में आने नहीं देते, खुद सॉल्व कर लेते, मतलब फैमिली को हैप्पी रखते हैं।
1: कूल पापा।
2: मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो पापा सब संभाल लेते हैं।
0: हाँ।
2: और मम्मी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है भुवना?
5: मम्मी बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट
2: मतलब अपना ऑफिस भी संभालती है, घर भी और आपको भी।
5: हाँ दीदी।
2: अरे वाह। और आकाश?
4: मुझे मम्मी के अंदर ये अच्छी क्वालिटी लगती है क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए मम्मी हर मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: मम्मी हर ख्वाहिशें पूरी करती है जो भी वो कर सकती है। और पंकज?
1: मुझे मेरी मम्मी की तो सारी क्वालिटी पसंद है, मेरी मम्मी में हर तरह की क्वालिटी।
2: जैसे
1: खाना बनाना, पापा के लिए नाश्ता बनाना, खुद के लिए अलग से नाश्ता बनाना, और टाइम का मैनेज वो अच्छे से कर लेती है।
2: मम्मी सबके पसंद का खाना भी बनाती है और टाइम मैनेज भी करती है। और सैंडी?
0: मेरी मम्मी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी ना घर का जो बजट बनाती है ना वो सबसे बेस्ट है।
2: मम्मी इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है।
0: हाँ, और मम्मी सुबह सबसे पहले उठना, फिर पापा का नाश्ता बनाना, फिर भैया का, फिर मेरा, फिर खुद का, फिर घर का सब काम करना, इसलिए मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है।
2: सही बात है, मम्मी लोग सुबह से जब काम करना शुरू करते हैं तो शाम तक करते रहते हैं।
0: और सबसे लेट सोना।
2: सबसे लेट सोना। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तुम लोग के घर में सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं?
5: हाँ दीदी।
2: तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी भुवना, ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं बताओ?
5: मेरी ग्रैंड माँ इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मेरी ग्रैंडपा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मुझे, साइंस में बहुत हेल्प करते हैं, जब भी वो मुझे मैथ्स में हेल्प करते हैं मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं।
2: और वो बहुत प्यार से आपको पढ़ाते होंगे है ना?
5: और स्ट्रिक्ट है दीदी वो,
2: थोड़े स्ट्रिक्ट है। आकाश, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
4: मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं, जो मेरी दादी है ना वो हमारे पूरे परिवार में सबसे अच्छे स्वीट्स बना लेती है, और दादा की ये खासियत है कि उनका मैथ्स इतना अच्छा है ना, कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी सामने फेल हो जाएगा लेकिन उनका मैथ आगे रहेगा।
2: अरे वाह क्या बात है। और सैंडी आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
0: वो अभी इस दुनिया में नहीं है।
2: और आपके नाना नानी?
0: नानी नहीं है नाना है।
2: जिनसे आप मिलने जाने वाले हो?
0: हाँ।
2: तो वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
0: क्योंकि नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं।
2: नाना आपको बहुत प्यार करते हैं?
0: हाँ।
2: हमारे जो नाना नानी दादा दादी होते हैं वो हमें अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
5: हाँ दीदी
2: है ना।
0: हाँ दीदी।
2: और पंकज आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते
1: हैं? मेरी नानी है।
2: नानी कहाँ रहती है आपकी?
1: मेरी नानी अपने गाँव में बिहार में रहती है।
2: अच्छा तो नानी से मिलने जब जाते हो तो नानी की कौन सी ऐसी बात है आपको सबसे अच्छी लगती है?
1: मैं जब अपनी नानी से मिलने जाता हूँ और जब वापस लौटता हूँ तो मेरी नानी मुझे अभी भी 10 रुपए देती है।
2: हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी हमें दे सकते हैं जितना भी दे सकते हैं वो हमेशा दिल से देते हैं इसलिए वो 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा मुझे ये बताओ अपनी फैमिली के साथ जब आप लोग टाइम स्पेंड करते हो तो मम्मी के साथ या पापा के साथ बीता हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता है सोच के? कोई भी ऐसा पल याद हो जब आपका रिजल्ट आया हो या फिर घर में कुछ हुआ हो और मम्मी पापा के साथ वो एक मेमोरी बन गया हो?
1: मुझे याद है दीदी।
2: हाँ पंकज बताओ।
1: मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे मम्मी और पापा पहली बार साथ में उन्होंने फोटो क्लिक कराई थी।
2: पहली बार?
1: हाँ दीदी।
2: अरे वाह और आपका बर्थडे तो स्पेशल हो गया।
1: हाँ बहुत स्पेशल बर्थडे था। हमने बहुत एंजॉय भी करा और मम्मी पापा ने डांस भी किया था।
2: अरे वाह। और भुवना आपको कुछ याद है ऐसा?
5: हाँ दीदी मैं मम्मी पापा और मेरे अंकल जब हम कूल गए ना वो बहुत अच्छा।
2: कहाँ गए?
5: कूल।
2: अच्छा जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए तो वो बहुत अच्छा मोमेंट। अच्छा अब मुझे एक ऐसी बात बताओ जो आप अपने मम्मी पापा या किसी भी फैमिली मेंबर से कहना चाहते तो हो लेकिन कभी कह नहीं पाते। क्या कोई ऐसी बात है किसी चीज का डर हो या कभी ऐसा लगे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई और बात हो लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर से वो नहीं करते? भुवना
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ पापा हमें समर को वंडरला चलते हैं प्लीज।
2: अच्छा जब आप लोग गलतियाँ करते हो या कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है शरारतें करते हो तो क्या अपनी मम्मी पापा को घर पे सब चीज़ें बता देते हो या डर रहता है कि बताएंगे तो डांट पड़ेगी?
5: मैं बताती हूँ दीदी।
0: हाँ मैं भी बता देता हूँ।
2: पंकज?
1: दीदी मैं बहुत कम बताता हूँ।
2: कम बताते हो क्यों?
1: क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी गलतियों को या कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो मैं उसे खुद मैनेज कर लेता हूँ।
2: किसी चीज का डर तो नहीं होता आपको?
1: नहीं डर नहीं होता।
2: और आकाश?
4: दीदी मैं तो बताता ही नहीं।
2: बताते ही नहीं हो क्यों?
4: क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो मेरे साथ कोई गलती हुई है तो वो अगले आने वाले दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगी मुझे कुछ करने की जरूरत।
2: लेकिन अगर कोई बड़ी गलती आपसे हो जाए तो मम्मी पापा को इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी
4: हाँ,
2: होता है।
4: ऐसे तो इन्फॉर्म रखता हूँ लेकिन वैसे नहीं रखता हूँ
2: क्योंकि वही हमें समय पे मदद कर सकते हैं है ना?
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा मुझे ये बताओ तुम लोग अपने मम्मी पापा और नाना नानी सबसे प्यार तो बहुत करते हो उन्हें बताते हो कि नहीं?
5: हाँ दीदी।
2: बताते हो? क्या बताती हो भुवना?
5: मेरी मम्मी पापा एनिवर्सरी में मैंने एक एक्सप्लोडिंग बॉक्स बनाई जिसमें मैंने क्या किया मेरी सारी फ़ोटोज़ मेरी मम्मी और पापा की मैरिज फ़ोटोज़ और मेरे पापा के बचपन की फ़ोटोज़ मेरी मम्मी की बचपन की फ़ोटोज़ उनके फ्रेंड्स के साथ वो सब मैंने जेरोक्स ले ली। तो मैंने सारी फ़ोटोज़ का जेरोक्स लिया और बहुत अच्छे से एक बॉक्स बनाई एक गिफ्ट बॉक्स जैसा जिसको खोलते ऐसा एक्सप्लोडिंग बॉक्स जैसा बाहर आ जाएगा और हम बचपन की फोटोज देख सकते हैं और बलून्स सब कुछ।
2: अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल गिफ्ट था।
5: और मैंने एक पीपीटी बनाई थी दी
2: पीपीटी
5: एनिवर्सरी में।
2: और पापा की बर्थडे पे भी आपने कुछ स्पेशल किया था ना?
5: हाँ मेरी बुआ ने इसमें हेल्प की हमने डांस की जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं जैसे भैया एक म्यूजिक की जिसमें मेरी बुआ आती है और हम डांस करते हैं और पापा के पापा म्यूजिक के लिए मैं डांस करती हूँ ऐसा एक एक रिश्तेदार के रिलेशनशिप को एक एक डांस। मैंने एक बहुत सारी पोएम्स भी लिखती हूँ मेरे पापा के लिए।
2: आप बहुत सारी पोएम्स लिखते हो अपने पापा के लिए? अरे वाह। और आकार,
4: हाँ दीदी,
2: आप अपने घर पे सबको बताते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो?
4: दीदी वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं होती, उनको खुद ही पता चल जाता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम किसी की केयर करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है।
2: बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यार बताने से ज्यादा जताने की चीज है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अपने मम्मी पापा और सबको बताना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना?
4: करता तो हूँ, लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं होती।
0: तुम्हारे पापा भी गब्बर सिंह हैं?
4: और क्या,
5: गब्बर सिंह टू,
0: आतंक के दूसरे नाम।
2: पापा की बर्थडे हो या ऐसा कोई ओकेशन हो तो आप उन्हें छोटा सा कार्ड बना के दे सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जो उन्हें स्पेशल फील हो।
4: हाँ ये भी बात दीदी आपने सही बोली,
2: है ना? और कभी कभी बोल नहीं पाओ तो उन्हें लिख के भी दे सकते हो।
4: हाँ दीदी, जैसे मैंने अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे उनको एक कार्ड बना के दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से आया तो घर पे पापा मम्मी थे नहीं, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया कि पापा मम्मी कहाँ गए, और दादी भी कुछ बोल नहीं रही है मेरे को। जब शाम को 7 बजे आए पापा मम्मी घूम के, तब मेरा ऐसे ही मन हुआ, सुबह मम्मी को मैंने बोला ही था, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया था, तो मेरा मन किया चलो कार्ड बनाते हैं। तो मैंने कार्ड बनाना स्टार्ट किया, टाइम भी कम था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की कार्ड्स बनाने में, और मतलब मैंने करीब 3 कार्ड्स बनाए थे मम्मी और पापा के लिए। एक में मैंने पापा के लिए पोएम लिखी थी, एक में मम्मी के लिए, और एक में पापा मम्मी और मेरी फीलिंग्स लिखी थी कार्ड में।
2: अरे वाह, और ये तो सबसे अच्छा तोहफा होता है जब हम अपनी फीलिंग्स लिख के मम्मी पापा को देते हैं। और सैंडी?
0: नहीं दीदी, मैं नहीं बताता हूँ।
2: नहीं बताते? क्यों नहीं बताते?
0: क्योंकि मैं डेली ना जब मम्मी पापा शाम को बैठते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ आधे घंटे तक, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मैं उनकी कितनी केयर करता हूँ।
2: आप उनसे बातें करते हो? हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, हम डेली मम्मी पापा से बातें करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। और पंकज आप?
3: हाँ दीदी, मैं अपने मम्मी पापा को सीधे सीधे बता देता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी जब भी मुझे कहती है कि आजकल के बच्चों के एग्जांपल्स देती हूँ मेरी मम्मी की, उसके बेटे ने ऐसा किया, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
0: और हाँ दीदी, ऐसा कुछ कभी मेरे साथ ही होता है तो मैं मम्मी को गले लगा लेता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
5: पर दीदी आपको पता है मेरी मम्मी को जब भी वो काम करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बनाती हूँ और उनको बहुत पसंद है, और 2 ग्लास भी।
2: अरे बात, आज हम बात कर रहे थे फैमिली यानी परिवार के बारे में। तो लास्ट में ये स्पेशल वाला एपिसोड खत्म करने से पहले क्या कोई एक मैसेज है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहते हो?
5: थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल एंड आई लव यू ऑल।
4: अगर मेरे पापा अभी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पापा इतने साल हो गए आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके गए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ इस बार मेरे को हाजी अली लेके जाओ।
2: और पंकज आप कुछ कहना चाहते हो?
3: मैं अपने मम्मी पापा से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं देखना चाहता, मैं अपने मम्मी पापा और मुझे हमेशा एक साथ तीनों को देखना चाहता हूँ।
2: और सैंडी?
0: मैं अपने मम्मी पापा से कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा आप लोग और जितना दिन जी सकते हो मुझसे बहुत ज़्यादा दिन जियो, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत उम्र तक देखना चाहता हूँ।
2: ये बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने की जो आप लोग अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं। आज की ये बातचीत हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से कुछ नई बातों के साथ और नई बातों का पिटारा खोलने के लिए बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का एक संकलन है, रिलीजन ऑफ लव। प्रस्तुत कड़ी में उसी संकलन में संग्रहित स्वामी जी के प्रवचनों के कुछ अंश हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये प्रवचन और व्याख्यान स्वामी जी ने इंग्लैंड और अमेरिका में दिए थे। इन व्याख्यानों में उन्होंने प्रतीकों को समझाया है। वे कहते हैं,
1: संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं, प्रतीक और प्रतिमा। प्रतीक का अर्थ ओर आना या समीप पहुंचना है। सभी धर्मों में उपासना की कई श्रेणियां हैं। उदाहरणार्थ, इसी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधुओं की मूर्ति की पूजा करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी आकृति विशेष और प्रतीकों की पूजा करते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मनुष्य से उच्चतर प्राणियों की पूजा करते हैं, और उनकी संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है। वे हैं परलोकगत आत्माओं के पुजारी। मैंने पढ़ा है कि इस तरह के लोग यहां 80 लाख हैं। फिर और भी दूसरे लोग हैं जो उच्च श्रेणी के व्यक्तियों, देवदूत, देवता इत्यादि की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न श्रेणियों में से भक्ति योग किसी का तिरस्कार नहीं करता। वो इन सब को एक प्रतीक के अंतर्गत करके प्रतीक पूजा कहकर मानता है। ये सब ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, पर प्रतीक की उपासना करते हैं जो ईश्वर के समीप है। इन सब में से होकर वे ईश्वर की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह प्रतीक पूजा हमें मुक्ति और स्वातंत्र्य के पद तक नहीं पहुंचा सकती। ये तो हमें उन विशेष चीजों को ही दे सकती है जिनके लिए हम पूजा करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई अपने मरे हुए पूर्वजों या मित्रों की पूजा करता है तो वो उनसे शायद कुछ शक्तियां या कुछ संदेश प्राप्त कर ले। इन पूजित वस्तुओं से जो विशेष देन मिलती है वो विद्या या विशेष ज्ञान कहलाती है, पर अंतिम लक्ष्य तो हमें स्वयं भगवान की पूजा से ही प्राप्त होता है।
2: मुक्ति हमें प्रतीकों की पूजा से नहीं मिलती, हालांकि उससे कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है।
1: प्रतीक की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं की जा सकती। अतः यदि लोग ऐसा समझने लगें कि इन भिन्न भिन्न प्रतीकों की, देवदूतों, पूर्वजों या पवित्र पुरुषों की या मृतात्माओं की पूजा द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल होगी। अधिक से अधिक इतना ही संभव है कि इनके द्वारा वे कुछ शक्तियां प्राप्त कर ले, पर मुक्त तो उन्हें केवल ईश्वर ही कर सकता है। परंतु इस कारण इन प्रतीकों का तिरस्कार नहीं करना है। उनकी पूजा का कुछ ना कुछ फल तो होता ही है। जो मनुष्य इससे उच्च और कुछ नहीं समझता, वो इन प्रतीकों से कुछ शक्ति, कुछ सुख भले ही प्राप्त कर ले, पर दीर्घकाल के अनुभव के उपरांत जब वो मुक्ति लाभ के लिए तैयार हो जाएगा, तब वो स्वयं ही इन प्रतीकों को त्याग देगा।
0: हम प्रतीकों की पूजा करना पसंद करते हैं, अपने प्रियजनों की यादों की पूजा भी करते हैं।
1: इन सब भिन्न भिन्न प्रतीकों में से सब अधिक प्रचार परलोक मित्रों की पूजा का है। मित्रों के लिए व्यक्तिगत प्रेम मानव प्रकृति में इतना दृढ़ होता है कि जब हमारे किसी मित्र की मृत्यु हो जाती है तो हम पुनः एक बार उसका दर्शन करना चाहते हैं। हम उसके शरीर को छाती से लगा लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवित अवस्था में उसके शरीर में सदा परिवर्तन हुआ करता था। उसके मरने पर हम समझते हैं कि वो स्थायी हो जाता है और हम उसे उसी तरह देख सकेंगे। यही नहीं, यदि मेरा मित्र या पुत्र जो जीवन काल में दुष्ट था अब मर गया है, तो मैं ये समझता हूं कि वो बड़ा सज्जन था और अब वो मेरे लिए ईश्वर बन गया है।
2: स्वामी जी ने समझाया कि कैसे प्रतीक बन जाते हैं। उन्होंने कहा,
1: भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो मृत शिशु के शरीर को जलाते नहीं वरन गाड़ देते हैं और उस पर एक मंदिर बना देते हैं। वो छोटा शिशु उस मंदिर का ईश्वर बन जाता है। किसी भी देश में धर्म का ये एक बहुत प्रचलित रूप है, और ऐसे तत्व वेत्ताओं की भी कमी नहीं है जो समझते हैं कि सब धर्मों का मूल यही रहा है। पर निश्चय है कि वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रतीकों की पूजा हमें मोक्ष या मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। इसके अलावा इसमें डर या जोखिम भी बहुत है। डर इस बात का है कि प्रतीक वहां तक तो ठीक हैं जहां तक वे हमें अगली सीढ़ी में पहुंचाते हैं, पर 99% संभावना तो ये है कि हम सारा जीवन इन्हीं प्रतीकों से चिपके रहेंगे।
0: सभी धर्मों में धार्मिक ग्रंथों का बहुत महत्व है। वे ग्रंथ ही मानो ईश्वर के प्रतीक बन जाते हैं।
1: ग्रंथ पूजा इस प्रतीक का एक जबरदस्त बल्कि सबसे बढ़कर नमूना है। प्रत्येक देश में हम पाएंगे कि ग्रंथ ने ईश्वर का स्थान ले रखा है। मेरे देश में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनका विश्वास है कि ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य बनता है, पर ईश्वर को अवतारी पुरुष बनकर वेदों के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि उसके उपदेश वेदों से असंगत हैं तो उन उपदेशों को लोग नहीं मानेंगे। बौद्धों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय वाले भी बुद्ध की पूजा करते हैं, पर यदि तुम उनसे कहो कि जब तुम बुद्ध की पूजा करते हो तो उसके उपदेशों को भी क्यों नहीं मानते, तो उत्तर मिलेगा कि उनके उपदेशों ने वेद को स्वीकार नहीं किया है। ग्रंथ पूजा का यही अर्थ है। धर्म ग्रंथ के नाम की आड़ में कितनी ही मिथ्या बातें खप सकती हैं। हिंदुस्तान में यदि मैं किसी नई बात की शिक्षा देना चाहूं और उसे केवल अपनी ही समझ की प्रामाणिकता दूं तो मेरी कोई न सुनेगा, पर यदि मैं वेदों से कुछ ऋचाएं निकालकर उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर कहूं और उनका अत्यंत असंभव अर्थ भी निकालूं, उसमें जो कुछ भी संयुक्तिक है उसका गला घोंटकर स्वयं अपने विचारों को ही वेदों का तात्पर्य कहकर जाहिर करूं तो सभी झुंड के झुंड मेरे पीछे फिरेंगे।
2: ग्रंथ पूजा का भी अपना महत्व है, उन्होंने समझाया कि
1: ग्रंथ पूजा में ये ही दोष है, परंतु साथ ही साथ उसमें गुण भी है, उससे बल आता है। जिन जिन संप्रदायों के ग्रंथ थे उन्हें छोड़ बाकी सब संप्रदायों का आज लोप हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथ वालों का नाश कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने पारसियों का नाम सुना होगा, वे लोग ईरान के प्राचीन निवासी थे और उनकी संख्या एक समय लगभग 1 अरब थी। अरब वासियों ने उन्हें जीता और आधुनिक पारसी अपने ही घर में मुस्लिम हो गए हैं। उनमें से मुट्ठी भर पारसी अपने ग्रंथ को लेकर अपने सताने वालों के पास से भागे और उसी ग्रंथ ने उन्हें आज तक कायम रखा है। फिर यहूदियों का विचार कीजिए, यदि उनके ग्रंथ ना होते तो दुनिया से वे कब के मिट गए होते, पर उनके ग्रंथ ने ही उनकी जीवन शक्ति को बनाए रखा है। उनके तालमूद ने ही उन पर घोर अत्याचार होते हुए भी उन्हें बनाए रखा है। यही ग्रंथ का सबसे बड़ा लाभ है। वो सभी बातों को एक निश्चित रूप देकर बुद्धिग्राह्य और सहज गम्य बना देता है और अन्य सब प्रतिमाओं की अपेक्षा आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। ग्रंथ को वेदी पर रख दीजिए, सभी उसके दर्शन करते हैं। अच्छी पुस्तक को सभी लोग पढ़ते हैं।
0: मूर्ति एक बहुप्रचलित ईश्वर का प्रतीक है। सभी अपने प्रतीक को ही सबसे अच्छा और दूसरे को बुरा समझते हैं।
1: दूसरा विचारणीय विषय है प्रतिमा या मूर्तियों का उपयोग। संसार में सर्वत्र एक न एक रूप में मूर्तियां आपको मिलेंगी ही। कहीं कहीं उस मूर्ति का आकार मनुष्य का है और यही सबसे उत्कृष्ट रूप है। यदि मैं किसी मूर्ति की ही पूजा करना चाहूं तो मैं पशु, इमारत या अन्य किसी आकृति की अपेक्षा मनुष्य की आकृति को ही अधिक पसंद करूंगा। एक संप्रदाय समझता है कि अमुक रूप में ही मूर्ति ठीक तरह की है तो दूसरा समझता है नहीं, वह बुरी है। ईसाई समझते हैं कि जब ईश्वर कबूतर के रूप में आया तब तो ठीक था, पर जब वो गाय के रूप में आता है जैसा कि हिंदू लोग मानते हैं तो वो बिल्कुल गलत और कुसंस्कारपूर्ण है। यहूदी समझते हैं कि यदि मूर्ति संदूक के आकार की हो जिसके किनारों पर 2 देवदूत बैठे हों और जिसमें एक पुस्तक हो तब तो वो ठीक है, पर फिर वही मूर्ति पुरुष या स्त्री के आकार की हो तो भयंकर है। मुस्लिम समझते हैं कि नमाज के समय यदि मस्जिद और काबा की मूर्ति अपने मन में लाने का प्रयत्न करें और पश्चिम की ओर अपना मुंह कर लें तो बिल्कुल दुरुस्त है, पर यदि चर्च के आकार की मूर्ति बनी हो तो वो बुत परस्ती है। ये है मूर्ति पूजा का दोष, परंतु फिर भी ये सभी सीढ़ियां आवश्यक प्रतीत होती हैं।
2: पहुंचे हुए व्यक्तियों को मूर्ति की जरूरत नहीं होती, स्वामी जी ने कहा।
1: 2 प्रकार के मनुष्यों को किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक तो मानव रूपधारी पशु जो कभी धर्म का विचार ही नहीं करता, और दूसरा पूर्णत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो इन सब सीढ़ियों को पार कर गया होता है। इन दोनों छोरों के बीच में ही सबको किसी ना किसी बाहरी या भीतरी आदर्श की आवश्यकता होती है। ये आदर्श चाहे किसी स्वर्गीय मनुष्य के रूप का हो अथवा किसी जीवित पुरुष या स्त्री के रूप का। ये व्यक्तित्व और शरीर की पूजा है तथा बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी प्रवृत्ति ही स्थूल रूप देने की है। यदि हम स्थूल रूप देने वाले ना होते तो यहां रहते ही कैसे। हम स्थूल रूपधारी आत्मा हैं और इसी कारण हम आज अपने को यहाँ इस पृथ्वी पर पाते हैं। स्थूल रूप ने ही हमें लाया है और वही हमें यहाँ से बाहर निकालेगा।
0: लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के सामने घुटने टेक कर सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे स्वामी जी ने यूं समझाया,
1: व्यक्ति की उपासना मत करो। ये कहना तो बहुत आसान है, पर साधारणतः जो मनुष्य ऐसा कहता है वही अत्यधिक व्यक्तित्व की उपासना करने वाला देखा जाता है। विशेष विशेष पुरुषों और

0: स्त्रियों के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति रहा करती है। उन लोगों की मृत्यु के पश्चात भी वो आसक्ति नहीं जाती और मृत्यु के उपरांत भी वो उनका अनुसरण करना चाहता है। ये मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का आदि कारण अथवा बीज है और कारण का अस्तित्व करते हुए वो किसी ना किसी रूप में अवश्य प्रकट होगी। क्या किसी साधारण पुरुष या स्त्री के प्रति आसक्ति रखने की अपेक्षा ईसा या बुद्ध की मूर्ति के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति रखना कहीं अधिक श्रेष्ठ नहीं है? पाश्चात्य के लोग कहते हैं ईसा मसीह की मूर्ति के सामने घुटने टेकना बुरी बात है, पर वे लोग किसी स्त्री के सामने घुटने टेक कर तुम ही मेरे प्राण हो, मेरे जीवन की ज्योति हो, मेरी आंखों का प्रकाश हो, मेरी आत्मा हो आदि आदि कहने में दोष नहीं मानते। ये तो मूर्ति पूजा से भी गई बीती बात है। उस स्त्री को मेरी आत्मा मेरे प्राण कहना भी क्या है? चार दिनों बाद ये सब भाव काफूर हो जाते हैं। ये केवल इंद्रियों की आसक्ति है, फूलों के ढेर से ढका हुआ है, स्वार्थ का प्रेम है या उससे भी गया बीता कुछ और है। कवि लोग इसका सुंदर नामकरण कर देते हैं और उस पर गुलाब जल छिड़क देते हैं, पर असल में वो वही घृणित आसक्ति है। क्या इसकी अपेक्षा बुद्ध की प्रतिमा या जिनेंद्र की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर ये कहना कि तुम ही मेरे प्राण हो श्रेष्ठ नहीं? मैं उनके बदले इसको 100 बार अच्छा कहूंगा।
1: ईश्वर तक पहुंचने का एक और मार्ग है मन को ईश्वर मानकर ध्यान करना। ये कठिन रास्ता है, स्वामी जी कहते हैं।
0: एक प्रकार का प्रतीक और है जिसे पाश्चात्य देशों में नहीं मानते, पर जिसकी शिक्षा हमारे ग्रंथों में है, वो है मन को ईश्वर मानकर पूजा करना। किसी भी वस्तु को ईश्वर मानकर पूजा करना एक सीढ़ी ही है। वो परमेश्वर की ओर मानो एक कदम बढ़ने, उसके कुछ अधिक समीप जाने के समान है। यदि कोई मनुष्य अरुंधति तारे को देखना चाहता है तो उसे उसके समीप का एक बड़ा तारा पहले दिखाया जाता है, और जब उसकी दृष्टि बड़े तारे पर जम जाती है तब उसको उसके बाद उससे छोटा एक तारा दिखाती है। ऐसा करते करते क्रमशः उसको अरुंधति तक ले जाती है। उसी तरह ये भिन्न भिन्न प्रतीक हैं, प्रतिमाएं ईश्वर तक पहुंचा देती हैं। बुद्ध और ईसा की उपासना प्रतीक पूजा है, उसमें हम ईश्वर की उपासना के समीप पहुंचते हैं, पर बुद्ध की पूजा या ईसा की उपासना से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। उसे तो इसके और आगे उस ईश्वर तक जाना चाहिए जिस ईश्वर ने बुद्ध और ईसा के रूप में अपने को प्रकट किया, क्योंकि अकेला ईश्वर ही हमें मुक्ति दे सकता है।
2: किसी भी तुच्छ चीज को ईश्वर मानकर पूजना भी ईश्वर उपासना ही है।
0: यदि कोई मनुष्य किसी मूर्ति, भूतों या मृत पुरुषों की आत्माओं की पूजा करता है और ऐसा मानता है कि उसी से उसका उद्धार होगा, तो वो सर्वदा भ्रम में है। तुम पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हो, पर हां ईश्वर को देखते हुए। मूर्ति को भूल जाओ और उसमें ईश्वर के दर्शन करो। तुम किसी वस्तु का आरोपण ईश्वर पर मत करो, अर्थात किसी वस्तु को ईश्वर मत मान बैठो, बल्कि उसमें ईश्वर को व्याप्त देखो। इसका अर्थ है कि जिस आकृति की तुम पूजा करते हो उसी के भीतर ईश्वर को सीमाबद्ध मत कर रखो, पर उस आकृति को तथा अन्य जिस किसी भी आकृति को तुम पूजा करना चाहो उसे ईश्वर से भर दो, अर्थात ईश्वर से परिव्याप्त जानो। इस तरह तुम एक बिल्ली में भी ईश्वर की पूजा कर सकते हो, पर बिल्ली को भूल जाओ और उसमें ईश्वर को विराजमान कर लो, तो तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसी ईश्वर से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति है।
1: साधारण व्यक्तियों के लिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसे आकार और नाम दे देते हैं।
0: हम सभी का यही विश्वास है कि ईश्वर के न तो नाम है न रूप, पर जो ही हम उसके विषय में सोचते हैं त्यों ही उसे नाम और रूप दोनों दे देते हैं। चित्त एक शांत जलाशय के समान है और विचार उस चित्त पर तरंग के सदृश है। नाम और रूप इन तरंगों के उठने के सामान्य तरीके हैं। नाम और रूप के बिना कोई तरंग नहीं उठ सकती। एक रूपता या एक रस्ता का चिंतन नहीं किया जा सकता, वो चिंतन के परे है। जो ही वो विचार और विचार्य वस्तु बन जाती है त्यों ही उसका नाम और रूप होना ही चाहिए। हम उनको अलग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि मन में किसी वस्तु का विचार नाम और रूप के बिना नहीं हो सकता। कल्पना करो कि तुम्हारा मन बिल्कुल शांत है, उसमें कोई विचार या भावना नहीं, तथापि कोई विचार मन में उठते ही तुरंत या नाम और रूप धारण कर लेगा। प्रत्येक विचार का कोई ना कोई नाम और एक ना एक रूप हुआ ही करता है। इस तरह सृष्टि या विस्तार वस्तु ही ऐसी हैं कि उसका नाम और रूप से नित्य संबंध है।
2: स्वामी जी ने ओम शब्द का महत्व समझाया।
0: प्रश्न अब ये है कि वो कौन सा नाम है। हिंदू मत के अनुसार वो नाम या शब्द ओम है। प्राचीन मिस्रवासी भी यही मानते थे। जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य साधता है वो क्या है, वो मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। वो है ओम। ये ओम ही ब्रह्मा है, ये पुराण पुरुष है, और जो इस ओम के रहस्य को जान लेता है वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ये ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड या ईश्वर का नाम है। ये ओम ही बाह्य सृष्टि और ईश्वर दोनों का सूचक है।
1: नाम क्या है, स्वामी जी समझाते हैं।
0: परम विश्व को खंड खंड के रूप से भी ले सकते हैं। जिस तरह की भिन्न भिन्न इंद्रियां उसका अनुभव करती हैं, अर्थात हम स्पर्श रस और अन्य रीतियों से भी विश्व का विचार कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में हम इस जगत को भिन्न भिन्न दृष्टि से लाखों जगत में विभक्त कर सकते हैं, और उनमें से प्रत्येक अपने में संपूर्ण होगा। प्रत्येक का नाम होगा, एक रूप होगा, और उसके पीछे एक भाव रहेगा। हरेक के पीछे रहने वाले ये ही भाव भिन्न भिन्न प्रतीक हैं। उनमें से प्रत्येक का एक एक नाम है। इन बहुविध पवित्र नामों या शब्दों का व्यवहार भक्ति योग में होता है। इन नामों में अपरिमित शक्ति रहती है। इनके जपने से ही हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। हम पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर दो बातों की आवश्यकता है।
2: गुरु शिष्य का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। गुरु ही मंत्र रूपी नाम देता है।
0: ये नाम ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसने व्यथार्थ उत्तराधिकार अर्थात परंपरा से उसे प्राप्त किया हो। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत अत्यंत पुरातन काल से गुरु शिष्य परंपरा में से बहता आया है। जिसके पास से इस शब्द की प्राप्ति होती है वो गुरु, और जिसको ये शब्द दिया जाता है वो शिष्य कहलाता है। नियमित रूप से जब शब्द या मन की प्राप्ति हो चुकी, जब उनका बारंबार जाप भी हो चुका, तब समझ लो कि भक्ति योग में बहुत प्रगति की जा चुकी। उस नाम के जप से ही भक्ति की उच्चतम अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। तेरे अनंत नाम है, उसके क्या अर्थ हैं सो तू ही समझता है। ये सब नाम तेरे ही हैं, और इनमें से प्रत्येक में तेरी अनंत शक्ति है। सभी काल और सभी स्थान पवित्र हैं। तू इतना सुलभ है, तू इतना दयालु है। मैं कितना भागा हूं कि तेरे प्रति मुझ में प्रेम नहीं है।
1: अब हम वेदों और उपनिषदों के विषय में स्वामी जी के कुछ विचार सुनेंगे।
0: वैदिक यज्ञ वेदी से ज्यामिति का उद्भव हुआ। देवों अथवा द्युतिमानों की स्तुति उपासना की नींव बनी। धारणा यह है कि जिसका आह्वान किया जाता है उसका श्रेय होता है, और वो श्रेय करता भी है। ऋचाएं केवल प्रशस्तियां नहीं है, वरन शक्ति संपन्न मंत्र हैं जिनका उच्चारण मन की अनुकूल भावना के साथ किया जाता है। स्वर्ग केवल सत्ता की अन्य अवस्थाएं हैं जिनसे इंद्रिय भोगों और उच्चतर सिद्धियों की वृद्धि हो जाती है। स्थूल शरीर की भांति सभी उच्चतर इतर शरीर भी नश्वर हैं। इस जीवन तथा अन्य जीवनों में सभी शरीर मरण धर्मा हैं। देव भी मरती हैं और वे केवल भोग दे सकती हैं। इन सभी देवों के पीछे एक सत्ताधारी इकाई है, ईश्वर। ठीक वैसे ही जैसे इस शरीर के पीछे कोई उच्चतर वस्तु है जो अनुभव करती है और जो देखती भी है। जगत के सृजन पालन और संहार की जिसमें शक्तियां हैं, और सर्वव्यापक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने जैसी जिसकी उपाधियां हैं, वो देवों का देव परमेश्वर है। उपनिषद कहते हैं प्रभु ने ब्रह्मांड का भेदन किया है, ये सब उसी का है। जो सर्वव्यापी अप्रमेय निर्गुण निर्विकार और जगत का महाकवि है, सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र जिसके छंद हैं, वो प्रत्येक को उसका उचित भाग देता है। जो कर्मकांड द्वारा प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं

उत्तर दी। यम ने उत्तर दिया, बहुत से देवगण भी इसे नहीं जानते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। पुत्र, ये प्रश्न मुझसे मत पूछो। लेकिन नचिकेता दृढ़ रहा। फिर यम ने उत्तर दिया, स्वर्ग लोक के भोग भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हठ मत करो। परंतु नचिकेता चट्टान की भांति अटल रहा। तब मृत्युदेव ने कहा, मेरे पुत्र, तुमने तीसरी बार भी धन, प्रभुता, दीर्घ जीवन, ख्याति और कुटुंब के सुखों को ठुकरा दिया। तुम चरम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के पराक्रमी अधिकारी हो, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रिय मार्ग है। तुमने प्रथम का वर्ण किया है। अब इस बात पर ध्यान दो कि सत्य सिखाने को कैसी शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है निर्मलता। एक बालक, पवित्र निर्भांत आत्मा, जगत के रहस्य के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। दूसरी, सत्य ही के लिए उसे सत्य को ग्रहण करना चाहिए। जब तक सत्य किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं होता जिसने सत्य का साक्षात्कार स्वयं किया है, उसे स्वयं हृदयंगम किया है, तब तक वो फलदायक नहीं हो सकता। ग्रंथ उसे नहीं दे सकते, तर्क उसे सिद्ध नहीं कर सकते। सत्य उसको मिलता है जिसने रहस्य को समझ लिया। जब मिल जाए तो मौन रहें, कुतर्कों से विचलित ना हों। आत्मज्ञान स्वयं प्राप्त करो, इसे तुम स्वयं ही कर सकते हो। जो सच्चे हृदय से पुकारता है, हे प्रभु, मैं बस तुझे चाहता हूं, उसको प्रभु स्वयं दर्शन देता है। निर्मल रहो, शांत रहो। अशांत मन प्रभु को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। जिसका गुणगान वेद करते हैं, जिसके पास पहुंचने के लिए स्तुति और यज्ञ से हम सेवा करते हैं, उस वर्णनातीत का वाचक पवित्र ओम है। सभी शब्दों में यह सर्वाधिक पवित्र है। जो इस शब्द का रहस्य जान गया, उसको वे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए वो मनोरथ करता है। इस शब्द की शरण में जाओ। जो कोई इस शब्द की शरण में जाता है, उसके लिए मार्ग

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 29 जून की कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। और आइए बात करते हैं, आज के दिन को यादगार भी बनाते हैं। और एक कुछ खास लोगों का जन्मदिन है, और ये देविकी नंदन खत्री, पीसी महल नोबिस, आशुतोष मुखर्जी, इनका जन्मदिन है। इसके साथ ही माइकल मधुसूदन दत्त, दामोदर धर्मानंद कोसंबी, सरदार बलदेव सिंह, केसी बा सुब्रमण्यम, गौरी देवी और लजराम शर्मा मेहता, इनका पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। एक अच्छे विचार से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शाम का समय है, 4 बज चुके हैं और आपने विशेष टाइम हो गया है एक चाय का, है ना। मैं जानता हूँ चाय पीने वाले हमारे मित्र हैं और कभी कभी तो फ़ोन करके भी बता दें भाई आपके कार्यक्रम भी सुन रहे हैं और चाय की चुस्किया भी ले रहे हैं। बिल्कुल लीजिए। और कोई चाय नहीं पीता है तो उनके लिए ऑप्शन है, आप नींबू शरबत पी सकते हैं, या फिर आप गरम कुछ पीना चाहते हैं तो ग्रीन टी पी सकते हैं, है ना। ऑप्शन आपके पास है, बाकी आप किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं उसके ऊपर है। आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए और शरबत भी पी सकते हैं। चाय से थोड़ी सी मुझे मना, कई बार डॉक्टरों ने मना किया है कि चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, तो चलिए चाय ज़्यादा मत पीजिए, कम पीजिए और तरीके से बना के पीजिए। कई बार चाय बनाने के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं, है ना। तो एक बार सही चाय बनाने का तरीका भी सीख ले और फिर पीजिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, एक खूबसूरत विचार अभी आपके लिए। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, है ना, कमाल की बात। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए बात करते हैं देविका नंदन खत्री के बारे में। देविका नंद खत्री के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे हिंदी के पहले तिलस्मित लेखक के रूप में याद किए जाते हैं। और आप सभी देखो, मैं जो नाम अभी आपको बताने वाला हूँ, ये नाम सुनकर ही आपको रेलवे स्टेशन जरूर याद आएगा। जी हाँ, इन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोंडा, कटोरा भरा और भूतनाथ जैसी रचनाएं की हैं। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने उनका मन मोह लिया था। इसकी

किताब का रसवादन करने के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा सीखी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिस्लिम अय्यर और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। तो है ना कमाल के व्यक्ति देवकी नंदन खत्री। आइए इनके बारे में बात करते हैं। 29 जून 1861 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी संवत 1918 शनिवार के दिन पूसा मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम लाला ईश्वरदास था। उनके पूर्वज पंजाब के निवासी थे और मुगलों के राज्य काल में ऊंचे पदों पर कार्य करते थे। महाराज रंजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह के शासनकाल में लाला ईश्वरदास काशी आकर बस गए। देवकी नंदन खत्री जी की शुरुआती शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी और बाद में उन्होंने हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। व्यवसाय की शुरुआत करें तो मुजफ्फर देवकी नंदन खत्री ने नाना नानी का निवास स्थान था इनका। अपने पिता लाला ईश्वरदास अपनी युवा अवस्था में लाहौर से काशी चले गए थे और यहीं रहने लगे थे और देवकी नंदन खत्री का विवाह मुजफ्फर में ही हुआ और गया जिले के टिकरी राज्य में अच्छा व्यवसाय था। शुरुआती शिक्षा समाप्त कर वे टिकरी इस्टेट पहुंच गए और वहां के राजा के यहाँ कार्य करने लगे। बाद में उन्होंने वाराणसी में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1883 में हिंदी मासिक पत्र सुदर्शन को इन्होंने शुरू किया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए देवकी नंदन की आगे की कहानी थोड़ी देर में अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। देवकी नंदन खत्री जी को उनके लेखन के लिए याद किया जाता है और चंद्रकांता उनका सबसे बड़ा और सबके प्रिय किताब रहा। और ये कुछ दिनों बाद महाराजा बनारस से चाकिया और नौगढ़ के जंगलों का ठेका ले लिया था और इसी कारण वे देवकी नंदन की युवा अवस्था अधिकतर उन जंगलों में बीता था। देवकी नंदन खत्री बचपन से ही घूमने के बड़े शौकीन थे और ठेकेदारी के कार्यों ने पर्याप्त आय होने के साथ साथ घूमने का भी शौक पूरा होता रहा। वो लगातार कई कई दिनों तक चाकिया नौगढ़ के बिहार जंगलों, पहाड़ियों और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के बीच रहा करते थे और ऐतिहासिक इमारतों के खंडरों की पृष्ठभूमि में अपने तिस्लिम और अय्यारी के कारनामों की कल्पना को मिश्रित कर उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास की रचना की। और चंद्रकांता उपन्यास इतना पॉपुलर हुआ कि फिर उन्होंने चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे। भूतनाथ तो उनके लड़के ने पूरा किया, वो अधूरा रह गया था। और चंद्रकांता की जो रचना है वो अपने आप में लोगों को और ख़ास हिंदी लोग भी उर्दू भाषा ही जानते थे। इस प्रकार की परिस्थिति में देवकी नंदन जी का ये रचना चंद्रकांता देवनगरी हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा सशक्त माध्यम पड़ा। ये इतना सरल कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने ऐसा कर दिखाया। चंद्रकांता उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि उस समय जो लोग हिंदी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वे केवल उर्दू भाषा ही जानते थे, उन्होंने केवल इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इसी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा उपन्यास चंद्रकांता संतति भी लिखा, जो उसकी अपेक्षा अधिक रोचक थी और इसके लिए लोग पढ़ते वक्त खाना पीना भी भूल जाते थे। तो है ना कमाल की बात, कमाल के रचना कर। तो चलिए, देवकी नंदन जी हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन आधुनिक आयु बहुत ज़्यादा नहीं पाए वो, प्राय बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। 52 वर्ष की अवस्था में ही काशी के एक जगह पर 1 अगस्त 1913 को ये परलोकवासी हो गए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। कहते हैं कि जो लोग बहुत लंबा नहीं जीते, कम जीते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए यादें छोड़ जाते हैं, और उसमें से एक नाम आता है देवकी नंदन खत्री जी का। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। लीजिए एक और गीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, देवकी नंदन खत्री जी के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं अभी, और ये है बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन, यानी गणितज्ञ भी कह सकते हैं या संख्याविद कह सकते हैं। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। भारत की आज़ादी के पश्चात नव गठित मंत्रिमंडल के संख्या की सलाहकार बने थे। औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई थी। अब क्योंकि ये आंकड़ों से बड़े अच्छी तरह से खेलते रहे, तो इसीलिए वोटिंग में भी गिनती की बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसे समय में संख्या की सलाहकार की जरूरत होती है। तो आइए, महल नोबिस का जन्म आज ही के दिन यानी 29 जून को 1893 में हुआ, कोलकाता बंगाल में। इनके पिता का नाम प्रबंध चंद्र महल नोबिस था और साधारण ब्राह्मण समाज के सक्रिय सदस्य थे। उनकी माता निरोधवासिनी का संबंध बंगाल के पढ़े लिखे कुल में से था और महल नोबिस की शुरुआती शिक्षा दीक्षा दादा गुरुचरण महल नोबिस द्वारा स्थापित ब्रह्मा बौद्ध स्कूल में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा पूरा होने के बाद 1908 में वो प्रेसिडेंटी कॉलेज में बौद्ध की विषय में ऑनर्स करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गणित दोनों विषय में डिग्री हासिल की। वे एकमात्र छात्र थे जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद ये कोलकाता लौट आए। अब संख्या में रुचि इनकी बहुत थी। कैम्ब्रिज छोड़ने से ठीक पहले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महल नोबिस ने अपने शिक्षक W.H. माइकाले के कहने पर बायोमेट्रिक नामक किताब पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी रुझान संख्या की ओर बढ़ने लगा और बाद में आचार्य ब्रजेंद्र सिंह के निर्देशन में उन्होंने संख्या की पर काम किया और फिर प्रोफेसर महल नोबिस ने इस दिशा में ऐसा काम किया कि कॉलेज के परीक्षा परिणामों का संख्या माध्यम से विश्लेषण, इस काम में उन्हें काफ़ी सफलता मिली। फिर तो कहानी आगे बढ़ती गई और ये पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे। उपलब्धियाँ इनकी लंबी है और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी इन्होंने मिलकर काम किया और भारतीय संख्या के संस्थान की इन्होंने स्थापना की और फिर इस तरह से 1 से लेकर 12 तक के सम्मान इनको मिले हुए हैं। और 29 जून 2018 को मशहूर संख्याविद और वैज्ञानिक प्रशांत महल नोबिस का 125वां जन्मदिन पर गूगल ने अपना डूडल बनाकर इनको सलाम किया था। तो है ना कमाल की बात, और 125 रुपए का सिक्का भी इनके नाम बन गया था। 1, 2, 5 और 10 के सिक्के के अलावा 125 रुपए के सिक्के की खनक सुनी जा सकेगी। भारत सरकार 29 जून 2018 को 125 रुपए का सिक्का जारी करेगा, ये भी मैसेज आया था। तो इस तरह के कई चीज़ें उनके नाम पर की गई हैं। तो ये थी कुछ ख़ास बातें महल नोबिस के बारे में और दुनिया को ये बताने की संख्या के का प्रयोग आम लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के काफ़ी नज़दीक रहने वाले, उन्होंने कभी कोई पद आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। उन्हें विज्ञान के ब्यूरोक्रेसी पसंद नहीं थी। उन्हें अपने संस्थान से काफ़ी लगाव था और वे इसे हमेशा एक आज़ाद संस्था के रूप में देखना चाहते थे। शायद यही वजह थी कि जब 1971 में इस संस्थान से जुड़े अधिकांश लोगों ने सरकार के साथ जाने का फैसला किया तो उन्हें आंतरिक तकलीफ पहुंची और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रशांत चंद्र महल नोबिस, और 28 जून 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी कुछ खास बातें महल नोबिस के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो। मस्त।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार, और आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। आइए मैं एक और शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे महल नोबिस के बारे में अगर आपने सुना, तो ये एक ऐसे विचार वाले व्यक्ति थे जो संस्थान को जो है सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे, उसे ओपन रखना चाहते थे। और जब ओपन रखना चाहते थे तो ओपन रखने के लिए उनके लोग सहयोगी नहीं बने, और इससे उनको बड़ा सदमा पहुंचा। और कई बार होता है कि कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहता है, वो समाज के लिए ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो फिर वो सरकारी खजाना हो जाता है, तो वहाँ पर सभी लोग नहीं पहुँच

पाते, है ना। मुझे महल नुबीस की भावना अच्छी लगी, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। तो आइए एक और व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, अब सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। बंगाल के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। सन 1906 और से लेकर 14 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। उन्होंने बंगाल तथा भारतीय भाषाओं को MA की उच्चतम डिग्री के लिए अध्ययन का विषय बनाया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी इनके पुत्र थे। सन 1908 में आशुतोष मुखर्जी ने कोलकाता गणितीय सोसाइटी की स्थापना की और सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में 1908 से लेकर 1923 तक ये काम करते रहे। 1914 में वे भारतीय विज्ञान के उद्घाटन सत्र के पहले अध्यक्ष भी थे। तो आइए सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में और जानते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन बंगाल ब्राह्मण परिवार में 29 जून 1864 को कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी आज़ाद के पूर्व में हुआ और विद्यार्थी जीवन में ही नाम कमाने के उपरांत 1888 में उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी और 1904 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश और 1920 में स्थान पत्र मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद 1923 में उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया और राजनीति से दूर रहे। फिर भी वे 1899 में बंगाल विधानसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया था, बंगाल की जो महती सेवा की उसके आधार पर उन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माण कहा जाता है। 25 वर्ष की अल्प आयु में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य हुए और इसके उपरांत वे उसके उप कुलपति भी रहे। तो आइए इनके बारे में और भी बातें थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आपके लिए एक सुनाते बहुत ही प्यारा संगीत और आप सफ़र कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शाम का समय है। बड़ा अच्छा लगता है आप सभी से रूबरू होने का और किसी अच्छे व्यक्तित्व के बारे में आपसे शेयरिंग करने का। सुनते रहो मस्त।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी के बारे में। जितना इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उच्च शिक्षा प्रसार में भी उन्होंने काम किया, भारतीय भाषाओं का प्रयोग करके भारतीयता की झलक के लिए भी काम किया। विश्वविद्यालय जीवन की अंतिम घड़ी तक संबंध बनाए रखे उन्होंने, और कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में उच्च शिक्षा का प्रोफेसर प्रसार रोकने के उद्देश्य बनाया गया था, किंतु आशुतोष मुखर्जी ने इसी के माध्यम से बंगाल में उच्च शिक्षा का प्रसार कर दिया और कोलकाता विश्वविद्यालय को परीक्षा की व्यवस्था करने वाले संस्थान मात्र से ऊपर उठाकर उच्चतम डिग्री शिक्षण देने वाले संस्था बना लिया। है ना कमाल की बात। अप्लाइड साइंस के परीक्षण हेतु डिग्री शिक्षा का प्रबंध किया और जिसके जरिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। कोलकाता विश्वविद्यालय के लिए महाराज दरभंग सर तारकनाथ और राज बिहारी घोष से प्रचुर धन प्राप्त किया और फिर इस धनराशि से उन्होंने विश्वविद्यालय

इंग्लैंड नहीं गए और उन्होंने अपने जीवन तथा कार्यकल्पों से सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से एक सच्चा भारतीय अपने विचारों में सनातन पंथी कार्य में प्रगतिशील तथा विश्वविद्यालय के हेतु अध्यापकों के चयन में अंतर्राष्ट्रीयवादी हो सकता है। कोलकाता विश्वविद्यालय में भारतीय ही नहीं अंग्रेज, जर्मन और अमेरिका प्रोफेसर की भी नियुक्ति की और उसे पूर्व का अग्रण्य विश्वविद्यालय बना दिया। आशुतोष मुखर्जी को 25 मई 1924 को पटना, बिहार और उड़ीसा प्रांत, ब्रिटिश भारत जो कि अब बिहार प्रांत हुआ है, जब वह पटना में एक मामले पर बहस कर रहे थे तब उनकी मृत्यु हो गई 25 मई 1924 को। तो ये थी कुछ खास बातें आशुतोष मुखर्जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए मित्रों, जाते जाते आपके लिए एक और विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। सुनते एक विचार अभी। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। क्या बात है। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। है ना कमाल की बात। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुको है, रुको रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो 107.8 एफएम सुन रहे हैं। आप कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों जैसे कि आपको पता है सोमवार होता है और आपको साइबर सिक्योरिटी यानी इंटरनेट सुरक्षा के बारे में एक नई जानकारी ज़रूर मिलती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नई अपडेट्स आ रही हैं, बदल रही हैं। हम जानते हैं हमारे फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, नई नई ऐप्स आती हैं, उसका वर्जन डेवलप होता रहता है, तो उसे कहते हैं कि भाई आप अपडेट करो अपनी ऐप को भी उसको चलाने के लिए। तो जहाँ इतने अपडेट्स होते रहते हैं वहाँ जानकारी भी तो अपडेटेड होनी ही चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खास सेगमेंट और फिलहाल आपको लिए चलते हैं साइबर दोस्त की ओर, जहाँ साइबर सेफ लाइफ पे बातचीत हुई है कि इंटरनेट पर आपका बच्चा कितना सुरक्षित है। बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए ये सुनना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपको इस जानकारी का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आज का सेशन हर पेरेंट, टीचर और गार्जियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज बच्चे और टीनेजर्स पढ़ाई, गेमिंग, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, सेक्सटॉर्शन, फेक फ्रेंडशिप्स और इमेज मिसयूज जैसे साइबर क्राइम्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई बार बच्चे इन इंसिडेंट्स के बारे में अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बताते ही नहीं है। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है मिस वी नीरजा, आईपीएस, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साइबर क्राइम पंजाब, जिन्होंने साइबर जागो इनिशिएटिव के थ्रू टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को साइबर सेफ्टी के टुवर्ड्स अवेयर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैम, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में बच्चों और टीनेजर्स को टारगेट करने वाले सबसे सीरियस साइबर क्राइम्स कौन से हैं?
1: आजकल के बच्चे और टीनेजर हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिजिटल स्पेसेस कनेक्टेड विद इंटरनेट, लाइक यू हैव सेड, फॉर वेरियस पर्पसेस, वेदर इट इज फॉर एजुकेशन के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. बट देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज डिजिटल स्पेसेस डू नॉट हैव एनी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज. सो जो चाइल्ड सेक्सुअल प्रेडेटर्स है, ऑफेंडर्स है, they can easily fake their identities and can target children online. So mostly prevalent जो हमारे पास रिपोर्टिंग होती है is on online grooming, cyber bullying, online harassment, sextortion and impersonation, crimes against children.
0: मैम, पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि घर में बैठा बच्चा सेफ है। डिजिटल वर्ल्ड में ये अजम्पशन कितनी डेंजरस हो सकती है?
1: पेरेंट इज ऑलवेज कंफर्टेबल कि अब बच्चा घर में बैठा है तो इज वेरी सेफ, बट दिस असम्पशन कुड बी वेरी फॉल्स इन दिस डिजिटल वर्ल्ड. एक तो एक बच्चा घर में बैठा है कंटिन्यूसली इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग कि इट इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर. बिसाइड्स व्हेन यू लुक इनटू द प्रेजेंट डिजिटल इकोसिस्टम, हर बच्चे के पास एक्सेस है इंटरनेट का, दे हैव स्मार्टफोन्स. तो इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट तो मॉनिटर करना है कि बच्चा घर में बैठ के व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वो इंडल्ज कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन ही इज इफ ही इज ऑनलाइन तो वो किसके साथ बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हु आर हिज फ्रेंड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज हैविंग एंड व्हाट काइंड ऑफ चैट्स इज डूइंग, दैट इज वन थिंग. देन इफ ही इज कंटिन्यूअसली ऑन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, देन वेयर इज ही गेटिंग द फाइनेंसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर पेड प्लेटफॉर्म्स, कि हाउ लॉन्ग ही इज ऑन द गेमिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट इज हिज एक्टिविटी. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, यू नो, एवरीबडी हैज एक्सेस टू एवरी काइंड ऑफ साइट. सो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं और एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट. एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इज लाइक अडल्ट पोर्नोग्राफी और एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी. हमने बहुत बार देखा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल SESAM केसेस, दैट इज चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटीरियल विच इज अवेलेबल ऑनलाइन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी. सो उसमें देखा है कि द ऑफेंडर्स आर माइनर्स हु आर बिटवीन 14 to 16 ईयर्स. So this is a very, you know, concerning because as per Indian law and IT Act, and not only here, even abroad, that it is a serious offense to produce, view or transmit. That is ki to create or dekhna or aage share karna, forward karna. It is a very serious offense. So and recently, jo Supreme Court ke judgment mein, ये भी clarify कर लिया कि in case you have viewed it and deleted, तब भी it is an offense. So under these circumstances, it is the parent has to be vigilant that कि आपके बच्चा is not a victim of any cyber crime और खुद कोई criminal activity में indulge ना कर रहे.
0: हम साइबर जागो इनिशिएटिव के जरिए पंजाब पुलिस ने टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को साइबर सेफ्टी की चेन में जोड़ने की कोशिश की। इस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी सक्सेस क्या रही और क्या आपको लगता है कि साइबर अवेयरनेस को स्कूल तक ले जाना साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है?
1: पंजाब पुलिस, वी स्टार्टेड साइबर जागो प्रोग्राम लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में, टू स्प्रेड फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन, टू स्प्रेड साइबर अवेयरनेस एंड सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस. सो ये जो हमने जो शुरू किया है, सो वी स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग टीओटी वर्कशॉप, द ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स फॉर द टीचर्स. फर्स्ट हमने उनको सेंसिटाइज देम देन व्हाट आर दी ऑनलाइन क्राइम्स एंड थ्रेट्स द चिल्ड्रन फेस, देन हाउ टू आइडेंटिफाई इट, एंड देन हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रिवेंट, एंड हाउ टू रिपोर्ट दिस साइबर क्राइम्स. सो वंस हमारे जो सबसे बड़ा सक्सेस है इसमें दैट वी वर एबल टू कवर अराउंड 1,000 स्कूल्स, एंड द टीचर्स वर फर्दर एबल टू कवर अराउंड एजुकेट अराउंड 2,50,000 स्कूल स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल्सो इंटेंड टू कवर ऑल द स्कूल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर. एंड देन हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट वी हैव मेड इट थ्रू साइबर जॉब, वो वी हैव मेड इट आर एजेंडा टू प्रिपेयर आर नेक्स्ट जनरेशन टू बी साइबर सेफ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आस आर स्कूल चिल्ड्रन आर प्रिपेयर टू प्रिपेयर हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स एंड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द यूजर्स ऑफ इंटरनेट एंड द डिजिटल एडवांसमेंट. इस प्रयास में हमने इट्स लाइक अ मिशन मोड, वी हैव partnered with the teachers who will be our cyber messengers to take our agenda forward and educate and protect children from online threats and cyber crimes.
0: मैम, जैसे आपने बताया, आई थिंक दिस इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियली अप्रिशिएट पंजाब पुलिस फॉर टेकिंग दिस अहेड, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, बिकॉज इफ द लाइक वी नो द फ्यूचर ऑफ द कंट्री करंटली इन स्कूल्स आर वेरी वल्नरेबल टू सच क्राइम्स, अगर उनको इसी एज से सिखाया जाए, समझाया जाए ऑफ हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, एंड इवन द पेरेंट्स आर एजुकेटेड, जैसे आपने बताया द टीचर्स एंड पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडिंग देम, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू हेल्प एवरीबडी बी साइबर अवेयर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम साइबर क्राइम्स. हम साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट के वार्निंग साइंस क्या हैं और पेरेंट्स एंड टीचर्स इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
1: साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट रिफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज कनेक्टेड विद इंटरनेट, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया या स्मार्टफोन्स हो गए, मैसेजिंग एप्स हो गया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, वेयर यूजिंग दीज मीडियम्स टू टारगेट अ चाइल्ड by sending threatening or harsh or abusive messages so that the child gets traumatized. So usually there are different forms of cyberbullying and online harassment. So one form is sending and posting, you know, hostile and insulting messages directly to the child. Ek hota hai ki, you know, with the intention to provoke the child, you know, by sending these angry messages. The one is, you know, by creating fake profiles and on behalf of the child, you know, sending messages and information, and you know, and you know, it's like it's impersonating as a child, and so that, you know, it goes to a wider audience. So one more is like sharing, you know, sharing personal information, photographs or videos of the child without the consent of the child, you know, to humiliate or to embarrass the child. So you, and one more is, you know, there are these online groups and I think even online game apps may bacche ko exclude karna, not include karna, so that, you know, to again is to upset the child and ridicule the child. So when these kind of, if a child becomes a victim of cyberbullying or online harassment, so it affects the child psychologically and causes a lot of trauma. सो इसमें जो वार्निंग साइंस है, देयर विल बी बिहेवियरल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस. एक बिहेवियरल चेंजेस में उनकी वो अपना इंटरेक्शंस विद द फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल विल बी रिस्ट्रेन्ड, वो ही बिकम्स वेरी सीक्रेटिव एंड व्हेनेवर देयर इज अ मैसेज गेट्स वेरी इमोशनली चार्ज. देन इनकी एकेडमिक में भी परफॉर्मेंस में भी ग्रेड्स विल फॉल, ही विल बी रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, नॉट विलिंग टू डू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज, मे गिव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. And the physiological, physical problems also, like headaches, stomachache, sleep disorders. So if for a parent, when your child is going through these kind of emotional changes or physical changes, it is important to not be vigilant, be vigilant and check what could be the reasons. So first check with your friends, talk to the child and gain the confidence of the child so that the child opens up. Most of the time the child thinks दैट दे विल बी जज एंड विल बी ब्लेम फॉर दी ऑनलाइन हरेसमेंट ना, वो ओपन अप करते नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ. सो इम्पॉर्टेंट इज दैट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड कम आउट ऑफ इट. एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द पेरेंट इज दे हैव टू डॉक्यूमेंट द एविडेंस. सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस में जो स्क्रीन शॉट्स ले रहे हैं ऑफ दोस मैसेजेस मैसेजेस एंड ऑल एंड रिपोर्ट ऑन दी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, प्लेटफॉर्म में, सो दैट द अकाउंट्स गेट क्लोज. ऑल्सो रिपोर्ट ऑन एनसीआरपी पोर्टल वेर यू हैव विमेन एंड चाइल्ड कैटेगरी, वहाँ अनोनमस या मोड में भी कर सकते हैं या रिपोर्ट एंड ट्रैक मोड में भी कर सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप, वन मोर थिंग इज दे कैन ऑल्सो टेक इट अप विद द लोकल पुलिस स्टेशन. एंड इफ द चाइल्ड इफ द ऑफेंडर हूएवर इट इज समबडी नोन एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ द स्कूल, इट कैन शुड बी टेकन अप विद द टीचर्स ऑल्सो एंड प्रॉपरली काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द लेवल्स. सो साइबर बुलिंग हैज टू बी हैंडल्ड वेरी सेंसिटिवली बिकॉज समटाइम्स जब देर आर इंस्टेंस की वेन द चाइल्ड गेट्स सो ट्रोमेटाइज दैट दे कैन बी पुश टू कमिट सुइसाइड. सो वार्निंग सिग्नल्स हैज टू बी द रेड फ्लैग्स हैव टू बी रेड फ्लैग्स एंड वार्निंग सिग्नल्स हैव टू बी सीन बाय द पेरेंट एंड द टीचर ऑल्सो.
0: मैम, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर स्कैमर्स बच्चों से फ्रेंडशिप करके उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं कि उनका बच्चा किसी रिस्की ऑनलाइन रिलेशनशिप या मैनिपुलेशन का शिकार हो रहा है?
1: सी मोस्टली दिस चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर्स कीप लुकिंग यू नो गोइंग थ्रू दी डिजिटल स्पेसेस टू फाइंड विक्टिम्स, टू फाइंड चाइल्ड विक्टिम्स हु आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एप्स और ऑन गेमिंग एप्स. सो इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि दे लुक फॉर चिल्ड्रन हु आर लोनली और ट्राइंग टू सीक अटेंशन. सो वेंस दे आइडेंटिफाई अ टारगेट, वो अपना फेक आइडेंटिटी बना के बच्चे को पहले अपना फ्रेंडशिप की ऑफर करते हैं. सो दे ट्राई टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड बाई फॉर प्रिटेंडिंग टू बी द सेम एज ग्रुप. सो देन दे गेन द कॉन्फिडेंस, दे शो प्रोजेक्ट कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट कॉम्प्लीमेंट द चाइल्ड, मेक द चाइल्ड फील गुड दैट दे स्टार्ट बॉन्डिंग विद दी पर्सन. सो द फर्स्ट स्टेज हो गया कि बॉन्डिंग, सेकेंड स्टेज आ जाएगी देन दे वंस द बॉन्डिंग इज डन देन दी जो ये जो फेक प्रोफाइल करके जो जो ऑफेंडर है ऑफेंडर ही वुड वॉन्ट टू आइसोलेट द चाइल्ड फ्रॉम दी फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप इज केप्ट सीक्रेट. सो ही स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड वंस ही गेन्स स्टेज वन एंड स्टेज टू क्रॉस करने के बाद थर्ड स्टेज इज दैट इट्स अ टाइम वेन दिस प्रेडेटर और ऑफेंडर व्हाट वी कॉल ही वुड यूजली ट्राई टू मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट द चाइल्ड बाय टेकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फैमिली इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टार्ट सीकिंग फोटोग्राफ्स सेल्फीज. एंड वंस इट स्टार्ट्स एंड देन टू गेन कॉन्फिडेंस, बट प्रॉब्ली दे विल फर्स्ट सेंड देयर ओन ऑब्सीन कोई सेक्सुअल फोटोग्राफ, यू नो डिसेंसिटाइज करते हैं चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड डजंट रियलाइज जो काम कर रहे हैं इज अ रॉन्ग थिंग. सो देन आर सीकिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोग्राफ्स वीडियोज एंड वंस द पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड सो नाउ द चाइल्ड वुड ऑल्सो बी ब्लैकमेल्ड टू सेंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट इफ देर डू नॉट oblige the offender. So once the child has completely become a victim to an online grooming, this is called the grooming of the child. So then there are a lot of again behavioral changes in the child. The child becomes very secretive, spends lot of time online, अपने किससे चैटिंग कर रहे हैं वो छुपाते हैं. And then if they have started being blackmailed, so you know there are they are again they look upset. And then they do not want to continue with their regular whatever activities, pursue their hobbies. They do not meet their friends. So these are all red flags which a parent has to check that something is wrong with the child. So in this situation, again, it's the duty of the parent to see कि वो किनके साथ चैट कर रहे हैं, कि what kind of information is being shared during the chat, who are the friends. all these has to be the parent has to be vigilant and have to monitor and check all these activities of the child. And once in case ye ho gaya that yes, the child has become is a victim of some kind of an online grooming, then once again it is you have to preserve the evidence, screenshot karke, and then report, seek help, report on cybercrime portal and also to the local police station, and also seek help to the child so that the child से ट्रस्ट करके. मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चाइल्ड को जज नहीं करना है, उनको नेम शेम करना नहीं है, उनको सपोर्ट करके दे शुड हेल्प द चाइल्ड इन गेन द ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू शेयर एवरीथिंग.
0: मैम, अगर किसी बच्चे या टीनेजर की फोटो या वीडियो का मिसयूज हो जाए, फेक कंटेंट बनाकर ब्लैकमेल किया जाए या उसे डराया जाए, तो उस सिचुएशन में तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
1: See, in there are two situations here. एक तो एक फोटो या वीडियो वायरल हो गया, सो देन दी इमिडिएटली एक्चुअली इट कैन बी रिपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड देर आर ऑल्सो ऑन द पोस्ट ऑन द इमेज इटसेल्फ देर इज अ प्रोसीजर वेयर यू कैन रिपोर्ट दैट दिस इमेज इज अ फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट इमेज. वो देर दिस दिस लाइन्स आर देर, उसको प्रेस कैन यू press them, you get the report key icon comes, so where you can drop down mein aate hain, then you can report. And also on the platform also you can report directly, and also take a screenshot and report on NCRP portal of same thing where child and women, where corrective measures can be taken and the image can be blocked. In case a child is being blackmailed with a photo or a video which has not actually been made viral, nahi hua hai, but unko blackmail kar rahe, then it is important to report in the concerned police station and seek help.
0: हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, बहुत से बच्चे साइबर इंसिडेंट्स अपने पेरेंट्स या टीचर से शेयर ही नहीं करते। ऐसे केसेस में पेरेंट्स एंड टीचर्स क्या कर सकते हैं?
1: See, I think many times children do not share cyber incidents with their parents or teachers. एक तो children themselves are lack cyber awareness, so that is one important thing which I think is a reason. And दूसरी बात है कि they again have this apprehension कि वो हमारी बात मानेंगे ना या ट्रस्ट करेंगे. So this is the reason why most of the time they do not report cyber incidents to the teachers or to the parents. So इसमें बहुत जरूरी है कि we should keep talking to the children and they should कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सो दैट दे रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंज ऑनलाइन एक्टिविटी और एनीथिंग व्हिच दे मेक्स देम फील अनकंफर्टेबल, एंड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द पेरेंट और टू द टीचर.
0: हम आखिर में पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? वो कौन से साइबर सेफ्टी रूल्स हैं जो हर फैमिली को जरूर फॉलो करने चाहिए?
1: See, my message for the teachers would be that monitor your child's online activity. ये बहुत जरूरी है, and also set parental controls, because आजकल के इंटरनेट के अंडर डिजिटल एडवांसमेंट एवरी काइंड ऑफ कंटेंट कैन बी इजिली एक्सेस. सो पेरेंट एंड कंट्रोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो स्क्रीन टाइम शुड बी डिसाइडेड कि हाउ मच टाइम द चाइल्ड इज यूजिंग द स्क्रीन, एंड यू शुड टॉक टू योर चाइल्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अवेयरनेस. ये बहुत जरूरी है कि दैट कंटिन्यूस टॉकिंग ओनली विल मेक द चाइल्ड रियलाइज दैट इफ एनी स्ट्रेंज थिंग हैपन दे हैव टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. सो पेरेंट्स का मेरे ऐसे मैसेज है कि टॉक टू योर चिल्ड, टॉक टू द बच्चों से बात करना एंड गेन देयर कॉन्फिडेंस. फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए दर्स अ ह्यूज

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम साइबर जागो जो शुरू किया उसमें हम टीचर्स को ही हम अपना साइबर मैसेंजर्स बनाया दैट चिल्ड्रेन ट्रस्ट द टीचर्स मोर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू टू कंटिन्यूअसली टॉक टू देम एंड टीच देम व्हाट आर द डिफरेंट ऑनलाइन साइबर थ्रेट्स एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम एंड ऑल्सो सेफ इंटरनेट यूज बिकॉज आज के जमाने में इंटरनेट इज द विंडो टू द नॉलेज. सो चिल्ड्रेन शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस नॉलेज. सो दूसरी बात है कि टीचर्स शुड ऑलवेज टीचर्स के लिए मैसेज है कि टीचर्स ऑलवेज लिसन सपोर्ट एंड एक्ट ऑन एनी कंप्लेन्ट्स विच योर विद द चाइल्ड ब्रिंग्स टू यू. एंड फॉर चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट चेंज शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन योर फोटोग्राफ्स योर फैमिली इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और विद स्ट्रेंजर्स. यू नेवर नो कि वो कहाँ तक पहुंच जाती है. सो शुड बी वेरी विजिलेंट डोंट शेयर एंड इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी विच यू फील स्ट्रेंज और विच मेड यू अनकंफर्टेबल यू शुड रिपोर्ट इट. यू शुड रिपोर्ट टू योर पेरेंट यू शुड रिपोर्ट टू योर टीचर एंड देन साइबर हाइजीन शुड बी प्रैक्टिस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड का प्राइवेसी सेटिंग शुड इंश्योर दैट योर इंफॉर्मेशन योर सेटिंग्स आर नॉट पब्लिक एंड व्हाट एवर यू पोस्ट डजंट गो पब्लिक.
1: मैम, बच्चों और टीनेजर्स को टारगेट करने वाले साइबर क्राइम्स, उनके वार्निंग साइंस और प्रिवेंशन के प्रैक्टिकल मेजर्स पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। साइबर सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और अवेयरनेस का भी विषय है, और आज के सेशन में ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझाई गई आपके द्वारा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साइबर अलर्ट। थैंक यू।
0: थैंक यू.

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

दिल का हम आवाज सबको सुनाएंगे। दामिनी जी की मीठी आवाज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं और कुछ बेहतरीन गीत, कहानी, कविता के साथ जरूर आती हूं। पूछूंगी आप दोस्तों से सवाल जिसका जवाब आप देंगे 9414151415 पर। सरफरोशी की तमन्ना, इसके बाद अगला गीत जरूर होगा, पर उससे पहले एक है हम, सचमुच भारतवर्ष एक है और इस एकता को बरकरार रखना है, बचाए रखना है। इस एकता की हर भरसक कोशिश करनी है कि भारत की एकता और प्रभुता कभी ना टूटे। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

वी आर वन, एक है हम। आज की अमेजिंग जानकारी या कहें कबीर के विषय पर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं मोना तैयार हूं। 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 के दौरान इनका देहांत हुआ। नाम था कबीर दास। कबीर साहब एक संत कबीर जैसे रूपों में ही प्रसिद्ध रहे। मध्यकालीन भारत में, जी हाँ दोस्तों, मध्यकालीन भारत में स्वाधीन चेता महापुरुष में से उन्हें माना गया। इनका परिचय प्राय ये दिया जाता है कि वो एक सफल साधक, भक्त कवि, मत प्रवर्तक तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते। इनके जो पंथ है, संप्रदाय भी काफ़ी प्रचलित है और एक अलौकिक रूप में वो पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। साथ ही साथ भक्तिकाल और हिंदी साहित्य में उन्होंने कई कविताएं, कई ऐसी खूबसूरत चीज़ें लिखी जो आज भी जाने जाते हैं। कबीरदास जी अनेक किंवदंतियों के लिए जाने जाते हैं। लहरा तार तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में वो जाने जाते हैं। कहते हैं युवा अवस्था में रामानंद स्वामी के साथ वो मिले, उन्हें हिंदू धर्म के बारे में पता चला। एक दिन एक प्रहर एक रात रहते भी कबीर पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर गिरे। रामानंद जी गंगा स्नान करके सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा और तत्काल मुंह से राम राम राम राम मिला। कबीर ने दीक्षा मंत्र भी कुछ यही लिया। कहते हैं कबीर कहे कुछ और, काहे रोए यहाँ कोई तेरा तो नहीं है। चलिए इस गीत को आपके सामने सबसे पहले पेश करते हैं।

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो अब

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: बिल्कुल धूम्रपान को अलविदा और धूम्रपान से हट कर रहें, बच कर रहें। वेल दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसी व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के विषय पर आपको जानकारी जरूर देते हैं। ये नाम है माइकल मधुसूदन दत्त का। थोड़ा अलग हटकर लग रहा है ना, लेकिन इनके विषय पर जब पता चलेगा तब आप थोड़ा आश्चर्य जरूर आपको होगा। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और नाटककार थे। उनका हिंदू नाम मधुसूदन दत्त था, लेकिन ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने और एक ईसाई युवती से विवाह करने के बाद उन्होंने अपना नाम रखा माइकल मधुसूदन दत्त। वैसे वो एक माइकल मधुसूदन दत्त बंगाल में अपनी पीढ़ी के उन युवा वर्गों में प्रतिनिधित्व करते थे जो तात्कालीन हिंदू समाज के राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन से क्षुब्ध थे। अतिशय भावुक व्यक्ति होने के कारण, भावुकता के कारण उन्होंने अनेक रचनाएं रची, बांग्ला में भी और अंग्रेजी में भी। जी हाँ, इंग्लिश में भी उन्होंने रचना रची। और माइकल मधुसूदन ने मद्रास में कुछ पत्रों में संपादकीयों का भी काम किया। उनकी पहली कविता इंग्लिश भाषा में 1849 में प्रकाशित हुई, पर इन्हें वास्तविक प्रतिष्ठा बांग्ला भाषा की रचनाओं की वजह से ही मिली। और उनके द्वारा एक बहुत सुंदर कवि जो मैंने लिखी गई वो था उनका पहला बांग्ला नाटक शर्मिष्ठा। इसके प्रकाशन के साथ साथ बांग्ला के साहित्यकार वो बन गए और उनके दो अन्य नाटक पद्मावती और कृष्ण कुमारी भी बहुचर्चित और बहुत प्रसिद्ध रहे। शर्मिष्ठा नाम का जो एक खूबसूरत नृत्य नाटिका है वो माइकल मधुसूदन के द्वारा ही रचित रहा है। चलिए दोस्तों इसके साथ साथ एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं।

बेखौफ रहना ज़रूरी है, और किसी न किसी तरीके से भी कोई यदि आप पर जुल्म करता है या फिर आपको नीचा करने की कोशिश करता है तो अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। एब्यूज़ को सहने की आवश्यकता नहीं, तभी तो ये बात भी हमारे समक्ष आती है कि परिवर्तन तब होगा जब हम खुद उसे चुनौती देंगे। लेकिन आपको एक स्वादिष्ट बात कहने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आम तौर पर छोले के साथ, छोला, हाँ हाँ, छोले के साथ क्या चीज़ खाई जाती है? इनमें से आम तौर पर कौन सी चीज़ छोले के साथ खाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है ए इडली, बी भटूरे, सी अप्पम। सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना, क्योंकि आप सुन रहे हो उड़ान, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं सर? हेलो जी, कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं
0: जी। बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए सर
1: जी, आप क्या चाहिए? भटूरे।
0: भटूरे, अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या पसंद है आपको? अच्छा, ऑयली चीज कम पसंद है। खैर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत रेडियो मधुबन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक और श्रोता गण है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं शिवाज भाई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: और दीदी, आपको सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग।
0: थैंक यू।
1: और गुड इवनिंग।
0: जी जी जी।
1: और दूसरी बात, आज फोन अच्छी तरह से लग नहीं रहे।
0: जी जी जी जी।
1: और दूसरी बात, आज का भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था।
0: जी।
1: हम स्टार्ट से सुन रहा हूँ। समानता, एकता होनी चाहिए। आपने संत कबीर जी,
0: जी
1: और बांग्ला देश के मशहूर राइटर मधुसूदन जी के बारे में जानकारी दी
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए
0: जी।
1: बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा दीदी।
0: थैंक यू। नमस्कार, बताइए बताइए।
1: और दीदी, सवाल का जवाब तो पंजाब का मशहूर आइटम छोले भटूरे ऑप्शन बी, ये जवाब सही है।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: सभी को नमस्कार।
0: चलिए, हमारे सुभाष जी ने भी अपनी बात रख दी है, लेकिन ये गर्मा गर्म फूले भटूरे, प्लेट सजी है महके छोले, साथ में हो अगर थोड़ा अचार तो दिल मेरा खुशी से डोले। मुंह में पानी लाते ये छोले भटूरे, हर बाइट्स में जादू सा घोले। दिख जाए तो थाली मुझे ये, तो मेरे होठों में बस जाए ये बोले। दुनिया में चाहे कुछ भी कहो, छोले भटूरे हैं सबसे अनमोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या लेके आया बंदे, क्या लेकर जाएगा। इस गीत से पहले एक कहानी आपके लिए। गधे की चालाकी में फंस गया।
2: भेड़िये को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार बेवकूफ बनाया हो। इस कहानी में एक साधारण गधा अपनी चालाकी से ऐसा खेल खेलेगा कि भेड़िया हर बार खुद अपने ही जाल में फंसता चला जाएगा। लेकिन आखिर में जो हुआ, उसने पूरे जंगल को हिला दिया।
3: बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था हरियापुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक बड़ा जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और एक खतरनाक भेड़िया भी। लेकिन इस कहानी का असली हीरो कोई शेर या हाथी नहीं, बल्कि एक साधारण सा गधा था, जिसका नाम था धनराज। धनराज दिखने में बिल्कुल साधारण था। भूरे रंग का शरीर, लंबी पूंछ, बड़े कान और थोड़ा सा टेढ़ा चाल चलने का अंदाज। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो बहुत चतुर था। इतना चतुर कि गांव के लोग भी उसकी समझदारी की मिसाल देते थे। धनराज एक किसान के पास रहता था। किसान का नाम था रामू काका। रामू काका बहुत दयालु इंसान थे और धनराज से बहुत प्यार करते थे। धनराज रोज सुबह खेतों तक अनाज, सब्जियां और लकड़ी ढोकर ले जाता था। एक दिन रामू काका ने प्यार से कहा,
4: धनराज, तुम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बहुत समझदार भी हो।
3: धनराज मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन उसकी चतुराई उसे बड़ी मुसीबत से बचाएगी, और वो दिन जल्दी ही आने वाला था। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था, उसका नाम था भोकाल। भोकाल बहुत ही मूर्ख लेकिन बेहद लालची था। वो हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार 3 दिन तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख के कारण उसका पेट पीठ से चिपकने लगा। उसने सोचा,
4: अगर आज भी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा।
3: तभी उसे दूर खेतों की तरफ जाता हुआ धनराज दिखाई दिया। भोकाल की आंखें चमक उठी।
4: वाह, कितना मोटा ताजा गधा है, अगर इसे पकड़ लूं तो कई दिनों का खाना मिल जाएगा।
3: भोकाल धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिपकर धनराज का पीछा करने लगा। लेकिन धनराज भी कम चालाक नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मन ही मन बोला,
4: लगता है आज मेरी बुद्धि की परीक्षा होने वाली है। धनराज ने सोचा, अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो भेड़िया मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मुझे दिमाग से काम लेना होगा।
3: अचानक धनराज लंगड़ाने लगा और धीरे धीरे चलने लगा। भोकाल ने ये देखा तो खुश हो गया।
5: अरे वाह, ये तो पहले से ही घायल है, अब इसे पकड़ना और भी आसान होगा। भोकाल तेजी से धनराज के सामने आकर खड़ा हो गया।
6: रुको गधे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते,
3: धनराज डरने का नाटक करते हुए बोला।
7: ओ नहीं, कृपया मुझे मत खाओ, मैं तो पहले से ही बीमार हूँ, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे।
3: भोकाल थोड़ा घबरा गया।
5: क्या बीमार? कैसी बीमारी?
3: धनराज ने बहुत गंभीर आवाज में कहा।
4: मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है, कांटेदार बुखार। जो भी मुझे खाता है उसके गले में कांटे उगाते हैं।
3: भोकाल डर गया।
6: नहीं, मैं कांटे नहीं उगाना चाहता।
3: लेकिन उसकी भूख बहुत तेज थी। उसने सोचा,
6: ये गधा मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। भोकाल जोर से हंसा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला।
3: धनराज समझ गया कि पहली चाल पूरी तरह काम नहीं आई, अब उसे और बड़ी चाल चलनी थी।
4: धनराज बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे खाना ही है तो खा लो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ।
3: भोकाल की आंखें चमक उठी। कैसा राज? धनराज धीरे से बोला,
4: इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका रास्ता बता सकता हूँ।
3: भोकाल सोच में पड़ गया। उसे सोना बहुत पसंद था, हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि सोने का क्या करना है, लेकिन लालच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया।
6: ठीक है, पहले खजाना दिखाओ फिर मैं तुम्हें खाऊंगा।
3: धनराज मुस्कुराया, चलो मेरे पीछे।
2: धनराज भोकाल को जंगल के अंदर एक पुराने कुएं के पास ले गया। उसने कुएं की तरफ इशारा किया, खजाना इसी कुएं के अंदर है। भोकाल कुएं के अंदर झांकने लगा। अंदर पानी में उसकी ही परछाई दिखाई दी। भोकाल खुशी से चिल्लाया,
4: मुझे सोने के सिक्के दिख रहे हैं।
6: धनराज बोला, हाँ हाँ, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें अंदर कूदना होगा।
3: भोकाल ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। वो सीधे ठंडे पानी में गिर गया। भोकाल तैरना नहीं जानता था। वो घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। धनराज ने राहत की सांस ली और तेजी से वहां से भाग गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भोकाल इतना भी कमजोर नहीं था। वो किसी तरह बाहर निकल आया और अब वो पहले से ज्यादा गुस्से में था।
6: उस गधे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब मैं उसे ढूंढकर जरूर खाऊंगा।
3: उसने पूरे जंगल में धनराज को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर धनराज समझ गया था कि भोकाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसने सोचा,
4: अब मुझे ऐसी योजना बनानी होगी जिससे भेड़िया हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे।
3: धनराज जंगल के अपने दोस्त बंदर मोंटू के पास गया। धनराज बोला,
7: मोंटू भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
8: मोंटू बोला, बताओ दोस्त, क्या करना है?
3: धनराज ने पूरी योजना बताई। दोनों ने मिलकर सूखी घास और मिट्टी से एक नकली शेर बना दिया। दूर से देखने पर वो बिल्कुल असली लग रहा था। धनराज उस नकली शेर के पास खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा,
8: हे महान शेर महाराज, कृपया मेरी रक्षा कीजिए।
3: इतने में भोकाल वहां पहुंच गया। उसने शेर को देखा और डर से कांपने लगा। भोकाल बोला,
8: ये शेर यहाँ क्या कर रहा है?
4: धनराज बोला, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है।
6: भोकाल डर गया,
7: नहीं, मैं शेर से नहीं लड़ सकता।
3: भोकाल भागने ही वाला था, तभी हवा चली और नकली शेर गिर गया। भोकाल समझ गया कि उसे फिर बेवकूफ बनाया गया है। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। भोकाल अब पूरी तरह गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो जोर जोर से गुर्रा रहा,
6: अब बहुत हो गया, उस गधे ने मुझे दो बार बेवकूफ बनाया, लेकिन अब मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा।
3: उधर धनराज को अंदाजा था कि भोकाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। धनराज ने सोचा,
4: अगर मैं हर बार उसे धोखा देकर बचता रहूंगा तो एक दिन वो मुझे पकड़ ही लेगा। अब मुझे ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे वो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे।
3: धनराज गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे अपने पुराने दोस्त कछुआ टिंकू की याद आई, जो अपनी धीमी चाल लेकिन गहरी समझ के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। धनराज तुरंत नदी किनारे पहुंचा जहां टिंकू रहता था। टिंकू आराम से धूप सेक रहा था। धनराज ने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुनाई। टिंकू मुस्कुराया और बोला,
9: जब दुश्मन बहुत लालची हो तो उसे हराना आसान हो जाता है।
3: धनराज ने पूछा, कैसे? टिंकू ने धीरे से कहा,
10: उसे खुद की गलती में फंसने दो।
3: धनराज को योजना समझ में आ गई और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोखला हिस्सा था। अंदर बोलने पर आवाज गूंजकर बाहर आती थी, जिससे लगता था कि पेड़ बोल रहा है। धनराज ने सोचा,
4: अगर भोंकाल को लगे कि पेड़ में कोई जादुई शक्ति है तो वो जरूर लालच में आएगा।
3: धनराज ने अपने दोस्तों की मदद से योजना तैयार की। बंदर मोंटू पेड़ के पीछे छिप गया और कछुआ टिंकू पेड़ के अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद भूकाल वहां पहुंचा। धनराज जोर से बोला,
4: हे जादुई पेड़, मुझे बताओ क्या आज मेरा दुश्मन मुझ पर हमला करेगा?
9: पेड़ के अंदर छिपे टिंकू ने गहरी आवाज में कहा, जो भी लालची होगा वो खुद अपने जाल में फंसेगा।
4: भूकाल ये सुनकर चौंक गया, अरे ये पेड़ बोल रहा है। भूकाल धीरे धीरे पेड़ के पास आया। हे जादुई पेड़, मुझे भी कोई राज बताओ।
11: पेड़ की आवाज आई, अगर तुम सच्चे दिल से 3 बार पेड़ के चारों ओर घूमोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी।
3: भूकाल तुरंत घूमने लगा। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। जैसे ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, बंदर मोंटू ने ऊपर से सूखे पत्तों की बोरी गिरा दी। भोकाल पूरी तरह पत्तों में फंस गया। धनराज जोर से हंस पड़ा। भोकाल फिर गुस्से से चिल्लाया,
4: तुमने फिर मुझे बेवकूफ बनाया।
3: वो किसी तरह बाहर निकला, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका धैर्य खत्म हो रहा था।
12: धनराज जानता था कि भोकाल अब सीधे हमला करेगा, इसलिए उसने आखिरी और सबसे मजेदार योजना बनाई। गांव के पास एक पुराना ढोल पड़ा था। धनराज ने उसे जंगल में ले जाकर एक गड्ढे के ऊपर रख दिया और ऊपर से घास डाल दी। जब भोकाल वहां पहुंचा तो धनराज ढोल के पास खड़ा होकर बोला,
9: भोकाल तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पहले इस जादुई ढोल की परीक्षा पास करनी होगी।
4: भोकाल ने पूछा, कैसी परीक्षा?
9: धनराज बोला, जो भी इस ढोल पर कूद कर जोर से चिल्लाता है उसे जंगल का राजा बनने की शक्ति मिलती है।
3: भूकाल की आंखें चमक उठी।
4: जंगल का राजा मतलब शेर से भी ज्यादा ताकतवर?
9: धनराज बोला, हाँ।
3: बस फिर क्या था, भूकाल दौड़कर ढोल पर कूदा, ढोल फटा और भूकाल सीधे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा गहरा था और बाहर निकलना मुश्किल। धनराज ने ऊपर से झांक कर कहा,
9: भूकाल ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धि।
3: भूकाल को अपनी गलती समझ आ गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया,
10: मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था।
4: धनराज बोला, अगर तुम वादा करो कि कभी किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
3: भोकाल ने तुरंत वादा किया। धनराज और उसके दोस्तों ने मिलकर भोकाल को बाहर निकाला। उस दिन के बाद भोकाल ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। वो जंगल में शांति से रहने लगा। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लालच इंसान या जानवर को मूर्ख बना देता है। धनराज भले ही एक साधारण गधा था, लेकिन उसकी चतुराई ने उसे सबसे खास बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।

वेल दोस्तों, पुनः आज का सवाल। इनमें से आम तौर पर छोले के साथ क्या खाया जाता है? ए इडली, बी भटूरे, सी अप्पम। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे में इन परिस्थितियों में हमें सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार लोग बाग आपको यहाँ वहाँ की बातें कहते हैं, उन पर ध्यान न भी देना पड़ता है। लोगों पर ध्यान न दो, बल्कि अपने मंजिल पर फोकस करो। चलिए एक और छोटी सी कहानी लेकर आ रही हूँ अभी उड़ान में।
1: हार्ड वर्किंग था, बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेतों में काम किया करता था और साथ ही साथ पढ़ाई भी किया करता था, और वो लड़का पढ़ाई में भी अच्छा था। तो उस गांव के सभी लोगों को ये लगता था कि इस साल 12वीं में हमारे गांव से ये लड़का टॉप करेगा। लेकिन उस लड़के की परेशानी तो वही जानता था, उसे काम भी करना पड़ता था और पढ़ाई भी। तो अब क्या होता है कि 12वीं का एग्जाम आता है, वो लड़का एग्जाम देता है, और फिर कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो लड़का किसी एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स से फेल हो जाता है। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो सभी गांव वाले उस लड़के को ताने देने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि देखो इसे, दिखता था ये हाथी और निकला चींटी।

0: लड़का अपने घर से बाहर निकलता किसी भी काम के लिए, चाहे अपने खेत के लिए या स्कूल के लिए, तो रास्ते में गांव के जितने भी लोग उसे मिलते सभी उसका मजाक उड़ाने लगते और उसे ताने देने लगते। तो इसकी वजह से अब उस लड़के ने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। ना ही वो स्कूल के लिए जाता और ना ही अपने खेत में। जब ये बात उसके टीचर को पता चली तो वो खुद उस लड़के के घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने स्कूल में आना क्यों बंद कर दिया। दरअसल उसके टीचर को ऐसा लग रहा था कि फेल होने के बाद इसने हिम्मत हार दी है। तभी वो उस लड़के से कहते हैं कि एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता है, मुझे पता है कि तुम इस बार कर लोगे और तुम में तो काबिलियत है। तभी ये सब सुनने के बाद वो लड़का अपने टीचर को उसकी रियल प्रॉब्लम बताता है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ लोग मुझे ताने देने लगते हैं, और वो लड़का फिर उन्हें सारी बात बताने लगता है। जब सर उसकी सारी बात और प्रॉब्लम को समझते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस लड़के को एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सिखाना चाहते थे। तो उस लड़के से कहते हैं कि तुम एक काम करो, कल जब तुम स्कूल के लिए आओगे तो अपने साथ में एक दूध से भरा हुआ जग लेकर आना, और ध्यान रहे कि वो जग पूरा ऊपर तक दूध से भरा होना चाहिए और उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं होना चाहिए। और जब तुम उस जग को लेकर आओगे तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस जग पर होना चाहिए, उस जग से दूध का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अब लड़के को लगता है कि जरूर सर मुझे कोई बात समझाना चाहते हैं। तो लड़का अगले दिन वैसा ही करता है, अपने घर से निकलते वक्त वो एक दूध का जग अपने साथ ले लेता है जिसमें कि दूध पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। और जब वो उस जग को लेकर निकलता है तो उसका ध्यान, उसका फोकस उस जग पर इतना होता है कि अब जो भी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे और उसे जो भी बोल रहे थे वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उस लड़के का पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस जग पर था कि दूध का एक भी बूंद जग से नीचे नहीं गिरना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों की बातें, उनके ताने उसके कान तक पहुंच ही नहीं रहे थे। जब वो लड़का पूरा रास्ता पार करके अपने टीचर के पास पहुंचता है तो उसके टीचर उससे पूछते हैं कि बताओ क्या आज तुम्हें उन लोगों की बातें, उनके ताने सुनाई दिए। तो लड़का सोचने लगा कि आज मैंने पूरा रास्ता तय कर लिया लेकिन मैंने लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस जग पर था। इसी तरह जब आप भी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर रखते हो तो दुनिया, दुनिया के लोग और लोगों की बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपका फोकस कहीं और होता है। तो लोगों की बातों को इग्नोर मत करो, लोग तो बोलते थे, बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे, बस आपको अपना फोकस अपने गोल पर रखना है। लोगों की बातें खुद ब खुद आप तक पहुंचनी बंद हो जाएंगी। जिंदगी में असली ताकत टैलेंट से नहीं, फोकस और कंसिस्टेंसी से आती है। हर इंसान के आसपास लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तारीफ, कभी निंदा, कभी मजाक, लेकिन सच यह है कि दुनिया की आवाजें कभी रुकती नहीं है। सिर्फ हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस आवाज पर ध्यान देना है। जब हम अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं तब धीरे धीरे बाकी सब चीजें पीछे छूटने लगती है। नेगेटिविटी, ताने और लोगों की सोच सिर्फ तब तक हमें डिस्टर्ब करती है जब तक हम उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस दिन हमने अपना फोकस अपनी मेहनत और अपनी ग्रोथ पर शिफ्ट कर दिया उस दिन से बाहर की आवाजों का असर कम हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, यदि फोकस हमारा क्लियर है तो सभी बाकी आवाजें दूर हो सकती हैं। वेल दोस्तों, आज के सवाल का जवाब अब देने का वक्त है। आमतौर पर छोले के साथ हम अप्पम भी नहीं खाते और इडली तो बिल्कुल नहीं खाते। सही जवाब भटूरे हैं। जी हाँ, भटूरे के साथ छोले का अपना ही अलग मजा है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय और अगले कुछ गीत बेहतरीन और सुना देते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और आप लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है आसपास जो गतिविधि जन जन तक पहुँचाने के लिए तत्पर रहता है तो आज हमें खुशी है। कुछ दिन से आप पोलो ग्राउंड का रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आपको सुनाते जा रहे हैं क्योंकि सरकार का जो मंच है बच्चों को उमंग उत्साह दिलाने में जो हर साल पोलो ग्राउंड जो कि आबूराज में होता है प्रशिक्षण राजस्थान सरकार के तत्वावधान में ये गाइडलाइन में जो भी क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर पहुँच सिलेक्शन होने के बाद तो वॉलीबॉल हो चाहे हैंडबॉल बहुत सारा गेम यहाँ पर 6 प्रकार का गेम होता है प्रशिक्षण हर साल। तो जो इस साल का भी हुआ है तो उसका कवरेज करने के लिए रेडियो मधुबन पीछे नहीं रहा और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक गेम का जो कोच है जो कप्तान है जो विश्व पितामह कहते हैं लीडर का जो टीम का लीडर है खासकर आर्चरी तीर धनुष का कोच से हम मिलेंगे क्योंकि कहाँ कहाँ से बच्चे को सिलेक्शन करके लेकर आए तत्वाबधान में तो उनको स्वागत करते। सर आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन परिवार आपका परिचय इंट्रोडक्शन।
1: नमस्कार सर, मैं नरेश डामोर
0: जी सर
1: अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हूँ। मैंने भारत के लिए 6 पदक प्राप्त किए हैं जिसमें एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड भी है वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला हूँ और नेशनल लेवल पे 22 गोल्ड पे मैंने प्राप्त किए हैं। इस साल जो समर कोचिंग के हम जो 4 तारीख से लेके 24 तारीख तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जिला प्रशासन सिरोही द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप के अंदर में हमारे यहाँ पे 10 लड़के और 10 लड़कियाँ जो कि पूरे राजस्थान के हैं इनका सिलेक्शन होता है।
0: कैसे बेसिस?
1: इनका जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं महीना भर पहले वहाँ से जयपुर से इनका सिलेक्शन होता है जो मेरिट के आधार पे होता है। जो बच्चे नेशनल मेडलिस्ट है नेशनल पार्टिसिपेट है इस आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होकर बच्चे आते हैं। और इस कैंप के अंदर में एक माउंट आबू एक हाई अल्टीट्यूड जगह है बहुत अच्छी है खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पर मेडिटेशन बहुत अच्छा है स्पेशली तीरंदाजी गेम में। इस कैंप से कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दिए हैं इस कैंप से। राजस्थान से कम 10 से 15 बच्चे हैं जो मैं खुद भी इस कैंप का स्टूडेंट रहा हूँ 94 में और यहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये जो जगह है यहाँ आर्चरी के लिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है एक शांत वातावरण है। और इस बार भी कैंप के अंदर हमने खिलाड़ियों को बहुत अच्छी कोचिंग दी है जैसे कि इनका फिजिकली आर्चरी के अंदर में इनकी बेसिक्स ट्रेनिंग दी जो कुछ कमियाँ थी वो हमने पूरी की। तो आने वाले टाइम में ये बच्चे यहाँ से जो गलतियाँ हैं वो करेक्शन करके जा रहे हैं और आगे टूर्नामेंट में ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे राज्य और देश के लिए अच्छा पदक लेके आएंगे। और यहाँ हमने मेडिटेशन भी बच्चों को सिखाया कंपटीशन करने किस तरह से जैसे कई बार होता है बच्चा नर्वस हो जाता है तो उसको आप नर्वस सिस्टम को कैसे कम करना है वो ट्रेनिंग भी हमने इन बच्चों को सिखाई है 20 दिन के अंदर में। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा है। और तीरंदाजी एक्चुअली में क्या व्यक्तिगत गेम है और उसमें व्यक्तिगत गेम है आने वाले टाइम जैसे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये बच्चे
0: जी।
1: और नया बच्चा भी अगर जैसे कोई आना चाहता है
0: जी
1: तो वो आए इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर में ये गेम्स ओलंपिक तक है और बच्चा जैसे नेशनल लेवल पे भी अगर पदक प्राप्त करता है तो गवर्नमेंट के अंदर में खेल कोटे के अंदर में इनको नौकरी मिल सकती है। तो मैं ये करूँगा जैसे इस कैंप में भी बच्चे जो आउटसाइडर भी आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने ये सब अच्छा करें और अपना फ्यूचर भी स्पोर्ट्स के अंदर में बना सकते। धन्यवाद।
0: शॉर्ट एंड स्वीट में इतना मैंने सब चीज़ को रख दिए नेशनल से लेकर उनको करियर भी बनाना चाहेंगे तो अभी स्पोर्ट्स में इनको मैंने नौकरी मिलने में भी बहुत
1: बिल्कुल सपोर्ट है ना सर। अगर जैसे आप नेशनल लेवल पर खेले हो पार्टिसिपेट भी किया है तो आप जिस प्रोफेशन में जाओगे उसमें कहीं ना कहीं आपको वो बोनस पॉइंट मिलते हैं।
0: अरे मैंने देखे कोई भी जो स्पोर्ट्समैन है बाद में आकर भी नौकरी भी करते हैं
1: कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं।
0: ये भी प्लस पॉइंट है
1: बिल्कुल प्लस पॉइंट।
0: पहले भी ले सकते हैं बाद में भी
1: ले सकते हैं। जैसे आप खेल रहे हो नेशनल खेले हुए आप किसी पढ़ाई में अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली
0: आप नौकरी
1: उसमें भी आपको खेल कोटा मिलेगा। तो खिलाड़ियों को आना चाहिए एक अच्छा गेम है इसको करो तीरंदाजी बहुत अच्छा गेम है।
0: और ये इंडिविजुअल गेम है
1: आप है ना
0: जितना आ सकता बढ़ सकते हैं
1: अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जैसे कोच नहीं है फिर भी आप एक टारगेट लगा के कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जैसे मैदान में भी कर सकते हो फार्म में भी कर सकते हो इंडिविजुअल गेम है एक बहुत अच्छा गेम है।
0: क्योंकि खेल में 2 प्रकार का होते हैं एक तो आउटडोर और इंडोर और खासकर सिंगल व्यक्तिगत एक सिंगल कर सकते गेम जैसे आपने तीरंदाजी का बात बताया लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल
1: टीम इवेंट है तीरंदाजी एक इंडिविजुअल गेम है जिसमें सिंगल बच्चा भी प्रैक्टिस कर सकता है
2: जी,
1: और उसमें
2: एक प्लस पॉइंट
1: है ये,
2: और कर सकता है, चाहेगा तो इतना मेहनत
1: कर सकता है। सर एकलव्य ने भी दो प्रैक्टिस करके किया ही, तीरंदाजी कर की थी, तो सेम है ये गेम भी, ऐसा इंडिविजुअल गेम है, आप जितना फोकस करोगे, जितना आप खुद को फीलिंग ले सकते हो।
2: बात आपने छेड़ दी जो एकलव्य का कहानी सुना दी, कितना है ना धनुष विद्या में पारंगम थे,
1: वो उसके मन में था कि नहीं मैं तीरंदाजी करूंगा, तो वो बिना गुरु के भी मतलब एक फोटो लगा के भी की ना तीरंदाजी। तो आर्चरी वो सेम वैसे ही है सर, ये गेम भी वैसा ही है, अगर आपके है कि नहीं मैं अच्छा करूंगा, आपको पता रहना चाहिए कि मेरा तीर कहाँ जा रहा है, क्यों भाग रहा है, उस गलती को अगर आप पकड़ लोगे तो आप इंडिविजुअली मतलब कर सकते हो। बेसिक चीज़ें सीखने के लिए कोच की ज़रूरत होती है, लेकिन रेगुलर
2: प्रैक्टिस,
1: हाँ रेगुलर खुद की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए।
2: जो इंस्ट्रक्शन जो नियम है,
1: हाँ
2: क्या क्या नियम होता है, जैसे कोई एकलव्य जैसे उनका पास इतना साधन नहीं, उनका
1: हाँ।
2: कोई सोर्स नहीं,
1: हाँ।
2: तो घर में बैठकर मैनेज करना चाहेंगे एकलव्य जैसे, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन,
1: हाँ हाँ
2: जो नियम है,
1: जो सर ये मॉडर्न आर्चरी है, इसके अंदर में आपको बेसिक चीज़ें तो आपको कोच के पास सीखनी पड़ेगी, लेकिन आप जब बेसिक क्लियर कर जाओगे, एक टूर्नामेंट आपने पार्टिसिपेट कर लिया, इसके बाद आप परफॉर्मेंस के लिए करते हो तो आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा अचीवमेंट ले सकते हो।
2: जैसे कोचिंग करने का बेसिक जो चीज़ सीखने के लिए कोचर के पास जाएंगे तो कितने दिन का ट्रेनिंग होता है
1: ये? सर बेसिक आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे।
2: 6 महीने ड्राइविंग सीखते तो हमें 15 की 1 महीना गाड़ी फोर व्हीलर का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इसके बाद अपना घर में करते हैं,
1: कर सकते हैं, तो वो सेम है,
2: सेम ये भी
1: सेम भी ऐसे है।
2: तो पहले इसका इंस्ट्रक्शन कैसे,
1: हाँ पहले 6 महीने तो आपको बेसिक क्लियर करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट हमारे के इक्विपमेंट कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो गए, इसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा अचीवमेंट ले सकते हो।
2: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो जरूर इससे फायदा ले, और सर का जो इंस्ट्रक्शन बोले बिना पैसा से आज सभी को फायदा दे रही है, एक पुनीत काम कर रहे हैं सर, क्योंकि आपको जो सुन रहे जो भी बच्चे इस फील्ड में तीरंदाजी में आना चाहेंगे आर्चरी में, क्योंकि यहाँ का आदिवासी फील्ड है सर, क्योंकि तीर धनुष उनका घर में भी मिलेगा, क्योंकि आदिवासी लोग के पास तीर धनुष रहता ही है, और इस फील्ड में उसको बहुत माहिर है पढ़ने में, क्योंकि उनके बाप दादा का खानदान ही है, तो इसमें थोड़ा फायदा होगा। और
1: एक्चुअली में सर जैसे ये ट्राइबल बेल्ट है, जैसे अबू रोड जो तहसील है, जैसे सिरोही का, तो तीरंदाजी यहाँ क्या खून के अंदर तीरंदाजी है, कि एक जो मतलब नेचुरल तीरंदाजी है वो तो करते ही है,
2: बाप दादा का
1: वो करते ही है। इस जैसे ये जो मॉडर्न आर्चरी है, इसके अंदर अगर वो आते हैं तो उनको एडवांटेज मिलेगा, इसके अंदर वो जल्दी जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ तीर कैसे चलाना है वो, क्योंकि वो बचपन से जानते हैं चलाना। अब ये है कि गवर्नमेंट को भी आगे इस एरिया में स्पेशली इस बेल्ट के अंदर अकेडमियाँ खोलनी चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं सर, 4-5 लाख के आते हैं, तो गवर्नमेंट को स्कूलों के अंदर में हॉस्टल खोलने चाहिए तीरंदाजी के, ताकि इन बच्चों को आधुनिक तीरंदाजी का ट्रेनिंग मिल सके और उनको वो सुविधा मिल सके, ताकि वो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर सके।
2: बहुत अच्छा बात बताया अपना, एक जो आवश्यकता आपने बताया, यहाँ का मैंने देखा है सभी स्कूल में जो जाते हैं, तो यहाँ का बच्चों को एक जैसे इक्विपमेंट मिल जाए।
1: हाँ इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट,
2: मॉडर्न
1: इक्विपमेंट, क्योंकि सर ये तीरंदाजी जैसे क्या है वो ट्रेडिशनल आर्चरी है नहीं, ये क्या अभी बहुत कॉस्टली है, एक जैसे नॉर्मल लकड़ी का धनुष भी लेने जाओ 10,000 रुपये लगते हैं।
2: क्या बात।
1: और मॉडर्न आर्चरी वो कम से कम मतलब 5 लाख के आसपास धनुष आते हैं, तो इतना क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ज़रूरत है, जैसे माउंट आबू में भी एक सेंटर खुल जाए यहाँ पे तीरंदाजी का, तो इस वातावरण का सभी तीरंदाजों को फायदा मिले, स्पेशली जैसे आबू रोड में जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका स्पेशली कोई ऐसी स्कीम चला के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिले,
2: क्योंकि आप अनुभव भी है फील्ड में, शुरू से आप इतने तक पहुँचे इंटरनेशनल तक, तो इसलिए जो आवश्यकता रिक्वायरमेंट यहाँ के आप देखकर अपने प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों का भविष्य उसमें बन सकता है, क्योंकि कहीं कोई इंडिविजुअल लेना चाहेंगे तो उनको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में इतना पैसा कौन खर्च करेगा।
1: सर मेरा तो यही है, जैसे गवर्नमेंट को स्कूलों के अंदर में इक्विपमेंट देने चाहिए, तीरंदाजी जो आधुनिक तीर धनुष है ना वो इक्विपमेंट दिया जाए, जैसे टारगेट दिया जाए, धनुष दी जाए स्कूलों में ट्राइबल बच्चों को, तो वो अपना अभ्यास करके और फिर एक अच्छा सा सेंटर यहाँ बना जाए तीरंदाजी का, जिससे कि वो बच्चे नियमित अभ्यास करके आगे बढ़े।
2: तो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे आपने आशा की अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ तो ऑब्स्टेकल या कुछ प्रतिबंध आ रहा होगा?
1: सर गवर्नमेंट इस बेल्ट में तो अभी तक एक भी हॉस्टल नहीं है मेरे हिसाब से तीरंदाजी का,
2: जी
1: और होना चाहिए, जैसे अभी उदयपुर में हॉस्टल है, मतलब बांसवाड़ा में भी है, डूंगरपुर में भी एकेडमियाँ चल रही है, वहाँ से बच्चे, सिरे जिले में अभी तक नहीं है, यहाँ के जैसे स्पेशली जैसे गराशिया जनजाति है
2: जी जी,
1: उनके लिए एक तीरंदाजी की एकेडमी यहाँ खोलने की ज़रूरत है, या तो माउंट आबू भी खोल दे ऊपर, ताकि यहाँ के बच्चों को फायदा मिले।
2: सही बात। तो श्रोता मित्र खासकर हमारे प्रशासन सुन रहे, आवश्यकता जहाँ पर वहीं पर मिलेगा तो बहुत काम का मैंने आशीर्वाद दुआएं भी मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि गरीब बच्चे का जो दुआएं लगे उसका कोई करियर बनेगा तो जरूर याद करेगा, और कोई भी एक स्टेप लेगा तो जरूर कामयाब तक पहुंचेंगे। और मैंने कुछ बच्चों से भी इंटरव्यू लेंगे तो उनका भी भावना क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि आवश्यकता होने से यहाँ पर सरकार भी उसको थोड़ा देखेंगे तो हमें खुशी मिलेगा। और सबका अंगुली चाहिए, जैसे सार कोचर तो है ही, किंतु उसको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, उनका सिखाने का बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों का आवश्यकता, सबका सहयोग
1: की आवश्यकता,
2: सरकार का भी सहयोग चाहिए और बच्चों का भी, उम्र उत्साह भी चाहिए और कोचर भी, तीनों का जो गैप नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: तब जाकर एक स्नेह का मिलन होगा जो सभी कामयाब हो पाएंगे। तो जाते थे सर, और क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार को जो आवश्यकता वो बता दिए।
1: सर जैसे आपने भी बताया, जैसे ये ट्राइबल बेल्ट है, आर्चरी खुंद में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चों को तीरंदाजी में कैसे आगे आए, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, स्कूलों में इक्विपमेंट जाए तीरंदाजी का, ताकि इन बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने में सहायता मिले।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी करा दिया। और एक कोचर का जो भावना रहता है सबका प्रति, जनहित में, और सभी खेल जो प्रेमी है सबके लिए, सिर्फ तिरंदे सभी के लिए उनका उमंग उत्साह होना चाहिए, और उस का भावना है। आपको धन्यवाद देते हैं हमारा कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ तिरंदे जी हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे, उनका बात भी हम सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको खुशी लग रहा हो। और जो खेल में रुचि रखते हैं, गेम में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आज तो रामबाण जैसे और कुछ जानकारियाँ, अभी जो तीरंदाजी जो कि आर्चरी का जो कोच से हम बात की हैं, तत्पश्चात बच्चों से भी कुछ लेने के लिए इच्छा हुई। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों का जो उमंग उत्साह है और मन और बुद्धि में जो ठान लिए, जो संकल्प किए, तत्पश्चात उनका भाव और भावना को लेकर और करियर को बनाने के लिए क्या संकल्प लेकर जाएंगे, उनसे सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमारा एक स्टूडेंट जो आर्चरी सीख रहा है, तो उनको स्वागत करता, अपना परिचय देंगे।
1: जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम शेखर यादव है
0: जी।
1: मैं डूंगरपुर जिले से हूँ
0: जी सर।
1: और मैं एक तीरंदाजी खिलाड़ी हूँ
0: जी।
1: और मैं स्टेट खेला हुआ हूँ।
0: ओके।
1: और यहाँ का मैं कैंप में आया, यहाँ से मुझे अपनी अभिरुचि और अपने साहस से यहाँ के जो अद्भुत प्रशिक्षण है, इसकी ये प्रशिक्षण को लेते हुए मैं अपने आगे की तैयारी को और बेहतर बना पाऊंगा।
0: ये खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है?
1: यस सर।
0: वाह, ताली बजाओ। कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज, सक्सेस का मेन कॉन्फिडेंस। एज यू थिंक, जैसे आप सोचेंगे तो उस तरह बन पाएंगे। करते रहना, जरूर मंजिल तक पहुँचेंगे। बहुत अच्छा बात। इसको देना चाहते हैं, इस फील्ड तक इतना तो आप अचीव किए, जहाँ तक आप प्राप्ति किए, प्राप्ति का माला लगाना, जो मैंने क्या क्या पाया, एक माला प्राप्ति का अचीवमेंट, इसका जो अचीवमेंट जो आप लिए जाता है, इतना तक पहुँचे, श्रेय किसको देना चाहते? धन्यवाद।
1: मैं अपना श्रेय, अपना धन्यवाद अपने प्रशिक्षक तथा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
0: शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिए भाई, अपना प्रेरणा का स्रोत हमारा बड़े जो हमें हमारा शुभ इच्छा रखते, शुभ भावना रखते हैं, उनको देना चाहते हैं। वेरी गुड। इस तरह जब आपको बाद में कभी मीडिया वाला आपका पास पहुँचेगा, आपका इंटरव्यू, आपका अचीवमेंट का, तो आप अचीवमेंट में क्या बताएंगे, क्या क्या प्राप्ति किया है इस फील्ड में, आर्चरी में?
1: आर्चरी में सर, मैंने जो मैं वहाँ तक खेलूँगा, आगे तक जो मेरी हॉबी है, मैं वहाँ तक खेलूँगा सोचकर मैं तब मीडिया के सामने अपनी रूबरू को कहना चाहूँगा, अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा।
0: इससे फायदा किसको होगा?
1: फायदा सर मुझे भी होगा, अपने गुरुजनों को होगा जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया, अपने माता पिता को होगा, और जो नाम भी रोशन होगा,
0: देश का भी नाम आएगा।
1: आएगा
0: किस देश का है कि नहीं?
1: भारत
0: का भी आएगा। तो श्रोता मित्र, खासकर हमारा लिसनर्स सुन रहे, इस तरह जो बच्चे भी सुन रहे, तो उनको एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा का मिले, क्योंकि सिर्फ वो क्यों, हम क्यों नहीं पूछे, वो क्यों, एकलव्य क्यों, अर्जुन क्यों, मैं क्यों नहीं,

0: मैं भी तो कर सकता हूँ, ऐसे भी अर्जुन एकलव्य ऐसे ही मेरा जैसे भी था, कर सकते हैं?
1: यस
0: यस आई कैन, बोलो यस
1: यस
0: आई कैन,
1: आई कैन,
0: मैं कर सकता हूँ,
1: कर सकता हूँ,
0: मैं कर सकती हूँ, बोलो मैं,
2: बोलो
3: कर सकती हूँ,
0: बोलो जोर से मैं कर सकता हूँ,
1: मैं कर सकता हूँ,
0: मैं नहीं करूँगा तो
1: मैं नहीं करूँगा तो
0: कौन करेगा,
1: कौन करेगा,
0: मैं ही किया था,
1: मैं ही किया था,
0: मैं ही करूँगी,
1: मैं ही करूँगा,
0: मैं ही करूँगा,
1: मैं ही करूँगा।
0: चलिए लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक होवनहार चाहे तो उनको भी स्वागत करते हैं, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज बच्चे रेडियो स्टूडियो में पहुंच चुके, जैसे ओपन राउंड में सब एक एक आरजे बन गए। आरजे मतलब रेडियो जॉकी, रेडियो में जो बोलते हैं उसको आरजे कहते हैं सर। ये तो तिरुनंदन में तो लेंगे ही, लेकिन आज एक सेकंड के लिए उनको जैसे किसको प्रधानमंत्री बना दे तो क्या करेंगे, जैसे एक आरजे बन जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आरजे आज बन गए रेडियो में बोलने वाले को आरजे कहते हैं। तो एक पोस्ट भी मिल गया आज के लिए, एक एक आरजे। ओके, सभी आरजे बन जाएंगे ना?
1: यस सर।
0: आरजे मतलब मनोरंजन, रेडियो जॉकी। ओके, तो आपको खुशी लग रहा है ना?
1: यस सर।
0: क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ है रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो, आपका रेडियो आपके द्वारा। चलिए, हमारे साथ और एक छात्रा है, परी है, गुड़िया है। गुड़िया, आप अपना परिचय बताइए।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम हिनल पटेल है, डूंगरपुर जिले से हूँ और मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ रही हूँ
0: जी। और आपका दोस्त गुड फ्रेंड जो कि हमेशा साथ देती है कोई भी परिस्थिति हो, जो चीज़ हम माता पिता को नहीं बताते, लेकिन हमारा अच्छा दोस्त गुड फ्रेंड, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा अच्छा दोस्त था ना, जैसे गुरु शिष्य किसका नाम लिया था सर ने, एकलव्य और द्रोणाचार्य, कितना शिष्य और गुरु का एक संबंध, अभी दोस्त का संबंध, दोस्त और किस तरह दोस्त होना चाहिए। आपका अच्छा दोस्त का नाम बताइए।
2: सर, मेरे सबसे अच्छी दोस्त है पल्लवी, एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में है।
0: तो उनका एक विशेषता जो अति आवश्यक, आपका जब मैं भी उनका विशेषता को चोरी करूंगा तो हमारा जीवन में वो जैसे आज प्रसिद्ध हुई है, भाई मेरे अच्छा दोस्त बने, तो आप उनका कौन सा विशेषता मैंने गुण अच्छा चीज बताइए।
2: सर, मेरे हर सुख दुख में साथ देते मेरा, और कभी कोई गलत काम में साथ नहीं देती मेरा, हमेशा अच्छे कामों में साथ देती हूँ मेरा।
0: इसलिए उसका जो संस्कार, अच्छा संस्कार मैंने हेल्पिंग नेचर, सहायता देते, खराब चीज में अच्छा चीज में सहायता देते, इसलिए आपको सहयोग देते, सहायता भावना वो चीज़ आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तिरंजा जी में जो सिलेक्शन किए, ये आपका सोच ना आपका परिवार का सोच इस फील्ड में जो आना, आर्चरी जो तिरंजा जो गेम में प्रशिक्षण दे रहे, ये आपका सोच ना आपका परिवार बा कोई कैसे प्रेरणा लेकर आए, कौन आपको प्रोत्साहन किया इस फील्ड में आने में?
2: सर, इसमें टीचर्स थे मेरे साथ में और पेरेंट्स थे,
0: उसका भी सहयोग दिए, जिसका चलते आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जाकर देश का नाम रोशन करने के लिए दो पॉइंट बताओ, क्या करेंगे तो हमारा देश और खुद का, परिवार का, गांव का, राज्य का और देश का रोशन कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसे अटेंशन देंगे तो ज़रूर हम देश का और खुद का नाम रोशन करेंगे।
2: मैं किस गलत रास्ते में नहीं जाऊंगी, अपना जो सही रास्ता उस पर चलती रहूंगी, इससे अपने देश का नाम रोशन करूंगी, अपने परिवार का।
0: सही रास्ता में चलेंगे तो सही जगह में पहुंचेंगे। ओके, धन्यवाद। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक छात्र है, तो उनको भी स्वागत करते हैं। आज एक गुलदस्ता बन रहा, सभी का आवाज़ का गुलदस्ता, आवाज़ ही उनका पहचान होगा कि किसका आवाज़ है, जब सुनेंगे उसका मम्मी बुला रही है तो हमारा गुड़िया का आवाज़ है, ये तो हमारा गणेश का आवाज़ है, ये हमारा सर का आवाज़ है ना? तो आवाज़ का दुनिया में हम चल रहे। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए स्वागत करते हैं एक मनोरंजन आरजे, है ना? आज के लिए आरजे के लिए ताली बजा भाई, छोटा आरजे रेडियो जोकी बन गया। ओके, सबको अच्छा लग रहा है?
1: यस,
0: आई कैन, बोलो यस।
1: आई
3: मेरा नाम श्रीपाल सिंह है।
0: श्रीपाल जी,
3: नेपाली से
0: जी,
3: राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, उदयपुर।
0: उदयपुर से
3: जी सर।
0: तो क्या खासियत है उदयपुर का, जो जो प्रैक्टिस जहाँ पढ़ते, क्या खासियत जो आप उसी में गए, उदयपुर में गए, जयपुर की दूसरा जगह में नहीं गए, सिर्फ उदयपुर में क्या खासियत जो एकेडमी में, कुछ बताओ, क्योंकि हमारा श्रोता सुन रहे हैं, कोई स्टूडेंट सुन रहे तो उसमें वो भी ज्वाइन कर सकता है।
3: सर, वहाँ पर एक वातावरण बहुत अच्छा है, एक तो ग्राउंड और जो साथी है प्रैक्टिस करने, कोचेज वगैरह अच्छे हैं,
0: मैंने ए टू जेड सब चीज़ में सीखने को मिलता है। तो आज रेडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, आपको एक मंच मिला रेडियो जो के हिसाब से, तो क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को, आपका लिसनर को क्या कहना चाहेंगे, जो सुन रहे आपको क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ सर, मैं एक तिरंदाज हूँ, तो ये गेम बहुत अच्छा है, इसमें फोकस, अटेंशन और कंसिस्टेंसी का गेम है, तो इस ये खेलने से फोकस और कंसिस्टेंसी बढ़ती है, एक्यूरेसी, परफेक्शन, हर चीज़ अपना 100% देते हैं, इससे फोकस बढ़ता है,
0: फोकस अटेंशन मिलता, फोकस एक चीज़ में आपको फोकस पर लक्ष्य यही जगह एम पूरा फोकस करना है, तो उसमें जब कामयाब होंगे तो हमारे श्रोता मित्र ग्राम सब स्टूडेंट सुन रहे, तो फोकस शब्द जो देना है, कोई भी चीज़ को फोकस करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो उनके लिए जोर से ताली बजाओ। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ बच्चे से आवाज़ सुनेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: इस कार्यक्रम को अगला कड़ी में और एक स्टूडेंट है। हेलो, नाम बताइए।
1: मेरा नाम मई गांधी है, मैं बांसवाड़ा से।
0: अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है?
1: मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर एक इंडियन खिलाड़ी बनना
0: चाहता हूँ। कुछ किस फील्ड में?
1: आर्चरी में।
0: आर्चरी में इंडोर और आउटडोर दो गेम होता है ना, तो आर्चरी कौन सा गेम में आता है?
1: आर्चरी
0: आउटडोर।
1: आउटडोर
0: आउटडोर बाहर खेलते हैं ना, घर में खेल सकते हैं?
1: नहीं,
0: बाहर में खेल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। गणेश
2: जी सर, मैं
0: फिर भी साथ में देना।
3: और मैं अभी चलो,
4: मैं सर एक पैरा आर्चर हूँ। अभी सर मैं तीरंदाजी की तैयारी कर रहा हूँ। और सर मेरे को मतलब आगे तक जाना है। और सर मेरा सपना ये कि मतलब मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और अपने देश का तिरंगा मेरे कंधों पे होना चाहिए। और मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता
3: हूँ। देखो इसका जो
0: सोच, जो सर सोच तो हो कि नहीं हो, लेकिन पहला स्टेप तो पास किए ना, इसका बस सेकंड स्टेप ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला स्टेप में हम डाउन हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बहुत
1: अच्छा।
0: जब कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई साधन नहीं मिलेगा तो साधना कैसे करेंगे? साधन होना चाहिए ना, साधन कहाँ से जुगाड़ नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जैसे एकलव्य कुछ साधन नहीं था, लेकिन साधना कैसे किया? क्योंकि कभी साधन मिलता है, कभी साधन नहीं मिलता है। साधन नहीं मिलेगा तब भी जो कर पाएगा वो टॉपर हो जाएगा, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट।
5: मेरा नाम विशाल है, मैं नागौर से हूँ।
0: ओह वेरी गुड।
5: मैं भी उदयपुर अकेडमी में रहता हूँ।
0: बहुत अकेडमी से बहुत कराए हैं, बहुत अच्छा काम। तो उसको क्यों सिलेक्शन किए अकेडमी को? और कोई जगह नहीं है राजस्थान
5: भी है, पर उधर बात तो सुनी, उधर के कोच अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है।
0: चलो, जो भी सुन रहे हैं और खासकर एकेडमी जो उदयपुर वाले भी सुने होंगे तो उनको भी लगेगा क्या हमारा आज बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, करेंगे ना? हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट।
6: मेरा नाम जयराज मछार है।
0: जी जी।
6: बांसवाड़ा से।
0: और आगे क्या करना चाहते
6: हैं? अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ।
0: आपका कितना गेम को जानते हैं, कितना खेल को जानते हैं? जैसे तीरंदाजी एक है, ऐसे कितने गेम जानते हैं बताओ फटाफट।
6: सारे गेम हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, चेस, कैरम।
0: कौन सा छूट गया कोई बोलेगा? सभी खेल में, क्योंकि एक माला खेल का गुलदस्ता। हाँ बताओ
7: सर। स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, जिमनास्टिक है, वेटलिफ्टिंग है, रेसलिंग है, बहुत सारे गेम है।
0: क्योंकि सभी तो हमारा दोस्त है ना, है कि नहीं? उनको कैसे छोड़े, खाना हमारा सबको लेकर तो गुलदस्ता बनना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपना नाम बताइए।
8: मेरा नाम किरण कुमार है और मैं भीलवाड़ा जिले से।
0: अच्छा, इस संगठन में आप आज जो प्रोग्राम हुआ आज दिन भर क्या सीखा है? जो चीज़ आपके पास नहीं था, अभी हम एक घंटा से बात कर रहे थे सभी से, कुछ ना कुछ बात हुई है, तो इससे आपको क्या अच्छा लगा वो बताओ।
8: एक तो हमें फालतू की चीजों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए और अपने मन का कर करके प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
0: ये दोनों चीज आपको अच्छा लगा।
9: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
9: मेरा नाम विमला गोस्वामी है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से।
0: पूरा बॉर्डर में है
9: सर,
0: पाकिस्तान का बॉर्डर में। और धूप में तो बहुत तपते हैं, है कि नहीं? बाड़मेर तो सबको पता ही है कि नहीं? बाड़मेर का विशेषता बता, हम तो कभी नहीं गए, लेकिन आप बताएंगे तो हम यहीं से जा सकते। बता बाड़मेर बारे में, हमारा श्रोता भी जो नहीं गए वो बाड़मेर का विशेषता।
9: बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, अच्छा शांत इलाका है और मरुस्थल ज़्यादा है थोड़ा।
0: शांत इन द सेंस, सब लोग तो बोलते वहाँ डर लगता है भाई, कभी भी बम गिरेगा लेकिन आप शांत बोलते, बहुत आश्चर्य का बात है जहाँ पर हर दिन
9: सर वो तो बॉर्डर इलाके के 10 किलोमीटर के आसपास ऐसे होता है, पर सिटी के अंदर इतना नहीं है।
0: नहीं, लेकिन अभी कुछ नहीं होना चाहिए, होगा नहीं। हमारा भारत अखंड भूमि है। हाँ। कुछ खंड नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत अविनाशी खंड, परमात्मा का अवतरण भूमि है। तो भारत माता की
10: जय।
0: चलिए नेक्स्ट। सबको लग रहा ना अब मेरा आवाज़ जा रहा है, तो जब सुनेंगे तो अरे मेरा आवाज़ कब आएगा बोलते ना।
11: हाँ जी सर, मेरा नाम दीपिका शेखावत है और मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जयपुर अकेडमी में रहती हूँ।
0: अच्छा, वेरी गुड। आपका दो हो गया, आपका हाथ है ना, दिखाओ हाथ। इसका मतलब कितना ध्यान से सुन रहे, वो भी जरूरी है। जो इंस्ट्रक्शन जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना जरूरी है। आप कौन हो वास्तव में?
11: आत्मा।
0: याद रखा ना, वास्तव में हम सब एक आत्मा है और ये नाम मेरा है, पोस्ट मेरा है, रहने का स्थान मेरा है। ठीक है, बहुत अच्छा या ध्यान दिया, आत्मज्ञान।
12: मेरा नाम दीदी है।
0: तो आप क्या संगठन में क्या सीखने को मिला? संगठन में रहते कितने दिन रहा संगठन में? 10 दिन, 20 दिन? 20 दिन तो मिला, तो 20 दिन सबका विशेषता अलग अलग है, सबका सोच अलग, सबका संस्कार अलग, सबका विचार अलग, फिर भी सबसे मिलकर

0: तो सीखा होगा, संगठन में रहने से आपको क्या सीखने को मिला? आपको एकता से, एकजुट एकता से, संगठन में एकता का बल होना चाहिए, है ना? वेरी गुड। सबसे लास्ट और फास्ट जी, कैसे लगा आज का प्रोग्राम? क्या अच्छा लगा एक अच्छा बताओ, इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा? आपने बोला अच्छा प्रोग्राम है, सब अच्छे हैं और प्रोग्राम में अच्छा, तो क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा बताओ? अच्छा छोड़ दो, है ना?
1: हाँ, बुरा बता,
0: हम बुरा बता दो तो हम सब सतर्क रहेंगे, है ना? हमारा बुरा को हमें सुधारेंगे, कुछ गलत हुआ तो हम सुधारेंगे ना, हमें हमारे जैसे कोई तो सुधार नहीं सकता, हम खुद सुधार सकते, हमारा गलती को खुद सुधार सकते, कोई दूसरा बोलेगा ना, करना तो आपको है ना, भगवान भी बोला हाथ उड़ा, मैं क्या करूँ, तुम तो करेगा तुम्हारे हाथ में। हाँ, सब अच्छे, बुरा भी कुछ नहीं, अच्छा भी कुछ, अच्छा सब कुछ है, बुरा कुछ नहीं। चलो चलो, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर पोलो ग्राउंड में ओपन आकाश में और नीचे धरती में बैठकर हम लोग पूरा रूबरू हुए, और सभी आरजे को, छोटे छोटे आरजे को आज एक दिन के लिए बोले, रेडियो में बोलने के लिए मौका मिला, तो सभी को धन्यवाद। नाम का साथ आभार, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो आज के लिए सभी को बाय बाय, ओके, ताली बजा, ताली का साथ। और खासकर हमारा साथ जी, जिसका चलते हमें आज बैठने के लिए मिला, है ना?
1: धन्यवाद सर, आपने,
0: क्योंकि सार नहीं रहते हैं तो हमें कौन देता है, आप कहाँ बैठ पाते? सार नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो सार नहीं होते, और आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते, बोले सभी का विशेषता है ना।
2: यस सर,
0: कोई काम नहीं सोचना, मैं काम हूँ, सार का जितना इम्पोर्टेंस आपका भी इतना इम्पोर्टेंस। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त और हम सफर आरजे केवल, और वक्त हो चला है शाम की सुहानी वेला का, हमारे और आपके पसंदीदा खुशी के नगमे दिल की बातों का। जी हाँ दोस्तों, आज सोमवार, नया हफ्ता, और इस शाम जब हम दिन भर की भाग दौड़ के बाद शांत बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें की जाए जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को छूती है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा गहरा है, लेकिन आज के समय में इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारी आज की जनरेशन और आने वाली पीढ़ी में बढ़ते हुए एग्रेशन, यानी इस छोटे से गुस्से के बारे में जो पल पल पल भर में बड़ी बड़ी बातें बिगाड़ देता है। लेकिन शो की शुरुआत हमेशा की तरह एक प्यारी सी शायरी के साथ करते हैं। चिंगारी को हवा देने से तो सिर्फ आग बढ़ती है, चिंगारी को हवा देने से तो सिर्फ आग बढ़ती है, ठंडे पानी की बूंदे ही प्यास बुझाया करती है। बातें जो दिल से शुरू हो वो दिल को जोड़ती है, और गुस्से की एक छोटी सी लहर बरसों के रिश्ते तोड़ देती है। यहाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आज की और आने वाली जनरेशन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और एग्रेशन बढ़ रहा है। ज़रा सोचिए, आज के दौर में अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे की तारीफ कर दे तो बातें सीधे ब्रेकअप, ब्लॉक लिस्ट या फिर बड़े झगड़े पर जाकर रुकती है। बर्दाश्त करने और हंसकर टालने की आदत जैसे कहीं खो गई है। लेकिन हमारी आज की शाम की इस महफिल में मैं आपको ले चलता हूँ साल 1964 के उस दौर में, जहाँ रोमांस में गुस्सा नहीं बल्कि एक प्यारी सी शिकायत और बेपनाह सब्र हुआ करता था। यहाँ जहाँ नायक अपनी प्रेमिका को जलाने के लिए किसी और का नाम लेते थे और नायिका गुस्सा होने के बजाय प्यार से मुस्कुरा देती थी। तो चलिए, इस ठंडी और शांत सोच के साथ सुनते हैं आज का पहला नगमा जो आपके दिल को सुकून देगा। मिलते हैं गाने के बाद रेडियो मधुबन पर। सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964 की ये मूवी, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने इन्हें अपने आवाज़ों से सजाया था। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, गीतकार आनंद बख्शी साहब जी। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक मज़ेदार फैक्ट की बात यह है कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा की शुरुआती साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिसमें किशोर कुमार का किरदार एक गायब होने वाले इनविजिबल फॉर्मूला पी लेते हैं। इस गाने में नायक अपनी नायिका को चिढ़ाने और उसकी जलन देखने के लिए किसी और हसीना की तारीफ का नाटक करते। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोगों को सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि अगर कभी कोई किसी की तारीफ करता है तो किसी को जलाने के लिए भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे आज का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर कि एग्रेशन, गुस्सा जो हमारी आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन या आने वाली पीढ़ी की हम बात करते हैं, तो कभी सोचा है कि आजकल हम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? आज की जनरेशन 2 मिनट नूडल्स, 10 मिनट डिलीवरी और 5G इंटरनेट के दौर में जी रही है। 5G तो यहाँ है, बाकी सब जगह तो 6G, जैसे जापान जैसे शहरों में तो 6G 7G चल रहा है। हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट मैसेजेस और सब। लाइफ में कोई चीज़ें हमारी मर्जी में थोड़ी भी लेट होती है तो वो गुस्सा बनकर बाहर निकलती है। और सबसे बड़ी चिंता तो आने वाली जनरेशन की है, जो इन गैजेट्स और रील्स की दुनिया में और भी तेज़ी से बड़ी हो रही है। जहाँ 15 सेकंड में स्क्रीन बदल जाती है, वहाँ 15 मिनट का धैर्य रखना बच्चों के लिए मुश्किल होता जाता है। बात बात पर चिड़चिड़ा होना, चिल्लाना या ज़िद करना, क्या आपने भी अपने आसपास बच्चों में ये खुद में या बदलाव महसूस किया है? अगर ऐसा कुछ है और आप हमारे साथ कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर। यहाँ दोस्तों कुछ बातें याद आ रही इसी के बात पे, गुस्से के इस दौर में जो मुस्कुराना सीख जाए, गुस्से के इस दौर में जो मुस्कुराना सीख जाए वो तपती हुई धूप में भी छांव ढूंढ पाए। आज की पीढ़ी को बस थोड़ा ठहरना सीखना है, क्योंकि रिश्ते को असली मज़ा तो सब्र में ही समाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आज की और आने वाली पीढ़ी में बढ़ते एग्रेशन और चिड़चिड़ेपन की। आज की जनरेशन इतनी प्रैक्टिकल और फास्ट हो गई है कि उनके पास ख्वाब देखने का या किसी को सब्र से इंतज़ार करने का वक्त ही नहीं है। अगर कोई थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए या फ़ोन ना उठाए तो दिल में बेचैनी और गुस्सा भी भर जाता है। लेकिन चलिए इस गुस्से वाली रियल लाइफ से निकलकर ज़रा रियल मुस्कान, रियल सुकून की दुनिया में चलते हैं। साल 1965 में आए चलते, आपको ले चलते हैं जहां देव आनंद साहब की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी, 3 देवियां। लेकिन गाने के बाद चलते उससे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे, उनसे करते हैं बात। हेलो
1: जी सर, नमस्ते। गुड इवनिंग, सूरज भाई बोलता हूँ जेठाना से। कैसे सर?
0: गुड इवनिंग सूरज जी, कैसे हैं? हम बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: बस हम भी अच्छे हैं, आप आ गए, बस खुशी हो गई।
0: अरे वाह, शुक्रिया।
1: 8 बज जाते हैं, हम आपका इंतजार कर देते हैं कि चलो भाई सर जी आएंगे, बात करेंगे
0: जी।
1: और बस बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सर। आपकी जो अभी बच्चों की जो बात बताई आपने
0: जी,
1: तो बच्चों का तो अभी कहना ही क्या है सर। देखो आज सभी बच्चों को देखते हैं तो बस चिड़चिड़ापन ही करते हैं, कुछ बोलते हैं उसकी जवाब नहीं देते
0: जी।
1: कुछ बात करते हैं, कुछ हम बताते हैं तो करने के लिए तैयार नहीं है
0: जी।
1: जहाँ देखो तो बस एकदम गुस्से में हो जाते हैं बच्चे आज। उसके पास कुछ चीज ले लो, अभी इसको मोबाइल ले लो, उसके पास से तो बहुत चिल्लाता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो आज हाल हो गए बच्चे के
0: जी। बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर उनसे हम फोन हाथ में से ले ले या उनकी कोई ऐसी चीज को ना माने तो पूरा घर सर पे उठा लेते
1: हैं। हाँ सर पे उठा देते हैं, आज ऐसा हाल हो गया है। इसीलिए तो आज देखो मोबाइल की वजह से आज बच्चे इतना चिड़पण हो गए हैं, पता नहीं ये मोबाइल क्या करेगा आगे।
0: बिल्कुल,
1: ये आज बच्चे खाते है तो मोबाइल, सोते है तो मोबाइल।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा है मोबाइल बिना को रह नहीं सकता।
0: यस, और आजकल ऐसा भी है कि कई बार छोटे बच्चों को मोबाइल देना भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज बड़े कई बार घर से दूर होते हैं, काम करने जाते हैं और बच्चे घर में होते हैं, अकेले होते हैं, तो उनको फ़ोन देना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। ये भी कई
1: हाँ कई बात है, कभी कभी ऐसा देना ही ज़रूरी पड़ता है, क्या करें।
0: लेकिन फिर उसका यूज़ कैसे करें ये बहुत बड़ी बात है
1: जी। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल देने की थोड़ी देर के लिए, बात ज्यादा नहीं देना है।
0: बिल्कुल,
1: ज्यादा लेने से बच्चों को भी, बच्चे या बड़े हो सर।
0: हाँ बिल्कुल सही बात,
1: क्योंकि बहुत ये जरूरी है, कुछ बहुत यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान रहता ही है।
0: बिल्कुल,
1: हिसाब से कीजिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर होगा तो नुकसान होगा ही।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: बहुत अच्छी बात से हो रही सर। नमस्ते, आपको भी अच्छे गाने दे दूँ आज, कोई गाना याद आ रहा है कि?
0: बिल्कुल सुना दीजिए, कौन सा
1: बताइए सर जी। आप हमारे अंतरिक्ष भाई कैसे हैं?
0: अंतरिक्ष भाई बहुत अच्छे हैं, काफी दिनों हो गए उनसे मेरी बात नहीं हुई है, बट जी हाँ वो अहमदाबाद में है
1: तो
0: अभी।
1: कोई बात नहीं, अगर सुन रहे हैं तो हम बात याद करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी हमारे बीच में आ जाए और अच्छी बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं।
0: जी भाई जी।

0: पहले हमारे ऋषि भाई आते थे,
1: कौन
0: वो भी अच्छे ऋषि भाई आते थे,
1: ऋषि भाई जी, यस हाँ जी,
0: ऋषि भाई आते थे
1: जी
0: पहले, तो ऋषि भाई जी को खुशी के लग में दिल की बातें तैयार किया था पहले, तो बात नहीं हो गया पहले,
1: हाँ,
0: आते थे
1: काफी समय पहले
0: के लिए, बीच में बंद हो गया, लेकिन आपने शुरू किया तो हमने कभी खुशी रही।
1: हाँ, बस अपना तो आपके शाम के जो समय के जो गाने होते हैं ना, ये बड़े जरूरी होते हैं अपने पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए, तो ये तो शो बड़ा जरूरी है।
0: ऐसा ही गाना मैंने चुना है कि

0: गाना है सर।
1: चलिए सर, उसे कोशिश करते हैं आपके लिए ये गाना प्ले करने के लिए।
0: हमारे मदन भाई, हमें हमारे बुरा राम जी को भी हमारा राम राम बोल देना सर।
1: बिल्कुल, वो सुन ही रहे होंगे और हम उनकी तरफ से भी आपको राम राम, वो सुन ही रहे शायद आपको। और
0: हमने बीच में हमने बीच में नंबर लेके बात की है, बुरीलाल से रूबरू बात की थी।
1: अच्छा,
0: मोबाइल पे।
1: अच्छा,
0: तो बहुत खुश हो गए और हमने राम राम भी कर दिया।
1: अरे वाह, क्या बात है,
0: मोबाइल तक
1: बहुत बढ़िया।
0: हमारे जो कार्यक्रम आता है, हमारे खुशी देखा है, वो सुबह का नई किरण आता है, हम रमेश भाई ने नंबर दे दिया था, तो रमेश भाई के ये नंबर लेके हमने बात की थी बुरा राम जी से।
1: जी,
0: खुश हो गए कि आप हमारे कल जरूर बताइए। मैंने सोचा चलो हम आबू आएंगे तो आपके सर नजदीक है, इसका गांव 5 किलोमीटर की दूरी।
1: हाँ, यही पास में ही है।
0: हाँ, तो जरूर आपको हम वहाँ मिलेंगे।
1: जी
0: ठीक है सर, नमस्ते।
1: ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुरेश जी कॉल करने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे गाने के बारे में, तो चलिए इस गुस्से वाली रियल लाइफ से निकलकर ज़रा रियल सुकून की दुनिया में चलते हैं। साल 1965 में, जहाँ आप देवानंद साहब की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी तीन देवियाँ। इस फिल्म में कोई गुस्सा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक आशिक का अपनी महबूबा के लिए बेहद धीमा और रूहानी इंतज़ार था। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं फिर से ढेर सारी इसी टॉपिक पे बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। चलिए सबसे पहले ही बात करते हैं हमारे कॉलर से, हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं उनसे। हेलो,
1: नमस्कार और सुरेश भाई को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, नमस्कार। और सुरेश जी आपको सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको नमस्कार।
1: मेरा वो लेट हो गया, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था।
0: अच्छा,
1: इसलिए मैंने कहा अब लगाया, कोई बात नहीं, इनकी बात पहले सुन लो, आपकी बात में बाद में सुनेंगे अपनी बात।
0: क्या बात है, चलिए आज आपके दिल की बात सुनते
1: हैं। कोई बात नहीं, अभी अभी मौका मौके के साथ फायदा उठाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो मेरा गाड़ा भी है सर।
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
1: तुम्हें गाड़ा कहो।
0: हाँ जी,
1: गाड़ा की बोल मैं सुना।
0: हाँ बिल्कुल सुनाइए।
1: जब तक दंड में रहे जिया, समाधि गाड़ा फिल्म का नाम है, समाधि।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब तक तन में रहे जिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए।
0: जब तक तन में
1: रहे जिया,
0: रहे जिया।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: जब तक तन में रहे जिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए।
0: वाह,
1: क्या कहना है, आपके साथ में हम है, हमारे साथ में आप है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया गाना आपने चूज किया। चलिए कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास ये है हमारे इस प्लेलिस्ट में, तो आपके लिए जरूर से ये गाना बजाएंगे।
1: अरे निकल जाएगा, वो कैसे भी निकलेगा, अपनी डायरी में सब कुछ है।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, दुनिया की डायरी खोल सकती है, अपनी डायरी कभी नहीं खो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: मधुबन क्या है, दिल के अंदर मधुबन क्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसके अंदर हर चीज है।
0: चलिए कोशिश, थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद।
0: जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे भूरीलाल जी, इन्होंने बहुत ही प्यारा नगमा हमें सजेस्ट किया। चलिए सुनेंगे उनके इस नगमे के बारे में, इस गाने के बारे में भी आगे, लेकिन अभी जो हमने गाना सुना उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारे जो अभी हमने बोल सुने हैं, कानों में पड़ते ही आँखों के सामने ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर वो घुमावदार रास्ते, अपनी खास अदाओं से गर्दन झुकाए रोमांस के किंग देव आनंद साहब याद आ जाते हैं। जी हाँ, मजरूल सुल्तानपुरी साहब ने जब ये शब्द लिखे और दादा यानी कि हमारे एसडी बर्मन साहब ने इस पर अपनी धुन बनाई, तो किशोर दा ने इस गाने इसे गाते समय अपनी आवाज़ में वो जादू घोल दिया जो आज भी हमारी रगों में दौड़ते गुस्से को शांत कर सकता है। इस गाने को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। दोस्तों, आने वाली जनरेशन को अगर हम इस एग्रेशन से बचाने की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को शांत रहने का रोल मॉडल बनना होगा। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम अपनी बात समझा नहीं पाते या सामने वाले को समझ नहीं पाते। बच्चों को स्क्रीन के बजाय थोड़ा वक्त, थोड़ी सी दिल की बातें और थोड़ा सा मैदान का खेल चाहिए। जब हम यानी कि नॉट घर के अंदर खेले, बट बाहर में खेले। अभी हम थोड़ी देर पहले भूरीलाल जी का, सॉरी सूरज जी से यही बात कर रहे थे कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम, उनके फ़ोन नहीं देना चाहिए। तो यही वो बात है कि स्क्रीन के बजाय थोड़ा वक्त वो बाहर खेले, उनको बच्चों को हम बेहतर समझे, वो हमें समझ पाए। जब वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएंगे तो गुस्सा अपने आप काफूर हो जाएगा। गुस्से में कभी किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन छोटी सी मुस्कान और थोड़ा सा सब्र जिंदगी के हर मुश्किल को आसान बना देता है। यहाँ दोस्तों, फिर से हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़े, चलिए बात करते हैं हमारे इस कॉलर से और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार।
2: बुराराम बोल रहा हूँ और से।
0: जी बुराराम जी, कैसे हैं आप?
2: बस आपके यहाँ से बैठे और प्रोग्राम सुन रहा था, जब से फोन लगा रहा था पार्टी।
0: जी, वो भूरीलाल जी का फोन चल रहा था उस वक्त शायद।
2: हाँ, भूरीलाल जी का फोन चल रहा था और सब भूरीलाल जी और सूरज भाई को और आपको, मधुबन भाइयों को, मधुबन सब भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम है।
0: जी आपको भी राम राम है, जो भी सुन रहा है।
2: हाँ, तो सुरेश भाई बात कर रहे थे जब मैं सुन रहा था, वो मेरा नाम लेते तो आने वाले थे, तो अभी के मेरे ख्याल से मौत आ जाएंगे तब मेरे घर पे आने वाले हैं वो।
0: बिल्कुल। अच्छा,
2: आपका इंतजार करूंगा सुरेश भाई को बोलना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वो सुन ही रहे आपको शायद और वो वेट ही कर रहे थे कि बुराराम जी, बुराराम जी सभी का कॉल आएगा।
2: तो मेरे तरफ से बहुत बहुत उनको राम राम है।
0: बिल्कुल।
2: अच्छा, दूसरा एक मेरी फरमाइश है।
0: जी बिल्कुल, सुना दीजिए।
2: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। दादी माँ का है फिल्म
0: जी। अच्छा, आज आपकी दादी माँ का जन्मदिन है।
2: हाँ,
0: अरे वाह, चलो बहुत बहुत बधाई हो उनको, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए।
2: ओके
0: चलिए, और से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत दुराराम जी।
2: ओके सर।
0: चलो जो भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, हम बता देते हैं, हमारे जो ओर से बुराराम जी हैं, उनकी दादी माँ जी का आज जन्मदिन है, तो उन्हें हम दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं आज के इस खास दिन की। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं, हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, ये जो आज मेरे मन में जो एग्रेशन या जो चीज़ों के बारे में मेरे दिमाग में ये बात आई है, वो बात आई है कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक इंसिडेंट देखा होगा, सुना होगा, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में जो इंसिडेंट हुआ है, एक छोटी सी बात को लेकर के एक लड़के ने किसी साथ चलते लड़के पर चक्कू से हमला कर दिया और वो लड़के की डेथ हो गई। तो देखिए, ये छोटी सी बात थी कि दरवाज़ा बंद करने पे, यानी कि बारिश का पानी चलती ट्रेन में आ रहा था, तो लड़के ने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दे, लेकिन दिमाग में इतना टेंशन, इतना गुस्सा, और साथ में लेकर चल रहे चक्कू, आप सोचिए इन सब चीज़ों का मिश्रण एक साथ होना कितना घातक हो सकता है। छोटी सी टकराव, छोटी सी जो बातचीत पर बढ़ते गुस्से के बाद ये जो हुआ हमला, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती कि आज की जनरेशन, उम्र बच्चे की 22-24 साल की उम्र बताई जा रही थी जिस लड़के ने हमला किया, वो भी कुछ ज़्यादा उम्र में नहीं था, 28-30 साल शायद थी उसकी उम्र, और जिस तरह से ये सब वारदातें हुई है, और भी बहुत सी वारदातें हुई है जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, कि सारी बातें तो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आज की जनरेशन जिस डिप्रेशन, जिस एग्रेशन के साथ गुजर रही है, उसे हमें देखना है, सोचना है, उसे बदलने की कोशिश करनी है, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला जो नगमा है हमारा, हमारी एक फरमाइश हमारे सुरेश जी की तरफ से, जो गाना है ये शाम मस्तानी, सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं आगे ढेर सारी बातें। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारा नगमा हमने सुना, ये शाम मस्तानी। जी हाँ दोस्तों, आज की शाम वैसे भी बड़ी मस्तानी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और सूरज अपनी जोक लाल सुनहरी सिंधुरी अदाएं फहरा रही है। तो इस गाने को सुनने का मज़ा और भी दुगना हो जाता है जब हम इसके पीछे की जादुई तिगड़ी और कुछ दिलचस्प बातें मालूम में हों। तो चले खोलते इस गीत की डायरी के कुछ पन्ने। दोस्तों ये जो मूवी थी अमर गीत, साल 1971 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कटी पतंग से, जिसमें कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए थे। किशोर दा यानी किशोर कुमार की जादुई आवाज़, जिन्होंने इस गाने में जो अल्हड़पन और गहराई डाली है वो बेमिसाल थी। संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर आर डी मर्मन यानी हम सब के चहेते पंचम दा। इस गाने की शुरुआत में जो सीटी की धुन आप सुनते हो, इस गाने को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जी हाँ, बेहद सादे मगर सीधे दिल से मैं उतर जाने वाले शब्दों को पिरोया था हमारे आदरणीय आनंद बख्शी साहब जी ने। स्क्रीन पर देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और बेहद खूबसूरत आशा पारेख जी ने अपनी केमिस्ट्री पर चांद लगाए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एक और नगमे की ओर, जो कि एक और हमारी फरमाइश है हमारे भूरी लाल जी की तरफ से। उन्होंने बहुत ही प्यारा फरमाइश हमें दी है, जब तक रहे तन। भूरीलाल जी, ये खास आपके लिए, आपकी फरमाइश का ये गाना। चले सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जब तक इस तन में जिया है तब तक साथ निभाने का यह वादा सीधा दिल के पार उतर जाता है। यहाँ सच्ची मोहब्बत में जब तक ऐसा अटूट भरोसा और वादा ना हो तब तक वो एहसास मुकम्मल नहीं होता। इस गाने की सादगी और इसकी धुन में एक ऐसा जादू है। ये शानदार और सदाबहार गीत साल 1972 में आई मूवी समाधि से है। इसके सिंगर जी हमारी आशा भोसले जी थे, जिन्होंने इसे अपनी बहुत ही अमर बनाने वाली आवाज़ के फनकार और सहनशाह

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी समय भी बड़ा कम हो रहा है
0: जी,
1: 10-12 मिनट बाकी है
0: जी।
1: आपको नमस्कार करते हैं खुशी के नदमे और दिल की बातें को, और सभी शो को नमस्कार करते हैं, और हमारे सभी दोस्त सुन रहे सभी को नमस्कार करते हुए, और थोड़ा ही गुनगुनाएंगे। खूबसूरत समा बसों दिखी रात है जिंदगी,

0: ये गाना
1: चलिए
0: कल या
1: बिल्कुल कल हम आपके लिए कोशिश करते हैं ये गाने को प्ले करने के लिए, जरूर से आपके लिए कोशिश करके सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाल जी कॉल करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपकी तबीयत ठीक है।
0: जी जी नमस्कार है आपको।
1: चलिए नमस्कार, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए मदनलाल जी। तो ये थे हमारे मदनलाल जी जिन्होंने हमें कॉल किया और बहुत ही प्यारा सा नगमा हमें सुनाया है, और कोशिश करेंगे इनका ये जो नगमा है कल हम ज़रूर से सुनाएं, बिकॉज अभी हमारे पास एक और फरमाइश क्यू में है, लाइन में है। सुनते हैं ये फरमाइश हमारे ओर से, भूरा राम जी ने हमें ये फरमाइश सजेस्ट की थी बिकॉज आज उनकी दादी माँ जी का जन्मदिन है, और ये प्यारा सा नगमा माँ मुझे अपने आँचल में, हमेशा हमेशा ये गाना कभी भी सुने बहुत ही प्यारा लगता है। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं ढेर सारी बातें, तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
2: तुम मुझे गुड़िया की बात क्यों मानी? तुमने मान ली थी तो मैंने क्यों मानी? तुम तो कौशल्या थी, मैंने अपने किस्मत को सही बना दिया।

वेलकम बैक दोस्तों। ये गाना जब भी पर्दे पे, स्क्रीन पे, टीवी पे हम देखते हैं तो आंखों में से आंसू आना बिल्कुल तय है। बिल्कुल जी हाँ, छोटे भाई मूवी का ये गाना 1966 में आई ये मूवी। हमारे भूरा राम जी को बहुत बहुत शुक्रिया हम देते हैं कि इतना प्यारा, इतना भावुक गाना हमें आपने सुनावा, मतलब फरमाइश दी। गाने के बोल थे, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। दोस्तों इतने प्यारे गाने के बोल कि इतने प्यार से, दर्द से जब लड़का कहता है कि फिर ना करूँगा कोई शरारत, मुझे अपने पास बुला ले। जी हाँ बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक था गुस्सा प्यार, इस पर बिल्कुल फिट बैठता है कि कई बार जब हम बच्चों को अपनी आज़ादी, ये जो हमने दी है, उस पर कहीं अगर अंकुश लगा सके तो बच्चे फिर से यही गाना प्यार से, दिल से हमारे लिए गा सकते हैं। जी हाँ, इसे आवाज़ दी थी लता जी ने, हमारी लता मंगेशकर जी की ये आवाज़ थी। आनंद बख्शी साहब इसके लिरिक्स यानी कि इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे म्यूज़िक डायरेक्ट कंपोज किया था। और बहुत ही प्यारा भावुक गाना है, आँख में से आंसू आ ही जाते हैं कैसे भी करके। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, अगला जो नगमा है, और फिर हम आप सभी से करते हैं, लेते हैं विदाई। फिर मिलेंगे हम कल मंगलवार को ठीक 8 बजे इसी समय पर। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते। तब तक हम लेते हैं आपसे विदाई। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाना वास्तविकता में सहज है। यह कोई कठिन मार्ग नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, सिर्फ हमारे भोजन पर ध्यान दें, हमारे आहार विहार पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग तब तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते जब शरीर का कोई अंग या स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज गड़बड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती। अब फिर उस चीज को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, कितने पैसे का खर्चा होता है, कितना वक्त जाया होता है, ये हम सभी समझते हैं। इसलिए क्यों ना हम ये बेहतर कोशिश करें कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मेहनत करें। ऐसी कोई चीज होने ही ना दें, कमी पेशी रहने ना दें जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। सहज स्वास्थ्य की इसी कोशिश में रेडियो मधुबन आपके सामने ऐसी अनेक जानकारियां ले आ रहा है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे हैं, मगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ अपने घर परिवार के सदस्यों को, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी अपनी अहम भूमिका को समझें। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक ऑस्टियोपैथ हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेक इनके परिवार के सदस्यों ने पीढ़ियों तक लोगों को शफा दिलाई है। आज करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये बात समझते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीजों को समझते आए हैं, और आजकल के बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, वो इसके साथ साथ विटामिन्स की भी बात सुनते आते हैं। विटामिन्स शरीर के लिए आवश्यक है, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में हमारे लिए जरूरी है, मगर वो कम मात्रा में होते हुए भी अगर वो ना मिले तो फिर स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं, ये बात हम समझते हैं। विटामिन्स में लोग ये कहते हैं कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। थियरी में तो हम इन चीजों को समझते हैं, मगर ये विटामिन कौन से हैं, कहाँ से ये विटामिन मिलता है, इत्यादि चीजों को समझा जाए। अक्सर विटामिन्स की बात कही जाती है तो लोग ये कहते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ये अल्फाबेट्स के हिसाब से ये सुनने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं इसी विटामिन से शुरू करना चाहूंगा, जो विटामिन ए जिसका नाम है, ये विटामिन ए क्या है, ये क्यों ये सबसे पहले इसका नंबर आता है, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है, ये भी समझनी चाहिए।
1: ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये चार विटामिन में से एक है जो फैट में हमारे शरीर में घुलता है, विटामिन ए, डी, ई और के। हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि हमको ये विटामिन्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और हमको चाहिए इसलिए क्योंकि हम इसको अपने शरीर में बना नहीं सकते। सबसे पहले ये बात की जाए कि ये किनको नहीं मिलता है या इनकी कमी किसको हो सकती है। सबसे पहला, या तो आप भोजन में जो ये विटामिन सप्लाई करते हैं उसका प्रयोग एकदम नहीं करो। जिस चीज में विटामिन ए है, और सबसे कॉमनली विटामिन ए को गाजर के साथ बोला जाता है, मतलब गाजर, पालक और स्वीट पोटैटो, या हम लोग जो कहते हैं इन तीन सब्जियों के साथ इसको जोड़ा जाता है, और नॉनवेज खाने वाले इसको अंडा और मछली से जोड़ देते हैं। मगर सबसे पहले हम ये माने कि या तो हम ये जो भोजन है उसको एकदम नहीं करते हैं, दूसरा या तो हम बीमार हैं, हमारा पाचन तंत्र खराब है, हमको डायरिया है, हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा खराब है, या लिवर हमारा गड़बड़ है, और या एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है तो हमारा ये एब्जॉर्प्शन पार्ट पूरा खराब। सबसे ज्यादा इससे कौन इफेक्ट होता है, तीन आदमी, प्रेग्नेंट लेडीज, क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक शिशु का भी जीवन बढ़ा रही, तो उनको अपनी मात्रा इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक जीवन नहीं दो जीवन को संभाल रही। दूसरा, छोटे बच्चे जो माँ का दूध छोड़ दिए हैं, बाहर जो ऊपरी भोजन है उसको बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहर मिट्टी में खेल रहे हैं तो उनके पेट में बहुत कीड़े और गंदगी है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक से इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, महिलाओं में जिनको लिवर का कोई कैंसर है या उनको लिवर डिजीजेस है, जिसकी वजह से ये विटामिन उनके शरीर में जा नहीं पाता। हम लोग को भैया जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम उसका निवारण नहीं ढूंढेंगे। हम लोग ने जो पुराने एपिसोड में जब पानी की बात की तो आप ही ने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं कि जो सामने पानी रखा होता है तब भी नहीं पीते हैं, और जब गला सूख जाएगा एकदम आप परेशान हो जाएंगे तब पानी पिएंगे। तो उसी तरह से विटामिन हम एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मतलब खा ही नहीं रहे हैं हफ्तों तक, तो समस्या होना शुरू। और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम मिलता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब आदमी एकदम ठीक से देख रहा होता है और शाम होते होते उसको धुंधला दिखना शुरू होता है, या जब रोशनी कम होती है तो उसको साफ नहीं दिखता है। बड़े आदमियों में तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है, तुरंत दिखता है। छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उसमें जब देखते हैं कि बच्चा चलते चलते किसी चीज से लड़ जा रहा है, दिन में तो वो एकदम अच्छे से घर में दौड़ रहा है टेबल से, पर शाम के समय वो चलते चलते किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ जा रहा है, तो कहते हैं अरे यार ये क्या, वो अपने हाथ से डोर को फील करने के लिए का पता चलता है वॉल को पुश कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये सबसे बड़ी कॉमन जो परेशानी होती है कि वो उसको शाम के समय दिखता नहीं है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसकी आंखें सूखने लगती है, ये सबके साथ हो सकता है। जो आपकी त्वचा है वो सूखने लगती है, आपको फोड़े फुंसी होने लगते हैं, आपका जो शरीर में घाव है वो ठीक से वो भर नहीं पाता है, आपको अगर कहीं कोई कट गया है तो वो ठीक से हील नहीं हो पा रहा है। और इसकी डेफिशिएंसी भैया यंग कपल्स में भी मिलती है जो बच्चा पैदा करना चाह रहे पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ये समस्या होने लगती है।
0: ये बात समझ में आती है कि विटामिन ए के नाम से शुरू होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि अगर लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, अगर आपके लीवर में समस्याएं हैं तो भी इस विटामिन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो कहाँ से ये विटामिन मिलता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्रोत क्या हैं, गाजर पालक इत्यादि चीज़ें हम सुनते हैं, अगर आप इन चीजों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान होता है। डॉक्टर साहब यही प्रश्न मेरा भी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, व्यक्ति इसका सही मात्रा में सेवन नहीं करता है, तो जैसे आपने कहा नाइट ब्लाइंडनेस होता है छोटे बच्चों में, तो ये चीज समझ में आती है, तो क्या व्यक्ति हर दिन इन चीजों का सेवन करना शुरू करे, या कैसे हमें पता चले कि भाई हम विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहा है?
1: सबसे पहले चीज, जो भी फल बहुत हरा है, सब्जी जो भी बहुत हरी है, या फल जो भी ऑरेंज या नारंगी रंग का है, वो आपको सबसे अच्छा विटामिन ए का आपको पूरक होगा, वो सोर्स होगा विटामिन ए का। तो स्वीट पोटैटो जैसे गंजी हो गई, आम हुआ आपका, एप्रिकॉट्स हुए और कैरेट हुआ, कद्दू हुआ, फलों में मस्क मेलन या खरबूजा हुआ, आजकल भैया रेड और येलो बेल पेपर भी, मतलब जो शिमला मिर्च होता है वो भी लाल और पीले रंग का आ गया है, वो हुआ। हमारी ब्रोकली जो हरी है, स्पिनच, पालक हुई, ये इसको हमको अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। और रोज अपने भोजन में कुछ लाल जो है उसको जरूर प्रयोग कर लें। गाजर खा लीजिए, आम खा लीजिए, आप पालक का इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रोकली का इस्तेमाल, जो नॉनवेज खाते हैं वो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने भोजन में या कोई भी लाल चीज को जोड़ लीजिए। अगर आपने लाल चीज अपने भोजन में ले ली तो आपको विटामिन ए की कोई भी कमी नहीं होगी। कोई साइंस, कोई नंबर, कोई भी चीज छोड़ दीजिए, तो हमको अपने भोजन में लाल या नारंगी चीज जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नारंगी जैसे आम हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग, या हरी जैसे ब्रोकली हुआ या पालक हुआ, उसमें इसका बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि भोजन बनाते समय या भोजन को जब हम खा रहे हैं, भोजन में इन चीजों को इंक्लूड कर देने मात्र से ही ये चीजें हमको मिलने लगती हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है कि हम भोजन में पालक हो या गाजर हो, ये आसानी से मिलने वाली चीजें। और अलग अलग जो आपने अभी बात बताई कि सीजन में जो अलग अलग फल मिलते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करना तो कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही ये कोई महंगी चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आम ना खा सके। प्रकृति प्रदत्त ये भारत का फल है, फलों का राजा है, और गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम आम तो खा ही सकता है। ये सभी के लिए मुहैया होने वाली चीज है। अब दूसरे विटामिन के बारे में हम बात करें, कौन सा ऐसा और विटामिन है जिसके बारे में हम समझें कि ये भी विटामिन आवश्यक है और इस चीज को अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है, और प्रकृति से हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज हमें समझ में आ रही है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, गाजर नहीं खाता या पालक नहीं खाते हमारे बच्चे, जब ये चीज कहते हैं तो माओं के पास अलग ऐसे तरीके हैं जो गुप्त तरीके से या किसी चीज में मिलाकर इन चीजों को ऐसे बना देती हैं जिससे बच्चों को समझ में ही ना आए और वो उनके भोजन में नेचुरल तरीके से चला जाए, उनके पेट में चला जाए और वो शरीर में अब्सॉर्ब हो सके। अक्सर मैंने ये चीज होते हुए देखा है, यहाँ हमारे ग्रामीण परिवेशों में भी ऐसे बच्चे जब पालक नहीं खाते या गाजर नहीं खाते तो माँ अक्सर उसे कद्दूकस करके या पीस के रोटी के आटे में मिला देगी और उसी आटे से रोटी बनाकर वो बच्चों को खिला देती है। तो इन तरीकों को भी सीखना जरूरी है ताकि हम अपने परिवार में विटामिन ए की कमी को ना होने दें। और खासकर जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि के समय बच्चों को नहीं दिखना, शाम होते ही वो चीजों से टकराने लगे, दीवार को पकड़कर चलने की कोशिश करें, सब कुछ होता है और इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे विटामिन ए की कमी, ये तो आपने नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों में जो आसानी से हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो बात आपने बताई। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कोई चीजें हैं जो शरीर में होती हैं जो विटामिन ए की कमी से होती है, उन चीज को समझें।
1: सबसे पहले भैया, कोई भी हो उसको बड़ी थकान लगेगी, और बच्चों में लंबाई बढ़ना या उसमें थोड़ी कमी आएगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी भैया, उससे पिंपल या जो हमारे एक्ने कहते हैं वो शरीर में निकलने लगेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है, मतलब आदमी बड़ी जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम खांसी होने लगेगी, वो बीमार रहने लगेगा। और जो इस समय सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी की, मतलब जो महिला पुरुष एक बच्चा चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो इस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल है, और ये हमारे जो बाल है उसमें भी सूखापन ला देता है। तो खासकर महिलाएं जिनकी बाल बड़े सूखे रहते हैं उनमें भी ये माना जाता है कि विटामिन ए की कमी है जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई या सूख रहे हैं। एक इसको मोटा मोटी ये समझिए कि विटामिन ए अगर शरीर में कम होगा तो सूखापन आ जाएगा, आंख सूख जाएगी, त्वचा सूख जाएगी, बाल सूख जाएगा, इम्यूनिटी सूख जाएगी आपकी। तो इसलिए अगर हम इसको पूरा लेंगे तो हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमें पूरी तरोताजा हम फील करेंगे, हमारी रात की नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस की जो मैंने बात की वो नहीं होगी।
0: आजकल ये समस्याएं हम देखते हैं कि प्रायः लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें क्या चीज पड़ी है इस बात का ध्यान नहीं होता है डॉक्टर साहब। जैसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट से कोई चीज मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कभी कभार तो लोग मैगी इत्यादि ऐसी फास्ट फूड जो पैकेट्स में बनकर आती हैं उन चीजों को खा लेते हैं। अब उसमें कोई ताजा सब्जी की बात हो या विटामिन की बात हो, विटामिन ए जो आप कह रहे हैं, पालक की बात हो, गाजर की बात हो, या ऐसी कोई चीज तो उसमें होती ही नहीं है। और कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से भोजन जो मेस में बनता है या हॉस्टल में बनता है वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो ऐसा ही फास्ट फूड खा लेते हैं और इसकी वजह से ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन्स की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है।
1: हॉस्टल में रह रहा बच्चा हो या कहीं कोई काम कर रहा हो, प्लीज हफ्ते में एक दो दिन कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगे उसको जरूर खा लीजिए। और सबसे इजी जो फ्रूट खाना है वो बनाना है। मैंगो बहुत अच्छा विटामिन ए के लिए, तो मैंगो बहुत अच्छा है। गाजर सड़क पे बिकने लगा है, जिस तरह से खीर बिकता है उस तरह से गाजर को हल्का सा धो के छील के नमक और नींबू डाल के दे दे रहा है, उसको खा लीजिए। आपको अपने शरीर में फाइबर डालना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कोई पैकेट में आपको बेच नहीं सकता है, इसे आपको खुद अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि कोई दूसरा जिम करे और हमको उसका फायदा हो, ये नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।
1: व्यापार में हो सकता है कि कोई दूसरा काम करे उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा हो, मगर शरीर के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में खुद उस भोजन को डालना पड़ेगा, आपको खुद चलकर उस भोजन को जलाना पड़ेगा। तो जो भी माताएं बहने, जो भी स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हो, एक चीज पर ध्यान दें, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए उनको नारंगी रंग का कोई फल हफ्ते में एक दो बार जरूर खाना है। उनको पालक ब्रोकली जरूर खाना है। विटामिन ए को कॉमनली रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल को किसी भी रूप में खा लेना है। प्लीज गोली खाने से पहले कोई फल खा लीजिए, कोई सब्जी खा लीजिए, क्योंकि जो नेचर आपको देना चाहता है वो कोई दवा की कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। और हमारा पूरा शरीर डिजाइन किया गया है उस नेचर में से उस चीज को निकाल कर अपने शरीर के इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज कोई भी फल, कोई भी जो सब्जियां जिसमें विटामिन ए है, प्लीज उसको खा लीजिए।
0: बहुत ही आवश्यक आज की ये बातचीत रही है जिसमें हम ये समझ पाए हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता शरीर के लिए कितनी है, विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये चीजें आज हमने डॉक्टर साहब से सुनी है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज की चर्चा में जो बातें हमने सुनी है सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं है मगर उसे जीवन में ले आना है। हमारे आहार पद्धतियों में जो गड़बड़ियां हम करते आए हैं, अगर कोई भूल चूक हुई है या कई लंबे समय से हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शायद ये सही समय है कि हम उस भूल को सुधारें, फिर से अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने के लिए, अगर वो बिगड़ गया है तो उसको सुधार करने के लिए, अगर आप स्वस्थ हैं ही तो आपके स्वास्थ्य को उसी रीति बरकरार करने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। विटामिन्स कम मात्रा में आवश्यक हैं मगर फिर भी इनका सेवन क्यों जरूरी है ये बात हमने समझा। विटामिन ए के सोर्सेस के रूप में जहां से ये स्रोत हैं विटामिन ए के, उनको समझकर उनको हर दिन भोजन में या हफ्ते में एक दिन उन नारंगी फल, नारंगी रंग के जो फल हैं उनका सेवन करना जरूरी है। गाजर और पालक तो भारत के लगभग हर प्रांत में मिलते हैं दोस्तों, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। आम, जब आम का सीजन है तो आम को खाएं, या फिर जो खरबूजा है जब उसका मौसम है तो उसको खाएं। इन सब चीजों पर ध्यान देने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन ए की आवश्यकता के बारे में हमने बात की और आशा करते हैं कि आप सभी भी विटामिन ए की महत्ता को समझेंगे। खासकर हमारे घर में भोजन बनाने वाली माताएं, बहनें, या अगर भाई भी भोजन बनाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में कैसे न कैसे करके इस विटामिन को शामिल करने के लिए इसके स्रोतों को भोजन में ले आएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। आज की चर्चा में इतना ही। सेहत स्वास्थ्य में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुरा

0: हेलो बच्चों, चलो चलो चलो आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। घड़ी ने बजा दिए हैं 9:30 और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की सैर।
1: तो मनी बीवी और परी बातें कर रहे हैं आपके सवालों के जवाब की, और बच्चे हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, सभी का तो जवाब देना मुश्किल है। मनी दीदी देखो, आज एक छोटे से बच्चे ने, प्यारे से बच्चे ने पूछा है कि अगर दोस्त मेरी बात ना माने तो हम क्या करें।
0: हाँ परी, बात तो सही है। अभी इसे खेलने का मन हो रहा है कबड्डी, और इसका फ्रेंड बोले मुझे खेलना है खो खो, तो क्या कर सकता है वो।
1: हाँ तो इसमें बच्चों आप मेजोरिटी विंस कर सकते हैं, क्योंकि खो खो और कबड्डी तो दो जन का काम नहीं है, उसमें बहुत सारे बच्चे चाहिए।
0: हाँ, और आपका मन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वही मन आपके दोस्त का भी करे, क्योंकि हर एक की सोच अलग होती है, मन अलग होता है।
1: तो इसीलिए कभी कभी टॉस लगाकर मेजोरिटी विंस कर सकते हैं।
0: हाँ तो अपने दोस्त की भी बात सुना करो भाई, और अपनी बात उसको प्यार से समझाओ।
1: हाँ, और थोड़ी अपनी मानो थोड़ी उनकी मानो।
0: हाँ तो दोस्ती में सम्मान और समझदारी दोनों जरूरी है।
1: बिल्कुल मनी दीदी, तो ये बहुत अच्छा टिप हमने आपको दिया है, जरूर उसको आप काम में लाइएगा।
0: हाँ, और ऐसे ही अपने प्रश्न बेझिझक आप हमें भेजते रहिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे।
1: तो चलो अब कहानियों की बारी शुरू होने वाली है, उसके पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
0: सपनों की सैर को।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: बच्चों चलो चलो आ जाओ रेडियो के पास, बैठो जल्दी से, और परी कहानी शुरू कर रही है। आज मधुमक्खी और कबूतर की कहानी सुनेंगे। एक मधुमक्खी थी, एक बार वो उड़ती हुई तालाब के ऊपर से जा रही थी और बच्चों अचानक तालाब के पानी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए, अब वो उड़ नहीं सकती, तो उसकी मृत्यु तो निश्चित थी। लेकिन बच्चों तालाब के पास पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते हुए देखा तो कबूतर ने पता है क्या किया, पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे अपनी चोंच से उठाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। तो धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर में उसके पंख सूख गए। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया, फिर वो उड़कर दूर चली गई। और बच्चों कहानी यहाँ थोड़ी पूरी होती है। आगे क्या हुआ पता है? कुछ दिन के बाद कबूतर पर एक संकट आया। वो पेड़ की डाली पर आंख मूंद कर सो रहा था और तभी एक लड़के ने क्या किया पता है? गुलेल से उस पर निशाना साधा। कबूतर इस खतरे से अनजान था, मगर मधुमक्खी ने लड़के को निशाना साधते हुए देख लिया। मधुमक्खी उड़कर लड़के के पास पहुंची। उसने लड़के के हाथ में डस लिया। लड़के के हाथ से गुलेल गिर पड़ी और दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगा। लड़के की चीख सुनकर कबूतर जाग उठा। उसने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और मजे से उड़ गया। तो देखा बच्चों कैसे एक दूसरे के मददगार हम बन सकते हैं, ये कहानी हमें सिखाती है। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं ना, तो आप भी जरूर कोई संकट में हो तो आप जरूर उनकी मदद करना। चलो अब मनी दीदी दूसरी कहानी लेकर आने वाली है, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की

पास मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई कहानी और जिसका शीर्षक है मित्र की पहचान। तो चलो, तो बिना देर किए मैं किताब पढ़ना शुरू करती हूँ। महाराज कृष्णदेव राय अमोद प्रिय व्यक्ति थे। उल्लास के सामान्य अवसरों पर भी महाराज उत्सव मनाते थे। उनके स्वभाव के कारण विजयनगर वासी प्रसन्न रहा करते थे। कहा भी गया है, जैसा राजा वैसी प्रजा। एक बार 9 वर्ष के शुभागमन पर महाराज कृष्णदेव राय ने अपने मित्रों को बुलावा भेजा। महाराज की इच्छा थी कि इस बार 9 वर्ष समारोह पूर्वक मनाया जाए। समारोह में उन्होंने पड़ोसी राज्यों के नरेशों को भी आमंत्रण भेजा। 9 वर्ष के अवसर पर होने वाले समारोह में राज्य भर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर देने का निश्चय कर महाराज ने वैसे व्यवस्था भी करवा ली। समारोह के लिए अतिथियों का आना प्रारंभ हो गया। पड़ोसी राज्यों के 2 नरेश समारोह के 2 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। महाराज ने इन दोनों नरेशों को अतिथि शाला में नहीं ठहराया, बल्कि उन दोनों नरेशों के लिए राजमहल के ही 2 कक्षों को सजाया गया था। दोनों नरेश उन्हीं कक्षों में ठहरे थे। उनमें से एक नरेश का नाम था प्रसन्नजीत तथा दूसरे का नाम था वज्रबाहु। महाराज कृष्णदेव राय का बचपन इन दोनों के साथ व्यतीत हुआ था। गुरुकुल के दिनों में महाराज कृष्णदेव राय के साथ ही इन दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी। एक ही गुरुकुल और एक ही गुरु, तो दोनों तो बहुत ही अच्छे मित्र थे महाराज के। तो इस तरीके से ये महाराज के पास ही रुके हुए थे महल में। अब बच्चों, आगे क्या होगा, कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तो थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। तब तक सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह।

0: त्रिभुवन रेडियो के पास या इधर उधर हो गए क्योंकि कार्यक्रम की अंतिम कड़ी शुरू हो गई है और बारी है पहेली पूछने की। तो बच्चों, पिछली कड़ी में हमने आपको पूछा था, दिन में छिप जाता हूँ, रात में चमक जाता हूँ, कभी गोल तो कभी आधा, सबको रोशनी देता हूँ।
1: हाँ बच्चों, और इसका सही जवाब तो परी सभी बच्चों ने सही सही भेजा है। आखिर अपने चंदा मामा को कौन बच्चा नहीं पहचानेगा, तो सही जवाब है चंद्रमा, यानी कि बच्चों के प्यारे प्यारे चंदा मामा।
0: बिल्कुल सही बच्चों, और क्योंकि आसान पहेली थी तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भेजे हैं। तो चलो नोट कर लो आज की पहेली, जो इस पहेली के जैसे ही आसान है। कभी मीठा कभी खट्टा, हर मौसम में मिलता, छोटा सा गोल गोल बड़ा मजेदार, सबके दिल को भाता।
1: हाँ, फिर तो हर मौसम में ही मिलता है और बच्चों को भी खास पसंद है, तो ये क्या चीज है जो मजा आता है खाने में। तो चलो सही जवाब हमें 9414-1415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
0: बिल्कुल बच्चों, तो चलो अब हम करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
0: गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM पर।

समय सुबह का, तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल कैसे कहलाए, कैसे उनका मंदिर बना, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं, फूल गोभी खाने के क्या फ़ायदे हैं, घरेलू उपाय ज़रूर जानेंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ शेक, अलग अलग प्रकार के, ठीक है? सभी सीखने को तैयार हो ना भाई, अभी भी गर्मी बहुत है। तो कुछ शेक आपको बनाना सिखाऊंगी और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल कैसे कहलाए और उनका मंदिर कैसे हुआ, जरा विचार करेंगे। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल नाम का एक मंदिर है। इसमें जो गोपाल जी का विग्रह है, ये विग्रह मैंने मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान थी। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, दोनों पुरी से वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उस वृद्ध ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता समान है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। ये वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप ये वचन न दे, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार का वचन न दे। ये वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा, अतः युवक मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही क्रुद्ध हुआ, क्रोधित हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है, यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत ही उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है। उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। उस तरुण ने कहा, आपने वो पहुंच गया और उस वृद्ध पुरुष से कहा कि आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगा, अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर से आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा, तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हड़प लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है, तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहां बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्रित हो गए। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्र हो गए थे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह जी के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी है तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो।
युवक ने कहा, हाँ मैं कृष्ण जी से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। इसे विश्वास था, उसको विश्वास था कि भगवान अवश्य आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए श्री कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण के प्रार्थना मतलब उनके समक्ष प्रार्थना करने लगा, हे भगवान आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह श्री कृष्ण से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता हो। उसने ये नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूं। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे श्री कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखिए कि श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए और इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। सभी लोग एकत्रित हो गए और विग्रह के पास पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति के परिवार की ओर से जब पूछा गया तो विग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी, मेरे समक्ष ही इन्होंने अपनी पुत्री का वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां पहुंच गए और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, बस सच्चे हृदय से उन्हें याद किया जाए। इसीलिए कहा गया है कि भाई साक्षी गोपाल कैसे साक्षी गोपाल कहलाए वह आपने जाना है, कैसे मंदिर बना वो भी आपने जाना है। आइए अब सुनते एक सुंदर सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अरे 6 घंटा का 12 घंटा कर दी गणो आयो चो जोर। नारायण के लगायो ढोक मारी बेड़ा कर दी पार। पहली 6 घंटा चाले चो पाचे करियो विचार। दोनी जोड़ियो हाथ मारी नारायण सुनया पुकार। अरे नारायण 12 घंटा कर दिया बाला देव गुजर किरे आई बीन थी।

भाड़ा दे आ वो तो मर्जी आप की वो भाड़ा दे। दोनी जोड़ू हाथ देव जी सुनो मारी पुकार, गुजर किचे याई विनती ने करो आर पार, बारह घंटा कर दी नारायण सुन ली मारी पुकार, दोनी जोड़ू हाथ देव जी चौबीस घंटा करो दरबार। अरे नारायण।

नारायण महाराज स्टूडिया पे नारायण जोड़ू जोड़ू रे दोनी हाथ आओ जी मारा रेडिया पे अरे सांवरिया जोड़िया चा रे दोनी हाथ मान्या चा मा की बाते पधारिया मारा रेडिया पे मैं तो जोड़िया चा दोनी हाथ मान्या रे नारायण बाते आया रे मारा रेडिया पे अरे

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। फूल गोभी के क्या फायदे हैं, कैसे फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है जानेंगे आप। देखिए, यदि बच्चे लोग आपस में लड़ते समय एक दूसरे को काट ले तो 4-5 दिनों तक उन्हें गोभी का कच्चा फूल खिलाना चाहिए। इससे दांतों का विष दूर हो जाता है। कितनी बार बच्चे आपस में झगड़ते हैं, झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को काट लेते हैं। अब काटने पर चाहे जीव जंतु काटे या इंसान काटे, थोड़ा विष तो जाता ही है ना। और फिर हमें डर भी रहता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप फूल गोभी का कच्चा फूल खिलाइएगा, ठीक है, इससे दांतों का विष दूर हो जाएगा। फिर देखिए, अगर कैंसर की शिकायत है तो सुबह के समय खाली पेट लगभग 100 ग्राम गोभी का रस पीजिए। गोभी का रस पीने से जोड़ों व हड्डियों में दर्द, अपच, आंखों की कमजोरी और पीलिया में लाभ होता है। रात्रि में इसे पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है, तो कैंसर में भी फायदा करता है। सुबह के समय खाली पेट लगभग 100 ग्राम गोभी का रस पीजिएगा, इससे कैंसर में भी फायदा मिलेगा। और गोभी का रस पीने से जोड़ों और हड्डियों में जो दर्द रहता है ना, वो ठीक हो जाएगा। अपच की समस्या ठीक होती है, आंखों की कमजोरी ठीक होती है, पीलिया में जॉइंटिस जिसको कहते हैं काफ़ी लाभ होता है। और रात्रि में इसे पीने से कब्जियत की समस्या दूर होती है। फिर देखिए, उबले हुई फूल गोभी का रस पीते रहने से टीबी के रोगी का हृदय मजबूत होता है और खून बढ़ता है। फिर देखिए, गोभी ठंडी मूत्रल गरिष्ठ होने के कारण कफ कारक वायु रोधक व अफारा करती है, अतः अदरक डाल करके सामान्यतः कम खानी चाहिए, ठीक है। और फूल गोभी खाना मतलब बवासीर, खून की उल्टी होना, खूनी बवासीर, पेशाब की जलन, तपेदी, खुजली, कुष्ठ और चर्म रोग, गैस, नाखूनों और केश रोगों में काफ़ी हितकारी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बीमारियां ठीक करती है। और लास्ट उपाय है गोभी, भाप में उबालकर खाने से रक्त शुद्ध होता है। तो कितना सारा फायदा करती है ये फूल गोभी। और फूल गोभी को इतनी महंगी भी नहीं है और सीजन में तो और भी सस्ती मिलती है, तो इस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ताड़ासन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अब यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय है, जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना मत। तो यह आज का विषय है, और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। ताड़ आसन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए? तो दोनों में ही जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय को भी स्पष्ट कर सकते हैं, तो आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। तो आप जुड़िएगा, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और आज के विषय में आप अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु शादी ब्याह में व्यस्त है। चलिए, अच्छी बात है, जितने बिजी उतने ही इजी है ना, तो अच्छी बात है। समाज में रहते हैं तो सामाजिक कार्यक्रम में आना जाना ही पड़ता है, और आना जाना ही चाहिए, इसी से ही संबंध टिके रहते हैं और संबंधों में मधुरता बढ़ती है। लेकिन विषय भी बड़ा सुंदर है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं शादी ब्याह में 5 मिनट के लिए जुड़िएगा, तो आपके जो भी दोस्त लोग, जो भी रिश्तेदार है, वो भी सोचेंगे कि देखें इनको रेडियो से कितना प्रेम है। अच्छी बात है, कोई गलत बात तो है नहीं कि भाई क्या करें, गलत बात है रेडियो से जुड़ कर के, तो फिर क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप विधि में व्यस्त रहिए, नहीं जुड़ सको तो टेंशन मत लेना, शादी ब्याह में है तो वहाँ का पूरा ही आनंद लेना। तो वो कहावत आपने सुनी होगी, बिन घर पग नहीं मेलनो, बिना

0: तो इस कहावत से ही पता चल जाता है कि बिना बुलाए जाना नहीं। और अभी तो शादी ब्याह चल रहे हैं और शादी ब्याह के सीजन में भी ऐसा ही होता है। शादी ब्याह होती है ना, तो जिनके घर में शादी ब्याह होते हैं वो पहले पैसे वालों की लिस्ट बनाते हैं, बहुत जने, सभी का नहीं कह रही हूँ, और साधारण के बाद में बनाते हैं। फिर उसमें से देखते हैं किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है, तो कट भी कर देते हैं नंबर, नाम उनका। रिश्तेदार चाहे, कहते हैं ना कि कितना ही करीबी क्यों ना हो, कितने ही लोग ऐसा करते हैं, रिश्तेदार सोचते हैं कि अरे भाई हमारा तो इतना अच्छा व्यवहार है, अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक इनविटेशन नहीं आया, क्या करें। फिर कभी कभी सोचते चलो अपने ही है ना, शायद भूल गए होंगे, कामकाज में व्यस्त होंगे तो भूल जाते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम रहता है, तो बुद्धि चारों तरफ दौड़ानी पड़ती है, भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, अपन जाएंगे तो वो खुश ही होंगे। और ऐसे भोले भाव से चले जाते हैं, जाने के बाद जब वो आपसे बात नहीं करते, आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं रखते, तब पछताते कि अरे ये क्या कर लिया, क्यों आए, इसने तो जानबूझकर हमारा नाम नहीं लिखा, जानबूझकर इन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया, और ये क्या कर लिया, हम क्यों आए। फिर पछताने से क्या होता है, इसलिए अच्छे कार्य में हमेशा इंतज़ार करिए, आपको बुलाए तो ही जाइएगा। हाँ, कहीं दुख तकलीफ है, कहीं मांदगी है, बीमारी है, या कोई परेशानी है, तो वहाँ पर बुलाने का इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ पर बिना बुलाए पहुँच जाइए। लेकिन अच्छे कार्यों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में इनविटेशन के बिना जाना अच्छी बात नहीं है। चार जनों के बीच जो हमारी इंसल्ट होती है वो असहनीय हो जाती है, और इसके चक्कर में भी कितने जने डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कितने तो भाई उन्होंने हमारा ऐसा अपमान किया कि अब हम मुंह ही नहीं दिखा सकते किसी को, सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों करना है, सामने वाले ने इंसल्ट की है तो वो उसके संस्कार है, लोग कुछ बोले ना बोले समझ में तो आ ही जाता है कि देखो कैसे संस्कार है, जो अपने ही भाई को या अपनी ही बहन को या अपने ही सगे रिश्तेदारों को तो नहीं बुलाया और हम लोगों को बुलाया, तो लोग समझ जाते हैं। आजकल बोलते कोई किसी के मामले में नहीं, क्योंकि सभी आए, अटेंड किया प्रोग्राम, ये निकले, टेंशन नहीं चाहते, इसलिए इंटरफियर नहीं करते। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, हमारी प्यारी बहन उषा जी, मैं
0: हाँ जी
1: बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार दयाराम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है और आप सभी की दुआ से बढ़िया हूँ, और सभी मेरे मित्र प्यारे भाई बहनों की दुआ से अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज बॉर्डर के इलाके में रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ, क्लियर आ रहा है
0: जी,
1: और बहुत ही आते ही आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और आज के विचार भी कर दिया
0: जी,
1: उसके भी दिए, और समाज भी बहुत सुंदर लेके आई, तो मैं जज्बा तो अप्लाई नहीं करूँगा
0: जी।
1: और विषय क्या है दीदी?
0: जी विषय बहुत सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उससे मनाना नहीं, क्या कहेंगे?
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया, आज का जो विषय है,
0: भले इनमें से एक टॉपिक पर आप बोल सकते हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहते ना कि जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं।
1: जी जी बिल्कुल, मैं भी जाता ही नहीं हूँ, जैसे कहावत है तो मान से बुलाइयो बैठो मीठो मोरियो, बिना बुलाए आए बैठो जाने जंगल को डोर, तो आदर बगैर तो हम कहीं जाते ही नहीं है, और कहीं जाती है कोई सामने वाला अपने आपको राम राम करने और अपने को बुलाने के लिए और पानी वानी नहीं लाता है तो जाते ही नहीं, वहीं हम कहीं नहीं जाते हम। और जो आदर होता है, जो सामने वाला, हम किसी के घर जाती है, सामने वाला हमारे सामने आता है और राम राम भी करती है और फिर भी हमारे साथ लेके जाए बैठाती है, इतना मान सम्मान देती है, तो हमें बहुत ही खुशी होती है और उनको भी खुशी होती है कि हमारे लिए घर पे मेहमान आए है। तो ऐसा इंसान होता है तो उसके घर घर मेहमान आता जाता रहता है, नहीं तो एक बार आएगा तो वो दूसरी बार कभी वहां मुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और तो बहुत सुंदर है, हमारे दो और भी श्रोता प्रतीक्षा कर रहे वो भी अपना कॉल करेंगे बताएंगे। और सभी को नमस्कार, ओम शांति।
0: जी बहुत बहुत आभार, आपकी तबीयत ठीक है। चलिए ये थे दयाराम जी रामपुरा से, आपने भी स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में समझाया है आज के विषय का अर्थ। और आप भी जुड़ सकते हैं अब और अपनी बात को रख सकते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, क्या कहेंगे आप। बहुत ही सुंदर विषय है आज का, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। ताड़ आसन के क्या फायदे हैं और किन

0: लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों में ही जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। और कहते हैं ना, जो सुनता नहीं उसे समझना मत। भाई जो सुनता ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं, वो सुनता ही नहीं है, तो फिर उसको समझने की कहाँ ज़रूरत है। हम जो कह रहे हैं हमारी भावनाओं को तो समझे, हमारी बात को तो सुने, हम क्या कहना चाहते हैं हमारी फीलिंग्स तो जाने। लेकिन नहीं भाई साहब, हम तो आपकी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम कहे वो आप सुनो, तो ऐसा नहीं होता है। सुननी भी पड़ती है, सुनने के बाद अपनी बात रखनी भी होती है, अगर हम सही है तो, है ना। और फिर जो सुनता ही नहीं है, हम अच्छा कह रहे हैं, हम भलाई की बात कर रहे हैं, हम उनके फायदे की बात कर रहे हैं, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो उसको समझने की कहाँ ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जो बस अपनी अपनी सुनाएंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनाई और ये चल दिए, ऐसी आदत होती है। मिलेंगे, हाँ कैसे है क्या है, फिर अपना दुखड़ा, फिर अपना जो भी बातें हैं उसका रोना रोना, और उसके बाद सामने वाला अगर कुछ बोलना चाहेगा, क्योंकि देखिए आप कुछ कहते हैं तो कभी लगता है कि चलो मैं भी अपने दिल की बात शेयर करूं, या मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूं तो आप भी समझते हो चलो हम भी शेयर करें, तो आप भी कुछ सुनाओ, मैं भी कुछ सुनाऊं, मैं भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो, तब तो ठीक है, सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ आप भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं खाली सुना सुनाई कर रही हूँ, ठीक है, और जैसे आप कुछ बोलने लगे और मैं वहाँ से हट गई, चल दी, तो ये कौन सी इंसाफ है भाई, ये तो ना इंसाफी की बात हो गई ना। तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो क्या कहना चाहते हैं चलो उनकी सुन लो। भाई जब खुद की सुना करके चला जाए तो फिर ऐसे लोगों के सुनना ही क्यों, समझना ही क्यों, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। और कहते हैं ना, जो पछता नहीं उसे खाना ही क्यों। भाई ये तो स्वाभाविक बात है कि हमें क्या सूट करता है क्या नहीं वो हमें पता होता है। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो पचती नहीं, और पचती नहीं है तो क्या करते हम, दूसरी बार उसको थोड़े ना छुएंगे, अरे भाई फलाने दिन ये चीज़ खाई थी ना तो ऐसा हो गया। नहीं भाई नहीं, मुझे तो वो चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि पचेगा नहीं, अभी परेशान हो जाएंगे, तो उस चीज़ से हम कोसों दूर रहते हैं, चाहे वो हमारी फेवरेट हो, है ना, फिर भी हम उसको नहीं छूते कि नहीं वो सूट नहीं करती है। तो ऐसे ही कुछ लोग अपनी बातें बताते हैं तो उसको भी पचाना ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक है, पाचन क्रिया अच्छी रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही लोग हमारे सामने अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने दुख की बातें शेयर करते हैं, तो उसे भी सुनिए और पचाइए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो लोगों को कहने का नहीं होता है, मना करते हैं, तो नहीं कहिएगा इधर उधर। हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
1: बस एकदम अच्छे हैं, और वो प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है, और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, वेलकामनाएं।
0: जी आपको भी। तो आज के, हाँ जी,
1: हाँ तो विषय में ऐसा है बेन जी के जो अपना अपना चाहता है, अपना दोस्तार है, या अपना पड़ोस में है, या थोड़ा दूरी है
0: जी,
1: तो इसमें इसका कोई घर में कोई ऐसा हादसा बन गया, या एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर कोई मृत्यु हो गया, तो उसमें बिना सोचे बिना संकोचे नहीं, अपने को बोला नहीं फिर भी उधर जाना है, लेकिन शादी ब्याह ऐसा का हो,
0: खुशी का माहौल हो, नहीं, हाँ जी,
1: हाँ अपने को दावत नहीं दिया तो अपने को जाने का नहीं।
0: जी, जी बिल्कुल। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
1: प्रश्न का जवाब ऐसा है बहन जी कारागंगा के, जो अपना हृदय है, अपनी हड्डियां है, अपने पूरा शरीर का जो जोड़े नसें हैं, उसका एक ये तारागंगा इसमें महत्व

0: का भाग दिखता है जी।
1: अच्छा, और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, नुकसान बताएंगे?
0: ये थोड़ा जो जानकारी थी वो मैंने
1: बोला। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। आइए अब यहाँ पर एक अल्पविराम लेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे? है कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना मत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ताड़ासन के फायदे क्या है और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों में ही जुड़ सकते हैं, आज के विषय में भी अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में भी आप अपनी बात को रख सकते हैं कि भाई जहां आदर नहीं वहां जाना मत। बहुत सारी जगह ऐसा ही होता है, बुला तो लेते हैं, कहीं कहीं पर देखे बुलाते ही नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बुला तो लेते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं उन्हें। जैसे प्रोग्राम है, जैसे जबरदस्ती बुलाया। कभी आपने भी महसूस किया होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार तो ऐसा मिल ही जाता है जो बुलाने के बाद पूछता तक नहीं कि आप कैसे हो, आपने कुछ खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं, फिर उनको इग्नोर करते हैं और दूसरों को भाव देंगे। देखिए यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, चार भाई है, तीन भाई गांव में रहते हैं और एक भाई शहर में रहता है, ठीक है। लेकिन तीन भाई क्या जो बड़े हैं उनके लड़के भी शहर में रहते हैं, लेकिन एक सबसे जो छोटा भाई है वो गांव में रहता है और उसके लड़का नहीं है, दो बेटियां है, ठीक है। वो पूरे ग्रामीण परिवेश में ही बड़ा हुआ है, शहर में कभी गया ही नहीं। दो बड़े भाई हैं उनके, तो फिर भी बच्चे शहर में हैं तो दोनों भाई जाते रहते हैं तो शहरों का अनुभव है, और एक भाई तो ऑलरेडी शहर में रहता है। उनके या प्रोग्राम आया, शादी आई बेटी की, तो बुलाना तो पड़ता ही है भाइयों को, तो बुलाया तीनों ही भाइयों को। अब दो भाई तो शहरों में रहे हुए हैं इसलिए पता नहीं वो भाई जिसने बुलाया है बिचला था, अच्छी तरह खातिरी कर रहा था, लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वो कभी शहर में गया नहीं, दोनों ही बेटियाँ ही है, तो उनको जैसे कि ऐसे बता रहे थे कि ये तो भाई नहीं है। बढ़ चढ़ करके मेहमानों से दोनों भाई का परिचय करवा रहे, उनके बच्चों की तारीफ कर रहे, छोटा भाई भी उन्हीं के पास खड़ा है लेकिन उनके लिए कोई भी शब्द नहीं कि भाई ये भी मेरा छोटा भाई, ये देखे देखे मिले सर, ये दोनों भाई मेरे, इनके बच्चे वहाँ रहते हैं, ओम्बे रहता है, एक पुना रहता है, इनके बच्चे हैदराबाद रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, लेकिन छोटा भाई पास में खड़ा है तो कोई परिचय नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, गांव में रहता है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अपने मेहमानों से भाई शहरों में रहते हैं देखो जॉब करते हैं तो आते हैं अपने अपने व्यवहार वाले, तो उनको दोनों भाई का परिचय दे रहे लेकिन छोटे वाले का नहीं, और यहाँ तक उनको ये भी नहीं पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप कैसे हो, आपको सुविधा मिली या नहीं मिली, रूम मिला या नहीं, कुछ भी नहीं। भाई को ऐसा लगा कि जैसे ज़बरदस्ती बुलाया गया हो, तो बड़ा अफसोस हुआ कि इससे तो अच्छा नहीं आते तो अच्छा रहता,

0: भाई के बहू को तो थोड़ा रोना भी आ गया कि भाई ऐसा अपमान हो, इससे तो अच्छा कि आप बुलाना जरूरी है, क्योंकि जेठानी सभी के सामने परिचय करा रही है, दोनों जेठानियों को खड़ा कर रही है, लो आप ये बांटो वो बांटो, लेकिन देरानी को ये भी नहीं कह रही है कि भाई तुम भी उठो और तुम भी साथ दो। नहीं, उनके किसी भी प्रकार की उनसे हेल्प नहीं ली। वो कहते हैं ना कि जब अपने कोई होते हैं, अपने ही घर के होते हैं, तो अधिकार से उनको कहते हैं, हमारे घर में प्रोग्राम होता है तो हमें अधिकार से कहते हैं कि भाई उठो अब ये करो वो करो, विधि विधान में उनको आगे रखते हैं, लेकिन वो छोटे को कहीं पर भी आगे नहीं रखा। तो समझ गए, आ गए शादी, अब आए हैं शहर में तो अब साथ में ही जाना था, अकेले तो रहने से रहे कि भाई शादी छोड़ के बीच में ही जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से, आपको सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं दीदी, और आज विषय भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लेके आए हैं। तो दीदी, और जो आप बात कर रही तो मैं और ऐड करना चाहूँगा
0: जी
1: कि चलो दो चार भाई है, उनमें से एक आध तो भाई गुस्सेल वाला होता है, एक थोड़ा सा फूला वाला रहता है
0: जी।
1: तो सिर्फ भाइयों ही नहीं, कोई पड़ोसी रिश्तेदार में वो थोड़ा गुस्से वाला आक्रमण जो होता है उनकी खास
0: ध्यान रखेंगे। सही बात है।
1: और जो थोड़ा भोला भाला है ना, तो वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, और तो और अगर जो काम तो करते करते हुए थोड़ा सा छूट भी गया ना, तो वो डांट देते, अरे ये कैसे हो, ये करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया, वो सभी। तो फिर जो उनकी औरतें हैं ना, तो वो क्या कहते कि वो औरतें तो देखती है ना कि इनको इतना सम्मान, तो वो क्या कहते हैं कि चलो जो भी हो, कि भाई की शादी है, भाई के बच्चों की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, तो ये सब समझ कर सह लेता है
0: जी।
1: एक तो ये बहुत गंभीर विषय है कि सभी को एक सम्मान मिलना चाहिए।
0: ये वो कहते हैं ना कि ओछे लोगों की मानसिकता ऐसी है।
1: सही सही बात है। और कि चलो ये थोड़े गुस्सेल आदमी है तो रूठ कर चला जाएगा, तो फिर ये होगा वो होगा,
0: मेन कारण यही है
1: नाराज। सही बात है, नाराज फूफा की तरह जो
0: जी बिल्कुल।
1: क्या कह रही थी आप बताइए।
0: अजी वो बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है कि गुस्सेल व्यक्ति को सबसे मतलब आगे रखते हैं और हाथ में रखते हैं कि भैया नाराज हो गया तो पूरा बिखड़ा खड़ा कर देगा।
1: सही सही सही बात है। और तो और जो कुछ रीति रिवाज होती है जो शादी ब्याह में, तो उनको ये अगर कहीं चला भी गया ना, तो वो ढूंढ के लाता है, चाहे भले मुहूर्त बीत जाए या निकल जाए जो
0: जी,
1: भी
0: जी,
1: हो
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: उनको पहले के चलो आप आगे आओ ये करो, मतलब इतना सम्मान। तो फिर ये बात
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छा विषय आपने उजागर किया है कि तो समझना चाहिए। चलो एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि दीदी ये
0: जी,
1: जो भाई भाई पे झगड़ा होता है ना, शायद ये विषय से हटकर हो जो झगड़ा होता है ना, तो नहीं बोलता एक दूसरे भाई, तो उनके बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं ना, तब ये महसूस करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो भी आपस में बच्चे बच्चों की नहीं बनती। वो क्यों कि चलो उनके साथ तो हमारी दुश्मनी है।
0: हाँ,
1: तो हमेशा मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो भी हो भाई भाई या कोई रिश्तेदार, दुश्मनी न रख के, ताकि बच्चों पर असर ना पड़े।
0: बिल्कुल, और कम से कम कोई भी बात हो तो बड़े बड़े मिलकर करें, बच्चों को इन्वॉल्व न करें, और बच्चे वहाँ है तो उनको आप बाहर भेज दीजिए।
1: हाँ,
0: चलिए कभी कभी क्या है, विचारों का टकराव हो जाता है ना, तो विचारों का टकराव भी भाई हो रहा है तो भी बच्चों का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात
0: की, नहीं तो बच्चों के मन में ऐसा ही हो जाता है, और वो भी बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो भी नफरत करने लगता है।
1: क्योंकि शुरू से बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि चलो ये तो हमारे भले हमारे लोग है या नहीं है, दुश्मन की तरह समझे, तो फिर आपके बड़े बड़े लोग तो चलो चले जाएंगे, फिर उनके बच्चे उनके भी बच्चे, तो ये टकराव दुश्मनी लगातार चलती रहेगी, तो ये खत्म करना जरूरी
0: जी। बिल्कुल
1: जी जी जी नमस्ते
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी बहुत ही अच्छी बातें रखी है कि भाई देखे बच्चों को दूर रखे ऐसे माहौल से, और ऐसा माहौल देने से क्या फ़ायदा, बच्चों के सिर पर आप उनके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उनके कैसे उन्नति हो, कैसे वो आगे बढ़े यही सोचिए, घर की कीचड़ पट्टी उनके सामने मत रखिए। तो मैं बात कर रही थी भाई भाई की, और देवरानी को कोई विधि विधान में आगे नहीं रख रहे थे, हाँ तुम जाओ बर्तन माँजो, तुम जाओ चाय बनाओ, इसी काम में उसको व्यस्त कर दिया। जैसे ही वो, जैसे माँ मेरा की विधि होती है, बहुत सारी विधि होती है, जैसे ही विधि में आती है उसको कोई ना कोई काम भरा दिया जाता है। तो दोनों बेटियाँ थोड़ी बड़ी थी और समझदार थी, वो सब नोटिस कर रही थी कि मैं हमारे मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तब उन दोनों ने वही सोच लिया कि अब हमें इतनी मेहनत करनी है कि जो आज हमारे मम्मी पापा का अपमान हुआ है वो भविष्य में कभी ये कर न सके। कैसे भी करके शादी करके आ गए, और दोनों जो गांव से जेठ जेठानी आए थे वो भी सब देख रहे थे, लेकिन आजकल कौन किसके बीच में बोले, भाई हमारा मान सम्मान हो रहा है बस, दूसरे गए भाड़ में। ऐसा हो गया आजकल, हर एक का नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है, कोई नहीं बोले। लेकिन अब वो गांव में, शहर में पहली बार आए तो उन्हीं के साथ जाना था तो उनके साथ आ गए, ठीक है। फिर शहर वाले के थोड़े समय बाद फिर से शादी हुई दूसरे बच्चे की, ठीक है। उस समय भी सबको बुलाया, उस समय छोटी छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगी, मेरे को बर्तन और चाय बनाने के अलावा कोई विधि में मुझे सम्मिलित नहीं होने दिया, इससे अच्छा मैं अपने घर में ही भली। दोनों बच्चों ने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं आएंगे, हमारे मम्मी पापा का अपमान होता वहाँ हम नहीं आएंगे। लेकिन भाई तो भाई होता है, सोचा ठीक है तुम नहीं आते हो तो भी अपमान तो सभी का हुआ है, मेरे को भी कहीं पूछा नहीं है, लेकिन क्या करूँ तो भी जाना पड़ेगा। तो दोनों बेटियों ने समझाया कि कोई ज़रूरी नहीं है जाना, दोनों बेटियों ने बहुत आग्रह करके पापा को भी रोक लिया, ठीक है। वो चारों ही गए, दोनों बड़े भाई उनका परिवार वाले तो गए, पूछा इनको भी पूछा था आना हो तो चलो हमारे साथ, इन्होंने मना कर दिया हमें नहीं आना है। तो किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, चले गए। शादी ब्याह भी हो गया, पूछा तक नहीं छोटे भाई को फ़ोन करके कि भाई क्यों नहीं आया, कुछ भी नहीं, उल्टा खुश हो गए कि चलो अच्छा है वो तो गवार है। मन में ऐसा सोच करके और कोई फ़ोन नहीं किया, शादी ब्याह हो गए। अब इधर इनकी बेटियाँ पढ़ लिख करके अच्छा रिजल्ट लाने लगी और धीरे धीरे कॉलेज भी कर लिया और कंपटीशन फाइट करके अच्छी जॉब भी करने लगी, और एक तो विदेश चली गई। तब आश्चर्य हुआ कि अरे छोटे की बेटियाँ इतनी होशियार कैसे निकल गए, और विदेश गई बच्ची 6 महीने रही, और वो कहते हैं ना पहले तो 5.5 महीना ही रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, 5.5 महीना रह करके आ गई, फिर गई फिर रही, और फिर अपने माता पिता को भी बुला लिया। तो देखो शहर नहीं डायरेक्ट विदेश में, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगी कि विदेशों का मोह होना चाहिए, नहीं मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई आप अपनी योग्यता के दम पर, कंपनी आपको भेज रही है, कंपनी वालों ने भेजा है बेटी को, तो परिवार भी चाह सकता है, माता पिता बहन सबको वो लेकर के गई, सब खुश हो गए। और पूरा 2 महीना रहे, और 2 महीने में पूरा माता पिता का भी विचार चेंज हो गए, मतलब थोड़ा सा पहनावे में भी फर्क आ जाता है ना, घर भी अच्छा बना दिया गांव में, और तीनों ही भाई को टक्कर दे करके परिवार आगे बढ़ गया। छोटी वाली ने भी इतनी मेहनत की कि वो भी अच्छी पोस्ट पर उसने भी मतलब जॉब शुरू कर दी। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: जी हम भी अच्छे हैं,
2: घर पे सब ठीक है?
0: हाँ जी सब बढ़िया।
2: आप जाके आए तो सब बढ़िया है ना?
0: नहीं अभी हम नहीं गए। जी अभी ऑन एयर है, अभी हम गए नहीं है, जाएंगे।
2: और क्या आज का टॉपिक है?
0: जी आज का टॉपिक है जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे पहले तो रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन की तेरे शुभकामनाएं मंगल का। देखिए जहाँ आदर नहीं होता है वहां तो अपन को जाना ही नहीं है, क्योंकि आपका आदर नहीं है तो वहां जाओगे तो आपका तिरस्कार ही होगा। आपके मन मतलब किसी न किसी तरह से ठेस पहुंचेगी। और दूसरा क्या जो क्या बोला सुने सुने नहीं उसको समझना नहीं,
0: जो सुनता नहीं उसे समझना मत। हाँ जी
2: हाँ, तो सही बात है ना, जो अपने पास अपन सही बात कर रहे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं है तो उस इंसान से किनारा करने में जहाँ आदर नहीं है सुनता नहीं है तो फिर उससे किनारा करने में फायदा है, नहीं तो फिर क्या। और एक एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि कहीं पे भी आदर भी है ना तो वहां पे भी आप बार बार मत जाइए, सही है ना
0: जी। बिल्कुल,
2: मेहमान रूपी जाओगे ना तो आपका आदर सम्मान रहेगा
0: जी,
2: कभी कभी जाओगे तो, और आप लगातार जाओगे ना तो वहां भी आदर आपका कम होगा
0: जी।
2: वहां बोलेंगे देखो ये आगे अभी अभी इसको जाने तो यार नहीं तो आ जाएगा
0: जी।
2: तो सबसे पहली बात तो जहाँ आदर नहीं है, आपका अनादर हो रहा है, आपको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो ही आपकी जिंदगी है, नहीं तो फिर क्योंकि कुछ अपन है ना। देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि देखिए पशु पशु और कुत्तों को कैसे दुकानते हैं, तो आजकल तो कुत्ते भी समझते वो उस दरवाजे पे दूसरी बार नहीं आता
0: जी।
2: पशु भी जहाँ लाठी पड़ती है ना दुकानते वहाँ दूसरी बार नहीं आता
0: जी।
2: तो अपन तो इंसान है यार।
0: हाँ जी।
2: अपन को तो भगवान ने समझने के लिए दिमाग दिया है, जहाँ आदर नहीं है वहाँ जाना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है
0: जी। और आज का प्रश्न है, हाँ जी आज का प्रश्न है, ताड़ासन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए
2: ताड़ासन?
0: हाँ जी
2: ऑफलाइन दो
0: ठीक है।
2: जय माता
0: जी। जय श्री हरि। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि इस तरह दोनों बेटियां होनहार पढ़ने में और अच्छे पोस्ट पर जॉब लगी तो परिवार वालों को गांव वालों को सभी को आश्चर्य हुआ, गांव वालों को तो नाश था। और फिर वही शहर वाले भाई के घर में फिर से प्रोग्राम आया पोते के मुंडन का, तो इनको बहुत मनोहार करके बुलाया। जो विदेश में रहती बिटिया उसको भी फ़ोन किया कि नहीं बेटा आना ही पड़ेगा, घर के कार्यक्रम में नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, नहीं आना ही पड़ेगा। और बेटी भी आई, सभी गए वहाँ पर। तो अपने रिश्तेदारों से दोनों भाई को छोड़ करके ये भाई के परिवार का परिचय करा रहे, देखो हमारी दोनों बिटिया पढ़ने में इतनी होशियार थी कि ये देखो ये बन गई, ये विदेश रहती है, मेरा भाई बड़ा ये है। हेलो
3: नमस्ते सबन, राम राम जसमत भाई नाना।
0: हाँ जसमत भाई केम छो?
3: सबसे पहला तो नानो यो गीत गन बजाने मनोरंजन देवा मांगो छो। जिंदगी तो ये नानी रे कहे हार के प्यारी गीत है, सुना दे तो आया ओ माय बुद्ध आया
0: તમારી આવાજ બરોબર નથી આવતી જસમત ભાઈ, તમારી આવાજ બરોબર નથી આવતી। હા હવે વ્યવસ્થિત આવે છે, બોલો। હા સાંભળ્યું, બસ બહુ સરસ ગાયો તમે। બરોબર આવાજ નથી આવતી જસમત ભાઈ તમારી, એટલે જ્યાં નેટવર્ક આવતું હોય ત્યાંથી વાત કરો। તો ફિર જબ આપસ મેં ભાઈ ભાઈ બાત કરને લગે, મહેમાન નહીં થે ઓર આપસ મેં બાત કરને લગે, તબ બેટીને કહે કે બડે પાપા પહેલી બાર શાદી મેં આયે થે ના, આપકા વ્યવહાર આજ ભી હમ ભૂલે નહીં। ઉસ સમય તારીફ કર રહે થે, સભી કે સામને ભી તારીફ કર રહે થે, અરે વાહ ક્યા બેટિયા તુમ તો, યે હો ગઈ વો હો ગઈ। ઉસને ભી સત્ય કો રખ હી દિયા કે પહેલી બાર જબ આપકે ઘર પર આયે થે તો કેસે કેસે આપને હમારે માતા પિતા કા અપમાન કિયા, આજ ભી હમ ભૂલે નહીં હૈ। તો ભાઈ કા ચહેરા, બડે પાપા કા ચહેરા હી ફીકા પડ ગયા, બોલે કે દેખે पैसे की वैल्यू हमारी थोड़ी ना वैल्यू, आज हम काबिल हो गई तो आज आप हमें पूछ रहे हो, और अगर हम वहीं तक रहते तो कभी आए नहीं आप हमारे घर पर, और एक बार बुलाया उसमें आपने ऐसा व्यवहार किया, दूसरी बार हम नहीं आए तो आपने पूछा तक नहीं हमारे माता पिता को, और आज आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है, इस तरह जल्दी रंग बदल दिया आपने तो, सत्य को रख ही दिया। वो कहते ना कि फिर भले रूठे तो रूठे, अपने सत्य को एक बार तो रख ही दिया कि माता पिता का अपमान किया है तो बात को रख ही दो। फिर दोनों बड़े पापा जो गांव में रहते हैं उन्होंने भी महसूस किया, फिर बोले हाँ हाँ बिटिया ऐसा तो हुआ है, हाँ तूने ऐसा किया है, वो बीच में नहीं बोले, वो नहीं बोले, फिर भाई को कहने लगे हाँ तूने किया तो गलत था। तो ऐसा होता है, चढ़ती के साथ सभी होते हैं, और बाकी जो साधारण होते हैं सोचते हैं कि वो ये क्या समझता है, लेकिन दिन सभी के बदलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई सत्य पर अगर कोई रूठ जाए तो उसे मनाना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रखा है, ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और आइए सुनते हैं फिर से एक गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में चॉकलेट और मिल्क शेक। ठीक है, चॉकलेट मिल्क शेक। सामग्री लिखवा रही हूँ। दूध ले लीजिए आधा लीटर, चॉकलेट पाउडर लेना है एक बड़ा चम्मच, कॉफ़ी पाउडर लेना है एक चौथाई छोटा चम्मच और चीनी लीजिएगा दो बड़े चम्मच, एक चम्मच लेना है छोटा चम्मच कोको पाउडर। ये हो गया चॉकलेट मिल्क शेक की सामग्री। ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहरा रही हूँ। आधा लीटर दूध, चॉकलेट पाउडर एक बड़ा चम्मच, कॉफ़ी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, दो बड़े चम्मच चीनी और एक छोटा चम्मच कोको पाउडर। बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, दूध, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, चीनी और सभी सामग्रियाँ डाल करके इनको मिक्सर में चला लीजिए। ठीक है, फिर बर्फ़ का चूरा मिला करके एक बार फिर से मिक्सर में चलाइएगा। अब गिलास में चॉकलेट शेक डालिएगा। गिलास में ऊपर से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके आप दे सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने परिवार वालों को। तो इस तरह चॉकलेट मिल्क शेक बनाया जाता है। विधि फिर से जान लीजिएगा। दूध, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और चीनी सभी को मिला लीजिए और मिक्सर में अच्छी तरह चला लीजिए। फिर ऊपर बर्फ़ का चूरा मिला लीजिए और फिर से मिक्सर में चला लीजिए। और अब गिलास में डालिएगा चॉकलेट शेक और ऊपर से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके अब आप जिनको भी देना चाहते दे सकते हैं। तो ये बन गया चॉकलेट मिल्क शेक। अब साथ ही साथ मैं आपको सेब का शरबत सिखा रही हूँ। सेब का शरबत में आप क्या करेंगे, ताज़ा पके सेब ले लीजिए एक किलो, चीनी एक किलो और बर्फ का चूरा लेना है। चले हमारे श्रोता बंधु बात करना चाहते हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते मदन भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ और बस कार्य कर रहा हूँ, कंपनी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आज का प्रश्न है, ताड़ आसन के क्या फायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए?
1: आसन,
0: ताड़ आसन के क्या फायदे हैं?
1: कोई फायदा नहीं है, अच्छा। खराब करना और
0: चलिए ठीक है,
1: समझा नहीं मेरा,
0: चलिए
1: सुनाई नहीं दे रहा बराबर।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है
1: जी जी, आपको सभी को नमस्कार, सुनने वाले को और आपको
0: जी,
1: और बस थैंक।
0: तो चलिए, ये थे मदन भाई मेहसाना से और मैं आपको सेब के शरबत की सामग्री लिखवा रही थी। ताज़ा पके सेब एक किलो ले लीजिए, एक किलो चीनी लीजिएगा और बर्फ का चूरा लेना है। अब आप क्या करेंगे, सेब को छील करके, मतलब धुलाई तो करनी ही है, फिर छीलेगा कद्दूकस कर लीजिएगा। अब इसे मिक्सर में डाल करके जूस निकाल लीजिए। इस रस में चीनी मिलाइए, गैस पर चढ़ा दीजिए। इसे तब तक पकाइए जब तक कि मिश्रण आधा नहीं रह जाए। फिर गैस से उतार कर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे कांच की बोतल में भर करके फ्रिज में रख दीजिए। जब भी सेब का शरबत पीना हो तो थोड़े से ठंडे पानी में शरबत मिला करके बर्फ का चूरा डालिए और पीजिएगा। तो इस तरह सेब का शरबत आप स्टोरेज कर सकते हो, जब इसका मौसम हो तब इकट्ठा आप खरीद लीजिए और इस तरह बना कर फ्रिज में रख दीजिए। फिर जब भी कोई मेहमान या बच्चे कहे या आपकी इच्छा हो जाए, उस समय इस तरह सेब का शरबत बना करके इसका आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह देखिए, चॉकलेट मिल्क शेक आपने सीखा है, सेब जिसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, एप्पल का शरबत आपने सीखा है। जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा। और आइए अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि भाई फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बीमारियाँ ठीक करती है, तो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और जो आपको चॉकलेट मिल्क शेक और सेब का शरबत बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके पीजिएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, ताड़ासन के क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले तो मैं जवाब दे देती हूँ, सुनिएगा। ताड़ासन के लाभ आपको बता रही हूँ। ताड़ासन से शरीर सुदृढ़ होता है। ये मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में भी सहायक है। ये आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। और इसके नुकसान मतलब किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो भी जान लीजिए। उन लोगों को ये आसन नहीं करना है जिन्हें हृदय संबंधी या वेरिकोज वेंस संबंधी समस्याएं हैं, चक्कर आने की स्थिति हो या उंगलियों पर ऊपर उठने का प्रयास, मतलब उनको नहीं करना चाहिए जिनको वेरिकोज की समस्या है, बाकी सभी कर सकते हैं। तो जवाब दिया है सुरेश भाई धानेराव से, आपका जवाब सही है। बाकी तो दयाराम जी जुड़े हैं, फिरोज भाई पालनपुर से जुड़े हैं, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, जसमत भाई जुड़े हैं गुजरात से। आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो पहले तो सुरेश भाई धानेराव से आपके लिए ढेर सारे और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए भी ढेर सारे। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। खुशी देने से खुशी बढ़ती है, अतः सर्व को खुशी देने का प्रयत्न कर

0: कभी दुख देने का विचार भी नहीं। अब मैं आपको प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है जीवन की राह। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलो ऐसा दीप जलाए जिससे हर मन मुस्काए, चलो ऐसा दीप जलाए जिससे हर मन मुस्काए, मीठे बोलों की खुशबू से हर आंगन महक जाए। चलो ऐसा दीप जलाए, न धन बड़ा न मान बड़ा सबसे बड़ा है व्यवहार, न धन बड़ा न मान बड़ा सबसे बड़ा है व्यवहार, जो बाटे प्रेम और अपनापन वही है सच्चा परिवार। चलो ऐसा दीप जलाए, गिरकर जो फिर उठ जाता है, गिरकर जो फिर उठ जाता है वही सफलता पाता है, जो खुद भी मुस्काए हर पल औरों को भी हंसाता है। चलो ऐसा दीप जलाए, ज्ञान योग और सेवा से जीवन को उजियारा दे, ज्ञान योग और सेवा से जीवन को उजियारा दे, हर दिन एक नई सीख लेकर दुनिया को कुछ प्यारा दे। चलो ऐसा दीप जलाए, चलते चलते बस इतना याद रखिए, जीवन की सबसे सुंदर पहचान अच्छे संस्कार, मधुर व्यवहार और हर पल सबके कल्याण का संकल्प है। इसी के साथ अब मैं आपकी चहेती आरजे उषा आप सभी से अनुमति चाहूंगी, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
1: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता, लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
3: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही, कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो प्लीज, मारो सपनो मत तोड़ो माँ प्लीज।
4: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी, सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊं तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वाको भी सोचनो है मारे।
5: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थने यही सलाह दे रही हूँ, बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना।

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चलावा ही नहीं देऊं तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछे न बताओ।
1: बेटा बीनणी तो घणी अच्छी है ये, पर गूंग तो घणो ओछो काढ़े, यो अभी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पढ़न कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते अरे मारी मारो किनो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कहीं नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बीनणी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घना दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी ना, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपा, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अत्रा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वणी सामान पे बहुरो कोई अधिकार कोनी वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन, है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवे रही है नवा घबराए रही है, तो मैं बने हॉस्पिटल लेन जाओगे?
1: चुप बैठ चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो,
2: अरे मैं कई हर मानो, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हाँ, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लूं, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनणी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई, बाबा दो
2: खुश रहो। अरे बीनणी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे।

0: छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगी ने की बगै छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
1: काकी साहब आप सही कह रहे हो, पर विनणी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे विनणी की जांच कराई कि नहीं?
0: देख राजा, आपने भी टाबर व्या एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे विनणी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
1: काकी साहब आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय घणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बातें सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, ढीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
0: तो दर्पा मत राधा,
1: दर्पावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बीनणी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रियो है बीनणी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
0: चलो बीनणी दवा खाने चला।
2: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां, फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें, ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती, क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहे, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहे तो जरूर पढ़ाए, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए जरूर पढ़ाइए।
0: बीनणी आज से थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे वनी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनणी को पूरा ध्यान राख जे।
3: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी, आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है, आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को, चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के, आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
4: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन हैं उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है? इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए। तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है। कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं। तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेस जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजिशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में।
2: जी
4: उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इश्यू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
3: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए, लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझें और सहयोग भी करें। तभी हम कह सकते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

सकारात्मकता जिस घर में होती है उस घर की हालत क्या होती है, आइए गीत के माध्यम से जानेंगे।

0: नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है आसपास जो गतिविधि जन जन तक पहुँचाने के लिए तत्पर रहता है तो आज हमें खुशी है। कुछ दिन से आप पोलो ग्राउंड का रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आपको सुनाते जा रहे हैं क्योंकि सरकार का जो मंच है बच्चों को उमंग उत्साह दिलाने में जो हर साल पोलो ग्राउंड जो कि आबूराज में होता है प्रशिक्षण राजस्थान सरकार के तत्वावधान में ये गाइडलाइन में जो भी क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद तो वॉलीबॉल हो चाहे हैंडबॉल बहुत सारा गेम यहाँ पर 6 प्रकार का गेम होता है प्रशिक्षण हर साल। तो जो इस साल का भी हुआ है तो उसका कवरेज करने के लिए रेडियो मधुबन पीछे नहीं रहा और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक गेम का जो कोच है जो कप्तान है जो विष्णु पितामह कहते हैं लीडर का जो टीम का लीडर है खासकर आर्चरी तीर धनुष का कोच से हम मिलेंगे क्योंकि कहाँ कहाँ से बच्चे को सिलेक्शन करके लेकर आए तत्व बनन में तो उनको स्वागत करते सर आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन परिवार आपका परिचय इंट्रोडक्शन।
1: नमस्कार सर, मैं नरेश डामोर
0: जी सर
1: अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हूँ। मैंने भारत के लिए 6 पदक प्राप्त किए हैं जिसमें एशियन चैंपियनशिप है गोल्ड भी है वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला हूँ और नेशनल लेवल पे 22 गोल्ड पे मैंने प्राप्त किए हैं। इस साल जो समर कोचिंग के हम जो 4 तारीख से लेके 24 तारीख तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जिला प्रशासन सिरोही द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप के अंदर में हमारे यहाँ पे 10 लड़के और 10 लड़कियाँ जो कि पूरे राजस्थान के हैं इनका सिलेक्शन होता है।
0: कैसे बेसिस?
1: इनका जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं महीना भर पहले वहाँ से जयपुर से इनका सिलेक्शन होता है जो मेरिट के आधार पे होता है। जो बच्चे नेशनल मेडलिस्ट है नेशनल पार्टिसिपेट है इस आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होकर बच्चे आते हैं। और इस कैंप के अंदर में एक माउंट आबू एक हाई अल्टीट्यूड जगह है बहुत अच्छी है खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे मेडिटेशन बहुत अच्छा है। स्पेशली तीरंदाजी गेम में इस कैंप से कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दिए हैं। इस कैंप से राजस्थान से कम 10 से 15 बच्चे हैं जो मैं खुद भी इस कैंप का स्टूडेंट रहा हूँ 94 में और यहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये जो जगह है यहाँ आर्चरी के लिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है और एक शांत वातावरण है। और इस बार भी कैंप के अंदर हमने खिलाड़ियों को बहुत अच्छी कोचिंग दी है जैसे कि इनका फिजिकली आर्चरी के अंदर में इनकी बेसिक्स ट्रेनिंग दी जो कुछ कमियां थी वो हमने पूरी की। तो आने वाले टाइम में ये बच्चे यहाँ से जो गलतियाँ हैं वो करेक्शन करके जा रहे हैं और आगे टूर्नामेंट में ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे राज्य और देश के लिए अच्छा पदक लेके आएंगे। और यहाँ हमने मेडिटेशन भी बच्चों को सिखाया कंपटीशन के अंदर किस तरह से जैसे कई बार होता है बच्चा नर्वस हो जाता है तो उसको आप नर्वस सिस्टम को कैसे कम करना है वो ट्रेनिंग भी हमने इन बच्चों को सिखाई है 20 दिन के अंदर में। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा है। और तीरंदाजी एक्चुअली में क्या व्यक्तिगत गेम है और उसमें व्यक्तिगत गेम है आने वाले टाइम जैसे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये बच्चे
0: जी।
1: और नया बच्चा भी अगर जैसे कोई आना चाहता है
0: जी
1: तो वो आए इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर में ये गेम्स ओलंपिक तक है और बच्चा जैसे नेशनल लेवल पे भी अगर पदक प्राप्त करता है तो गवर्नमेंट के अंदर में खेल कोटे के अंदर में इनको नौकरी मिल सकती है। तो मैं ये करूँगा जैसे इस कैंप में भी बच्चे जो आउटसाइडर भी आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने ये सब अच्छा करें और अपना फ्यूचर भी स्पोर्ट्स के अंदर में बना सकते। धन्यवाद।
0: शॉर्ट एंड स्वीट में इतना मैंने सब चीज़ को रख दिए नेशनल से लेकर उनको करियर भी बनाना चाहेंगे तो अभी स्पोर्ट्स में इनको मैंने नौकरी मिलने में भी बहुत
1: बिल्कुल सपोर्ट है ना सर। अगर जैसे आप नेशनल लेवल पे खेले हो पार्टिसिपेट भी किया है तो आप जिस प्रोफेशन में जाओगे उसमें कहीं कहीं आपको वो बोनस पॉइंट मिलते हैं।
0: अरे मैंने देखें कोई भी जो स्पोर्ट्समैन है बाद में आकर भी नौकरी भी करते हैं
1: कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं
0: ये भी प्लस पॉइंट है
1: बिल्कुल प्लस पॉइंट
0: पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं।
1: जैसे आप खेल रहे हो नेशनल खेले हुए आप किसी पढ़ाई में अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली
0: आप नौकरी
1: उसमें भी आपको खेल कोटा मिलेगा। तो खिलाड़ियों को आना चाहिए एक अच्छा गेम है इसको करो तीरंदाजी बहुत अच्छा गेम है।
0: और ये इंडिविजुअल गेम है
1: आप है ना
0: जितना आ सकता बढ़ सकते हैं
1: अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप जैसे कोच नहीं है फिर भी आप एक टारगेट लगा के कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप जैसे मैदान में भी कर सकते हो फार्म में भी कर सकते हो इंडिविजुअल गेम है एक बहुत अच्छा गेम है
0: क्योंकि खेल में दो प्रकार का होते हैं एक तो आउटडोर और इंडोर और खासकर सिंगल व्यक्तिगत एक सिंगल कर सकते गेम जैसे आपने तीरंदाज का बात बताया लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल
1: टीम इवेंट है तिरंगा जी एक इंडिविजुअल गेम है जिसमें सिंगल बच्चा भी प्रैक्टिस कर सकता है
0: जी,
1: और उसमें
0: एक प्लस पॉइंट,
1: प्लस पॉइंट है ये,
0: और कर सकता है, चाहेगा तो इतना मेहनत
1: कर सकता है सर। एकलव्य ने भी दो प्रैक्टिस करके किया, तिरंगा जी कर की थी, तो सेम है ये गेम भी, ऐसा इंडिविजुअल गेम है, आप जितना फोकस करोगे, जितना आप खुद को फीलिंग ले सकते हो।
0: बात आपने छेड़ दी जो एकलव्य का कहानी सुना दी, कितना है ना धनुष विद्या में पारंगम थे
1: वो, उसके मन में था कि नहीं मैं तीरंदाजी करूंगा, तो वो बिना गुरु के भी मतलब एक फोटो लगा के भी की ना तीरंदाजी। तो आर्चरी वो सेम वैसे ही है सर, ये गेम भी वैसा ही है, अगर आपकी है कि नहीं मैं अच्छा करूंगा, आपको पता रहना चाहिए कि मेरा तीर कहाँ जा रहा है, क्यों भाग रहा है, उस गलती को अगर आप पकड़ लोगे तो आप इंडिविजुअली मतलब कर सकते हो। बेसिक चीज़ें सीखने के लिए कोच की जरूरत होती है, लेकिन रेगुलर
0: प्रैक्टिस,
1: हाँ रेगुलर खुद की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी
0: है। कल जो इंस्ट्रक्शन जो नियम है,
1: हाँ
0: क्या क्या नियम होता है, जैसे कोई एकलव्य जैसे उनके पास इतना साधन नहीं, उनका कोई सोर्स नहीं, तो घर में बैठ कर मैनेज करना चाहेंगे एकलव्य जैसे, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन,
1: हाँ हाँ
0: जो नियम है,
1: जैसे सर ये मॉडर्न आर्चरी है, इसके अंदर में आपको बेसिक चीज़ें तो आपको कोच के पास सीखनी पड़ेगी, लेकिन आप जब बेसिक क्लियर कर जाओगे, एक टूर्नामेंट आपने पार्टिसिपेट कर लिया, इसके बाद आप परफॉर्मेंस के लिए करते हो, तो आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा अचीवमेंट ले सकते हो।
0: जैसे कोचिंग करने का बेसिक जो चीज़ सीखने के लिए कोचर के पास जाएंगे, तो कितने दिन का ट्रेनिंग होता है
1: ये सर? बेसिक आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे।
0: 6 महीने ड्राइविंग सीखते तो हमें 15 की 1 महीना गाड़ी फोर व्हीलर का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इसके बाद अपना घर में करते हैं,
1: कर सकते हैं, तो वो सेम है,
0: सेम ये भी
1: सेम भी ऐसे है।
0: तो पहले इसका इंस्ट्रक्शन कैसे,
1: हाँ पहले 6 महीने तो आपको बेसिक क्लियर करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट हमारे के हमें इक्विपमेंट कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो गए, इसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा अचीवमेंट ले सकते हो।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जरूर इससे फायदा ले, और सर का जो इंस्ट्रक्शन बोले बिना पैसा से आज सभी को फायदा दे रहे हैं, एक पुनीत काम कर रहे हैं सर, क्योंकि आपको जो सुन रहे जो भी बच्चे इस फील्ड में तीरंदाजी में आना चाहेंगे आर्चरी में, क्योंकि यहाँ का आदिवासी फील्ड है सर, क्योंकि तीर धनुष उनका घर में भी मिलेगा, क्योंकि आदिवासी लोग के पास तीर धनुष रहता ही है, और इस फील्ड में उसको बहुत माहिर है पढ़ने में, क्योंकि उनके बाप दादा का खानदान ही है, तो इसमें थोड़ा फायदा होगा। और
1: एक्चुअली में सर जैसे ये ट्राइबल बेल्ट है, जैसे आबू रोड जो तहसील है, जैसे
0: सिरोही का
1: तो तीरंदाजी यहाँ क्या खून के अंदर तीरंदाजी है, कि एक जो मतलब नेचुरल तीरंदाजी है वो तो करते ही है,
0: बाप दादा का
1: वो करते ही है। इस जैसे ये जो मॉडर्न आर्चरी है, इसके अंदर अगर वो आते हैं तो उनको एडवांटेज मिलेगा, इसके अंदर वो जल्दी जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ तीर कैसे चलाना है वो, क्योंकि वो बचपन से जानते हैं चलाना। अब ये है कि गवर्नमेंट को भी आगे इस एरिया में स्पेशली इस बेल्ट के अंदर में अकेडमियाँ खोलनी चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं सर, 4-5 लाख के आते हैं, तो गवर्नमेंट को स्कूलों के अंदर में हॉस्टल खोलने चाहिए तीरंदाजी के, ताकि इन बच्चों को आधुनिक तीरंदाजी का ट्रेनिंग मिल सके और उनको वो सुविधा मिल सके, ताकि वो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर सके।
0: बहुत अच्छा बात बताया है ना, एक जो आवश्यकता आपने बताया, यहाँ का मैंने देखा है सभी स्कूल में जो जाते हैं, तो यहाँ का बच्चों को एक जैसे इक्विपमेंट मिल जाए।
1: हाँ इक्विपमेंट, मॉडर्न
0: इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट,
1: क्योंकि सर ये तीरंदाजी जैसे क्या है वो ट्रेडिशनल आर्चरी है नहीं, ये क्या अभी बहुत कॉस्टली है, एक जैसे नॉर्मल लकड़ी का धनुष भी लेने जाओ 10,000 रुपये लगते हैं,
0: क्या बात।
1: हाँ और मॉडर्न आर्चरी वो कम से कम मतलब 5 लाख के आसपास धनुष आते हैं, तो इतना क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत है, जैसे माउंट आबू में भी एक सेंटर खुल जाए यहाँ पे तीरंदाजी का, तो इस वातावरण का सभी तीरंदाजों को फायदा मिले, स्पेशली जैसे आबू रोड में जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका स्पेशली कोई ऐसी स्कीम चला के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिले,
0: क्योंकि आपका अनुभव भी है फील्ड में, शुरू से आप इतने तक पहुँचे इंटरनेशनल तक, तो इसलिए जो आवश्यकता जो रिक्वायरमेंट यहाँ के आप देखकर अपने प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों का भविष्य उसमें बन सकता है, क्योंकि कहीं कोई इंडिविजुअल लेना चाहेंगे तो उनको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में इतना पैसा कौन खर्च करेगा।
1: सर मेरा तो यही है, जैसे गवर्नमेंट को स्कूलों के अंदर में इक्विपमेंट देने चाहिए, तीरंदाजी जो आधुनिक तीर धनुष है ना वो इक्विपमेंट दिया जाए, जैसे टारगेट दिए जाए, धनुष दी जाए स्कूलों में ट्राइबल बच्चों को, तो वो अपना अभ्यास करके और फिर एक अच्छा सा सेंटर यहाँ बना जाए तीरंदाजी का, जिससे कि वो बच्चे नियमित अभ्यास करके आगे बढ़े।
0: तो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे आपने आशा की अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ तो ऑब्स्टेकल या कुछ प्रतिबंध आ रहा होगा?
1: सर गवर्नमेंट इस बेल्ट में तो अभी तक एक भी हॉस्टल नहीं है मेरे हिसाब से तीरंदाजी का,
0: जी जी।
1: और होना चाहिए, जैसे अभी उदयपुर में हॉस्टल है, मतलब बांसवाड़ा में भी है, डूंगरपुर में भी एकेडमी चल रही है, वहाँ से बच्चे, सिरोही जिले में अभी तक नहीं है, यहाँ के जैसे स्पेशली जैसे गरासिया जनजाति है
0: जी जी,
1: उनके लिए एक तीरंदाजी की एकेडमी यहाँ खोलने की जरूरत है, या तो माउंट आबू भी खोल दे ऊपर, ताकि यहाँ के बच्चों को फायदा मिले।
0: सही बात। तो श्रोता मित्र खासकर हमारे प्रशासन सुन रहे, आवश्यकता जहाँ पर वहीं पर मिलेगा तो बहुत हाँ, काम का मैंने आशीर्वाद दुआएं भी मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि गरीब बच्चे का जो दुआएं लगा उसका कोई करियर बनेगा तो जरूर याद करेगा, और कोई भी एक स्टेप लेगा तो जरूर कामयाब तक पहुंचेंगे। और मैंने कुछ बच्चों से भी इंटरव्यू लेंगे तो उनका भी भावना क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि आवश्यकता होने से यहाँ पर सरकार भी उसको थोड़ा देखेंगे तो हमें खुशी मिलेगा। और सबका अंगुली चाहिए, जैसे सर कोचर तो है ही, किंतु उसको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, उनका सिखाने का बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों का आवश्यकता, सबका सहयोग भी आवश्यक, सरकार का भी सहयोग चाहिए और बच्चों का भी, उम्र उत्साह भी चाहिए और कोचर भी, तीनों का जो गैप नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तब जाकर एक स्नेह का मिलन होगा जो सभी कामयाब हो पाएंगे। तो जाते से सर और क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार को जो आवश्यकता वो बता दिए।
1: सर जैसे आपने भी बताया, जैसे ये ट्राइबल बेल्ट है, आर्चरी खुंद में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चों को तीरंदाजी में कैसे आगे आए इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, स्कूलों में इक्विपमेंट जाए तीरंदाजी का, ताकि इन बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने में सहायता मिले।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी करा दिया। और एक कोचर का जो भावना रहता है सबका प्रति जनहित में, और सभी खेल जो प्रेमी सबके लिए, सिर्फ तिरंग सभी के लिए सभी। उनका उमंग उत्साह होना चाहिए और उत्साह का भावना है। आपको धन्यवाद देते हैं हमारा कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ तिरंग जी हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे, उनका बात भी हम सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको खुशी लग रहा हो और जो खेल में रुचि रखते हैं, गेम में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको आज तो रामबाण जैसे और कुछ जानकारियाँ अभी जो तिरंजा जी जो कि आर्चरी का जो कोच से हम बात की हैं, तत्पश्चात बच्चों से भी कुछ लेने के लिए इच्छा हुई तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों का जो उमंग उत्साह है और मन और बुद्धि में जो ठान लिए, जो संकल्प किए, तत्पश्चात उनका भाव और भावना को लेकर और करियर को बनाने के लिए क्या संकल्प लेकर जाएंगे उनसे सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमारा एक स्टूडेंट जो आर्चरी सीख रहा है तो उनको स्वागत करता, अपना परिचय देंगे।
1: जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम शेखर यादव है
0: जी।
1: मैं डूंगरपुर जिले से हूँ
0: जी सर।
1: और मैं एक तिरंदाजी खिलाड़ी हूँ
0: जी।
1: और मैं स्टेट खेला हुआ हूँ
0: okay.
1: और यहाँ का मैं कैंप में आया, यहाँ से मुझे अपनी अभिरुचि और अपने साहस से यहाँ के जो अद्भुत प्रशिक्षण है इसकी, ये प्रशिक्षण को लेते हुए मैं अपने आगे की तैयारी को और बेहतर बना पाऊंगा।
0: ये खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है?
1: यस सर।
0: वाह, ताली बजाओ। कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज, सक्सेस का मेन कॉन्फिडेंस। एज यू थिंक, जैसे आप सोचेंगे तो उस तरह बन पाएंगे। करते रहना, चलते रहना, जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छा बात। किसको देना चाहते हैं इस फील्ड तक? देखना तो आप अचीव किए, जहां तक आप प्राप्ति किए, प्राप्ति का माला लगाना, जो मैंने क्या क्या पाया, एक माला प्राप्ति का, अचीवमेंट, इसका जो अचीवमेंट जो आप लिए जाता है, इतना तक पहुँचे, श्रेय किसको देना चाहते? धन्यवाद।
1: मैं अपना श्रेय, अपना धन्यवाद अपने प्रशिक्षक तथा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
0: शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिए भाई, अपना प्रेरणा का स्रोत हमारा बड़े जो हमें हमारा शुभ इच्छा रख, शुभ भावना रखते हैं उनको देना चाहते हैं। वेरी गुड। इस तरह जब आपको बाद में कभी मीडिया वाला आपका पास पहुँचेगा, आपका इंटरव्यू, आपका अचीवमेंट का, तो आप अचीवमेंट में क्या बताएंगे, क्या क्या प्राप्ति किया है इस फील्ड में, आर्चरी में?
1: आर्चरी में सर, मैंने जो मैं वहाँ तक खेलूँगा, आगे तक जो मेरी हॉबी है, मैं वहाँ तक खेलूँगा सोचकर मैं तब मीडिया के सामने अपनी रूबरू को कहना चाहूँगा, अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा।
0: इससे फ़ायदा किसको होगा?
1: फ़ायदा सर मुझे भी होगा, अपने गुरुजनों को होगा जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया, अपने माता पिता को होगा और जो नाम भी रोशन होगा,
0: देश का भी नाम आएगा।
1: आएगा
0: किस देश का है कि नहीं?
1: भारत
0: का भी आएगा। तो श्रोता मित्र, खासकर हमारा लिसनर्स सुन रहे, इस तरह जो बच्चे भी सुन रहे, तो उनको एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा का मिले, क्योंकि सिर्फ वो क्यों, हम क्यों नहीं पूछे, वो क्यों, एकलव्य क्यों, अर्जुन क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो कर सकता हूँ। ऐसे भी अर्जुन, एकलव्य ऐसे ही मेरा जैसे भी था, कर सकते हैं।
2: यस
0: आई कैन, बोलो यस आई कैन।
2: आई कैन,
0: मैं कर सकता हूँ,
2: कर सकता हूँ,
0: मैं कर सकती हूँ, बोलो मैं,
3: बोलो
0: बोलो जोर से, मैं कर सकता हूँ,
2: मैं कर सकता हूँ,
0: मैं नहीं करूँगा तो,
2: मैं नहीं करूँगा तो
0: कौन करेगा,
2: कौन करेगा,
0: मैं ही क्या था,
2: मैं
0: ही करूँगी,
2: मैं ही करूँगा,
0: मैं ही करूँगा। चलिए लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक होवनहार चाहे तो उनको भी स्वागत करते हैं, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: से।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चे रेडियो स्टूडियो में पहुंच चुके, जैसे ओपन राउंड में सब एक एक आरजे बन गए। आरजे मतलब रेडियो जोकी, रेडियो में जो बोलते हैं उसको आरजे कहते हैं सर। ये तो तिरुनंदी में तो लेंगे ही, लेकिन आज एक सेकंड के लिए उनको जैसे किसको प्रधानमंत्री बना दे तो क्या करेंगे, जैसे एक आरजे बन जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आरजे आज बन गए रेडियो में बोलने वाले को आरजे कहते हैं। तो एक पोस्ट भी मिल गया आज के लिए, एक एक आरजे। ओके, सभी आरजे बन जाएंगे ना?
4: यस सर।
3: आरजे मतलब मनोरंजन, रेडियो जोकी। ओके, तो आपको खुशी लग रहा ना?
4: यस सर।
3: क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ है रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो, आपका रेडियो आपके द्वारा। चलिए हमारे साथ और एक छात्रा है, परी है, गुड़िया है। गुड़िया आप अपना परिचय बताइए।
5: नमस्ते सर, मेरा नाम हिनल पटेल है।
3: अरे वाह,
5: डूंगरपुर जिले से हूँ और मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ रही हूँ
3: जी। और आपका दोस्त गुड फ्रेंड जो कि हमेशा साथ देती है कोई भी परिस्थिति हो, जो चीज़ हम माता पिता को नहीं बताते, लेकिन हमारा अच्छा दोस्त गुड फ्रेंड, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा अच्छा दोस्त था ना, जैसे गुरु शिष्य किसका नाम लिया था सामने, एकलव्य और द्रोणाचार्य, कितना शिष्य और गुरु का एक संबंध, अभी दोस्त का संबंध, दोस्त और किस तरह दोस्त होना चाहिए। आपका अच्छा दोस्त का नाम बताइए।
5: सर सबसे अच्छी दोस्त है पल्लवी, एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में है।
3: तो उनका एक विशेषता जो अति आवश्यक, आपका जब मैं भी उनका विशेषता को चोरी करूंगा तो हमारा जीवन में वो जैसे आज प्रसिद्ध हुई है, मेरे अच्छा दोस्त बने, तो आप उनका कौन सा विशेषता मैंने गुण अच्छा चीज बताइए।
5: सर मेरे हर सुख दुख में साथ देती मेरा, और कभी कोई गलत काम में साथ नहीं देती मेरा, हमेशा अच्छे कामों में साथ देती हूँ मेरा।
3: इसलिए उसका जो संस्कार, अच्छा संस्कार मैंने हेल्पिंग नेचर, सहायता देते, खराब चीज में अच्छा चीज में सहायता देते, इसलिए आपको सहयोग देते, सहायता भावना वो चीज़ आपको अच्छा लगता, बहुत अच्छा। किरण झा जी में जो सिलेक्शन किए, ये आपका सोच ना आपका परिवार का सोच इस फील्ड में जो आना, आर्चरी जो किरण जी जो गेम में प्रशिक्षण दे रहे, ये आपका सोच ना आपका परिवार बा कोई कैसे प्रेरणा लेकर आए, कौन आपको प्रोत्साहन किया इस फील्ड में आने में?
5: सही से मेरे टीचर्स थे मेरे साथ में और पेरेंट्स थे,
3: सभी सहयोग दिए जिसका चलता आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जाकर देश का नाम रोशन करने के लिए दो पॉइंट बताओ, क्या करेंगे तो हमारा देश और खुद का, परिवार का, गांव का, राज्य का और देश का रोशन कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसे अटेंशन देंगे तो ज़रूर हम देश का और खुद का नाम रोशन करेंगे।
5: मैं किसी गलत रास्ते में नहीं जाऊंगी, अपना जो सही रास्ता है उस पर चलती रहूंगी, इससे अपने देश का नाम रोशन करूंगी, अपने परिवार का।
3: सही रास्ता में चलेंगे तो सही जगह में पहुंचेंगे। ओके, धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक छात्र है, तो उनको भी स्वागत करते हैं। आज एक गुलदस्ता बन रहा, सभी का आवाज़ का गुलदस्ता, आवाज़ ही उनका पहचान होगा कि किसका आवाज़ है, जब सुनेंगे उसका मम्मी बुला रही है तो हमारा गुड़िया का आवाज़ है, ये तो हमारा गणेश का आवाज़ है, ये हमारा सर का आवाज़ है ना?
4: Yes,
3: तो आवाज़ का दुनिया में हम चल रहे। चलिए हमारे नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए स्वागत करते हैं एक मनोरंजन आरजे, है ना? आज के लिए आरजे के लिए ताली बजा भाई, छोटा आरजे रेडियो जोकी बन गया आज। ओके, सबको अच्छा लग रहा है?
4: यस
3: आई कैन, बोलो यस।
4: आई
6: मेरा नाम श्रीपाल सिंह है।
3: श्रीपाल जी,
6: नेपाली से
3: जी,
6: राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल एकेडमी प्रैक्टिस करता हूँ उदयपुर।
3: उदयपुर से
6: जी सर।
3: तो क्या खासियत है उदयपुर का, जो जो प्रैक्टिस जहाँ पर, क्या खासियत जो आप उसी में गए, उदयपुर में गए, जयपुर की दूसरा जगह में नहीं गए, सिर्फ उदयपुर में क्या खासियत जो एकेडमी में, कुछ बताओ, क्योंकि हमारा श्रोता सुन रहे हैं, कोई स्टूडेंट सुन रहे तो उसमें वो भी ज्वाइन कर सकता है।
6: सर वहाँ पे एक वातावरण बहुत अच्छा है, एक ग्राउंड और जो साथी है प्रैक्टिस करने, कोचेज वगैरह अच्छे हैं,
3: मैंने ए टू जेड सब चीज में सीखने को मिलता है। तो आज रेडियो का माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, आपका एक मंच मिला रेडियो जो के हिसाब से, तो क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को, आपका लिसनर को क्या कहना चाहेंगे, जो सुन रहे आपको क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, सर मैं एक तीरंदाज हूँ, तो ये गेम बहुत अच्छा है, इसमें फोकस अटेंशन और कंसिस्टेंसी का गेम है। तो इस ये खेलने से फोकस और कंसिस्टेंसी बढ़ती है, एक्यूरेसी, परफेक्शन, हर चीज़ अपना 100% देते हैं, इससे फोकस बढ़ता
3: है, अटेंशन मिलता है, फोकस एक चीज में आपको फोकस पूरा लक्ष्य है, एक जगह एम पूरा फोकस करना, तो उसमें जब कामयाब होंगे तो हमारे श्रोता मित्र ग्राम बाजार सब स्टूडेंट सुन रहे, तो फोकस शब्द जो देना है, कोई भी चीज़ को फोकस करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, तो उनके लिए जोर से ताली बजाओ। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ बच्चे से आवाज़ सुनेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे
1: चैन। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: इस कार्यक्रम को अगला कड़ी में और एक स्टूडेंट है। हेलो, नाम बताइए।
1: मेरा नाम मनीष गांधी है, मैं बांसवाड़ा से।
0: अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है?
1: मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर एक इंडियन खिलाड़ी बनना चाहता
0: हूँ। और कुछ किस फील्ड में?
1: आर्चरी में।
0: आर्चरी में इंडोर और आउटडोर दो गेम होता है ना, तो आर्चरी कौन सा गेम में आता है?
1: आर्चरी
0: आउटडोर।
1: आउटडोर
0: आउटडोर बाहर खेलते हैं ना, घर में खेल सकते हैं?
1: नहीं,
0: बाहर में खेल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजा। गणेश फिर भी साथ में देना।
2: और मैं अभी
0: चलो,
3: मैं सर एक पैरा आर्चर हूँ। अभी सर मैं तीरंदाजी की तैयारी कर रहा हूँ। और सर मेरे को मतलब आगे तक जाना है। और सर मेरा सपना ये कि मतलब मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और अपने देश का तिरंगा मेरे कंधों पे होना चाहिए। और मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता।
2: देखो इसका जो
0: सोच, जो सर सोच तो हो कि नहीं हो, लेकिन पहला स्टेप तो पास किए ना, इसका मतलब सेकंड स्टेप ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला स्टेप में हम डाउन हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बहुत
1: अच्छा।
0: मतलब कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई साधन नहीं मिलेगा तो साधना कैसे करेंगे? साधन होना चाहिए ना, साधन कहाँ से जुगाड़ नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जैसे एकलव्य को साधन नहीं था लेकिन साधना कैसे किया, क्योंकि कभी साधन मिलता है कभी साधन नहीं मिलता है। साधन नहीं मिलेगा तब भी जो कर पाएगा वो टॉपर हो जाएगा, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट।
4: मेरा नाम विशाल है, मैं नागौर से हूँ।
0: ओह वेरी गुड।
4: मैं बूदेपुर अकेडमी में रहता हूँ।
0: बहुत अकेडमी से बहुत कराए हैं, बहुत अच्छा काम। तो उसको क्यों सिलेक्शन किए अकेडमी को? और कोई जगह नहीं है राजस्थान
4: भी है, पर उधर बात सुनी उधर के कोच अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है।
0: चलो, जो भी सुन रहे हैं और खासकर एकेडमी जो उदयपुर वाले भी सुने होंगे तो उनको भी लगेगा जा हमारा आज बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, करेंगे ना? हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट।
5: मेरा नाम जयराज मछार है।
0: जी जी।
5: बांसवाड़ा से।
0: और आगे क्या करना चाहेंगे?
5: अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ।
0: आपका कितना गेम को जानते हैं, कितना खेल को जानते हैं? जैसे तीरंदाजी एक है, ऐसे कितने गेम जानते हैं बताओ फटाफट।
5: सारे गेम हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, चेस, कैरम।
0: कौन सा छूट गया कोई बोलेगा? सभी खेल में, क्योंकि एक माला खेल का गुलदस्ता। हाँ बताओ
6: सर। स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, जिमनास्टिक है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, बहुत सारे गेम है इसमें।
0: क्योंकि सभी तो हमारा दोस्त है ना, है कि नहीं? उनको कैसे छोड़े, खाना हमारा सबको लेकर तो गुलदस्ता बनना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम किरण कुमार है और मैं भिलवाड़ा जिले से हूँ।
0: अच्छा, इस संगठन में आप आज जो प्रोग्राम हुआ आज दिन भर क्या सीखा है, जो चीज़ आपके पास नहीं था? अभी हम एक घंटा से बात कर रहे थे सभी से, कुछ ना कुछ बात हुई है, तो इससे आपको क्या अच्छा लगा वो बताओ।
7: एक तो हमें फालतू की चीजों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए और अपने मन का कर करके प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
0: ये दोनों चीज आपको अच्छा लगा।
8: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
8: मेरा नाम विमला गोस्वामी है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से।
0: पूरा बॉर्डर में है
8: सर।
0: पाकिस्तान का बॉर्डर में, और धूप में तो बहुत तपते हैं, है कि नहीं? बाड़मेर तो सबको पता ही है कि नहीं? बाड़मेर का विशेषता बता, हम तो कभी नहीं गए लेकिन आप बताएंगे तो हम यहीं से जा सकते। बता बाड़मेर बारे में, हमारा श्रोता भी जो नहीं गए वो बाड़मेर का विशेषता।
8: बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, अच्छा शांत इलाका है और मरुस्थल ज़्यादा है थोड़ा।
0: शांत इन द सेंस, सब लोग तो बोलते वहाँ डर लगता है भाई, कभी भी बम गिरेगा लेकिन आप शांत बोलते, बहुत आश्चर्य का बात है। जहाँ पर हर दिन
8: सर वो तो बॉर्डर इलाके के 10 किलोमीटर के आसपास ऐसे होता है, पर सिटी के अंदर इतना नहीं है।
0: नहीं, लेकिन अभी कुछ नहीं होना चाहिए, होगा नहीं। हमारा भारत अखंड भूमि है। हाँ। कुछ खंड नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत अविनाशी खंड, परमात्मा का अवतरण भूमि है। तो भारत माता की
9: जय।
0: चलिए नेक्स्ट। सबको लग रहा ना अब हमारा आवाज जा रहा है, तो जब सुनेंगे तो अरे मेरा आवाज कब आएगा बोलते ना।
10: हाँ जी सर, मेरा नाम दीपिका शेखावत है और मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जयपुर अकेडमी में रहती हूँ।
0: अच्छा, वेरी गुड। आप, आपका दो हो गया, आपका हाथ है ना, दिखाओ हाथ। इसका मतलब कितना ध्यान से सुन रहे, वो भी जरूरी है। जो इंस्ट्रक्शन जो बोल रहा उसको ध्यान से सुनना जरूरी है। आप कौन हो वास्तव में?
10: आत्मा।
0: याद रखा ना, वास्तव में हम सब एक आत्मा है और ये नाम मेरा है,

0: मेरा है, रहने का स्थान मेरा है। ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान दिया, आत्मज्ञान।
1: मेरा नाम है।
0: तो आप क्या संगठन में क्या सीखने को मिला? संगठन में रहते कितना दिन रहा संगठन में? 10 दिन, 20 दिन? 20 दिन तो मिला, तो 20 दिन सबका विशेषता अलग अलग है, सबका सोच अलग, सबका संस्कार अलग, सबका विचार अलग, फिर भी सबसे मिलकर अच्छा तो सीखा होगा। संगठन में रहने से हमको क्या सीखने को मिला? आपको एकता से, एकजुट एकता से, संगठन में एकता का बल होना चाहिए, है ना? वेरी गुड। सबसे लास्ट और फास्ट जी, कैसे लगा आज का प्रोग्राम? क्या अच्छा लगा एक अच्छा बताओ, इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा? आपने बोला अच्छा प्रोग्राम है, सब अच्छे हैं और प्रोग्राम में अच्छा, तो क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा बताओ, अच्छा छोड़ दो, है ना?
2: हाँ, बुरा बता,
0: हम बुरा बता दो तो हम सब सतर्क रहेंगे, है ना? हमारा बुरा को हमें सुधारेंगे, कुछ गलत हुआ तो हम सुधारेंगे ना, हमें, हमारे जैसे कोई तो सुधार नहीं सकता, हम खुद सुधार सकते, हमारा गलती को खुद सुधार सकते, कोई दूसरा बोलेगा ना, करना तो आपको है ना, भगवान भी बोला हाथ उड़ा, मैं क्या करूँ, तुम तो करेगा तुम्हारे हाथ में। हाँ, सब अच्छे, बुरा भी कुछ नहीं, अच्छा भी कुछ, अच्छा सब कुछ है, बुरा कुछ नहीं। चलो चलो, बहुत अच्छा। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खास कर पोलो ग्राउंड में, ओपन आकाश में और नीचे धरती में बैठकर हम लोग पूरा रूबरू हुए, और सभी आरजे को, छोटे छोटे आरजे को आज एक दिन के लिए बोले, रेडियो में बोलने के लिए मौका मिला, तो सभी को धन्यवाद। नाम का साथ आभार, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो आज के लिए सभी को बाय बाय, ओके, ताली बजा, ताली का साथ। और खासकर हमारा साथ जी, जिसका चलते हमें आज बैठने के लिए मिला है ना,
2: धन्यवाद सर आपने,
0: क्योंकि सार नहीं रहते हैं तो हमें कौन देता है, आप कहाँ बैठ पाते, सार नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो सार नहीं होते, और आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते, बोले सभी का विशेषता है ना। कोई काम नहीं सोचना, मैं काम हूँ, सार का जितना इम्पोर्टेंस आपका भी इतना इम्पोर्टेंस। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी कब आएगी, इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है। कई बार अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा ज़रूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आई हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है, खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज़ है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी दीदी,
1: कैसे हैं आप?
2: अच्छे।
1: अच्छे हैं?
2: बहुत अच्छे।
1: बहुत अच्छे हैं सरोज जी। वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है, तो आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
2: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी, और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था, तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
1: अच्छा।
2: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा।
1: गाना नहीं छोड़ा।
2: हाँ।
1: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
2: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
1: 8-9 साल के थे। हाँ। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
2: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ, क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई हुआ स्कूल में, उस टाइम में 13 साल की थी।
1: अच्छा।
2: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिला में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई, लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार, तो मेरे को रोक दिया गया,
1: लड़कियों को नहीं,
2: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
1: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
2: हाँ, परमिशन लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था, लेकिन काम सारे आते हैं, खेत का भी करते थे, जैसे जमींदार है 18-20 किले ज्यादा भी मतलब 80 किले की भी खेती करते थे, वो काम भी सारा आता, लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
1: बाहर नहीं जाने,
2: बाहर नहीं जाने दिया। हम 4 बहनें हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो, गाँव में तो होती है रूढ़िवादी समाज होता, तो वे बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए, तो वहीं से बाप फिर चुप हो जाता था भाई बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना।
1: आपके माता पिता का भी मन था?
2: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का, वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के।
1: समाज? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या?
2: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया।
1: स्वीकार कर लिया?
2: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार करती।
1: उनकी तो भावना भी थी और आपको?
2: बहुत भावना थी दीदी, उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें कहीं भेज दूं, उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते,
1: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे,
2: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे, कहते थे वे तो गाड़ी चला स्कूटी चला, तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं सोचा भाई इसकी बहन ये कर रही हो कर रही हो, भाई थोड़ा सा छियादत का है, बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में, लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी, दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
1: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी, जो गाने को आपने छोड़ा नहीं।
2: हाँ, ये चीज मैंने दीदी अकेले में, मैं जैसे रसोई में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा कोई रोक क्या नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ नहीं पाई।
1: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना, तो कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोजी, मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
2: ठीक है दीदी
1: जी।
2: ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं. अहम कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. और दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा आपने गीत सुना सरोज जी की आवाज में. सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
1: हाँ दीदी,
0: है ना. क्या क्या गीत है ये? क्या आपने सोच के से बनाया? क्या मन में आया आपके?
1: ये दीदी, मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया, तो ये शब्द निकले मेरे मुख से.
0: अच्छा.
1: तो ये गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत बन गया.
0: क्या बात है.
1: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है.
0: सही बात है. शब्दों से संगीत बनता है. और भावना ईश्वर से.
1: ईश्वर के लिए मतलब कुछ गाना चाहती थी. अच्छा. तो वे शब्द निकले, उसका संगीत बन गया.
0: क्या बात है. अच्छा सरोचि, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है, तो आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
1: दीदी, मैं जो गाना गाती हूँ वो मतलब दिल से गाती हूँ. मुझे रियाज करने की, रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती. मतलब देखती हूँ, गा देती हूँ.
0: बचपन से भी आप ऐसे ही गाते थे?
1: हाँ, बचपन से ही. जैसे माँ है ना, दूध बिलोती थी ना पहले गांव में, दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग. अच्छा. लोकगीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे. तो पहले आटा पीसती थी, तो मेरी माँ ऐसे करती थी, तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी.
0: अच्छा.
1: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब शुरुआत होगी. हाँ, मनाया मेरे को, मैं गाने लगी बस.
0: अच्छा. तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे?
1: जी
0: याद है
1: जी.
0: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो?
1: जी दीदी,
0: जरूर. हाँ जी,
1: मैं आपको एक लोक गीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए.

0: जाता।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है। माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी,
0: जी दीदी,
1: कभी जब
0: कभी नहीं
1: चुकाया नहीं
0: चुका,
1: जा
0: कोई नहीं चुका
1: सकता,
0: सकता।
1: कोई नहीं चुका सकता। और आपने गाया बहुत अच्छा है, ऐसा बुलंद आवाज़ है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज़ है आपकी एकदम। ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: दीदी मेरी माँ है ना,
1: हाँ
0: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी माँ ने कदे मतलब हाँ एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे दमका या कुछ। मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती।
1: हाँ
0: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है, मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना। भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती, ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से। देखो माँ की भक्ति करें

0: कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए।
1: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है। जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है। वो है ना, जिस टाइम भी घर पा होगा ना, या
0: बंद हो गया। हाँ कंटिन्यू।
1: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता। वो सोएगा नहीं,
0: अच्छा।
1: इतना वो सोए नहीं। देखो देखो, मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा।
0: अपने घर में देखा
1: हाँ,
0: आपने।
1: बहुत अच्छा
0: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
1: दीदी। माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता, सब कुछ। उसमें के लिए शब्द नहीं है,
0: छप नहीं है।
1: शब्द नहीं है। वो तो एक सेवा करने वाला नो समझो, जो सेवा करेगा ना उसको फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
0: इच्छा ही
1: कि
0: नहीं
1: और
0: रहती
1: किसी की
0: है।
1: सेवा करें। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
0: महसूस किया आपने।
1: महसूस। हाँ, मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना, वो दो लियागा। और ऐसी ही भाभी घर में आ गई, मतलब घर सब रह गए। बहुत प्यार करती हर, मतलब आने वाले से भी, कोई घर चला जाता है मेहमान आते हैं तो वो कभी ये नहीं देखती कि भी तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं। भावना से, ऐसे भावना से भाव भी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
0: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
1: हाँ,
0: परिवार
1: ऐसा
0: है
1: परिवार
0: ना,
1: नहीं मिल, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
0: ऐसी भाभी नहीं मिलती।
1: मैं सुनती हूँ गाँव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: मतलब पूरा गांव में हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कहते ना, एक जम्या, तो तने नो समझ ले दसा के बरोबर जान दिया, एक
0: अच्छा।
1: जो तेरी इतनी करता है।
0: एक 10 के बराबर है।
1: हाँ, 1:10 के बराबर है।
0: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
1: हाँ
0: की, बुजुर्गों की सेवा से मिलती है,
1: दीदी, हमारे घर
0: किसी
1: में
0: और
1: ना,
0: चीज से
1: मैं
0: नहीं मिल
1: आपको
0: सकती
1: एक छोटी
0: कभी।
1: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
0: अच्छा।
1: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना। तो बाबा, मैंने को मेरा भाई इतना बागवान, इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
0: कोई
1: बताऊं
0: कमी
1: कि
0: नहीं।
1: किसी चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया हमारा, बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा। आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया, भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो, गांव का एक राजा बनता है जब भाई, कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है। उसने कभी किसी की बददुआ नहीं ली,
0: मदद की ना उन्होंने
1: मदद की
0: सबकी।
1: लोगों की। वो कभी नू नहीं देखता भी तेरे घर में। देखो, मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तो सब कुछ नुए लुटा देगा। मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से। मतलब मैं कहूँ ना, जान जिगर जो माँ दूध पिलाओ ना, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
0: इतना ही प्यार है।
1: हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी।
0: आपका बड़ा भाई है कि छोटा है?
1: मेरा छोटा भाई है,
0: कितना छोटा है
1: मेरे
0: आपसे?
1: से 5-6 साल छोटा उसे।
0: 5-6 साल
1: हाँ,
0: छोटे हैं। नहीं।
1: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है, वो माँ का भी फर्ज निभाता है। ऐसा भाई संसार में, देखो मैं ये तो नहीं कहती होगा नहीं, होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा।
0: देखा नहीं आपने।
1: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ, उसको ये लगता कि मेरी बहन है।
0: मेरी बहन है,
1: अब जैसे मैं
0: इसलिए
1: आपको,
0: उन्होंने
1: हाँ
0: दुआएं भी बहुत
1: हाँ
0: कमाई
1: तो
0: ना।
1: मैं से आपको बोल दूं, दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वे आपको भी अच्छे से बोलेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं। आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं
0: बस आए हैं,
1: भाई।
0: उतना ही
1: वो ये कहते
0: काफी
1: हैं
0: है।
1: कि हमारे ऊपर है ना, जो मेहमान अपने घर आता है ना, वो एहसान करता है। आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है, जो हमारे घर आते हैं ना, और आते भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
0: इतना
1: नहीं है,
0: प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना
1: ऐसा कोई
0: चाहेगा।
1: दिन नहीं है। देखो, हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना, उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे,
0: अच्छा।
1: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था,
0: हाँ,
1: लेकिन जब ज्यादा हो जाता
0: कितना
1: था तो
0: सारा
1: थोड़ा
0: काम हो
1: सा,
0: जाता
1: हाँ
0: है।
1: बहुत, हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया, अभी इतने बच्चे हैं, हमें
0: हाँ,
1: सारी बहनों के 11 बच्चे सब
0: सब आ
1: छुट्टी
0: जाते
1: में,
0: होंगे साथ
1: तो
0: में।
1: उसके बहन भाई सब
0: हाँ
1: उसकी, मतलब इतना प्यार वहां मिलता था मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो 24 बच्चे रखने, तो आज के टाइम में तो 2 बच्चे

0: रखने मुश्किल है
1: बहुत काम होता है उसमें,
0: ना। और मेरे
1: लेकिन
0: बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हें ना पाले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले,
1: अच्छा
0: बस मेरे बच्चे दोनों ने।
1: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा मामी से
0: वो
1: और सबसे।
0: छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू निकाह देना, आए सागरी आ जा सो जा, नू का मैंने नींद ही नहीं आती थी,
1: अच्छा
0: उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। दीदी
1: हाँ
0: उनका
1: इतना
0: खाना,
1: प्यार।
0: मतलब भाभी है ना, चार चार मैस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी यही नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
1: बड़ा दिल ना,
0: हाँ बड़े दिल
1: बड़ा
0: वाले,
1: दिल,
0: फरोक दिल।
1: क्या बात है। तो उन लोग को भी गाने का शौक है
0: दीदी
1: किसी को,
0: मतलब
1: या आप गा गा के सुनाते हैं सबको?
0: वो सुनती है मेरे गाने,
1: सुनते
0: मेरी
1: हैं।
0: माँ को बहुत शौक है दीदी।
1: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को भी पसंद है, आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोकगीत, कोई भजन जो हमारी
0: हाँ
1: श्रोताओं को
0: दीदी
1: आज आप
0: है,
1: सुनाए?
0: जो मेरे से सुनती है वो।
1: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
0: ठीक दीदी मैं सुना रही हूँ। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे।
1: अच्छा
0: ठीक है,
1: जी।
0: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: रचदी।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे उस गाने का मतलब, थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी जी। जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं, अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर आप सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई, अच्छी बुरी। लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई, तुम अपना वेस्ट ना करो इसमें, भाई भगवान की बातें करो, भगवान के भजन करो। तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधि करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधि है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तक बचगी, या ऐसी माया कोई भगवान न रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ,
1: कि वो समय हाँ, कहते हैं ना जो हाँ, समय की कीमत नहीं समझता फिर हाँ, समय हाँ, उसकी कीमत भी
0: दीदी फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना, इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं भगवान मिलन के, प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भी ज्योति की चीज है, वे तो भगवान का रूप है ना ते हैं, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है, जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैं लौकिक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस, सब गाते हैं मैं भी गा,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था। हाँ मीनिंग का नहीं पता था उसमें, अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें, भाई ये के शब्द है।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरोज जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का स्मरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ 3 बजे उठ कर 1 घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ। तो ऐसे ही भाई भगवान मुझे शक्ति दो, जैसे भी फिर जो मैं सुबह सुबह उठकर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चलने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
1: ओके, सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया
0: है ना। जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना। ऐसे वायु जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो अपने देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो जैसे हवा है, हे वायुदेव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना। तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
1: शुक्रिया करो,
0: शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आप का मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का। सूर्यदेव है, हे सूर्यदेव जैसे सुबह सूर्यदेव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्यदेव देखो कहीं भी आप है ना, जो रोशनी है जो सूर्य की रोशनी जा सकते ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया करते हैं आप,
0: है ना।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो, शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना
1: प्रकृति
0: उससे वायुमंडल अच्छा होता है, जब हम इन चीजों का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना तो उसमें फिर भगवान का सिमरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा, जिस
1: खुशी
0: दिन
1: रहती है,
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करांगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली
0: है। हाँ जो खाली है आज कुछ, कई बार हो जाता है दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली खाली, खाली लगता हाँ, रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा
1: अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है?
0: हाँ दीदी
1: ऐसा है
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना कभी अपने पास है ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं, मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

पहुंच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की।

0: और दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं, फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है।
0: संगीत साधना भी है और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं। उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला, भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गणी नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी चार लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी, जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दे दी है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडु भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते हैं चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को,
1: अच्छा,
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए। तो जो भाई है ना, ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ता करने, तो ये उसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको है ना गाना गा रहा था वो उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उस पे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद का प्यारा मुझे कौन मार दे, जैसे आप असीम बाबा का बोलते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा गाना बनाया था। तो किसी ने देख लिया, कोई मतलब सेठ था बाहर से आ रहा था, और उसको कोई होगा ये चीज, उसकी चैनल चलता हो या भाई पता नहीं, वो वैसे उन्हें गोद में उठा लिया था उसको।
1: अच्छा,
0: तो कह रहा था इसको मैं ना भाई इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी। खाना बनवा लो उस पर कैसा ही, भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना, तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है, भावना है,
0: भावना की समझ है उसको। अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू होगी अब।
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी बड़ी है वो
0: पोती? 5वें साल में लग गई है।
1: बहुत छोटी सी अभी
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे तीन होते हैं ना उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे संस्कार
0: कृष्णाय वासुदेवाय, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे संस्कार बच्चों को
0: जो अब ये
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का, सरोज जी बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिव

0: चुनरी।
1: जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: जी दीदी, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी भाई, जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है। संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
1: आनंद आएगा जी,
0: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखें,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
1: हिम्मत करो
0: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना, आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
1: जगाओ,
0: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के। ये सोचो ना, तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या लग रहा होगा,
0: क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं, जहाँ दिमाग आता है फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ
0: ही। संगीत के पीछे पागल हो जाओ, कहते ना पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल हूँ, है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई, है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: लेजेंड्स हुए, और वो तो स्वर कोकिला भारत की,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल,
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन अपने बड़ों को देखो, है ना, अनुराधा, अनुराधा मैं उसके गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं,
1: हाँ,
0: कि भाई अच्छा संगीत,
1: अच्छा संगीत,
0: हाँ
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा जाइए।
0: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी
1: है, खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते हैं, कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 94 14 15 14 15, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल देते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज 30 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम किसी से भी पूछो, क्या पुनर्जन्म में मानते हो? तो कहेंगे जरूर मानते हैं। तो पूछो, मनुष्य अगर पुनर्जन्म लेंगी तो संस्कार अनुसार ही लेंगी? कहेंगे हाँ। तो फिर 84 लाख जन्म की बात कैसे आ सकती है? इतनी योनियों में कैसे जा सकते हैं? अगर संस्कार अनुसार ही जन्म लेना है तो वो तो फिर मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। तो 84 लाख योनियां जरूर है, परंतु मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेता है, तो वो 84 जन्म कैसे लेता है? वह तुम्हें उन्हें विस्तार से, बाबा कहे, वह तुमको उन्हें विस्तार से फिर समझाना है। कैसे सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, फिर धीरे धीरे कला कम होती गई, फिर एकदम 9 कला जब हो जाती है तब परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, परमात्मा निराकार ही है। यहाँ आकर साकार में शरीर धारण कर लोन पर ले समझाते हैं और पूरे 84 जन्म की कहानी समझाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, अपनी अवस्था को ठीक रखना है तो जितना हो सके सवेरे सवेरे उठ करके अशरीरीपन का अभ्यास करना है, और अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे अवस्था सारा दिन बहुत अच्छी रहेगी। बाबा कहते, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और उठ करके बाबा की याद में बैठो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। ये आदत हमारे अंदर पक्की होनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होगी ना, जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, अर्थात उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। को बहु जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे, बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, बाबा कहते, कोई भी सन्यासी से भी तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है।
ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रदान होगा, लास्ट 6-6 तमो प्रदान होगा, 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी, धीरे धीरे कला कम होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, हर जन्म में अपने कलाओं को यूज करते जाते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं वह पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। एक ही बार इस तन में अवतरित होते हैं और फिर मरते नहीं हैं, पुनर्जन्म भी नहीं लेते, शरीर का आधार लेते और निकल जाते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे, बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप पतित पावन है तो वो पावन बनाएंगे, पतित कौन बनाता? माया बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बना है, रावण की मत से ही ये सृष्टि दुख धाम बन गया। पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ भी नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं है। वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं, सतयुग में रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं है। भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार भी आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। परमत माया की मत है, रावण की मत परमत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए दुखी है। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने लाखों वर्ष का अगर सतयुग होता
तो फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूं जैसा हूं ये चक्र फिरता है, कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं ये चक्र फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है। कौन सी बात सहज है? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो बाबा के वारिस है। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। एक खेल कंटिन्यू चलता ही रहता है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, बच्चों में कच्चे पक्के तो जरूर है ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 100 साल तक कोई यज्ञ चलता नहीं है। 90 साल हो गए। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना। बाबा बच्चों को कहते बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान उवाच मुझ अपने बाप को याद करो। भगवान उवाच क्या कहा बाबा ने? मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। बाबा स्मृति दिलाते हैं भक्ति मार्ग में तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे। बाबा याद दिलाते हैं स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ
तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा।

बाबा की भी प्रतिज्ञा है, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, बाबा कहते कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं, बाप परमधाम से आए हुए हैं, परंतु माया चिल भी कम नहीं है, माया चिल है, ये चिल भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, बाबा के सामने बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं, मुरली सुनते हैं बाबा को याद करते रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन बाबा के भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बाबा बताते, कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबरवार है ना, बल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई पले प्रजा तो प्रजा सही, जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। जो समझते हैं भाई प्रजा तो प्रजा सही, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, बाबा कहते हैं नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये गुड़ दौड़ है, सभी नंबर वन तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाए तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है, माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है, आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाए बाबा के पास, बस अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। इस शरीर द्वारा पुरुषार्थ करने के लिए जितना टाइम निकाल सको अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी क्या करते हैं, 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो, याद तो कहां भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, माने जल्दी सोना जल्दी उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। हाँ बाबा कहे अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, यानी 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो,
फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सर्व शरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, साकार बाबा भी बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। बाबा कहते तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व पर मत को त्याग देना है। हम मन मत और पर मत, बाबा ने कहा माया की मत रावण की मत, उसको त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस में कम से कम 8 घंटा जरूर लगाना है। बाबा कहे सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। बाबा कहते हैं स्नेही बनना है तो सरलता जितने नेचर में होगी, सहनशील होंगे तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, और कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति।